0: पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
1: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
0: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
2: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
0: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
3: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
4: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
3: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
0: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
5: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
0: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही सीजेपी ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
6: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है,
0: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के दो मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
7: सारे MPs ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MPs के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MPs के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके ये फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
0: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
8: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि आप बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो।
9: नड्डा जी,
8: धर्मेंद्र, बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
10: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
11: साजिश कर रहे हैं।
10: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
0: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
12: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
0: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है? क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
9: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
11: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 2-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
13: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
14: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
15: 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
9: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
11: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
16: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
9: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते।
17: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा था। अभी
18: सर सर सर
17: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाओ यार।
11: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहां पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
9: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
19: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई है सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है अभी 2 रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना डेढ़ महीना में रिजल्ट निकल जाएगी और घबराना नहीं तुम्हें।
11: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और ना ही यहां पर है स्थायी भवन।
20: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहां से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
18: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए, लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का। फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित से इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
21: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से आठवीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है, और यहां जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
18: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
22: तो शिक्षक है, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
23: अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे।
24: आ जाएंगे,
25: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
24: आज नहीं आई है?
21: लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
25: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला, तो आगे चल के ना होगा।
18: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर और न ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 135,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
21: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है, और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
18: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
26: 63 हुए,
27: 63 हो चुके
26: हैं, हो चुके हैं।
27: तो टीचर कितने हैं, 63 बच्चों के?
26: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, और बरसर के पद पर हैं, वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
18: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
28: चलो नहीं है
27: टीचर, नहीं है। कितने टीचर है पता किया है?
28: अभी तो फिलहाल 3-4 है लोग,
27: 2-3-4 है। तो 2-3-4 करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
28: मुझे तो यही बात है कि नहीं लग रहा है।
27: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं,
28: नहीं।
27: तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है? नहीं है,
23: नहीं मिल रहा है कभी भी,
27: कुछ नहीं,
23: नहीं 2-3 दिन से कोई भी सुविधा नहीं है।
18: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए, और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज जहां पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
29: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48-48 सीट निर्धारित की गई।
18: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक, और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए, ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा।
0: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
1: एक चीज जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
0: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
18: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्त के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
6: कौन से ग्रह से प्रभावित लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं? कौन से ग्रह से प्रभावित लोग ज्यादातर व्रत और उपवास रखते हैं? और कौन से ग्रह से प्रभावित लोग पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं? कौन सा ग्रह कैसी करवाता है पूजा उपासना, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
7: Yes, ma'am, the ice cream cake is ready for the birthday boy. On my way. Navigation, what if I stay on this road?
8: Okay, if you stay on this road, birthday boy will have ice cream soup. Not good for candles.
7: Are you kidding?
8: I don't kid. I just route.
7: Okay, so...
8: At the next intersection, take the 66 Express outside the Beltway.
7: All right, ice cream cake arriving on time.
10: The 66 Express outside the Beltway was expressly built to save you time. Visit Ride66Express.com to plan your trip.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
30: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
31: Right field, and it will...
30: From the first pitch of the season to the stretch run.
31: And that's the ball game.
30: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी, एसीपी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी 3 मांगे।

छात्रों के आंदोलन पर सलमान खान का बयान, कहा छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रूप न दिया जाए, मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में अनशन खत्म करने की बताई शर्त, कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्यवाही, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी। मानसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का वक्त और लगेगा।

0: के साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बजे 6 ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर क्यों पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प हुई, बीती शाम कैसे हिंसक झड़प। दूसरी खबर आपको बताएंगे कि छात्रों के आंदोलन को लेकर के अभिनेता सलमान खान ने क्या कहा और क्यों कहा कि छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रूप न दिया जाए, कैसे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आए सलमान खान। तीसरी खबर, अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अब अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने क्या शर्त रखी है। चौथी खबर यह भी बताएंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम जारी है, तो राहुल गांधी पर जेपी नड्डा ने क्या पलटवार किया। बुलेटिन में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान पर लगातार 12वीं रात भी अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और कहां कहां धमाके हुए, और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत बरस रही है। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल देर शाम दिल्ली के जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई। इसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जंतर मंतर, टॉलस्टॉय मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वो इलाके जहां पर छात्रों का जमावड़ा है। भारी मात्रा में सीजेपी प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे, जिनके साथ पुलिस के जवानों की झड़प हुई। ये बीती शाम की वो तस्वीरें हैं जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, और इसी झड़प में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा मंजर हिंसक हो उठा। तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर पिटाई की, डंडे चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। अब इस वक्त हालात काबू में हैं, सामान्य हैं, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों में लगातार झड़प। पुलिस की कार्रवाई से छात्र लगातार नाराज हैं और ऐसे में अमूमन शाम को हिंसक झड़प की तस्वीरें उन इलाकों से आ रही हैं। फिलहाल हालात बेहद सामान्य हैं और स्थिति नियंत्रण में है।
1: जंतर मंतर में फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। कल देर शाम सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिन में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन देर शाम टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, कनॉट प्लेस में टॉलस्टॉय मार्ग के पास रात करीब 8:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिससे कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत घायल हो गए। सीनियर अधिकारी उन्हें RML अस्पताल ले गए।
2: 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था।
1: पुलिस के मुताबिक RAF और पुलिस की टीम रोजाना की तरह तैनात थी, तभी अचानक पथराव होने लगा। RAF और पुलिस एक्टिव हुई तो ताबड़तोड़ बड़े बड़े पत्थर पुलिस और RAF की टीम पर बरसाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे जो पुलिस पर चलाए गए। भीड़ को काबू में करने के लिए RAF की टीम ने हल्का बल प्रयोग किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को काबू में किया, और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आज तक ब्यूरो।
0: तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो छात्र आंदोलन चल रहा है, उसमें अब कई सारे फिल्मी सितारे भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब से 7 घंटे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। इन छात्र आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए सलमान खान, उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र उनके परिजन घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। सलमान खान ने यह भी कहा कि ये मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है। आखिरकार बॉलीवुड की ओर से भी चुप्पी टूटी है और सलमान खान भी ये समझ रहे हैं कि ये देखिए उनका सोशल मीडिया पोस्ट है कि ये कितना गंभीर मामला है, कि ये छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच जो खामी है उसके बीच का है और इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। आपको बताते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं सलमान खान। ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिजन घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं, उनके माता पिता ने उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति उत्सुकता दिखाई है। ये आंदोलन या विरोध ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। ये बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। ये मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दियाना चाहिए। इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए और मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है, एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षा पाना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और हर साल ये और ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनती जानी चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग बढ़ने के लिए भारत आए, भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। तो आखिरकार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी छात्रों के इस आंदोलन में समर्थन में आए, पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बनाया। लेकिन अब बात करेंगे सोनम वांगचुक की, जिन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो बच्चों पर ताकत या बल का प्रयोग न करें। मुझे इस पर सरकार से आश्वासन चाहिए। अगर आश्वासन मिलता है तो मैं आज ही अनशन तोड़ दूंगा। अगर आश्वासन नहीं मिला तो मैं अनशन जारी रखूंगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि तीन शर्तें लिखी है कि छात्रों पर कार्रवाई ना हो, FIR ना हो, उन पर और हमले ना हो और अगर भरोसा ये मिलता है तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये आश्वासन दे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के विचार किया जाएगा। हालांकि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए कई विपक्षी दलों ने और खुद CJP ने यह अपील की है कि वो अपना अनशन अब खत्म कर दें क्योंकि आगे का आंदोलन अब CJP और उनके प्रदर्शनकारी खुद संभालेंगे। सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर आए उसके बाद अब CJP ने उन्हें कहा है, उनकी शर्तें क्या देख लीजिए, छात्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो। ये उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को, उसमें यह भी कहा है कि छात्रों पर किसी तरह की FIR ना हो और चिट्ठी के बाद उन्होंने ये वीडियो मैसेज जारी किया देखिए मेदांता अस्पताल से ही कि किसी तरह की FIR ना हो और सरकार ये आश्वासन दे कि जो वो मांग कर रहे हैं वो होगा। इससे पहले उन्होंने भी कहा था कि सरकार के प्रतिनिधि अगर मिलते हैं तो अनशन तोड़ दूंगा, बातचीत होगी और उनसे मिलने भी गए जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करने के मेदांता अस्पताल और आश्वासन मिले तो छात्रों पर बल का प्रयोग और ना हो क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई छात्रों के खिलाफ लेकर के पूरे देश से आवाज उठी है और अब सोनम वांगचुक चाहते हैं कि ये बंद हो।
3: जय हिंद।
1: सोनम वांगचुक को लेकर मचा सियासी संग्राम, मेदांता अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन। वांगचुक से मिलने पर अड़े दिखे कई विपक्षी नेता। छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है, जिनसे मिलने के लिए कल शाम आप सांसद संजय सिंह, JMM और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मिलने पहुंच गए, जिनको पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। इस पर संजय सिंह की पुलिस से बहस भी हुई। अंदर न जाने देने पर सभी अस्पताल के गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। करीब एक घंटे तक यहां हंगामा चला। इसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उनकी हेल्थ अपडेट दी। मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए रिश्तेदारों को ही मिलने की परमिशन की बात कही। इसके बाद सांसद वहां से चले गए। वहीं सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, 25 दिन से अनशन पर हूं और सरकार से चिट्ठी में लिखी बातों को मानने पर अनशन तोड़ने की बात कही।
3: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
1: सोनम वांगचुक की चिट्ठी और मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हम उस पर जल्द जवाब देंगे और वार्ता आगे बढ़े इस पर विचार करेंगे।
4: हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी।
1: तो अब देखना होगा कि सरकार और वांगचुक के बीच चल रही बातचीत कितना सकारात्मक होती है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली से एक और बड़ी खबर और वो ये कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात बदमाश हाफी अफजल भी दिखाई दिया था। हाफी अफजल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। हाफी अफजल की पत्नी हजन शकीला आम आदमी पार्टी से मौजूदा पार्षद है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हाजी अफजल पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, आर्म्स एक्ट, मारपीट, डीपीडीपी एक्ट और मकोका समेत 26 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसके अलावा हाजी अफजल अपने अलग अलग मामलों में जेल की सजा काट चुका है, कई मामलों में बरी हो चुका है। फिलहाल 20 जुलाई के बवाल में अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो प्रदर्शन में मौजूद था, नारेबाजी कर रहा था। ये वो तस्वीरें 20 जुलाई की जब वो नारेबाजी करता दिखाई दिया। तो एक तरफ जंतर मंतर पर जहां आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ संसद का मानसून सत्र भी आज सत्र का चौथा दिन है। पिछले तीन दिन से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है संसद का यह मानसून सत्र, और चौथे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। अब आज भी संसद के मानसून सत्र में हंगामा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तरफ नीट के मुद्दे पर सरकार चर्चा को अब तैयार हो गई है, तो विपक्ष बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बहस करने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो सड़क से लेकर संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। संसद के दोनों सदनों में कल जबरदस्त नारेबाजी देखी गई, और इस नारेबाजी के बीच क्या सड़क क्या संसद, मांग सिर्फ एक, चर्चा आगे होगी, लेकिन पहले कार्यवाही, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या उन्हें पद से हटाया जाए। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अब विपक्ष अड़ गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कुछ बिल लाने की भी तैयारी में है, लेकिन फिलहाल संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लेकिन अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर संसद में भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
5: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
6: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
7: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है।
8: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती, तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
9: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है, और यह जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सा करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
10: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
8: कांग्रेस अध्यक्ष

0: महीने दिन से कहा है। जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
1: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद बाज के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
3: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
2: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
3: हम लोग का बात भी सुनिए
2: अखिलेश जी। नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
3: अखिलेश जी एक मिनट।
2: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
1: अखिलेश यही चाहते हैं कि देश की संसद से छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज का सच पूरी दुनिया सुने। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का आरोप है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अगर नौजवानों के मुद्दे से विपक्ष का सरोकार होता तो संसद में चर्चा से भागते नहीं।
4: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
1: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है तो आरोप प्रत्यारोप में भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं-मैं जारी है।
5: प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए, आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है, नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
6: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पर हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या, ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
1: बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर रखी है, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सीजेपी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।
7: वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें, पुलिस वालों के साथ

0: आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।
1: अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और CJP अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा?
2: तो सरकार भी चाहती है नीट के मुद्दे पर चर्चा हो, विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो। सरकार चाहती है पहले चर्चा हो, शर्त उसकी होगी, विपक्ष चाहता है कि शर्त उसकी मंजूर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन नीट के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बीती शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। राहुल का उद्देश्य छात्र हित नहीं है, कांग्रेस और विपक्ष की सरकार में भी पेपर लीक हुए। JP नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते सालों में किन किन गैर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए और एक भी दोषी को सजा नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जायज है। तो एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की का जो है इस्तीफा होना चाहिए, 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।
3: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
4: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड। इफ यू डू द मैथ, सो वन अ मंथ अप्रोक्सीमेटली, एवरी मंथ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टोल्ड दैट ऑल द स्ट्रेस दैट यू वेंट थ्रू यू गोइंग टू हैव टू गो थ्रू अगेन। And after that, they told, we really don't care.
2: और अब बात करेंगे मिडल ईस्ट में मची जंग की। ईरान पर अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिणी ईरान में कई धमाके हुए हैं। दक्षिणी ईरान के सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और लगातार 12वें दिन ईरान के अलग अलग इलाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सेना का बयान भी सामने आया है। हमले के बाद दक्षिण ईरान में धमाके सुने गए और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को ईरान में अमेरिका ने ध्वस्त करने की कोशिश की, ताकि ईरान की सैन्य क्षमताओं को और भी कमजोर किया जा सके। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि कमांडर इन चीफ के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। यह मिशन ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए जारी रहेगा, जिससे वो इलाके के समंदर में आने जाने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है। और अब बात करेंगे मानसूनी आफत की। गुजरात में एक बारिश में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। नवसारी, वलसाड, सूरत में लगातार हो रही बारिश से हालात नाजुक बन गए हैं। सूरत और नवसारी के लिए रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद भी बारिश से न सिर्फ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि भारी बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े कदम उठाए हैं। वलसाड में पिछले 24 घंटों में 11 इंच बारिश होने से स्थानीय नदियां भी उफान पर आ गई हैं। तो गुजरात में लगातार, अब सोचिए, कहा एक तरफ पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तेज बारिश के चलते, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए रिपोर्ट।

0: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर। लगातार बारिश से गुजरात में बिगड़े हालात, उफान पर अंबिका और कावेरी नदी। गुजरात में एक बार फिर मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। गुजरात के कई जिले इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते अंबिका नदी का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय शिवलिंग पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं लोगों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी भी जारी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी, सभी नदियों पे अभी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और सभी लोगों को यहाँ पे जो है सुरक्षित जाने के लिए सूचित किया हुआ है। खास करके बात करें नवसारी शहर की, तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है।
0: नवसारी ही नहीं, सूरत में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें मानो दरिया सी नजर आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत के लंबायत इलाके में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी निकालने के लिए नगर निगम की टीम पंपों का सहारा ले रही है। वहीं वलसाड में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों के घर हो या हाईवे, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से गाड़ियां चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें नाव का सहारा ले रही है। नवसारी से रौनक जानी, सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: यहां रुकने एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: No.
7: Oh, no.
8: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
8: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
7: Oh, my God.
6: It's got to be deliciously desperate.
7: Why do these girls forgive him?
9: Well, she has a soft spot for troubled men.
6: Boo bloody hoo.
8: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
7: Love runs deeper than we know.
8: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
10: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: से ग्रह से प्रभावित लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। कौन से ग्रह से प्रभावित लोग ज्यादातर व्रत और उपवास रखते हैं और कौन से ग्रह से प्रभावित लोग पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं? कौन सा ग्रह कैसी करवाता है पूजा उपासना, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
2: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी, एसीपी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस जनता पार्टी ने रखी तीन मांगे।

छात्रों के आंदोलन पर सलमान खान का बयान, कहा छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रूप न दिया जाए, मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में अनशन खत्म करने की बताई शर्त, कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्यवाही, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी। मानसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का वक्त और लगेगा।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में और शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर। देर शाम कल दिल्ली के जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई। इसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे जिनके साथ पुलिस वालों की झड़प हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा मंजर हिंसक हो उठा। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि छात्रों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस की ओर से उन पर कार्रवाई की गई, लाठी डंडे चलाए गए। ये बीती शाम की वो तस्वीरें हैं। पुलिस का दावा है कि कुछ पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। हालांकि फिलहाल हालात काबू में है, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है, हालात इस समय सामान्य है। रात भर प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जमे रहे। ये देर शाम की तस्वीरें हैं जब जंतर मंतर पर एक बार फिर छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई।
1: जंतर मंतर में फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। कल देर शाम सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिन में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन देर शाम टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, कनॉट प्लेस में टॉलस्टॉय मार्ग के पास रात करीब 8:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिससे कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत घायल हो गए। सीनियर अधिकारी उन्हें RML अस्पताल ले गए।
2: 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था।
1: पुलिस के मुताबिक RAF और पुलिस की टीम रोजाना की तरह तैनात थी, तभी अचानक पथराव होने लगा। RAF और पुलिस एक्टिव हुई तो ताबड़तोड़ बड़े बड़े पत्थर पुलिस और RAF की टीम पर बरसाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे जो पुलिस पर चलाए गए। भीड़ को काबू में करने के लिए RAF की टीम ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को काबू में किया और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आज तक ब्यूरो।
0: वहीं नीट पेपर लीक को हो रहे छात्र आंदोलन पर फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सलमान खान ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ये बेहद शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया और उनके परिजन घायल हुए। सलमान खान ने कहा कि उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम वो भी इस छात्र आंदोलन के समर्थन में आया। उन्होंने कहा कि यह मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसका श्रेय, इस आंदोलन का श्रेय देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी, शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी। सलमान खान का सोशल मीडिया पोस्ट छात्रों के समर्थन को लेकर के सलमान खान का बयान, वो खुल करके समर्थन में आए इस आंदोलन के और ये कहा कि इसका पूरा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। नीट पेपर लीक को सलमान खान ने भी बॉलीवुड में अब तक का सबसे बड़ा नाम। इसके पहले हमने देखा कि जो प्रतिक्रियाएं, नसरुद्दीन शाह जंतर मंतर पहुंचे थे, सोनाक्षी सिन्हा उन्होंने पोस्ट किया, और उसके बाद अब मुंबई से भी, सिने जगत से भी प्रतिक्रियाएं छात्र आंदोलन को लेकर के आने लगी हैं सामने। सलमान खान ने खुलकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और यह भी मांग की कि छात्रों का यह आंदोलन है, उसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। तो आपको चलिए पोस्ट दिखा देते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्स पर सलमान खान ने क्या लिखा। ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिजन घायल हुए उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं, उनके माता पिता ने उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति उत्सुकता दिखाई है। सलमान खान का पोस्ट, उन्होंने आगे लिखा है कि आंदोलन या विरोध सही तरीका है, ये सलमान खान कह रहे हैं। छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है, ये बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। ये मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया चाहिए। इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए और मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी, शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए एक फायदेमंद स्थिति है, एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षा पाना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और हर साल ये और ट्रेंडी फैशनेबल बनती जानी चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आए और भारत एक एजुकेशनल हब बन जाए। सलमान खान छात्रों के समर्थन में कह रहे हैं कि सरकार को भी इसका समर्थन देना चाहिए। तो बड़ी बात है, सलमान खान की सोशल मीडिया पोस्ट पर कई सारे फिल्मी सितारे खुलकर छात्र आंदोलन के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि बेहद शांतिपूर्ण यह आंदोलन चलता रहा है लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि छात्रों को मिलना चाहिए और सरकार को भी उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। और बात करेंगे अगली खबर, चूंकि सोनम वांगचुक की, जिन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से अपना वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में सोनम कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो बच्चों पर ताकत या बल का प्रयोग न करें। मुझे सरकार से इस बात का आश्वासन चाहिए और अगर सरकार ये आश्वासन देती है तो मैं आज ही अनशन खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आश्वासन नहीं मिला तो मैं अनशन जारी रखूंगा। उनकी तीन शर्तें क्या है? कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उन पर बल प्रयोग ना हो, लाठी डंडे ना चलाए जाएं, आंसू गैस के गोले ना चलाए जाएं और उन पर किसी तरह की एफआईआर ना हो। प्रदर्शन के लिए उन पर एफआईआर ना हो और सरकार यह आश्वासन दे। उन्होंने पहले चिट्ठी भी लिखी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को और उसके बाद मेदांता अस्पताल से अपना वीडियो भी जारी किया। इस बीच सरकार ने सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की थी लेकिन अब उनका वीडियो सामने आया है।
1: सोनम वांगचुक को लेकर मचा सियासी संग्राम, मेदांता अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन। वांगचुक से मिलने पर अड़े दिखे कई विपक्षी नेता। छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए कल शाम आप सांसद संजय सिंह, जेएमएम और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मिलने पहुंच गए, जिनको पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। इस पर संजय सिंह की पुलिस से बहस भी हुई। अंदर न जाने देने पर सभी अस्पताल के गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। करीब एक घंटे तक यहां हंगामा चला। इसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उनकी हेल्थ अपडेट दी। मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए रिश्तेदारों को ही मिलने की परमिशन की बात कही। इसके बाद सांसद वहां से चले गए। वहीं सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, 25 दिन से अनशन पर हूं और सरकार से चिट्ठी में लिखी बातों को मानने पर अनशन तोड़ने की बात कही।
3: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
1: सोनम वांगचुक की चिट्ठी और मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हम उस पर जल्द जवाब देंगे और वार्ता आगे बढ़े इस पर विचार करेंगे।
4: हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी।
1: तो अब देखना होगा कि सरकार और वांगचुक के बीच चल रही बातचीत कितना सकारात्मक होती है। आज तक ब्यूरो।
0: वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात बदमाश हाफी अफजल भी दिखाई दिया था। हाफी अफजल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। हाजी अफजल की पत्नी हजन शकीला आम आदमी पार्टी से मौजूदा पार्षद हैं। पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि हाजी अफजल पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, आर्म्स एक्ट, मारपीट, डीपीडीपी एक्ट, मकोका समेत कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसके अलावा हाजी अफजल अपने अलग अलग मामलों में जेल की सजा काट चुका है। तो पुलिस का दावा यह है कि वो जंतर मंतर पर दिखाई दिया है। 20 जुलाई को हुए बवाल में अभी तक उसकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है, ये भी पुलिस कह रही है। और वो प्रदर्शन में मौजूद था, नारेबाजी कर रहा था। चलिए अगली खबर यह कि जंतर मंतर पर एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ वहां से कुछ मीटर की दूरी पर संसद का मानसून सत्र। तो आज सत्र का चौथा दिन है। पिछले तीन दिनों से संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और पूरी संभावना है कि चौथा दिन भी हंगामे के आसार दिखाई दें। वो इसलिए क्योंकि मानसून सत्र में एक तरफ नीट के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार दिखाई दी तो अब विपक्ष बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बहस करने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है सदन में चर्चा भी होनी चाहिए लेकिन उस चर्चा के पीछे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में कल जबरदस्त नारेबाजी देखी गई और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कुछ बिल लाने की भी तैयारी में है और इस बीच सदन जो है लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष बहस और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अब तक सिर्फ बहस के लिए तैयार हुई है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
5: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
6: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
7: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है।
8: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती, तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
9: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है।
10: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
11: धन्यवाद।
10: जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए।
8: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की।
10: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
8: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
7: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
12: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
7: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
12: हम लोग का बात भी सुनिए।
7: अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
12: अखिलेश जी एक मिनट।
7: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान, हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे, अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
8: अखिलेश यही चाहते हैं कि देश की संसद से छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज का सच पूरी दुनिया सुने। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का आरोप है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अगर नौजवानों के मुद्दे से विपक्ष का सरोकार होता तो संसद में चर्चा से भागते नहीं।
11: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वह मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
8: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है तो आरोप प्रत्यारोप में भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं-मैं जारी है।
13: प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी? ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
14: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
8: बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर रखी है, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सीजेपी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।
15: वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।
8: अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और सीजेपी अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा?
0: नीट के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। राहुल का उद्देश्य छात्र हित नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष की सरकार में पेपर लीक हुए। राहुल गांधी ने भी कहा कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जायज है।
16: Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
17: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड। If you do the math, so one a month approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they told, we really don't care.
0: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक.
18: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
19: कौन से ग्रह से प्रभावित लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं? कौन से ग्रह से प्रभावित लोग ज्यादातर व्रत और उपवास रखते हैं? और कौन से ग्रह से प्रभावित लोग पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं? कौन सा ग्रह कैसी करवाता है पूजा उपासना, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में.
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

छात्रों के आंदोलन पर सलमान खान का बयान, कहा छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रूप न दिया जाए, मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में अनशन खत्म करने की बताई शर्त, कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्यवाही, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी। मानसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का वक्त और लगेगा।

भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग अपनी कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं कि मुझे किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। मामला बिल्कुल इसके उलट होता है। जिस तरह का ग्रह आपकी कुंडली में प्रभावशाली होता है, उस देवी देवता के स्वरूप की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है और उसके स्वरूप की पूजा आप करते हैं। तो आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर होने से आप किस तरह की पूजा उपासना करते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 7:03 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:01 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके ग्रह आपको किस देवी देवता की पूजा की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूजा उपासना का ज्योतिष के साथ और ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, वैसे तो कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता, जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण व्यक्ति किसी खास देवी या देवता की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व जन्म में आप अगर शिव भक्त रहे हैं तो इस जन्म में ऑटोमेटिकली आप भगवान शिव की तरफ चलेंगे, यानी जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो इस जन्म में अपने आप आपको किसी देवी देवता की तरफ ले जाते हैं। कुंडली का जो प्रधान ग्रह है वो बताता है कि आप किस तरह के देवी देवता के स्वरूप की तरफ जाएंगे और आपकी उपासना का पूजा करने का तरीका क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है, लेकिन मोटे तौर पे आप ये जानिए कि आप कुंडली देखकर ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अपनी कुंडली के हिसाब से इस देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस स्वरूप की तरफ आकर्षित होगा उसी स्वरूप की पूजा उपासना करेगा। देवी देवताओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है तो किस तरह के देवी देवता की आप पूजा करेंगे? अगर कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति सूर्य की तरफ ही जाता है, और ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रबल हो ये सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं, और ऐसा करने से इनके जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव हो चंद्रमा का तो आप किसकी पूजा करेंगे? चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करवाता है। ऐसे लोग स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते, लेकिन जिनका चंद्रमा प्रभावशाली होता है आप देखेंगे कि उनका ज्यादातर झुकाव व्रत और उपवास की तरफ होता है। सारे व्रत और उपवास रखने का प्रयास करते हैं। बाकी ग्रहों और पूजा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आकाश श्रीवास्तव जी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1990, 10:35 रात को, वाराणसी उत्तर प्रदेश। देखिए, कह रहे हैं कि मेरी बेटी कंपटीशन हमेशा देती है, प्रतियोगिताओं की परीक्षाएं देती है, कुछ ही नंबर से रह जाती है, सफल होते होते चूक जाती है। तो आगे करियर में सफलता कब तक मिलेगी और सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आकाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा राहु की चल रही है। अगर आपकी बेटी शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें तो शिक्षा या प्रशासनिक सेवा में इनको सफलता मिलेगी। अगस्त 2027 के बाद 2027 और 28 में इनको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनको कहिए कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगी, आंखों का भी ध्यान रखेंगी। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा बनवा करके पहनाएं और रोज सुबह इनसे कहिए कि ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको सफलता मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का हो तो मंगल का प्रभाव होने से आप किस देवी देवता की उपासना करेंगे? अगर कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति को देवी की, माँ दुर्गा की या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और वो करता है। मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की पूजा करता है, देवी या हनुमान जी की तरफ जाता है। और मंगल का प्रभाव कुंडली में हो तो ऐसे लोग लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ, हवन और अनुष्ठान करते हैं। मंगल प्रबल होता है जिनका, उनको तिलक लगाने का विशेष शौक होता है, तिलक अवश्य लगाते हैं, बाकी कोई काम करें या ना करें। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव बुध का हो तो आप किसकी पूजा कर सकेंगे या किसकी तरफ आपका आकर्षण होगा? अगर कुंडली में बुध का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति को भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा ये बुध करवाता है। बुध की प्रधानता अगर कुंडली में होगी, आप अपने आप भगवान विष्णु,
भगवान राम, भगवान कृष्ण इनकी पूजा करेंगे।

गीत भजन इसको ज्यादा शामिल करते हैं। और जब कुंडली में बुध की प्रधानता होती है तो ऐसे लोग तमाम पूजा स्थानों में जाकर दर्शन भी करते हैं और ऐसा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रधान है, बृहस्पति बहुत ताकतवर है, तो ये किसकी पूजा करवाएगा? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल है तो व्यक्ति शिव जी की पूजा की तरफ जाता है, शिव जी की पूजा करता है। जिनका बृहस्पति प्रधान होता है ऐसे लोग ज्यादा दिखावे में या ज्यादा प्रदर्शन में नहीं रहते। ऐसे लोगों को गले में माला पहनने का काफी शौक होता है, ऐसा देखा गया है। खास तौर से रुद्राक्ष की काफी माला ये अपने गले में धारण करते हैं या अपनी कलाई में पहनते हैं। बाकी ग्रहों पर भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्रबलता ज्यादा है, शुक्र ज्यादा प्रबल है, तो आपका झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा? शुक्र अगर कुंडली में प्रबल है तो इसका प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग पूजा उपासना में बड़ा प्रदर्शन करते हैं, पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं। कपड़े कैसे पहने, कैसे मैं पूजा करता हूं, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया

मीडिया पे डालो, ये सब करने में इनको बड़ा आनंद आता है। ये पूजा गोपनीय नहीं करते, ज्यादातर पूजा प्रदर्शन और दिखावे के लिए करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का है तो आप किस तरह की पूजा उपासना की तरफ जाएंगे? देखिए, शनि का प्रभाव अगर कुंडली में ज्यादा है तो ऐसे लोग ज्यादातर सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। इनको ज्यादातर ध्यान करना, मेडिटेशन करना और रहस्य वाली साधना, अलग अलग तरीके की ध्यान की विधियों में जाना इनको अच्छा लगता है। ये सामान्य कर्म कांड का, सामान्य धर्म का पालन नहीं करते। ये ज्यादातर आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं। गहन ग्रंथों का अध्ययन करना, साधना और ध्यान करना, अपने आप को सन्मार्ग पर ले चलना, इस विषय में शनि वाले ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव राहु और केतु का है तो आप किस देवी देवता की तरफ चलेंगे? अगर राहु और केतु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा है तो ऐसे लोग ज्यादातर क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी राहु केतु वाले सटीक तंत्र साधना भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं राहु केतु वाले, वो चमत्कार दिखाने वाली साधना करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने का सुंदर अवसर भी इनको मिलता है। अगर ये अविद्या तंत्र के मार्ग पर न जाएं, गलत तंत्र के मार्ग पर न जाएं, तो ये जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो पुरुष शक्ति का प्रतीक है और शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है वो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। हल्दी जो है वो स्त्री कारक वस्तु है, इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना मना है। आप चाहें तो शिवलिंग की किनारे की वेदी पर हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी लगाने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। नंबर 3, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। नंबर 8, काफी दौड़ भाग रहेगी। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, जरा सी पीली सरसों खाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की नवमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। आज थोड़ा समय निकाल कर माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अगर आज आप अभी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है और सुबह 7:30 बजे से ही इन मेट्रो स्टेशन का जो एग्जिट है उसे बंद कर दिया गया है। 7:30 बजे से अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट, यानी 7:30 बजे से ना तो आप इन मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे ना निकल पाएंगे। तो अगर आप नई दिल्ली की ओर जा रहे हैं, अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। आपको बता दें, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, ये 16 वो स्टेडियम है जहां से एग्जिट और एंट्री लगातार दर्शनीय इलाके जंतर मंतर नई दिल्ली के बेहद नजदीक है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले आदेश तक फिलहाल यहां पर, हालांकि ये मंडी हाउस, राजीव चौक वो इलाके जहां पर इंटरचेंज होते हैं, यानी आप ब्लू लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से वायलेट लाइन इंटरचेंज कर पाएंगे, लेकिन इन मेट्रो स्टेशन के भीतर न तो आप प्रवेश कर पाएंगे न वहां से निकल पाएंगे। तो लगातार प्रदर्शनकारी इन मेट्रो स्टेशन के जरिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं एहतियात के तौर पर। फिलहाल अगले आदेश तक सीजेपी प्रदर्शन की वजह से इन मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

0: अंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की। एसीपी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के भारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार। वांगचुक की चिट्ठी का देंगे जवाब। नड्डा ने कहा, सीजेपी के लोगों ने अपनी बातें लिख कर दी हैं। जब कहेंगे हम चर्चा करने को तैयार हैं। जेपी नड्डा का विपक्ष का वार। कहा, छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अन्ना हजारे का पीएम मोदी को पत्र। कहा, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। मंत्री के इस्तीफे से सरकार कमजोर नहीं होगी। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। अनशन खत्म करने की शर्त रखी। कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वस्त करे केंद्र। गुरुग्राम में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका। मेदांता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे नेता। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश। कहा, मैं अभी जिंदा हूं। सरकार से बच्चों पर एफआईआर और बलप्रयोग न करने की अपील की। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा, यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को तैयार है सरकार। युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करेंगे। पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में कई शहरों में बवाल। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक प्रदर्शन। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। सीजेपी समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मीन प्रोटेस्ट के बीच विजयवाड़ा में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नीट मुद्दे पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगों को लेकर सरकार पर दबाव है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच सीजेपी का बड़ा बयान। कहा, सरकार से बातचीत को हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए न्यूट्रल जगह तय की है। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काली पट्टी बांधकर पहुंचे। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और 21 जुलाई को हुए प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बलों ने बुरी तरह छात्रों को पीटा। राहुल बोले, पिछले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है। 152 पेपर लीक में कोई सजा नहीं हुई। राहुल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हुए हैं। शिक्षा बजट से ज्यादा नीट पर खर्च करते हैं देशवासी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जायज है। सरकार के सामने राहुल ने तीन मांगे रखी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। दूसरी मांग, छात्रों से बर्बरता करने वालों पर सख्ती। बोले, छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, आंदोलन को राजनीतिक रंग न दिया जाए। हिंसा पर दुख जताया। घायल छात्रों और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान बोले, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद। सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में उनका साथ देगी। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान। कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई को राज्यव्यापी शैक्षणिक बंद बुलाया। दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर सवाल उठे। जांच के घेरे में वीडियो, हत्या, मकोका समेत कई मामलों का आरोपी रह चुका अफजल प्रदर्शन में दिखा, लेकिन हिंसा में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं। 2027 मिशन में जुटी बीजेपी। यूपी के सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 180,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामे के आसार। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। मानसून सत्र में फिर टकराव की संभावना। कई अहम विधेयकों पर भी नजर लगातार बाधित हो रही कार्यवाही के बीच आज विपक्ष सरकार आमने सामने। 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। नीट लीक मामले में सीबीआई से जवाब तलब किया गया है। जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। दिल्ली मेट्रो की ओर से बड़ा अपडेट है। सुरक्षा कारणों के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद रहेंगे। राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अहम बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। सीईओ के चयन में एक महीने का और वक्त लगेगा। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन। भविष्य में श्रद्धालुओं के संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फैसला लिया गया है। 5 संतों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला लिया गया। सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज बीएचपी आरएसएस समर्थित संतों की बैठक। भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन। राम मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी। संतों की बैठक में बनेगी रूपरेखा। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष का ये बदलाव स्वीकार नहीं रहा क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट खसोट, अराजकता का माहौल था। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आज होंगे। गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। कुल 2.5 साल लगे इसको फ्लाईओवर को बनकर तैयार होने में। 2.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर कुल 430 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक और नया शहर बसेगा। यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में बड़ा बदलाव करते हुए करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर आधुनिक सुविधाओं वाले शहर को बसाने का ऐलान किया है। प्राथमिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं आरोपों के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित की गई। 25 से 27 जुलाई तक 2 पाली में होनी थी परीक्षा। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने इतिहास रचा, विक्रम एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट अनुष्का, करीब एक घंटे तक एकांत में वार्ता, कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते नजर आए। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए। देर रात से पहाड़ी टूटने के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया। अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण लिया गया फैसला। जम्मू में लगातार बारिश के चलते चार दिनों से बंद वैष्णो देवी यात्रा, कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश, पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, सड़कों पर पहुंच रहा है पहाड़ी मलबा। चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में उफान, नदी के बीच में फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे बचाई युवक की जान। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच दारमा घाटी में भारी भूस्खलन, लाइव वीडियो सामने आया। गुजरात के वलसाड़ में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बेहाल, अब तक 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते वलसाड़ में स्कूल कॉलेज बंद किए गए, जिले के 325 से अधिक सड़कें भी बंद की गई। भारी बारिश का असर वलसाड़ में देखने को मिल रहा, रेलवे ट्रैक के किनारे जमीन धंस गई, रेल सेवा प्रभावित हुई। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, रौद्र रूप दिखा रही अंबिका नदी, खतरे के ऊपर बह रही है कावेरी नदी। सूरत में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन के निचले इलाकों के लोगों से घर खाली करने की अपील की गई है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में चार मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग से हड़कंप मच गया, हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, आग लगने के कारणों की तलाश जारी है। हरदोई बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा हो गया, दो रोडवेज बसों के बीच फंसकर एक महिला की मौत हो गई, परिजनों ने डॉक्टरों ड्राइवरों पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के बरनाला में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिला समेत कई लोग घायल, प्रशासन के खिलाफ नारे लगे, पुलिस की कार्यवाही की निंदा की। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू तो किया, लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से झड़प हुई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सल्फास की जहरीली गैस ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ी, 13 दिन की बच्ची और 4 साल के मासूम की मौत, तीर की हालत गंभीर। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा हुआ, गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे बाइक आ गई, 3 नाबालिग की मौके पर ही मौत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्डों का गुंडाराज देखने को मिला, 15 साल के नाबालिग को बेरहमी से पीटा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जानलेवा हमले के बाद बुरी तरह घायल अवस्था में थाने पहुंचा युवक, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पंजाब के फाजिल्का में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी जंग हुई, ट्रैक्टर से कुचलकर देवर भाभी की हत्या। मसूरी के हवाघर मोड़ पर जीप अनियंत्रित हो गई, एक पहिया खाई में लटका और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना में शराबी ने सरकारी बस चुरा लिया, 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर देखने को मिला, एक्टिवा सवार युवक को टक्कर मारी, मौके पर ही उसकी मौत हुई, हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी में कैद। जयपुर में आरटीओ की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, समय रहते हुए लोगों ने उसे बचा लिया। अमृतसर में चादर में लिपटा मिला एक युवक का शव, सीसीटीवी से खुद पूरा राज खुला, नशे की ओवरडोज से मौत के बाद दोस्त ने शव को फेंक दिया था। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड ने किशोर संग मारपीट की, पुलिस मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाई थी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी, प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद गला घोंट दिया। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में चोर घुस गए, लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। वडोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा हुआ है, होटल के सर्वेंट क्वार्टर में छिपे थे दोनों आरोपी, एटीएस टीम जांच में। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार किया गया, पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में जननायकन टी शर्ट की भारी मांग है, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज है। आज रिलीज हो रही है फिल्म जननायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म है ये। विजय की फिल्म जननायकन से रिलीज होने से पहले शानदार कमाई की है, फिल्म ने अब तक की 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, 6 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक गए। बिग बॉस 20 का नया लोगो बाहर आ गया है, बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज हुआ है, फिल्म में काजल अग्रवाल और शेर तलपड़े का अहम रोल, शुक्रवार को रिलीज होगी फिल्म। ओटीटी पर कल दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देवदत्त बुधेलिया भी अहम किरदार में नजर आएंगे। आज से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद ये अहम सीरीज होगी। जिम्बाब्वे के हरारे में खेला जाएगा पहला मुकाबला, भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा मैच। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का ऐलान किया है। ईशान किशन एक नंबर के पायदान पर अभी भी बरकरार है। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद हैं। अभिषेक नंबर 2, तिलक नंबर 8 की पोजीशन पर काबिज है। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ करार किया है। कम सप्लाई, फेस्टिव डिमांड और रुपए की कमजोरी से एडिबल ऑयल की कीमतों में 15 रुपए प्रति किलो तक की तेजी आई है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों तेल अब सबसे ज्यादा महंगे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने यूएस ईरान टेंशन बढ़ने पर कच्चे तेल के दाम गिरा दिए। $120 पर बैरल तक जाने की चेतावनी दी है। क्रूड महंगा होने पर भारत में पेट्रोल डीजल प्राइसेस के साथ महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए करीब 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिलहाल 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मई के मुकाबले जून में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या में 12% की कमी आई है। बीते महीने मार्केट शेयर के मामले में इंडिगो और आकाशा की हिस्सेदारी बढ़ी। मारुति सुजुकी ने अपने मॉडल्स के प्राइसेस अगस्त से 30,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से 2 महीनों में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। IRGC ने कहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रडार फैसिलिटी कमांड सेंटरों पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। कहा ईरान में हॉर्मुज ने ईरान के किसी जहाज पर अगर हमला किया तो अमेरिका एक भी पुल या बिजली संयंत्र को नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। कहा ईरान की अर्थव्यवस्था और सैनिक क्षमता कमजोर हुई है। अमेरिका हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा जारी रखेगा। पाकिस्तानी सरकार ने फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से $10 अरब मांगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेल संकट के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था स्थिर है। गुरुवार को होगी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात। लावरोव ने कहा बैठक पर सहमति बन गई है। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दादागिरी पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में कुछ गतिविधियां अस्थिरता और जोखिम बढ़ा रही हैं। रूस के स्वत्रोपोल्वे इलाके में ऑनलाइन कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया। कई लोग इसमें घायल हुए। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी। कई इलाके तबाह हुए। 2,500 हेक्टेयर से अधिक जंगल रात 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्से में तेज तूफान और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। तेज हवाओं और बारिश की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हुआ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर किधर
6: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC बिल पास हो गया।
4: प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है।
3: करीब 2 घंटे तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को हरी झंडी दे दी।
5: आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस दे दे।
6: अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी।
3: कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल सरकार ने जबरन लागू किया है। कांग्रेस इस पर अभी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद इसे चैलेंज करने की तैयारी है।
7: भाजपा की सरकार की सोची वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि यह लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो।
4: हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहते? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है।
3: उधर कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
8: यूसीसी बिल विधानसभा में जहां एक तरफ पास हो गया, तो वहीं यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज धरने पे बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है भोपाल के शाहजहानी पार्क में।
9: बिल्कुल गलत बिल लेकर पास किया है, इसके हम खिलाफ हैं।
10: हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि मोहन सरकार की कानून के तहत।
3: देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हिमाचल से उत्तराखंड तक मानसूनी आफत, कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड से घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानो बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में बादल फटने के एक दिन बाद कांगड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। कांगड़ा के शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप देखने को मिला। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से करीब 18 घर, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। मलबे में 9 गौशालाएं और कई मवेशी बह गए। बादल फटने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के बाकी इलाके भी मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। चंबा जिला इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश से पूजा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पूंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं जोड़ा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाई ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।

कराने को तैयार सरकार। कांग्रेस ने रखी नियम 267 के तहत बहस की शर्त, बोले पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफा। जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर से पुलिस और छात्रों में झड़प, सीजेपी समर्थकों ने की पत्थरबाजी, एसीपी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। अस्पताल से सोनम वांगचुक का वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा आज देंगे जवाब। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। ईरान पर अमेरिका का जारी हमला, सलावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी में 2 मौत हुई, ट्रंप की 2 टूक, होर्मुज में जहाज पर अटैक तो नहीं बचेंगे ईरान के पुल पावर प्लांट।

0: सभी का आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी और आपको बताएंगे कि आखिर जंतर मंतर पर नई झड़प कैसे हुई है, ये भी बताएंगे कि क्या है वांगचुक की शर्तें, क्या वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया है, खबर राहुल और नड्डा में जुबानी जंग की भी आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर छात्र प्रदर्शन पर क्यों परेशान है सलमान खान, ये भी बताएंगे कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में वो हिस्ट्री शीटर आखिर कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है। साथ ही बड़ी खबर की बात भी होगी संसद सत्र से जुड़ी, क्योंकि चौथे दिन की सियासत उसमें तेज हो गई है। और इस बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि होर्मुज पर ईरान की नई धमकी आखिर अब क्या है, और दिखाएंगे कि देश में बाढ़ बारिश से कितनी तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की। दरअसल 22 जुलाई की रात जंतर मंतर के पास एक बार फिर से प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। उस झड़प की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे जिनके साथ पुलिस के जवानों की झड़प हुई। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे वहां हालात हिंसक हो उठा है। कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि फिलहाल इस वक्त हालात काबू में है और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है।
1: जंतर मंतर में फिर पुलिस और छात्रों में झड़प। कल देर शाम सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिन में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन देर शाम टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, कनॉट प्लेस में टॉलस्टॉय मार्ग के पास रात करीब 8:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिससे कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत घायल हो गए। सीनियर अधिकारी उन्हें RML अस्पताल ले गए।
2: 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था।
1: पुलिस के मुताबिक RAF और पुलिस की टीम रोजाना की तरह तैनात थी, तभी अचानक पथराव होने लगा। RAF और पुलिस एक्टिव हुई तो ताबड़तोड़ बड़े बड़े पत्थर पुलिस और RAF की टीम पर बरसाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे जो पुलिस पर चलाए गए। भीड़ को काबू में करने के लिए RAF की टीम ने हल्का बल प्रयोग किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को काबू में किया, और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, RK आश्रम मार्ग, साथ ही बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ और जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, इसी के साथ ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, वहीं जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। तो इन मेट्रो से एंट्री और एग्जिट बंद है, जबकि इंटरचेंज की जो सुविधा है वो वहां पर चालू रहेगी। तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की और जानकारी भी हमारे दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा, देखिए।
3: हम पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर बंद है, जहां पर ये देखिए गेट अब बंद किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये गेट अगर आप देखेंगे तो इस गेट को अब यहां पर बंद किया जा रहा है। दरअसल 16 मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब हैं, उनके लिए ये आदेश आया था कि वहां के एंट्री एग्जिट सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो 7:30 बज गए हैं, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद किया कर दिया गया है। अगर हम पटेल चौक के सामने का हिस्सा दिखाएं तो ये सामने वाला जो रोड है ये देखेंगे संसद मार्ग है, जहां पर सबसे पहले DCP ऑफिस, फिर आगे टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए आप सीधे जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, और इधर से भी आप अगर जाते हैं तो चंद कदम की दूरी पर जंतर मंतर मौजूद है। तो वो तमाम मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब है या नई दिल्ली में है, जैसे राजीव चौक का इलाका हो, मंडी हाउस का इलाका हो, इन सभी जगह पर एंट्री एग्जिट बंद की गई है। लेकिन ITO, मंडी हाउस और राजीव चौक, यहां पर इंटरचेंज की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी।
0: उधर नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्र आंदोलन पर फिल्म अभिनेता अब सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पोस्ट कर सलमान ने कहा है कि यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। सलमान ने घायल हुए छात्रों और उनके परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सलमान खान ने कहा है कि ये छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का मामला है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। सलमान खान ने भरोसा जताया है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी।

0: तो एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जंतर मंतर पर चल रहा है, दूसरी तरफ अब सलमान खान ने इसको लेकर पोस्ट जारी किया है। छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सलमान खान ने पोस्ट में क्या कहा है ये आप देखिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिजन घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। साथ ही पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने उनका साथ भी दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत कर अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति उत्सुकता दिखाई है। यह आंदोलन या विरोध ही सही तरीके है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। तो सलमान खान ने छात्रों के फेवर में एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा यह पूरा मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। ये सलमान ने पोस्ट कर कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी समर्थन और ये सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षा पाना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और हर साल ये और ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनती भी जानी चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आए और भारत के एजुकेशनल हब बन जाए। तो ये सलमान खान ने पोस्ट किया है प्रदर्शन के बाद का। वहीं अब सोनम वांगचुक की खबर से जुड़ी आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। दरअसल उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो बच्चों पर ताकत या बल का प्रयोग ना करें। मुझे इस पर सरकार से आश्वासन चाहिए। अगर आश्वासन मिल जाए तो मैं आज ही अनशन तोड़ूंगा, अगर आश्वासन नहीं मिला तो मैं अनशन जारी रखूंगा।
1: जय हिंद।
2: सोनम वांगचुक को लेकर मचा सियासी संग्राम, मेदांता अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन। वांगचुक से मिलने पर अड़े दिखे कई विपक्षी नेता। छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए कल शाम आप सांसद संजय सिंह, जेएमएम और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मिलने पहुंच गए, जिनको पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। इस पर संजय सिंह की पुलिस से बहस भी हुई। अंदर न जाने देने पर सभी अस्पताल के गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। करीब एक घंटे तक यहां हंगामा चला। इसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उनकी हेल्थ अपडेट दी। मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए रिश्तेदारों को ही मिलने की परमिशन की बात कही। इसके बाद सांसद वहां से चले गए। वहीं सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, 25 दिन से अनशन पर हूं और सरकार से चिट्ठी में लिखी बातों को मानने पर अनशन तोड़ने की बात कही।
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
2: सोनम वांगचुक की चिट्ठी और मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हम उस पर जल्द जवाब देंगे और वार्ता आगे बढ़े इस पर विचार करेंगे।
3: हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी।
2: तो अब देखना होगा कि सरकार और वांगचुक के बीच चल रही बातचीत कितना सकारात्मक होती है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी एक खबर। दरअसल उस प्रदर्शन में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात बदमाश हाफी अफजल भी शामिल था। कई मामलों में आरोपी है ये, और उसके दौरान प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नारेबाजी करता दिख रहा है। दरअसल अफजल की पत्नी हजन शकीला आम आदमी पार्टी से मौजूद पार्षद है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हाजी अफजल पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, आर्म्स एक्ट, मारपीट, DPDP एक्ट और साथ ही कई मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज 26 से ज्यादा। इसके अलावा हाजी अफजल अपने अलग अलग मामलों में जेल की सजा भी काट चुका है, वो कई मामलों में बरी भी हो चुका है। फिलहाल 20 जुलाई को हुए बवाल में अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो प्रदर्शन में मौजूद था और नारेबाजी कर रहा था। और अब बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। दरअसल आज सत्र का चौथा दिन है और सत्र पिछले तीन दिन से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और अब आज भी संसद के मानसून सत्र में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नीट के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है, तो वहीं विपक्ष बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बहस करने को तैयार नहीं दिख रहा। संसद के दोनों सदनों में कल जबरदस्त नारेबाजी देखी गई है और आज भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथा दिन भी संसद में हंगामे हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल लाने वाली है, कम से कम 7 बिल मोदी सरकार लाने वाली है।

0: ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
1: नीट पेपर लीक को लेकर संसद में संग्राम, लगातार तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जबरदस्त हंगामा। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा ही हंगामा हो रहा है। सदन के अंदर हो या बाहर, विपक्षी सांसद लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े दिखे।
2: रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
1: वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार लगातार चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है।
3: माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।
1: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सड़क से संसद तक गतिरोध जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा।
4: छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे, और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
1: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है। अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और सीजेपी अपनी अपनी शर्तों पर अड़िग है, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा? आज तक ब्यूरो।
5: तो नीट के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं।

शलमजरे बॉर्डर क्रॉसिंग पर पैसेंजर टर्मिनल के पास अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ है और ईरान की एक एजेंसी ने सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा है कि शलमजरे बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिकी हमले में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। अरब खबर पश्चिमी एशिया में जारी तनाव की दरअसल दक्षिणी यमन में यमनी सेना और साथ ही यूएई से जुड़े गुटों के बीच जबरदस्त झड़प की खबरें आई हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी यमन के अल दलिया प्रांत के पश्चिमी हिस्से में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल से जुड़े गुटों के ठिकानों पर हमला किया गया है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है। एक से एक गोली बरसाई गई है और दोनों तरफ से बरसाई जा रही है। दक्षिणी यमन के अल दलिया प्रांत में ये हमला किया गया।

खबर यमन से जुड़ी ही। दरअसल हूती विद्रोहियों ने आज सुबह सऊदी अरब के दो तेल टैंकर्स को निशाना बनाया और समुद्री सुरक्षा रिपोर्टों के मुताबिक इन दो टैंकर्स की पहचान एंसेलिया और लैला के तौर पर हुई है। हूती का कहना है कि इन जहाजों ने ईरान समर्थित समूह द्वारा सऊदी अरब पर लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन किया था और इसी को लेकर उन्होंने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से इन टैंकर्स को निशाना बनाया। ये घटना सऊदी अरब के एक इलाके में हुई और वहीं पर अल शुकैक से लगभग 70 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में हुई है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक लेकिन सामने नहीं आई। अब खबर मानसून संकट की। दरअसल गुजरात के वलसाड जिले में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। देर रात हुई बारिश में वापी शहर में जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला। दुकानें, कई सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर पानी बढ़ जाने के कारण समस्या देखने को मिल रही है। कई सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती नजर आ रही है। रात भर यहां बारिश हुई। बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुंगरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज और सभी जगह जलभराव देखने को मिला। तो भारी बारिश के कारण कई गांव का संपर्क भी टूट चुका है। बारिश का पानी रिहायशी इलाके, सड़कें, खेत और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।

वहीं नवसारी, वलसाड़ और सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात नाजुक बन गए हैं। वलसाड़ में पिछले 24 घंटों में 11 इंच बारिश होने के कारण स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं।

0: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर। लगातार बारिश से गुजरात में बिगड़े हालात। उफान पर अंबिका और कावेरी नदी। गुजरात में एक बार फिर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। गुजरात के कई जिले इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते अंबिका नदी का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक विशालकाय शिवलिंग पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं लोगों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी भी जारी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी, सभी नदियों पे अभी अलर्ट मोड पे रहा हुआ है और सभी लोगों को यहाँ पे जो है सुरक्षित जाने के लिए सूचित किया हुआ है। खास करके बात करें नवसारी शहर की, तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है।
0: नवसारी ही नहीं, सूरत में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें मानो दरिया सी नजर आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत के लिम्बायत इलाके में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी निकालने के लिए नगर निगम की टीम पंपों का

0: सहारा ले रही है। वहीं वलसाड में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों के घर हो या हाईवे, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से गाड़ियां चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें नाव का सहारा ले रही है। नवसारी से रौनक जानी, सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर फिल्म जगत से जुड़ी। दरअसल आज तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की फिल्म जन नायकन रिलीज हो गई है और कई शहरों में विजय का जादू दिख रहा है क्योंकि उनके फैंस सुबह से ही फिल्म देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी की गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें चेन्नई, बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश की, जहां पर अभी फिल्म रिलीज हुई है, आज फिल्म रिलीज हुई है और उसको लेकर क्रेज लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। सुपर 8 में आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में चार मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में अचानक से लगी भीषण आग, आक्षेप मचा हड़कंप। हादसे में एक व्यक्ति की गई जान, आग लगने के कारणों की तलाश जारी। पंजाब के बरनाला में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिलाएं समेत कई लोग घायल हुए। प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए और पुलिस की कार्रवाई की निंदा की गई। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड का गुंडा राज, 15 साल के नाबालिग को बेरहमी से पीटा गया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। मसूरी के हवाघर मोड़ पर जीप अनियंत्रित, एक पहिया खाई की ओर लटका और चालक की सूझबूझ से टला ये बड़ा हादसा। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अमरावती में प्रहार का अनोखा आंदोलन, मूसलाधार बारिश में सड़क पर लुढ़कते हुए किए गए प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवा घाट के पास भारी भूस्खलन, भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क यातायात के लिए बंद, दोनों ओर कई वाहन फंसे। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, बस डिपो बना तालाब, सड़कें हुई जलमग्न, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। सीएम विजय की जन आइकन रिलीज हुई, क्रेजी हुए फैंस, थिएटर्स के अंदर और बाहर जश्न का माहौल। सुपर 8 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर,
6: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: In association with
13: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान, बाढ़ में बह गया बडगाम का बाजार। जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते हाहाकार मच गया। बडगाम से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पलघर में बाजार की कई दुकानें पानी में समा गई। नदी के तेज बहाव के चलते मार्केट के नीचे की जमीन कटने लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानों को तुरंत खाली कराया, जिसके तुरंत बाद पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया। बडगाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं, जहां चार जगहों पर बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। खेत से लेकर सड़कें सब तबाह हो गयी। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में पहाड़ों से मलबा आ जाने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर कठुआ की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूट गया। राजौरी में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों को सेना को मैदान में उतारना पड़ा। 61 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कई लोगों की जान बचाई। ये सब फ्लैश फ्लड में फंस गए थे। तो साफ है, धरती का स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मॉनसून का कहर झेल रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

के मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी, चर्चा कराने को तैयार सरकार। कांग्रेस ने रखी नियम 267 के तहत बहस की शर्त, बोली पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफा। जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर से पुलिस और छात्रों में झड़प, सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, एसीपी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। अस्पताल से सोनम वांगचुक का वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा आज देंगे जवाब। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। ईरान पर अमेरिका का जारी हमला, सलमेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर बमबारी में दो की मौत, ट्रंप की दो टूक, हॉर्मुज में जहाज पर अटैक तो नहीं बचेंगे ईरान के पुल पावर प्लांट।

वलसाड में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, वापी शहर में जगह जगह जलभराव, कई सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों तक घुसा, सड़कें, खेत और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भरा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन ने आज भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के पालघर में बारिश का दौर अभी भी जारी है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सभी शिक्षा संस्थानों में आज छुट्टी के आदेश। राजस्थान के जैसलमेर में जमकर हुई मॉनसून की पहली बारिश, झील और पेयजल स्रोत में पानी बढ़ने से लोगों को मिली राहत। जम्मू में लगातार बारिश के चलते चार दिन से बंद वैष्णो देवी यात्रा, कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश, पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, सड़कों पर पहुंच रही है पहाड़ी का मलबा। चंबा में भारी बारिश से रावी नदी में उफान, नदी के बीच में फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी के सहारे बचाई युवक की जान। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच दारमा घाटी में भारी भूस्खलन, लाइव वीडियो आया सामने। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, अब तक 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते वलसाड में स्कूल कॉलेज बंद, जिले की 325 से अधिक सड़कें भी की गई बंद। वलसाड में भारी बारिश का असर, रेलवे ट्रैक के किनारे जमीन धंसी, रेल सेवा प्रभावित। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों का नुकसान हुआ, लाखों लोग प्रभावित हुए, रौद्र रूप दिखा रही अंबिका नदी, खतरे के ऊपर बह रही है कावेरी। सूरत में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन के निचले इलाकों के लोगों से घर खाली करने की अपील। जंतर मंतर पर कर देर शाम फिर से पुलिस और छात्रों में झड़प, सीजेपी समर्थकों ने की पत्थरबाजी, एसीपी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कांग्रेस जनता पार्टी ने रखी तीन मांग। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर भारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, वांगचुक की चिट्ठी का देंगे जवाब। जेपी नड्डा ने कहा सीजेपी के लोगों ने अपनी बातें लिख कर दी हैं, जब कहेंगे हम चर्चा करने को तैयार। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा छात्रों की बेहद ही निंदनीय, मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं होगी कमजोर। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने की रखी शर्त, कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वासित करेंगे। वहीं गुरुग्राम में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, मेदांता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे नेता। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश, उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, सरकार से बच्चों पर एफआईआर बल प्रयोग ना करने की अपील। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर सरकार को तैयार, सरकार तैयार, वहीं युवाओं की हर जायज चिंता का करेंगे समाधान। दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई, सीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। नीट प्रोटेस्ट के बीच विजयवाड़ा में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। नीट मुद्दे पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगों को लेकर सरकार पर दबाव। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच सीजेपी का बड़ा बयान, कहा सरकार से बातचीत को हम तैयार, लेकिन बातचीत के लिए न्यूट्रल जगह तय की जाएगी। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काली पट्टी बांधकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, 21 जुलाई को हुए प्रदर्शन का वीडियो जारी। राहुल ने कहा छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण, लेकिन सुरक्षा बलों ने बुरी तरह से छात्रों को पीटा। राहुल बोले पिछले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद, 152 पेपर लीक में कोई भी सजा नहीं। राहुल बोले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर हुए फेल, शिक्षा बजट से ज्यादा नीट पर खर्च करते हैं देशवासी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जायज। सरकार के सामने राहुल की तीन मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, दूसरी मांग छात्रों से बर्बरता करने वालों पर सख्ती बरती जाए, बोले कि छात्रों से माफी मांगे पीएम मोदी। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान की प्रतिक्रिया, बोले आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दे, हिंसा पर दुख जताते हुए घायल छात्रों और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान बोले छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद, सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में उनका साथ देगी। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान, दरअसल कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई को राज्यव्यापी शैक्षणिक बंद बुलाया है। वहीं दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल को मौजूदगी पर सवाल उठे, जांच के घेरे में वीडियो, कई मामलों पर केस उन पर दर्ज है, अफजल प्रदर्शन में दिखा लेकिन हिंसा में उसकी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं।
2027 मिशन में जुटी बीजेपी, यूपी में सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, 1,00,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों से संवाद, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामे के आसार, नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। मॉनसून सत्र में फिर से टकराव की संभावना, कई अहम विधेयकों पर भी नजर, लगातार बाधित हो रही कार्यवाही के बीच आज भी विपक्ष सरकार आमने सामने, 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। नीट लीक मामले में सीबीआई से सवाल जवाब तलब, वहीं जमानत अर्जी पर आज भी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट, सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद, अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट प्वाइंट बंद रहेंगे, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर इंटरचेंज सुविधा मौजूद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक में कई फैसले, सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त, फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन, भविष्य में श्रद्धालु की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, 5 संतों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी, सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला, सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज वीएचपी आरएसएस समर्थित संतों की बैठक, भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन, राम मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी, संतों की बैठक में बनेगी रूपरेखा। सीएम योगी बोले, विपक्ष को ये बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा क्योंकि उनकी सरकार में प्रदर्शन में दंगे, कर्फ्यू, लूट और साथ ही अराजकता का माहौल था। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण, कुल 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ 2.65 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, कुल 430 करोड़ की लागत से हुआ है फ्लाईओवर का निर्माण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर, यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में बड़ा बदलाव किया, करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। प्रारंभिक शिक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा की गई स्थगित, 25 से 27 जुलाई तक 2 पाली में होनी थी ये परीक्षा। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार का ज्वेलरी। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट, अनुष्का, करीब 1 घंटे तक हुई एकांत वार्ता, कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते नजर आए, पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भक्तों को धाम के लिए किया गया रवाना, यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए, देर रात से पहाड़ी टूटने के कारण बंद कर दिया गया था मार्ग, अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, आग से हड़कंप मचा, हादसे में एक व्यक्ति की जान गई, आग लगने के कारणों की तलाश जारी। हरदोई बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा, 2 रोडवेज बसों के बीच फंसकर महिला की मौत, परिजनों ने ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के बरनाला में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी को पुलिस का लाठीचार्ज, महिलाएं समेत कई लोग घायल हुए, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए और पुलिस की कार्रवाई की निंदा की गई। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, इसी वजह से झड़प हुई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सल्फाज की जहरीली गैस से उजाड़ी परिवार की खुशियां, दरअसल 13 दिन की बच्ची और 4 साल के मासूम की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा, गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आई बाइक, 3 नाबालिग की मौके पर हुई मौत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड का गुंडा राज, 15 साल के नाबालिग को बेरहमी से पीटा गया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जानलेवा हमले के बाद बुरी तरह से घायल अवस्था में थाने पहुंचा युवक, पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया। पंजाब के फाजिलका में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी जंग, ट्रैक्टर से कुचलकर देवर भाभी की हत्या। मसूरी के हवाघर मोड़ पर जीप अनियंत्रित, 1 पहिया खाई और 1 लटका हुआ नजर आया, चालक की सूझबूझ से टला यह बड़ा हादसा। तेलंगाना में शराबी ने चुराई सरकारी बस, 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जयपुर में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, एक्टिवा सवार युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में आरटीओ की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की, समय रहते लोगों ने बचाया। अमृतसर में चादर में लिपटा मिला युवक का शव, सीसीटीवी से खुला राज, नशे की ओवरडोज से मौत के बाद दोस्त ने फेंका शव। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड ने किशोर संघ की मारपीट, पुलिस मेडिकल के लिए लाई थी हॉस्पिटल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या की, प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद घोटा गला। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में घुसे चोर,
लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार। वड़ोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा, होटल सर्वेंट क्वार्टर में छिपे थे दो आरोपी, एटीएस टीम जांच में जुटी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन नायकन की टी शर्ट से भारी हंगामा, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आया। आज रिलीज हो रही है फिल्म जन नायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म। विजय की फिल्म जन नायकन ने रिलीज होने के पहले ही दिन शानदार कमाई की। फिल्म ने अब तक की 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई, बिके 6 लाख से ज्यादा टिकट। बिग बॉस 20 का नया लोगो आउट हुआ, बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक जारी हुआ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 7:03 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:01 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

विवादों से बचें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट।
4: देखिए हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं।

संसद के मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी। नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष। 10 बजे बैठक में रणनीति पर मंथन। राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए सांसदों का धरना प्लान। जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों की झड़प। सीजेपी समर्थकों ने की पत्थरबाजी। एसीपी घायल। पुलिस से दागे आंसू गैस के गोले। 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद।

तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और FIR ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा आज देंगे जवाब। पूरब से पश्चिम तक मानसून की तबाही, गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से घरों तक पानी, महाराष्ट्र के हिस्सों में पानी भरा, असम में एक दिन में 10 की मौत। ईरान पर लगातार 12वें दिन अमेरिका का हमला, सालामेच इंटरनेशनल बॉर्डर पर बमबारी में 2 की मौत, ट्रंप की 2 टूक, हॉर्मुज में जहाज पर अटैक तो नहीं बचेंगे ईरान के पुल पावर प्लांट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम, सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज टूटेगा सोनम वांगचुक का अनशन, वांगचुक की शर्त, सरकार क्या देगी जवाब, इस बड़ी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजरात लिए चलेंगे जहां पर बरसी है मानसूनी आफत, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही, बुलेटिन में दिखाएंगे बाढ़ और बारिश की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल लिए चलेंगे जहां पर बॉर्डर पर चल रही है तारबंदी पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर विपक्ष के हमले के जवाब में आज एनडीए के सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के सभी सांसद सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन ये विपक्ष के खिलाफ होगा। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बगैर चर्चा को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ एनडीए के सांसद प्रोटेस्ट करेंगे। तो मकर द्वार पर आज एनडीए के सांसद प्रदर्शन करेंगे, कल विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था काले कपड़े पहनकर। अब ये देखना होगा कि सुबह 10:30 बजे कौन कौन इस प्रदर्शन में मौजूद रहता है। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये कल के प्रदर्शन का जवाब है, क्या कहना चाह रहे हैं अब एनडीए के सांसद प्रदर्शन द्वारा?
1: जी बिल्कुल नेहा, सुबह 10:30 बजे सभी एनडीए के सांसदों को कहा गया है कि वो पार्लियामेंट के मकर द्वार पर इकट्ठा हो और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल ये धरना राहुल गांधी के खिलाफ है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर सभी सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके धरना दिया, उसके खिलाफ ये धरना दिया जाएगा एनडीए के सांसदों के द्वारा। कल हमने देखा था कैसे देश भर में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, तो धरना वर्सेस धरना की राजनीति हम देख रहे हैं। 10:30 बजे सभी एनडीए के सांसद मकर द्वार पर पहुंचने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पूरे मुद्दे को लेकर उसके बाद चर्चा कराई जाए और जो सोनम वांगचुक की मांग है उसको भी पूरा किया जाए। इस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा की जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष धरना लगातार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सरकार के सांसद भी धरना पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं।
0: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, आरके आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। इन मेट्रो से एंट्री और एग्जिट बंद है, जबकि मंडी हाउस, राजीव चौक, केंद्र सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा चालू है। एंट्री एग्जिट बंद है, इंटरचेंज चालू रहेगा, यानी कि आप इस मेट्रो स्टेशन पर उतरकर मेट्रो चेंज कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं या फिर एंट्री नहीं पा सकते हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तरह 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है जो सेंट्रल दिल्ली को जोड़ते हैं। एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में लोग यहां पर ना पहुंच सकें और ना ही जुट सकें। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, कब तक ऐसा रहेगा कि मेट्रो स्टेशंस ये जो 16 कल बंद थे आज बंद थे ये बंद रहेंगे?
2: देखिए फिलहाल दिल्ली मेट्रो से तो यही अनाउंसमेंट हो रहा है कि सुरक्षा कारणों से ये 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, इंटरचेंज जारी है। लेकिन एक अहम तस्वीर मैं नेहा आपको दिखाना चाहूंगा। आपके ठीक सामने जो व्यक्ति खड़े हैं वो केरला स्कूल के प्रिंसिपल हैं हरि कुमार के जी, साथ में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहां हैं, क्योंकि केरला स्कूल के 12 बच्चे इस वक्त मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के अंदर फंसे हुए हैं। सुबह 7:30 बजे से फंसे हुए हैं और जो सिस्टम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि इन बच्चों को बाहर लेकर आया जाए। पहले यहां जो पुलिस डिप्लॉय थी उनसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की, बताया कि हमारे 12 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। फिर उन्होंने डीएम संभवतः किसी को फोन किया तो उन्हें बताया गया कि कानून सबके लिए एक बराबर है। फिर 112 पे फोन करके जो बीट कांस्टेबल्स होते हैं, जब जो बीट रिस्पॉन्स होता है उनको बुलाया गया, वो यहां पहुंचे हैं। और हरि कुमार के जी ने हमें बताया कि 7:30 बजे सुबह से उनके 12 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। कारण क्या है कि सामने ताला जड़ा हुआ है। आप तो समझिए, ना केवल जो ऑफिस गोवर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, बल्कि जो इस तरह से अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जा रहे थे, स्कूल जाना था इन बच्चों को, संभवतः उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ऐसे मेट्रो शट डाउन रहेगा, वो फंस गए अंदर। और कितनी चिंता हो रही होगी अभिभावकों को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो परेशान हैं, लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन बच्चों को बाहर निकाला जाए। कोऑर्डिनेशन ये हो रहा है कि संभवतः किसी और गेट से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है कि काफी लोग इस वक्त, भीड़ बहुत ज्यादा, और इसकी वजह यह है कि लोग पहुंच रहे थे दफ्तर जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं बॉस आप लोग?
3: नोएडा जाना है।
2: यस। तो ये पता था कि मेट्रो बंद रहेगी आज?
3: नहीं, इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं थी मुझे। कल शाम इवनिंग मैं आया हूँ तो उस समय ओपन था, बट अब मॉर्निंग का मुझे आइडिया नहीं था इसके रिगार्डिंग।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात सोनम वांगचुक की करेंगे, गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल से वीडियो संदेश जारी करके सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के लिए सरकार के सामने कई शर्तें रखी। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर सरकार बच्चों पर ताकत या बल प्रयोग ना करके छात्रों से FIR वापस लेने का आश्वासन दे दे तो वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी भेजी है।
4: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
5: लीक पेपर लीक के मुद्दे पर 26 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ये वीडियो संदेश गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से भेजा है
4: और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं।
5: वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि वो छात्रों पर और बल का प्रयोग न करें, छात्रों पर दर्ज FIR वापस लें, और अगर इसका आश्वासन उन्हें मिल गया तो वो तुरंत अनशन खत्म कर देंगे। सोनम वांगचुक के वीडियो संदेश के साथ खास बात ये है कि इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है। इस वीडियो संदेश के साथ ही वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को खुली चिट्ठी भी भेजी है। ये दोनों मंत्री एक दिन पहले उनका हालचाल लेने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे।
6: हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की, और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करें।
5: इस बीच कल शाम आम आदमी पार्टी, RJD, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का एक दल सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल के गेट पर ही रोक लिया।
7: मरीज भर्ती रहते हैं, उनसे उनको मिलने के लिए
8: नहीं, बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं?
7: सोनम बताइए,
8: आप उनसे मिलने
7: जा रहे हैं? सोनम वांगचुक
8: से मिलने जा रहे हैं?
7: आप उनसे मिलने जा रहे हैं? अभी हॉस्पिटल ने आपको अलाउ नहीं किया,
8: परमिशन नहीं दी।
7: रिपोर्ट
8: दिखाइए
7: मेरे को,
8: हमें हॉस्पिटल अथॉरिटीज भी यहाँ पे है, ब्लड रिलेशन पे मिल सकते हैं, अभी इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया।
5: गर्मा गर्मी के बीच 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लेकर आए संजय सिंह समेत तमाम सांसद वहीं धरने पर बैठ गए।
7: हॉस्पिटल प्रशासन से आपकी बात करा देता हूँ, एक बार
9: आप बुलाइए,
7: एक बार आप होल्ड
9: कीजिए।
10: पचपन एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र, और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए।
5: एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना चल रहा है, दूसरी तरफ मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन। सारी नजरें अब सरकार के कदम पर हैं कि वांगचुक की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है।
4: मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो
5: गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक।
4: जय हिंद।
0: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, सोनम वांगचुक की मांगों में सबसे प्रमुख बात यह है कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग नहीं की है, धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र ही नहीं है।
11: देखिए, सोनम वांगचुक ने जैसे कि आपने जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं किया, लेकिन कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बार बार इस मांग को दोहराया कि हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी से ये मांग की कि वो माफी मांगे, और तमाम जो पुलिस वाले उस घटना में इन्वॉल्व थे जो जंतर मंतर पर घटी जिसमें लाठीचार्ज हुआ, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी के साथ साथ आप देखिए जो अन्य विपक्षी दल है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कम से कम विपक्ष जो है वो इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के जो सूत्र हैं वो भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष की जो ये मांग है ये एक पॉलिटिकल मांग है, ये एक राजनीतिक मांग है, इसका छात्रों से कोई सरोकार नहीं है। तो कुल मिलाकर आज बताया जा रहा है कि विपक्ष की एक बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर ये स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि क्या जो पार्लियामेंट है उसको चलने दिया जाए या नहीं चलने दिया जाए, क्योंकि सरकार अब चर्चा
0: के पास। बीच बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। ट्वीट के जरिए ये घोषणा की गई है कि पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे दिया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो ट्वीट है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, क्या निर्देश है वो?
12: देखिए, उनका सीधा सीधा ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हित है उनको सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा जो निर्णयों की श्रृंखला है ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये एक है। और साथ ही साथ परफेक्ट कोड बनाया जाए और उसमें जो भी एलिगेशन है, जो भी आरोप है, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए परफेक्ट कोड यानी कि जल्द से जल्द हेयरिंग जो है वो हो। हेयरिंग यानी कि जो तारीख है वो एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच में बड़ा गैप ना हो, तो फर्स्ट टेक कोर्ट का मतलब ये होता है जल्द से जल्द मामले में।
0: लेकिन हिमांशु, अभी क्या प्रावधान थे और जो नए प्रावधान से पुराने प्रावधान कैसे अलग होंगे? क्या अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था इन मामलों के लिए?
12: देखिए, फास्टेक कोर्ट नहीं था, लेकिन फास्टेक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। तो फास्टेक कोर्ट जो है हर उस पर नहीं होता है किसी भी इशू पे, क्रिमिनल केस पे, तो यहाँ क्रिमिनल केस है, लेकिन फास्टेक कोर्ट बनाकर इसके लिए जल्द सुनवाई जो है वो तेज होगी, जिससे जो भी दोषी है उनको सजा मिल सके जल्द से जल्द। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि एक हेयरिंग से दूसरी हेयरिंग के बीच में 5 महीने का गैप हो, इसीलिए फास्टेक कोर्ट बनाया जाता है। आप देखें, ये कई बार

0: ये पेपर लीक का मामला जो है देखने को मिल रहा है पहली बार, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन है कि फास्टेक्ट कोर्ट बनना चाहिए, और फास्टेक्ट कोर्ट बनता है तो हियरिंग जल्दी से जल्दी होती है, आर्ग्यूमेंट जल्दी से जल्दी होते हैं, चार्जशीट जल्द से जल्द होगी, तो इसमें जो है सारी चीजें एक तरीके से बहुत जल्दी होते हैं कंप्लीट।
1: उन्होंने साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैक्सिमम इसमें कितनी सजा का प्रावधान है और आर्थिक जुर्माना भी है क्या?
0: देखिए आर्थिक जुर्माना भी है और 5 से 10 साल तक की जो है वो सजा का प्रोविजन है जो अभी तक मेरे संज्ञान में है। लेकिन फास्ट्रैक कोर्ट का एक प्रोविजन मैंने आपको बताया रेप केस में, दूसरा आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होती थी राम मंदिर को लेकर, तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो कोर्ट संज्ञान लेता है, उससे बाद जो है ये फास्ट्रैक कोर्ट का एक प्रोविजन है, उसके तहत ये सारी चीजें आएंगी और जो भी फैसला होगा वो जल्द से जल्द आएगा।
1: और अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसको लेकर भी क्या प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी आई है? क्योंकि हमने जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही थी उसका जिक्र सुना था, अब क्या बीच में इन 3 दिन के दरमियान क्या कुछ हुआ है?
0: देखिए मैंने आपको बताया मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी जो है वो 20 तारीख को, 21 तारीख को एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी मंगल मिलन, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया था जो पेपर लीक हुआ है जिन लोगों ने किया वो घोर पाप किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जिससे सभी सरकारें जुड़ी हुई है, सिस्टम को फुल प्रूफ करना होगा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। उन्होंने ये भी कहा था जो 13 दोषी पकड़े गए हैं जिनको जेल में रखा गया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले, इसके प्रोविजन हो रहे हैं, तो उसी कड़ी के अंदर ये पहला कदम सरकार का कि फास्ट्रैक कोर्ट बनाने का गठन किया जाएगा, तो फास्ट्रैक कोर्ट बनेगा तो सुनवाई तेजी से होगी, सुनवाई होगी तो जो दोषी है उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है जो भी सजा होनी वो जल्द से जल्द सुन जाएगी। दूसरा मैंने कहा था कि यूथ जो है वो देश के लिए का है, आज भी प्रधानमंत्री ने कहा देश युवाओं का हित है, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि यूथ का ये जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर लीक को लेकर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है वो उनके संज्ञान में है और ये एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का एक पहला स्टेप जो है वो कार्रवाई के तौर पर दिखाई दे रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद जब फास्ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया गया।
1: तो एक ये पहला कदम आप देख रहे हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन है कि इस समस्या का समाधान के रूप में। दूसरी जो मांग विपक्ष द्वारा और कल राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जिन छात्रों ने परेशान होकर कि पेपर लीक हो गया आत्महत्या की है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उस पर क्या कोई फैसला लिया जा सकता है? अब इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया जाएगा, ये बात अब एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने खुद कही है।
0: देखिए बिल्कुल, अब जो छात्रों ने सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन यानी कि मुआवजा 1 करोड़ मिले, ये मांग सीजीपी की भी है, कांग्रेस जनता पार्टी की भी है, सोनम वांगचुक की भी है और अपोजिशन पार्टी की भी है। सरकार को पहला मेमोरेंडम मिला था सीजीपी की तरफ से, उसमें 1 बिंदु 1 डिमांड ये भी थी। सरकार की दूसरे राउंड की जब बातचीत होगी तो ये पता चलेगा कि उनकी जो 3 मांग थी जिसमें सोनम वांगचुक की रिहाई और उसके बाद दूसरा ट्वीट कल आया जिसमें ये कहा गया कि अब जो है आप जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करेंगे लीगली वो नहीं होनी चाहिए, वो वापस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ थर्ड इशू जो था वो है कि जो सुसाइड करने वाले छात्र हैं उनको मुआवजा मिले 1 करोड़ का। सरकार इस पर जब भी कोई बातचीत होगी तो इस पर डिस्कशन होगा, अभी इस पर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, डिस्कशन होगा कल होना था, जैसे हम लोगों को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि दूसरे राउंड की बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीजीपी का ये मानना था कि जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां या कोई ऐसी थर्ड जगह पे बातचीत हो, किसी मंत्री के घर पे बातचीत नहीं होनी चाहिए, थर्ड प्लेस जो है वो चुना जाना चाहिए।
1: क्या अब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाएगा इस ट्वीट के बाद, या फिर विपक्ष में भी इस बात को लेकर विभाजन है कि चर्चा की जाए या फिर नहीं?
0: देखिए विपक्ष चर्चा चाहता है लेकिन सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किस नियम के तहत होनी चाहिए, पहले इस पर आम सहमति बननी चाहिए 184 पर या 193 पर, 183 पे अगर चर्चा

0: होगी तो मंत्री जवाब देंगे। 184 पे अगर चर्चा होती है तो डिवीजन होता है, यानी कि मतदान होता है, और सरकार 184 पर नहीं जाएगी। 193 पर अगर चर्चा होती है तो स्वीकार होगा सरकार को भी, तो एक आम सहमति बननी है, कितना टाइम एलोकेट होना है, ये सारी चीजें हैं। स्पीकर ने कल अनाउंस कर दिया था कि आप आइए चर्चा के लिए तैयार हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है अलग अलग मांग हो रही है पार्लियामेंट में, आप देखते हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हंगामा होता है, बातें से ज्यादा हंगामा सुनाई देने को मिलता है। कल किरण रिजिजू जो कह रहे थे कि आप आइए चर्चा के लिए हम तैयार हैं, नियमों को तय कर लेते हैं, कितना समय एलोकेट होना है, ये सारी चीजें तय कर सकते हैं। आज देखना ये होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से सभी एंटीज को बुलाया गया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना दिया था उसके खिलाफ जो है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल को लेकर जो है वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट पर बैठे वो ठीक नहीं था सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसको लेकर है। और साथ ही साथ राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है, सरकार चर्चा करना चाहती है, इसको लेकर एनडीए पर जो है एमपी जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। बैक चैनल बातचीत होगी, क्या स्पीकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें ये तय किया जाएगा कि चर्चा कब होनी चाहिए। कल स्पीकर ने अलग अलग पार्टी के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है, उनको समझाया कि आप चर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए, मैं चर्चा के लिए हम समय तय कर लेते हैं।
1: ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, लेकिन इस ट्वीट के बीच बड़ा सवाल तो यही है कि प्रमुख डिमांड तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, क्या इस ट्वीट से कोई थोड़ा संबल मिलेगा? जिस तरीके से लगातार मांगों की एक फेहरिस्त रखी जा रही है सीजेपी की ओर से, सोनम वांगचुक की ओर से, कांग्रेस की ओर से अलग, और कहीं ना कहीं सब में थोड़ा बहुत समन्वय है, कुछ मांगों को हटा दें अगर तो।
2: जी बिल्कुल नेहा, हमको समझना होगा कि जो ये इस्तीफे की मांग है ये पूरी तरह से अब राजनीतिक रूप ले चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से धरना दिया और लगातार कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद हम ये जरूर समझ सकते हैं, जो सूत्र भी सरकारी सूत्र हमको बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है, क्योंकि जो कदम उठाने की जरूरत है पेपर लीक को लेकर उसको लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जब हुई थी एनडीए की उसमें भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था पेपर लीक एक घोर पाप है और उसको लेकर कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जब पेपर लीक हुआ था तब 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको हिरासत में लिया गया था, एसआईटी फॉर्म की गई थी, और जब रीटेस्ट हुआ तब उस वक्त राधाकृष्ण कमेटी के सभी रिकमेंडेशंस को लगाकर वो रीटेस्ट कराया गया था। अब पीएम नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा संदेश है युवाओं को कि उनके भविष्य के साथ सरकार किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती, इसीलिए सरकार ने अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के निर्माण के उनके आदेश दे दिए गए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस तरह की बातें कह दी
1: गई। रामगोपाल यादव इस वक्त बोल रहे हैं
3: कार्रवाई किसी पे ना हो, जिनकी मौत हुई है पेपर लीक के कारण उन्हें मुआवजा मिले तो मैं धरना अनशन खत्म करने का विचार कर सकता हूं।
4: तो बात तो उनकी ठीक है, यही तो मांग है सबकी कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो, जांच हो।
3: यदि सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब आए तब तो, क्योंकि सरकार के लिए हम चर्चा को तैयार हैं।
4: सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है, सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है, सारा देश देख रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं हाउस स्थगित हो जाता है, राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ, एक दिन भी नहीं 11 बजे हाउस शुरू हुआ, पेपर लेइंग हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े हुए वैसे स्थगित 12 बजे तक के लिए, 12 बजे फिर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर स्थगित 2 बजे तक के लिए, और 2 बजे फिर एक मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती। तो जब चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कहना चाहते, 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे?
3: प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि युवाओं के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है,
4: तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया लाखों का, इतने पेपर लीक हुए, ओवरएज हो गए लोग।
5: सर कल रात में भी जो है
1: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं कि चर्चा के लिए सरकार ही तैयार नहीं है, हम तो चाहते हैं चर्चा करना लेकिन संसद ही नहीं चल पाती है, ना हमारी बात सुनी जाती है।
2: जी बिल्कुल, रामगोपाल यादव वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि सरकार संसद को नहीं चलने देना चाहती, लेकिन हमको ये बहुत जरूरी है समझना कि पिछले कुछ दो तीन दिनों में हो क्या रहा है। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ तब से ही लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लोकसभा राज्यसभा दोनों में हंगामा कर रहा है। जैसे ही हाउस रिज्यूम होता है उस वक्त बिना सरकार की बात सुने हंगामा इतनी जोरों शोरों से किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि पहले आप इस्तीफा कराइए फिर हम चर्चा कराएंगे। कल तो बात कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई भी नजर आई अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में। हुआ क्या कि जैसे ही 12 बजे के आसपास लोकसभा शुरू हुई, केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव खड़े हो गए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कौन बोलेगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है केसी वेणुगोपाल बोले, और जैसे ही केसी वेणुगोपाल ने अपनी बात रखी उसके बाद सरकार ने अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष की मांग को लेकर जो है सहमत है, चर्चा कराने के लिए तैयार है, जो भी विपक्ष के प्रश्न होंगे उस पर सरकार जवाब देगी। सभी फ्लोर लीडर्स आइए बैठिए बात करिए चर्चा करिए, लेकिन इस बात के बाद सीधा एक संदेश साफ विपक्ष के द्वारा दे दिया गया कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक चर्चा भी नहीं होगी, तब तक हंगामा जारी रहेगा। उसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज नजर आए नेहा, और उन्होंने कहा कि ये बात बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की नहीं, ये बात है छात्रों की, तो वो चर्चा के लिए तैयार थे, वो चाहते थे कि जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई उस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो ही नहीं पा रही है क्योंकि जैसे लोकसभा शुरू होती है लगातार हंगामा हो जाता है और राज्यसभा में भी बनिस्पत ऐसी स्थिति है, तो जब लगातार हंगामा होगा तो चर्चा कैसी होगी। हालांकि सरकार का मत यह है कि सरकार चर्चा कराए, नीट पर जब बात हो तो ना सिर्फ विपक्ष के जो नेता है वो अपनी बात रखे बल्कि सरकार की तरफ से भी सांसद अपनी बात रखेंगे, कंसर्न मंत्री
1: हमारे साथ। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, वक्त हो गया हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

दिल्ली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी का पोस्ट, बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगी सुनवाई, दोषियों को मिलेगी सजा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी, नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष, 10 बजे बैठक में रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए सांसदों का धरना प्लान। जंतर मंतर पर कल देर शाम फिर पुलिस और छात्रों की झड़प, सीजेपी समर्थकों ने की पत्थरबाजी, एसीपी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। अस्पताल से सोनम मांग चुका वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर ना रखने की रखी शर्त, जेपी नड्डा आज देंगे जवाब। पश्चिम तक मॉनसून की तबाही, गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से घरों तक घुसा पानी, महाराष्ट्र के कई हिस्सों जलमग्न, असम में एक दिन में 10 की मौत।

0: नीट विवाद के बीच प्रधानमंत्री का संदेश, बोले युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता, पेपर लीक मामलों में जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा गठित। नीट पेपर लीक मामले में पीएम ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में फास्ट ट्रैक कोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी बोले, पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी, जनपद मेट्रो के बाहर उमड़ी भारी भीड़, टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने की रखी शर्त, कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वस्त करे केंद्र। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश, कहा मैं अभी भी जिंदा हूं, सरकार से बच्चों पर एफआईआर और बल प्रयोग न करने की अपील। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा, यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा, नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को तैयार है सरकार, युवाओं की हर जायज चिंता का करेंगे समाधान। पेपर लीक पर निशिकांत दुबे का सख्त बयान, बोले कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कहा सजा इतनी कड़ी होगी कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान की प्रतिक्रिया, बोले आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दे, हिंसा पर दुख जताते हुए घायल छात्रों और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान बोले, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद है, सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में उनका साथ देगी। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान, कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई को राज्यव्यापी शैक्षणिक बंद बुलाया है। दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर उठे सवाल, जांच के घेरे में वीडियो, मकोका समेत कई मामलों का आरोपी रह चुका है हाजी अफजल, प्रदर्शन में दिखा लेकिन भूमिका अभी स्पष्ट नहीं। 2027 मिशन में जुटी बीजेपी, यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, 1,80,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामे के आसार, नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की कर रहा है मांग। मॉनसून सत्र में फिर टकराव की संभावना, कई अहम विधेयकों पर नजर, लगातार बाधित हो रही कार्रवाई के बीच आज भी विपक्ष सरकार आमने सामने, 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। नीट मुद्दे पर सियासी घमासान, एनडीए सांसद आज मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन, विपक्ष विरोध के जवाब में एनडीए सांसदों का प्रोटेस्ट, सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा। नीट लीक मामले में सीबीआई से जवाब तलब, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट के दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा गया है। दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट, सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद, एंट्री एग्जिट बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कई फैसले, सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन, भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, 5 संतों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। सोने चांदी के शराबे की मात्रा और शुद्धता जांच की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला, सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई चढ़ावा गिनती कक्ष समेत कई सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज वीएचपी आरएसएस समर्थित संतों की बैठक, भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन, राम मंदिर प्रशासन ने पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी। सीएम योगी बोले, विपक्ष को यह बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट, खसोट और अराजकता का माहौल था। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। कुल 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, कुल 430 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर, यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव। प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा की गई स्थगित, 25 से 27 जुलाई तक 2 पारियों में होनी थी परीक्षा। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट, अनुष्का करीब 1 घंटे तक हुई एकांत वार्ता, कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों नंगे पैर चलते आए नजर। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भक्तों के धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा जवान तैनात, देर रात से पहाड़ टूटने के कारण बंद कर दिया गया है मार्ग, अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा के कारण लिया गया है फैसला। सिक्किम लैंडस्लाइड में बड़ा मौत का आंकड़ा, 22 की मौत की पुष्टि, मलबे में फंसे लोगों को बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। असम में सात सबसे भीषण बाढ़ से भयंकर तबाही। जानकारी के मुताबिक 25 जिलों में 72 लाख से अधिक लोग प्रभावित। असम में बाढ़ बारिश का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 10 की मौत। शिवसागर बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला। करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलमग्न गांव का निरीक्षण किया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। असम में आई तबाही में बाढ़ में करीब 100 लोग अब भी लापता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और जिला प्रशासन मिलकर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जगह जगह जलभराव और सड़क जाम होने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। यात्रियों की से एडवाइजरी देखते हुए यात्रा न करने की अपील। रजौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, जगह जगह भूस्खलन और फ्लैश फ्लड। बाढ़ का पानी निचले इलाकों और नए बस स्टैंड तक घुसा। सीहोर में उफान पर चरनाल नदी पुल के ऊपर नदी का पानी आने से ट्रैफिक प्रभावित। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवाघाट के पास भारी भूस्खलन, भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क यातायात के लिए बंद। दोनों ओर कड़े कई वाहन फंसे। गुजरात के वलसाड लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश। वापी शहर में जगह जगह जलभराव। कई सोसाइटी से भरा पानी। पार्किंग में डूबी दिखी गाड़ियां। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों, सड़कों, खेतों, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। दक्षिण गुजरात कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। मुंबई के पालघर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज छुट्टी के आदेश। राजस्थान के जैसलमेर में जमकर हुई मानसून की पहली बारिश। झील और पेयजल स्रोत से पानी बढ़ने से लोगों को मिली राहत। जम्मू में लगातार बारिश के चलते 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश। पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सड़कों पर पहुंच रहा है पहाड़ी मलबा। चंबा में भारी बारिश से दाबी नदी उफान पर। नदी के बीच फंसा युवक रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच दारमन घाटी में भारी भूस्खलन। लाइव वीडियो आया सामने। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल। 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते वलसाड में स्कूल कॉलेज बंद। 325 जिले में ज्यादातर सड़कें बंद की गई। वलसाड में भारी बारिश का असर। रेलवे ट्रैक किनारे जमीन धंसी। रेल सेवा प्रभावित। गुजरात कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। रौद्र रूप दिखा रही है अंबिका नदी। खतरे से ऊपर बह रही है कावेरी। सूरत में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन के निचले इलाकों से लोगों से घर खाली करने की अपील। दिल्ली के बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में एक व्यक्ति गई जान। आग लगने के कारणों की जांच जारी। हरदोई बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा। 2 रोडवेज बसों के बीच फंसकर महिला की मौत। परिजनों ने ड्राइवर पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब बरनाला में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। महिलाओं समेत कई लोग घायल। प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। पंजाब के फतेहगढ़ में साबी में सल्फास की जहरीली गैस ने उड़ाई परिवार की खुशियां। 13 दिन की बच्ची और 4 साल की मासूम की मौत। 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा। गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आई बाइक। 3 नाबालिग की मौके पर मौत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड का गुंडाराज। 15 साल के नाबालिग को बेरहमी से पीटा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के बलिया में चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। जानलेवा हमले के बाद बुरी तरह घायल अवस्था में थाने पहुंचा युवक। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पंजाब के फजिलका में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जंग। ट्रैक्टर से कुचलकर देवर भाभी की हत्या। मसूरी के हवाघर मोड़ पर जीप अनियंत्रित एक पहिया खाई की ओर लटका। चालक की सूझबूझ से तलाब बड़ा हादसा। तेलंगाना में शराबी ने चुराई सरकारी बस। 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर। एक्टिवा सवार युवक को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी में कैद। जयपुर में आरटीओ की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। समय रहते लोगों ने बचाया। अमृतसर में चादर में लिपटा मिला युवक का शव। सीसीटीवी से खुला राज। नशे की ओवरडोज से मौत के बाद दोस्त ने फेंका शव। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड ने किशोर संघ की मारपीट। पुलिस मेडिकल के लाई थी हॉस्पिटल। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या की। प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद घोटा गला। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में घुसे चोर, लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार। वडोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा, होटल सर्वेंट क्वार्टर में छिपे थे आरोपी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन नायकन टी शर्ट की भारी मांग, एक्टर मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। आज रिलीज हो रही है फिल्म जन नायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म। विजय की फिल्म जन नायकन के रिलीज होने से पहले ही शानदार कमाई। बिग बॉस सीजन 20 का नया लोगो आउट, बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर लॉन्च, फिल्म में काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े आएंगे नजर। ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पिचौरी और देवदत्त बुधोलिया भी अहम किरदार में आएंगे नजर। आज से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। जिम्बाब्वे के हरारे में खेला जाएगा पहला मुकाबला, भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का किया ऐलान, ईशान किशन नंबर 1 के पायदान पर बरकरार। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 की लिस्ट में, अभिषेक नंबर 2 और तिलक नंबर 8 की पोजीशन पर काबिज। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ किया है करार। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला, जॉर्डन, बहरेन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, कहा होर्मुज में ईरान ने किसी जहाज पर अगर हमला किया तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता कमजोर हुई है, अमेरिका होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की जारी रखेगा सुरक्षा। पाकिस्तानी सरकार ने फिर फैलाया अमेरिका के सामने हाथ, खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन से मांगे $10 अरब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा तेल संकट के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था स्थिर है। और अब बात बीएसएफ के ऑपरेशन घुसपैठ के द एंड की। भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी का काम तेज हो गया है, बंगाल सरकार ने बीएसएफ को जमीन सौंपी और अब बॉर्डर पर फेंसिंग की जा रही है। बंगाल सरकार ने 9 जिलों में 1,000 एकड़ से अधिक जमीन बीएसएफ को दी है, इस जमीन पर 172 लंबी फेंसिंग का काम चल रहा है। सिर्फ फेंसिंग नहीं, हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: एक तरफ जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ ने ग्राउंड पर आकर के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुर्शिदाबाद में जो सिंगल लेयर्ड स्टील फेंसिंग ये बनाना शुरू कर दिया है। ये स्मार्ट फेंसिंग होगी जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 फीट के आसपास होगी। और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जवान जो है उनकी निगरानी में इस तरीके की ये स्टील फेंसिंग तैयार की जा रही है। ये स्मार्ट फेंसिंग वैसी होगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई भी घुसपैठिया यहां से सीमा के उस पार से अंदर की तरफ भारत के अंदर ना आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती थी वो मुर्शिदाबाद के इलाके से होती थी। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद से इस तरीके के कड़े कदम उठाए गए और आप तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत तेजी से यहां पर काम चल रहा है। ये जो लेबर हैं ये लगातार यहां पर काम कर रहे हैं और सीधा मकसद यही है कि इस पूरे इलाके से किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। ये जो स्मार्ट फेंसिंग है ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें ऊपर की तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, इसके साथ साथ जो CIBMS यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको इसमें पूरी तरीके से लगाया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड जो है सर्विलांस भी इसमें लगाया जाएगा कि अगर कोई तार काट करके घुसने की कोशिश करता है तो कंट्रोल रूम तक उसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो बीएसएफ पूरी तरीके से इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन यानी कि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके से घुसपैठ न हो उसको लेकर के काम कर रही है। और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी फेंस का निर्माण कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके में करीब 45 किलोमीटर लंबी मुर्शिदाबाद की जो फेंसिंग है उसको पूरी तरीके से तैयार करके यहां से घुसपैठ को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ मुर्शिदाबाद से जितेंद्र सिंह आज तक।
0: वही घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए फ्लोटिंग BOP का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
1: इस वक्त मैं फ्लोटिंग बीओपी पर सुंदरवन में मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ्लोटिंग बीओपी इस वक्त काम कर रहा है। दरअसल फ्लोटिंग बीओपी का इस्तेमाल यहां पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पूरे इलाके में वाटरवेज हैं, पानी ही पानी है। ज्वार और भाटा के जरिए जो पानी यहां पर आता है, इसकी वजह से मैंग्रोव ये पूरी झाड़ी जो है ये बन जाती है। तो इसके लिए यहां पर फ्लोटिंग बीओपी का इस्तेमाल बीएसएफ के कमांडोज के द्वारा किया जा रहा है। 4 बोट इसमें लगाई गई है और इसके साथ साथ 2 बोट जो है वो साइट की तरफ लगाई जाती है, जिससे कि अगर किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि यहां पर दिखाई पड़ती है तो उसको यहां से जानकारी ली जा सके। दरअसल यहां बीएसएफ के कमांडोज भी मौजूद होते हैं और चारों तरफ इनके द्वारा निगहबानी की जाती है। आपको इस फ्लोटिंग बीओपी के तमाम बिंदुओं को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ यहां पर इसको डिजाइन किया गया है और ये बाकायदे यहां पर कंट्रोल रूम भी बना हुआ होता है। कंट्रोल रूम से जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि की जानकारी यहां पर पहुंचती है तो उसके बाद जवानों को यहां से जानकारी दिया जाता है और ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं वो फ्लोटिंग बीओपी के जरिए पूरी तरीके से निगहबानी करते हैं। ये सामने की तरफ आपको जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये बांग्लादेश है और यही नदी के अंदर यानी कि ये सुंदरबन के इलाके से ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में बीएसएफ के जवान लगातार जो है निगहबानी करते हैं।
0: रुकेंगे आज इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: लुकिंग टू ट्रेड इन योर करंट व्हीकल? वी विल गेट यू द मोस्ट फॉर योर ट्रेड एट बायर्स वोल्क्सवैगन। वी हैव बीन पुटिंग कस्टमर्स फर्स्ट सिंस 1897 एंड व्हेन यू आर रेडी टू बाय आवर टीम विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू हेल्प यू ड्राइव होम इन द वोल्क्सवैगन दैट्स राइट फॉर यू।
4: ड्राइव होम इन यू 26 वोल्क्सवैगन टिगुआन एस फ्रंट व्हील ड्राइव 229 फॉर 36 मंथ्स विद 3999 टू इट्स साइनिंग।
3: एक्सपीरियंस द बायर्स डिफरेंस एंड सी व्हाई जनरेशंस ऑफ कस्टमर्स कंटिन्यू टू चूज अस। विजिट अस एट columbusvw.com और बाय द एयरपोर्ट।
4: ऑफर एंड्स 8/31/26, सी डीलर फॉर डिटेल्स।
5: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
8: After multiple assassination attempts, they can't even get...
9: They're reliable.
10: Always when I need them.
7: To live sports action.
11: One-hand jam by LeBron on the break.
12: That's another three, Steph Curry.
7: And your favorite music.
13: Well, the dawn begins to crack.
7: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
14: Hexa Organic.
15: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
16: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
17: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
18: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
19: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
20: आगे आगे,
21: करेक्ट
22: करेक्ट, मिल गया।
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: in association with Vimal Bolo Zuban Kesri, Hind Bade Aram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं, 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे,
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया।
2: मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है।
1: करीब 2 घंटे तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को हरी झंडी दे दी।
3: आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप तो सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस दे दे।
4: अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी।
1: कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल सरकार ने जबरन लागू किया है। कांग्रेस इस पर अभी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद इसे चैलेंज करने की तैयारी है।
5: भाजपा की सरकार की सोची वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि यहाँ लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो।
2: हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहते? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है।
1: उधर कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
6: यूसीसी बिल विधानसभा में जहां एक तरफ पास हो गया, तो वहीं यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज धरने पे बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है भोपाल के शाहजहानी पार्क में।
7: बिल्कुल गलत बिल लेकर पास किया है, इससे इसके हम खिलाफ हैं।
8: हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि मोहन सरकार की कानून के तहत।
1: देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
3: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो, हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hex Organ.
1: पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी का पोस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन, बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी, नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष, सदन चलने को लेकर रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए सांसदों का आज धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी तनाव, कल की झड़प के बाद पुलिस की भारी तैनाती, 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद, आने जाने वालों के लिए दूसरे दिन भी मुसीबत। अस्पताल से सोनम वांगचुक का वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर न करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा देंगे जवाब। पूर्व से पश्चिम तक मॉनसून की तबाही, गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से घरों तक पानी, महाराष्ट्र के कई हिस्से भी जलमग्न, असम में एक दिन में 10 मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अगले एक घंटे तक बात होगी पेपर लीक पर, छात्र आंदोलन से लेकर सड़क से संसद तक चल रहे उबाल की। बताएंगे कि कैसे संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए हैं, कैसे पेपर लीक पर बहस कम बवाल ज्यादा दिख रहा है, और बात होगी जंतर मंतर की। बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कल रात फिर पथराव और आंसू गैस के गोले की नौबत आ गई, और ये भी बताएंगे कि फिल्म स्टार सलमान खान ने छात्र आंदोलन के समर्थन में क्या कहा, छात्रों पर सियासत पर उन्होंने क्या कहा। तो ये सब आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम चाहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चले और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री का साफ संदेश है, जो युवा शक्ति के सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा, उन्होंने कहा है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के हों या फिर विपक्ष के। और इस सब के बीच में अब प्रधानमंत्री की तरफ से आए इस सोशल मीडिया पोस्ट की अहमियत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी यानी कि सर्वोच्च पद से अब ये साफ कर दिया गया है सरकार के कि पेपर लीक में कोई कोताही नहीं होगी, उसकी जांच में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। लेकिन इसको लेकर अब क्या जवाब आते हैं विपक्ष की तरफ से और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, ये देखना होगा। क्योंकि अहम यही है, क्या ऐसे आश्वासन के बाद, क्या ऐसे वादे के बाद वो पीछे हटते हैं या नहीं। तो पीएम के पोस्ट पर राहुल गांधी ने अब जवाब दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि छात्रों की मांगे साफ है। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरी, छात्रों से माफी मांगे। तीसरी, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये जवाब अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दे दिया गया है। ये जवाब है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट का, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो रही है और जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। लेकिन लगता है कि अब विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर से तीन मांगे सामने कर दी है और राहुल गांधी कहते हैं कि ये तीन मांगे छात्रों की ही हैं, जिनमें से सबसे ऊपर और पहली मांग वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तो सारा मुद्दा यहीं आके अटक चुका है। राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार वो बस एक ही मांग पर अटके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उधर सरकार कई तरीके से कई मोर्चों पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो सोनम वांगचुक से बात कर रही है, दूसरी तरफ उसकी उससे सीजेपी से भी किसी न किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश है।
1: मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए, और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहा?
2: सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है, सारा देश देख रहा है। आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती। तो जब चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कहना चाहते, 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे?
3: प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि युवाओं के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
2: तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का, इतने पेपर लीक हुए, ओवरएज हो गए लोग।
0: तो आपने सुना विपक्ष के सांसद क्या कह रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, रुख सीधा और कड़ा है, साफ कह रहे हैं, राहुल गांधी भी और सांसदों को भी सुना हमने, लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है विपक्ष।
4: देखिए, बिल्कुल ये मामला बहुत तूल पकड़ता चला जा रहा है और राहुल गांधी कल भी उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है उस पर जो है विपक्ष अड़ा हुआ है, वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर समझौता नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के जो की जो का जो पोस्ट है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनका आदर करते हुए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, छात्रों का वेलफेयर, और उसको लेके उन्होंने एक जो पोस्ट डाला उस पर सीधा प्रहार करते हुए राहुल गांधी एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जवाबदेही किसकी है, अगर गिरफ्तारियाँ ही नहीं होंगी तो कोर्ट कौन पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि जो आश्वासन भारत सरकार, मोदी सरकार दे रही है, उसको लेके विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये खानापूर्ति हो रही है और इस मसले को लेकर अब और तीखा तीखा वार और पलटवार होने वाला है। अंजलि
0: जी, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। अमित, जो खींचतान हम संसद में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पर भी खींचतान देखने को मिली है। आपसे ये जानना चाहेंगे, फिलहाल विपक्ष का रवैया क्या सामने आ रहा है, खास तौर पर प्रधानमंत्री का ऐलान, क्योंकि सर्वोच्च पद सरकार का आखिरकार उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, लेकिन क्या आज बहस के लिए तैयार होंगे इसके बाद?
5: देखिए अंजलि, 2 स्टेकहोल्डर्स हैं इसमें, एक तो छात्र और सोनम वांगचुक की टीम आप मान लीजिए और दूसरी विपक्ष की टीम मान लीजिए। जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया उस संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूँ। सीजेपी ने तो कम से कम जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया उसके जवाब में यही रेस्पॉन्स दिया है कि आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाइए। और विपक्ष की जहां तक बात है, वहां नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था खराब है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है, और अपनी 3 मांग विपक्ष ने जो कल रखी थी उसी 3 मांग पे आज भी राहुल गांधी अड़े हुए हैं, खड़े दिख रहे हैं। क्या है ये 3 मांग? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, दूसरा सरकार की तरफ से माफी मांगी जाए, और तीसरी मांग की जो लाठी चार्ज हुआ, जो पुलिस एक्शन हुआ छात्रों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 20 जुलाई को, उसके ऊपर कार्रवाई हो या जांच हो। विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है अंजलि, उस रणनीति का असार ये है कि हाउस के अंदर तमाम बिजनेस को सेट असाइड करके, उनको साइड रख के इस मुद्दे पर चर्चा हो, ना केवल नीट यूजी पेपर लीक पे चर्चा हो, सोनम वांगचुक के उपवास पे चर्चा हो, और इसके साथ साथ अब जो लाठी चार्ज का आरोप लगातार लग रहा है, या जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा ने दावा कर दिया कि पैलेट गन्स चलाए गए थे प्रदर्शन के दौरान, तो इन सारी बातों की जांच हो। मामला यहां तक पहुंच गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से तो विपक्ष मानने वाला नहीं है अंजलि।
0: बिल्कुल, और इस पर रहेगी हमारी नजर कि आखिरकार आज संसद में क्या होता है, क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया कि उसकी 3 मुख्य मांगे हैं और वो आज राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी साफ कर दिया। उधर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से अलग अलग मोर्चों पर बातचीत करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री की तरफ से एक पहल की गई है, सरकार तो अलग अलग मोर्चों पर कोशिश कर ही रही थी, लेकिन ये पहल अहम है।
6: देखिए, ये पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जो कार्रवाई की गई, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनके ऊपर केस चलेगा। केस जो है वो लंबे समय अवधि तक चलता है। जो पेपर लीक मामला है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बनता है, जब माइनर्स के साथ जो है रेप हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रोविजन है। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, तो उसमें पेपर लीक एक ऐसा मामला जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा इस मामले में। 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, इन 13 लोगों के खिलाफ जो है जल्द से जल्द सुनवाई हो, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि एक महीने में 5 से 10 बार सुनवाई हो जाए। जो काम एक साल में हो सकता है उसको एक महीने में करने का काम हो, क्योंकि कई बार क्या होता है एक केस की हियरिंग आज है फिर 3 महीने में या 5 महीने में पड़ेगी, तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी ही जो आर्ग्यूमेंट होंगे और उसके बाद जल्दी ही जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा वो होगा।
0: जी बिल्कुल, तो ये एक पहला बिल्कुल हिमांशु, हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या होता है इस ऐलान के बाद। लेकिन सरकार के फास्ट ट्रैक वाले दावे से क्या खत्म होगा टकराव? क्या संसद में बहस हो पाएगी? विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा? सरकार पेपर लीक पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन ये किस नियम के तहत हो इसकी ही सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष 267 के तहत बहस की मांग कर रहा है। ये वो नियम है जिसके तहत आप किसी भी अहम मुद्दे को ला सकते हैं और दूसरी सभी कार्रवाइयों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी शर्तें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग की है, जिस पर सब कुछ दारोमदार अटका हुआ है। आंदोलनकारियों की बात करें तो छात्रों और विपक्ष की मांग अब भी अपनी जगह पर है। सवाल यह भी है कि क्या दोनों पक्षों को किसी भी नतीजे पर पहुंचने में कोई सहमति बनेगी? कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक पर सरकार को घेरा तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस के वक्त पेपर लीक का चैप्टर खोलकर सामने रख दिया।
7: हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया।
8: हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: तो आंदोलनकारी छात्रों से लेकर विपक्ष तक एक ही सुर सुनने को

0: संदेश जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर एनडीए के सभी सांसदों को आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदेश को मोस्ट अर्जेंट यानी कि सबसे जरूरी बताया गया है। बताया ये जा रहा है कि एनडीए सांसद राहुल गांधी के धरने का विरोध करेंगे जो उन्होंने पीएम आवास के बाहर किया था और इसके लिए वो खुद धरना करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। तो हिमांशु, ऐसा लग रहा है बीजेपी अब धरने के विरोध में खुद धरना करेगी?
1: देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सांसद जो हैं संसद में धरना देते नजर आए। उससे पहले कई बार ऐसा हुआ है और ये इस बार भी हो रहा है, क्योंकि जब राहुल गांधी जो हैं परसों देर शाम जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठ गए और ये उस गेट पे जाके धरने पे बैठे, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद वहां समाजवादी पार्टी के लीडर पहुंच गए, सुप्रिया सुले पहुंच गई, वो गेट था जहां से प्राइम मिनिस्टर जो हैं पीएम हाउस में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए गेट है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए दृष्टि से देखा जाए तो उसमें एक बड़ा सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे बैठना भी ठीक नहीं है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उसको लेकर प्रोटेस्ट है। दूसरा प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है वो चर्चा हो जाए, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट उसके लिए है कि आप आइए संसद में, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, किस नियम पर हो ये जो है वो बीएससी के अंदर तय कर लिया जाए, जैसे जेपी नड्डा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, किस नियम के तहत हो, कितना समय दिया जाए, किस दिन को हो, ये सारी चीजें हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वो चर्चा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो है धरने पर बैठ गए, सुरक्षा की दृष्टि से जो ठीक नहीं था, उनको बाद में डिटेन करके जो है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम लेके जाया गया। तो ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो उसी तर्ज पर है कि सरकार अपने काम को कर रही है, विपक्ष समझ नहीं रहा है। और कल आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस दफ्तरों के बाहर जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया था उसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया था।
0: जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं उसी का। छात्रों का ये जो मसला है इस पर एक क्रेडिट वॉर भी हो रहा है और अब इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को धरने पर घेरा था और अब लोकसभा में अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को बोलने का मौका मिला, क्या दोनों में कोई डील हो गई है?
2: मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
3: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
2: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
3: हम लोग का बात भी सुनिए
2: अखिलेश जी। नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
3: अखिलेश जी एक मिनट।
2: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
0: उधर सदन में चर्चा को लेकर भी कांग्रेस और सरकार में बहस हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि नियम 267 के तहत ही बहस हो। वहीं जेपी नड्डा ने बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट किए जाने का आरोप लगाया है।
4: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और

0: की चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
1: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
2: धन्यवाद।
1: जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, बातचीत शुरू करेंगे।
3: तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
4: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
3: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
4: अर्ज किया है
3: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
5: वाँ वाँ वाँ वाँ।
3: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
6: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
7: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: In association with
11: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
13: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है,
14: टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
13: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
15: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

आश्वासन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान। राहुल गांधी का जवाबी पोस्ट, बोले पहले माफी मांगे पीएम। संसद के मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी। नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष। सदन चलने को लेकर रणनीति पर मंथन। राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए सांसदों का धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी तनाव। कल की झड़प के बाद पुलिस की भारी तैनाती। 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। आने जाने वालों के लिए दूसरे दिन भी मुसीबत। अस्पताल से सोनम वांगचुक का वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन। छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर न करने की रखी शर्त। जेपी नड्डा देंगे जवाब। पूरब से पश्चिम तक मानसून की तबाही। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से घरों तक पानी घुसा। महाराष्ट्र के कई हिस्से भी जलमग्न। असम में एक दिन में 10 मौतें।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तेज कर ली है। राहुल गांधी के धरने के खिलाफ एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है और संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। तो ये तस्वीरें आपको लेकर आ रहे हैं आपके लिए सीधा संसद से, जहां मकर द्वार के पास अब एनडीए के सांसद प्रदर्शन के लिए जुट गए हैं। कल यही वो जगह थी जहां हमने विरोध प्रदर्शन देखा था विपक्षी सांसदों का, और आज सत्ता पक्ष के सांसद वहां पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि जैसा कि आप ब्लैक कार्ड्स में भी देख सकते हैं कि ये विपक्षी सांसद है, ये तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपको बता दें कि संसद के अंदर की है। आज 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर था। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी के सभी सांसद, एनडीए के सभी सांसद जो है वो मकर द्वार पर आए, और उनका प्लान ये है कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए बैठे, और उनका ये मानना है कि ये गलत था और इसी के खिलाफ वो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और इसके लिए सत्ता पक्ष के सांसद आज जुट रहे हैं। और लेकिन लगता है उससे पहले ही वहां पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चले जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, स्थिति क्या है आज मकर द्वार पर, या ये कहें संसद परिसर में? एक तरफ एनडीए का भी विरोध प्रदर्शन होना है, दूसरी तरफ हमें विपक्ष का आज भी कुछ विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, हो क्या रहा है अंदर संसद के?
1: देखिए, संसद के गलियारे में आपको सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष नजर आता था, अब संसद के बाहर, सदन के बाहर जो है परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश दोनों ही चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो, चर्चा कब हो, कितनी समय के लिए हो, इसको तय करना होगा, ये तय हो नहीं पा रहा है। तो कल संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप किस नियम के तहत चर्चा करना चाहते हैं ये बीएससी में बैठ के तय हो जाएगा। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है वो अभी एक तरीके से कहें तो रस्साकशी बनी हुई है। दोनों ही पक्ष जो है ये सुनने को तैयार नहीं है एक दूसरे की बात को, और आज सत्ता पक्ष की तरफ से जो है एनडीए का प्रोटेस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है एक तरीके से उन्होंने के लिए खतरा था। दूसरी तरफ जो है विपक्ष बैठा हुआ जो ये कह रहा है नीट पेपर लीक मामले पर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, संसद के अंदर चर्चा हो, उन छात्रों को जो है वो मुआवजा मिले।
0: आप हमारे साथ बने रहें और नजर रखें इस विरोध प्रदर्शन पर, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या जानकारी दे रही है।
2: लक्ष्मण रेखा खींची गई है संसद के मकर द्वार के बाहर। सर एक बार पीछे जाइए, संसद के मकर द्वार के बाहर ये तस्वीर इस वक्त घटती हुई, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई अंदर की मकर द्वार के पास, जब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने आपको वो रिपोर्ट दिखाई जब दोनों अपनी मांगे लेकर, अपनी तख्तियां लेकर आमने सामने खड़े हो गए। लेकिन ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो सत्ता पक्ष के सांसदों की है, और अब सोनिया गांधी भी जो आ गई इस वक्त संसद में वो भी मौजूद हैं और हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर परिसर में सांसद आमने सामने खड़े हैं, यहाँ लगता है सब बातचीत हो रही है, लेकिन सदन के अंदर चर्चा का क्या, उसको आगे बढ़ाने के लिए ताकि छात्रों की बात चाहे कोई भी दल रखे, किसी भी सांसद के मुंह से आए लेकिन रखी तो जाए। तो हम हिमांशु से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब सदन के अंदर चर्चा शुरू होगी। इस तरह से तख्ती पकड़ के दोनों पक्षों के लोग अगर सांसद खड़े हो जाते हैं तो उससे मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा। हिमांशु का रुख करते हैं एक बार फिर से। हिमांशु, सवाल यही है कि सदन के अंदर कब चर्चा होगी, कब छात्रों की आवाज संसद में गूंजेगी, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद के मुंह से हो। हिमांशु,
1: देखिए, कोई भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरीके की रस्साकशी जो है संसद के सत्रों में दिखाई देती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें सत्ता पक्ष भी जो है धरने पे है, विपक्ष भी जो है वो धरने पे है, और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप है।
0: और आप सीधा रुख करते हैं प्रियंका गांधी का।
3: नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है, स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इसके इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनकी, इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है, तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं, ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा,
4: कर रही है सरकार अभी भी
3: नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना,
5: प्रोटेस्टर्स
3: सुनी नहीं। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं।
6: तो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इसके खिलाफ।
7: स्टूडेंट पर जो है लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को, इस पर
3: तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
8: चलो,
0: तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, जिनका कहना है कि अगर कोई हल सरकार को निकालना है तो वो सिस्टम के बाहर से निकालना होगा। वो ये कह रही हैं उस बात के जवाब में जो आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उधर इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, रुक करते हैं सीधा उसी का। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सरकार को छात्रों की मांग को पूरा करना होगा। सिस्टम से छात्रों का भरोसा टूट चुका है और जो भी हल निकालना है उसे सिस्टम के बाहर से निकालना होगा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि छात्रों की पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसे पूरा किया जाए। वो ये कहती हैं कि रात को शाम को आप डंडे बरसाते हैं और अगले दिन आप कहते हैं कि मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूं। तो प्रियंका गांधी ये कह रही है कि अब प्रधानमंत्री को नेतृत्व करना होगा। उनका आरोप है कि वो बच्चों की सुन नहीं रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी हल निकाला जाए वो सिस्टम के अंदर से नहीं निकाला जा सकता है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, विपक्ष कहता है और वो ये इस बात के जवाब में कह रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, वो ये कहता है कि इस मुश्किल का हल सिस्टम के अंदर से नहीं निकल सकता है, यानी एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यही बात, यही मुद्दा बार बार उठाकर विपक्ष सामने रख देता है।
1: देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जब भी सरकार कोई भी स्टेप लेगी तो विपक्ष उसको उसके खिलाफ ही बताएगा। वो ये कहेगा, देखिए जैसे ही आपने कहा फास्टैग कोर्ट बनाना है, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि सिस्टम के बाहर से जो है परिवर्तन करना होगा, सिस्टम को ठीक करना है सिस्टम के अंदर से ठीक होगा, आपको ये प्रोविजन करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, वो स्टेप उठाने पड़ेंगे कि भविष्य में कभी भी जो है वो पेपर लीक ना हो, चाहे वो स्टेट के अंदर पेपर लीक का मामला हो या सेंटर में पेपर लीक का मामला हो, इतनी जो है वो आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे पेपर लीक जो है वो कभी ना हो, इसको सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है, राहुल गांधी धरने पर बैठे, अब उसके खिलाफ जो है एनडीए धरने पर है, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप धरने पर बैठ गए, उनकी सुरक्षा को लेकर ये खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि आप संसद में चर्चा करा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, और चाहे वो सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में ये सब कुछ जो है वो हम पहले भी देखते रहे हैं। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर उनकी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उन लोगों के ऊपर केस नहीं होने चाहिए जो मार्च के अंदर थे या जो स्टूडेंट के ऊपर केस हुए हैं। तीसरा, जो जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद जो है सुसाइड किया, उनके परिवारों को जो है वो मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए, ये मांग है। सरकार की एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, कल दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन जो सीजेपी के प्रोटेस्टर है उन्होंने कहा कि हम किसी मंत्री के घर पर जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे, किसी थर्ड प्लेस पे मुलाकात कर ले, या आप जंतर मंतर आइए कहीं थर्ड प्लेस पे हो, तो वो स्थान जो है वो तय नहीं हो पाया कहां पे बैठक होनी है, और उसी में कल पूरा दिन चला गया। सोनम वांगचू से जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जाके मुलाकात की उन्होंने, प्रधानमंत्री कार्यालय के जो राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह उन्होंने मुलाकात की, सोनम वांगचू ने कहा कि संसद में चर्चा हो, जिन प्रोटेस्टर पर केस दर्ज हुए हैं वो केस वापस ले लिए जाएं, तथा जो प्रोटेस्ट जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आप सोनम वांगचू कुछ और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संसद के अंदर जो है अच्छे से डिबेट होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है वो उस पर चर्चा हो, विचार किया जाए। तो ये इस तरीके से जो है ये पूरा जो है इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो सारे रास्ते ओपन रखने हैं। सरकार ने ये कह दिया है जो भी उनसे बात करना चाहे वो उसके लिए तैयार है।
0: लेकिन हिमांशु, ये बातचीत होगी कैसे, संसद में कार्रवाई कैसे शुरू होगी? क्या विपक्ष इंतजार करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसके बाद ही चर्चा हो, या कल की तरह हमने देखा कि कुछ मौका मिला था बोलने का?
1: देखिए राजनीति है और राजनीति में जो है एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, विपक्ष इसको लेकर जो है वो प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे कैसे हो, नीट पेपर लीक मामला हुआ, हमने तुरंत एक्शन लिया, हमारी सरकार जो है अकाउंटेबल है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने एक्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट किया जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, 13 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप कदम है, विपक्ष चाहता है कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो जाए जिस तरीके से यूपीए सरकार में होता था। तो एक दबाव की राजनीति है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट जारी है, सरकार कम्युनिकेशन वे को ओपन रखना चाहती है, चाहे वो प्रोटेस्टर हो, सोनम वांगचू हो, जो मैदानता
0: जी बिल्कुल। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा
5: इंडिया ब्लॉक के विपक्ष के सभी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए के सांसद भी यहाँ पर पहुंच गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे सांसद इस वक्त यहां पर है जिनके हाथ में तख्ती जिस पर लिखा है प्रधान सैक, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसद है। आप देखिए एनडीए के सांसदों के हाथ में तख्ती जिस पर लिखा हुआ है नीट पर संवाद करें, युवाओं को मत भड़काओ राहुल गांधी, होश में आओ। तो एक तरफ जो है एनडीए के सांसद यहाँ पर मौजूद है, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के यानी विपक्ष के सांसद यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। बीच में सीआईएसएफ के जो जवान है उन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर जो है वो बना दी है ताकि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था यहाँ पर ना हो जाए। तो एनडीए और इंडिया यानी विपक्ष और सरकार के सांसद इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं संसद भवन के अंदर, मकर द्वार के अंदर, और ये स्थिति कहीं ना कहीं काफी गंभीर बनती जा रही है। विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वहीं सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन गतिरोध इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार जारी है। प्लीज मैं पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
0: तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा को जो रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। एक वक्त ऐसा आया संसद के परिसर में मकर द्वार के सामने जब सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए, दोनों के सांसद वहां पर आ गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज सिर्फ संसद परिसर तक ही ये देखने को मिलेगा? जो बहस संसद के अंदर सदन के अंदर होनी चाहिए आखिर वो एक विरोध प्रदर्शन में तब्दील होकर संसद के बाहर परिसर में क्यों हो रही है? ये सवाल है बड़ा जो सभी छात्र पूछना चाहेंगे कि अंदर सदन की कार्रवाई कब होगी, कब उनकी आवाज सदन में सुनी जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज संसद परिसर के अंदर की है, मकर द्वार, जहां पर सांसद जुट गए, एनडीए के सांसद जिनको सबको कहा गया था कि आज 10:30 बजे अर्जेंट काम है, आप सब वहां पहुंचे। तो हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हिमांशु सवाल हम यही बार बार कर रहे हैं, आपने हमें समझाया कि सरकार की तरफ से अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग फ्रंट्स पे कोशिश की जा रही है यहाँ बातचीत की जाए, सोनम वांगचुक को मनाया जाए, कांग्रेस जनता पार्टी से बातचीत की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो सबसे ज्यादा हमलावर है वो विपक्ष है, और सबसे ज्यादा शायद कैमरे जिसको दिखा भी रहे हैं वो विपक्ष है, और उनकी ही आवाज सबसे ऊपर जा रही है। तो ऐसे में उनको बातचीत पर लाना और उनसे संसद में सत्र को आगे बढ़ाने देना ताकि इसका कोई हल निकल पाए, ये कितना जरूरी है, और क्या सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है उनसे बातचीत के लिए?
1: देखिए बिल्कुल सदन की कार्रवाई चले, संसद का मानसून सत्र चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बैक चैनल बातचीत कर सकती है विपक्षी दलों के साथ। कल लोकसभा स्पीकर ने जो है कई विपक्षी दलों के जो फ्लो लीडर्स हैं उनसे बातचीत की कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, जितना समय आपको चर्चा के लिए चाहिए वो समय जो है आवंटन किया जा सकता है। सहमति बन नहीं पाई है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2000 जब यूपीए सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, विपक्ष इसी तरीके से जो है मुद्दे को लेकर जो है वो संसद में हंगामा करता है, और उनकी कोशिश होती है कि अडजमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, अडजमेंट मोशन जो है वो स्वीकार किया ना किया जाए ना किया जाए ये लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के विवेक पर जो है वो निर्भर करता है। लेकिन सरकार जो है वो अगर चर्चा चाहती है, हमने देखा अन्ना हजारे जब अनशन पे बैठे थे तब लोकायुक्त को लेकर लंबे समय तक जो है संसद में हंगामा होता रहा, बाद में जाके चर्चा हुई, सरकार ने वहां पर अन्ना हजारे के पास जो है मीडिएशन के लिए मंत्रियों को भेजा, विपक्ष से बातचीत की, लेकिन अंततः चर्चा होती है। लेकिन आप अपने पॉलिटिकल स्कोर करते हैं, ये पॉलिटिकल स्कोर जो होता है ये बताता है कि आप इस सिचुएशन पर कितने जो हैं वो गंभीर हैं, इसीलिए इस चीज़ को घेर रहे हैं। दोनों ही अगर चर्चा चाहते हैं तो सदन के अंदर चर्चा हो जाए, लेकिन सरकार ये कह देती है किस नियम के तहत, तो इस पर पहले बीएससी में तय कर लिया जाए, तो मामला तब अटकता है। बैक चैनल बातचीत जरूर सरकार की तरफ से की जा रही होगी विपक्ष से, मैंने आपको बताया लोकसभा स्पीकर ने सभी विपक्षी दलों को बुलाने की कोशिश की है, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि सदन चल
0: जी। हिमांशु शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी पर, और हमारी नजर बनी रहेगी कि आज क्या होता है संसद में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home, And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
12: Sanitary Solutions.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: स्पीकर पे, स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट He has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए issue students की है, youth के future की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, this is completely un-Indian. मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये education system के बारे में, testing system के बारे में protest कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि education system, testing system is broken. It has ceased to exist.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पर रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे ना जाने का ऐलान। राहुल का जवाबी पोज, बोले पहले माफी मांगे पीएम।
1: संसद के मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन तनातनी, नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष। सदन चलने को लेकर रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए सांसदों का आज धरना।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी तनाव, कल की झड़प के बाद पुलिस की भारी तैनाती। 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद, आने जाने वालों के लिए दूसरे दिन भी मुसीबत।
1: अस्पताल से सोनम वांगचुक का वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन। छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर न करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा देंगे जवाब।
0: पूरा से पश्चिम तक मॉनसून की तबाही, गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से घरों तक पहुंचा पानी, महाराष्ट्र कई हिस्से जलमग्न, असम में एक दिन में 10 की मौत।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ मैं नेहा बाथुल।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक को लेकर संसद में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद संसद के परिसर के अंदर ही आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। और आइए सीधा रुख करते हैं संसद का, जहां इस वक्त दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम सीधी आपके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लेकर आ रहे हैं।
3: प्रश्नकाल, श्री विद्युत वरण महतो जी,
4: धन्यवाद। सभापति महोदय, अंकित प्रश्न 61
3: सर, विद्युत वरण जो किसी को नहीं बोलने दूंगा प्रश्नकाल के अंदर, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह का होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, आप भी प्रयास कर रहा हूँ कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्त नहीं होगा, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते,
4: मैं बैठ जाता हूँ।
3: आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें, नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है।
0: तो चौथे दिन भी लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 2 मिनट भी कार्रवाई नहीं चली, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई चलती है, पहले प्रश्नकाल होता है, वैसे ही कार्रवाई चलेगी, आपके मुताबिक नहीं चलेगी, अब 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है।
1: तो हमने सीधी तस्वीरें इस वक्त देखी थी दोनों सदनों में, जहां पर कार्रवाई शुरू तो हुई लेकिन चंद मिनटों में, क्योंकि विपक्ष का इतना हल्ला था कि सभापतियों को वहां पर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। हमने देखा कि राधाकृष्ण जो उठे राज्यसभा से तो उन्होंने मना कर दिया और वो भी चले गए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की लोकसभा की, जब ओम बिरला साहब ने साफ किया कि प्रश्नकाल पहले होगा, फिर अगर आपको कुछ भी पूछना है या चर्चा करनी है तो आप नियम के तहत कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं माना।
0: तो सदन हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, स्पीकर का यह कहना है, जिस नियम में चाहें चर्चा करा सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही वैसे ही चलेगी जैसे कि नियम कहते हैं। अब 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित है।
1: तो आइए अब रुक करते हैं शतक आज तक का।

0: कश्मीर पेपर लीक पर संसद परिसर में घमासान, मकर द्वार पर एनडीए इंडिया सांसद आमने सामने, दोनों गठबंधनों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। नीट विवाद पर विपक्ष का हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री, लाठीचार्ज करने वालों पर होगी कार्रवाई, संसद में इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक। छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस आक्रामक, प्रियंका गांधी बोली युवा अब नहीं झुकेगा, छात्रों से माफी की मांग दोहराई, कहा सबसे पहले लिया जाए मंत्री का इस्तीफा। नीट लीक मामले में सीबीआई से जवाब तलब, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। दिल्ली मेट्रो पर बड़ा अपडेट, सुरक्षा वजहों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद, अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी। नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का संदेश, बोले युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता, पेपर लीक मामलों में जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन।
1: कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हमने मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए।
2: गया थोड़ी देर रिजिजू के बोलने के बाद, लगातार चौथे दिन राज्यसभा लोकसभा दोनों में हंगामा और राज्यसभा को भी अब स्थगित कर दिया गया है। नीट पर चर्चा होनी चाहिए रिजिजू कह रहे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से विपक्ष चाहता है। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित है,
0: तो लगातार हंगामा होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया, यानी कि दोनों सदन अब स्थगित हैं। तो चर्चा कैसे होगी, ये पूरा मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर और उसके बाद जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर उठा है, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा लगातार हम सदन में देख रहे हैं। सिर्फ सदन में ही नहीं, बाहर विपक्ष का हंगामा परिसर में भी संसद के देखा जा रहा है। और अब किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष का विरोध ठीक नहीं है।
2: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इतने गतिरोध के बीच जब स्पीकर ये कहें कि नियम के तहत चर्चा करिए, पहले क्वेश्चन आर होता है वो होने दीजिए उसके बाद चर्चा, तो फिर इस हंगामे का मतलब क्या है? आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है? कल का जो ब्लैक आउटफिट में प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी बदली है, या फिर वो जस के तस अपनी पहले वाली बात पर कायम है?
3: देखिए, विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा हो, सरकार भी चाहती है वो चर्चा हो, लेकिन किस नियम के तहत हो इसको लेकर जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय होता है। 193 के तहत अगर चर्चा होगी तो उस चर्चा के अंदर जो है मंत्री रिप्लाई करेंगे, उस पर डिवीजन नहीं हो सकता। 184 के तहत जो है वो डिवीजन हो सकता है। राज्यसभा में 267 पे अगर चर्चा होती है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। और कौन किस में सरकार के बयान के साथ है, नहीं है चर्चा में, ये सारी चीजें तय होती हैं। तो उसको लेकर जो है वो किस नियम के तहत, तो सरकार ये भी चाहती है, चर्चा भी चाहती है। दूसरी तरफ जो है विपक्ष की तरफ से अर्जेंटमेंट नोटिस दिया जा रहा है कि सारे काम को जो है स्थगित करके सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर चर्चा हो जाए। लेकिन अर्जेंटमेंट नोटिस यानी स्थगन प्रस्ताव माना जाए ना माना जाए, ये लोकसभा स्पीकर के और जो है राज्यसभा के चेयरमैन के विवेक पर जो है वो विवेक पर है कि वो इसे स्वीकार करें या ना करें। ऐसा बहुत कम होता है कि अर्जेंटमेंट नोटिस को जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। संसदीय परंपराओं में देखें तो ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जब अर्जेंटमेंट नोटिस को जो है वो स्वीकार किया गया हो। तो ये सारी प्रक्रिया है, सदन की कार्रवाई चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। लेकिन विपक्ष के साथ बैक चैनल बातचीत का भी क्रम जो है वो सरकार जारी रख रही है। और इसीलिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी चीज पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं सदन के अंदर, लेकिन नियमों के तहत हो। आपको याद होगा नेहा, जब SIR की बात हुई थी, वोट चोरी की बात हुई थी, तो एक पूरा सेशन जो है सिर्फ इसी चीज पर जो है वो धुल गया था, हंगामे की भेंट चढ़ गया था कि चर्चा होनी चाहिए। सरकार ये कहती थी कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर जो है कार्यप्रणाली पर आप चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष कहता था कि करनी चाहिए। तब एक बीच का रास्ता आया, सरकार ने ये कहा कि आप इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तब कानून मंत्रालय जो है जवाब दे सकता है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कोई भी मंत्रालय जो है वो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसी तरीके से किस नियम के तहत चर्चा हो ना हो, ये सारी चीजें जो है वो एक बैक चैनल चैनल के थ्रू जो है वो बातचीत होती है। और सरकार की ये कोशिश होगी कि बैक चैनल रूट से जो है सभी विपक्षी दलों से बातचीत।
0: आप हमारे साथ बने रहे, तो आइए सुन लेते हैं कि संसद जब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा।
4: हमारी सरकार NDA की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
2: मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए बीजेपी के अध्यक्ष खुद ये बात कह रहे हैं कि हम हर चर्चा में जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो छात्रों के भविष्य का विषय हो, नीट पेपर लीक मामला हो, हर सवाल का जवाब हम देंगे। लेकिन नियम के तहत, जिस नियम की आप बात कह रहे थे उसकी भी वो बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से रवैया उनका रहा है वो ठीक नहीं है।
3: देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी तरीके से जो है अपने अपने राजनीतिक स्कोर को करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि चर्चा हो जाए, ये भी कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही चर्चा की बात आती है नियम, तो नियम तय होंगे उसके बाद ही चर्चा हो सकती है, क्योंकि संसदीय परंपराओं के तहत जो है आप अगर चर्चा करेंगे तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कर सकते हैं, आप 184 पे चर्चा कर सकते हैं जिसमें डिवीजन हो सकता है, 193 पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये तीन फोरम है जहां पे चर्चा होती है। अगर कोई संसदीय बिल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं लाया जा रहा है, तो चर्चा जो है इन तीन फोरम पे होती है। इन तीन फोरम में किस पर चर्चा हो ये BSE के अंदर तय हो सकता है, या संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठकर ये चर्चा हो जाए विपक्ष की कि हम ये चाहते हैं, और ऐसा पहले होता रहा है। आप 2G स्पेक्ट्रम का इशू देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए 1.5 सेशन जो है पार्लियामेंट का हंगामे की भेंट चढ़ा था 2011 में, लेकिन JPC बनी, संसद के अंदर चर्चा हुई, किस नियम के तहत चर्चा हो तब भी इसको लेकर जो है हमेशा बवाल होता रहा। अन्ना हजारे जब लोकायुक्त बिल पर बैठे तब चर्चा को लेकर जो है तमाम जो है हंगामा होता था, संसद की कार्रवाई नहीं चलती थी, लेकिन चर्चा हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष पीछे बैक चैनल से बात की और नियमों के तहत चर्चा हुई। किस नियम
0: इस वक्त प्रियंका गांधी बोल रही है, आइए इस वक्त संबित पात्रा बोल रहे हैं बीजेपी के, आइए सुन लेते हैं।
5: सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार दो तीन दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए, सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी।
2: तो समित पात्रा को सुन रहे थे आप, उनका ये कहना है कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। प्रियंका गांधी इस मसले पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए।
6: देखिए ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।

0: बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें।
1: तो विपक्ष मुखर है, आइए सुन लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं।
2: संसद भवन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ रामगोपाल यादव है सर। आप प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है कि उनके लिए प्रायोरिटी युवा है और फास्ट फोर्स इस्टेब्लिश करने वाली है।
3: युवा प्रायोरिटी होती है, कोई आंदोलन नहीं होगा। पार्लियामेंट में
2: किस ऑर्डर में हाउस चलेगा, किस ऑर्डर में हाउस
1: चलेगा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या कांग्रेस कंफ्यूज है किसी तरीके से, क्योंकि कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी प्रमुख मांग बताया, उसके बाद स्टूडेंट्स पर कार्रवाई ना की जाए ये द्वितीय तृतीय अलग अलग तरीके से मांगों में पेश किया गया। अब जब ये कहा जा रहा है कि नियम के तहत चर्चा कर लीजिए, तो क्या वो अपनी मांगे पहले मनवाएंगे फिर कांग्रेस जो है चर्चा के लिए तैयार होगी, क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
4: देखिए, मैंने वही कहा कि जो मांग है वो आप चर्चा में रखेंगे, सरकार उसे स्वीकार करे या ना करे, और आपकी जो भी मांगे हैं विपक्ष की चर्चा के दौरान उसके ऊपर स्पष्ट जवाब जो है वो संबंधित विभाग के मंत्री देंगे, और कोई और सत्ता पक्ष की तरफ से जो है मंत्री वो उसमें इंटरवीन कर सकते हैं या डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो आपको चर्चा के अंदर रखनी होगी। लेकिन फिर वही सवाल आता है ना, नया चर्चा होनी चाहिए, दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। अगर बातचीत हो जाएगी तो चर्चा हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है। वो इसीलिए आप, मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा स्पीकर ने कल विपक्ष कई अलग अलग फ्लोर लीडर्स से बात की, उनसे बातचीत की कि आप चर्चा चाहते हैं, बताइए किस नियम के तहत। तो इसको लेकर जब फाइनलाइज होगा उसके बाद ही चर्चा हो पाएगी, उससे पहले चर्चा नहीं हो सकती।
1: अब देखना यह है कि इस वक्त हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने रविशंकर प्रसाद से बात की, आइए सुन लेते हैं।
5: बार बार ये कहना है कि सरकार इस समय डिस्कशन नहीं चाह रही है, लेकिन सरकार ने बोला है जितने घंटे आप चाहते हैं उतने घंटे डिस्कशन होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं। रवि जी, आमना सामना हुआ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का।
6: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और पूरे सरकार के सचिवों को कहा है कि नौजवानों की समस्या के लिए सारी कार्रवाई करें। ये संसद में बहस नहीं करते, माननीय लोकसभा के स्पीकर ने कहा बहस को तैयार है, सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते। हम जवाब देने को तैयार है, वो भाग जाते हैं और कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये मतलब क्या है इसका? तो इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, बहस करेंगे नहीं और खाली भागेंगे, ये बहुत ही गलत है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं।
5: हम भर्त्सना करते हैं, और जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो कोशिश कर रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बात सामने ना रख सके, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक मौका आपको मिला है, आप भी आइए बातचीत करिए, जितने घंटे की आप बात करना चाहते हैं उतने घंटे की बातचीत करिए। आज तक के लिए ऐश्वर्या पालीवाल।
1: रुकेंगे आज इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
8: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop star.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंड बड़े आराम से,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया और उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

आमने सामने सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा भरोसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान। राहुल गांधी का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम।

0: अस्पताल में सोना मांग चुका वीडियो मैसेज, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग, एफआईआर ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा देंगे जवाब।
1: पूर्व से पश्चिम तक मानसून की तबाही, गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से घरों में पानी घुसा, महाराष्ट्र के कई हिस्से भी जलमग्न, असम में एक दिन में 10 मौत।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भर।
3: उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको संसद परिसर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इस वक्त विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। कल भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मुख्य तौर पर यहां पर आप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन सभी को देख सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा प्रमुख तौर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी इसी तरह का प्रदर्शन काले कपड़ों में बुलाया गया था और आज एक बार फिर से संसद परिसर में ये प्रदर्शन चल रहा है।
1: तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीधी संसद के परिसर से, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है विपक्षी पार्टियों का। बीच बीच में खबरें ऐसी भी आई कि समाजवादी पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं दूसरे खेमों में भी नाराजगी है, लेकिन एक बार फिर से संसद में अब ये तस्वीर विपक्षी एकता की, जब दोनों बड़े नेता साथ खड़े नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आपको बता दें कि सवाल यही है कि कब तक संसद के अंदर चर्चा नहीं हो पाएगी, कब तक ये विरोध प्रदर्शन ही जारी रहेंगे, कब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही जो विरोध प्रदर्शन करते आए हैं ये कब तक चलता रहेगा। और आज जब कार्रवाई शुरू हुई दोनों सदनों में तो उनके स्थगित होने के बाद अब ये तस्वीरें आ रही हैं कि सांसद बाहर आ गए हैं, राज्यसभा सांसद हों या लोकसभा सांसद, विपक्ष के साथ खड़े हैं और एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी है, बैनर पोस्टर के साथ वो
4: कार चलते देख रहे हैं,
0: शिक्षा मंत्री के खिलाफ
4: और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं, क्या है अकाउंटेबिलिटी, जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी।
1: रहे थे अखिलेश यादव को जो बोलने तो आए थे अपने विरोध प्रदर्शन पर और नीट की परीक्षा के बारे में और जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में, लेकिन वहां अकाउंटेबिलिटी की नई परिभाषा उन्होंने दे दी कि सत्ता पक्ष के लिए या सरकार के लिए अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब।
5: और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जन प्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात।
6: प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट
5: किसके लिए 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं, आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे जो दाई है जो इसका रिस्पॉन्सिबल है वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
0: न संसद में गतिरोध खत्म हो रहा है, ना ही सड़क पर गतिरोध खत्म हो रहा है। जंतर मंतर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। इधर संसद में विपक्षी दल लड़ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है।
1: सरकार ने चर्चा का आश्वासन दिया, चर्चा के लिए तैयार भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार नियमों का हवाला दे रही है तो विपक्ष कह रहा है पहले शिक्षा मंत्री को हटाओ फिर बात करने आओ।
7: चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
8: ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है।
9: मिनिस्टर शुड बी रिसाइड।
10: शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
11: हल्ला हंगामा शोर शराबा ठप। मॉनसून सत्र में रोज संसद बैठती है, रोज माननीय आते हैं और फिर रोज ये होता है।
12: और कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है।
11: मॉनसून सत्र का चौथा दिन है लेकिन संसद में सिर्फ हंगामा है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, सरकार के पास एजेंडा अपना है। दोनों चाहते हैं कि संसद चले लेकिन चल नहीं पा रही। अभी जो मुद्दा गरमाया है वो नीट पेपर लीक और निहत्ते छात्रों पर लाठीचार्ज का है। मुद्दा उन बच्चियों का है जिनके कपड़े फाड़े गए।
13: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
11: अब विपक्ष चाहता है कि सरकार सदन में चर्चा करे। सरकार ने कहा कर लेते हैं,
14: सरकार तैयार है चर्चा के।
11: स्पीकर ने कहा आओ बैठते हैं, चर्चा की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष ने कहा ठहरिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लाइए।
15: विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए और यूपी में 20 से ज्यादा हुए, तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित।
11: बस यहीं पर आकर सरकार बिफर जाती है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू कहते हैं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सबने एक साथ विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आरोप ये लगाया कि विपक्षी खासतौर से राहुल गांधी लगातार अपनी मांग बदल रहे हैं।
16: सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो ये सरकार चाहती है।
11: जब राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसद पीएम आवास का घेराव करने गए तो जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार का पक्ष लेकर वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी से बात की, नीट पेपर लीक पर संवाद में चर्चा का आश्वासन दिए, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई तो बात बिगड़ गई।
17: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
11: राज्यसभा में खड़गे, लोकसभा में वेणुगोपाल और अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं राहुल गांधी नीट पेपर लीक के मामले को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार के सामने अब 3 मांगे रखी हैं।
18: ये तो ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक हुए।
19: धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he's a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background.
11: राहुल गांधी ने साफ किया कि अपनी बातों से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीएम मोदी की माफी और छात्रों को निर्दयता से पीटने वालों पर कार्रवाई और फिर संसद में चर्चा। विपक्ष के रवैये पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं, संसद की बजाय सड़क पर समाधान चाहते हैं।
20: ये संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है।
11: कुल मिलाकर बात ये कि चर्चा सभी चाहते हैं लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। आज तक ब्यूरो।
0: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और साथ ही मौसमी सिंह जुड़ गए हैं। लेकिन हिमांशु, सवाल यही, और राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज नेता यही बार बार कह रहे हैं कि देखिए सड़क से समाधान तो नहीं निकलने वाला, आप लाख प्रदर्शन कर लीजिए, आप मांगे रख लीजिए, आप बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, समाधान तो संसद के भीतर ही निकलेगा, सवाल जवाब से ही निकलेगा और नियमावली के तहत निकलेगा।
21: वही नियमावली जो है वो तय कर रही है ना नेहा, जिसका जिक्र मैं पहले कह रहा था। तीन तरीके की चर्चा है, शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा, रूल 184 के तहत चर्चा और रूल 193 के तहत चर्चा लोकसभा में हो सकती है। अब किस नियम के तहत चर्चा होगी इस पर सवाल है। बीएससी कब बुलाई जाएगी? अमूमन जो होता है अगले हफ्ते के लिए जो बीएससी होती है वो वर्तमान हफ्ते में ही जो है सप्ताह के अंत में बुला ली जाती है। आज या कल में बीएससी बुलाई जाएगी तब तय हो सकता है, या स्पीकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर ये तय कर लें कि किस नियम के तहत चर्चा होगी। ये सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं और इस पर सरकार भी आगे आएगी और विपक्ष को भी आगे आना होगा, उसके बिना जो है वो बातचीत नहीं हो सकती है, ये तय है। किस नियम के तहत चर्चा होगी इसको तय करने के लिए दोनों ही पक्षों को जो है कुछ अपनी चीजें छोड़कर आगे आना होगा, क्योंकि अगर संसद चलाना है, संसद में चर्चा हो, दोनों पक्ष ये चाहते हैं, तो किस नियम के तहत चर्चा हो इसको तय करने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ बैठकर तय करना पड़ेगा कि नियम 184 पे चर्चा हो जाए या 193 पे चर्चा हो या राज्यसभा में 267 पे चर्चा हो या 167 पे हो।
1: जी हिमांशु और मौसमी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तनातनी है। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं सरकार की ओर से अब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए हैं।
0: तो प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा दिलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो वहीं राहुल गांधी ने पलटकर जवाब दे दिया है।
16: नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है,
22: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है,
23: सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए।
20: संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे,
24: सदन में बहस के लिए तैयार है।
11: सरकार की ओर से अब तक किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा खुलकर कह चुके हैं कि आइए छात्रों के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आ गए हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने साफ किया कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजकर जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा। इधर पीएम का पोस्ट आया, उधर राहुल गांधी ने भी उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल गांधी ने अपनी मांगें फिर दोहराई कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। विपक्ष ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं, मुद्दे पर झुकेंगे नहीं। विपक्ष की मांग सिर्फ पेपर लीक पर चर्चा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के निष्पक्ष चर्चा हो ही नहीं सकती।
2: और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
11: फिलहाल सरकार इस मामले को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस बार सरकार को हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: तो इस सबके बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है, क्या कह रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष, आइए सुनते हैं।
3: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको, फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे, आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे। भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
5: Where would we discuss? This is the right and appropriate forum where we must chalk out the future course of action, especially for the future of the students. I would like to appeal the opposition party, don't make any kind of conditions to derail the discussion. अभी तो ऐसा लगने लग गया कि वो बहाना ढूंढ ढूंढ के चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, हम फिर से अपील कर रहे हैं, हम तुरंत चर्चा शुरू करें। डिस्कशन का तिथि, समय कितना लंबा हो, ये जैसे ऑपोजिशन कहेंगे हम रेडी है, लेकिन कंडीशन लगा के चर्चा मत कीजिए, क्योंकि कंडीशन लगाने से तो आपका एक्सपोज हो जाता है कि आप चर्चा नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
5: बातचीत कर रहे हैं, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ।
6: सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैसेज किया है, क्लियर मैसेज दिया है, उसके बाद कल जेपी नड्डा ने, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, लेकिन लगातार ये जो मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे इस तरीके से, नहीं तो
5: मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा तरफ से जितना हम ऑफर करना था, हम खुले दिल के साथ, खुले मन से हमने ऑफर किए हैं। अब कोई बहाना किए बगैर तुरंत नीट एग्जाम पेपर लीक पे हम डिस्कशन शुरू करें, ये हमारा मानना है। पूरा एनडीए के साथियों का भी दबाव आ रहा है कि डिस्कशन शुरू करें, तो ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन से नहीं भागना चाहिए, मेरा अनुरोध है।
6: तो सर, अभी आप लोग जाएंगे, अपील करेंगे दोबारा?
5: मैं तो कर ही रहा हूँ।
0: और पिछले दो दिन से दिल्ली के सेंट्रल इलाके के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया है, उसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द ये मेट्रो स्टेशन खोले जाएं। मेट्रो स्टेशन बंद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंच आवर तक इन्हें नहीं खोला तो हम दखल देंगे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, पेटिशन आई थी या स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने?
25: इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे मेंशन किया था और चीफ जस्टिस के आगे मेंशन किया। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इस पे भी फिलहाल दखल नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये जरूर कहा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कि अगर लंच आवर तक, जब विकास सिंह ने ये बताया कि किस तरह से वकीलों को और लिटिगेंट्स को परेशानी है, सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह को, यहां पर मेट्रो के आवागमन को सुनिश्चित किया जाए ताकि लिटिगेंट्स टाइम से पहुंच सके, क्योंकि ये उनके लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट आखिरी अपीलियट कोर्ट है, यहां से अगर उनको राहत नहीं मिली और उनके लिए मुश्किल हुई तो उसके उनके लिए कोई जगह नहीं मिल बचेगी, कहां जाकर अपील करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंच तक हम देखते हैं, लंच तक अगर नहीं खुलता है, खुलते हैं मेट्रो स्टेशन और सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन, तो इस मामले में सुनवाई करेंगे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। यानी कुल मिलाकर दो दिन से जिस तरह लोगों को परेशानी हो रही है, उसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट 1 बजे तक इसका इंतजार करेगा। अगर कोई आदेश आ गया खोलने का तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देकर निर्देश पारित करेगा।
1: जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजय कि ये जो आदेश आया है कि लंच तक इसको खोला जाए, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इलाके वाले स्टेशनों के लिए कहा गया या 16 के 16 स्टेशन पर ये आदेश है?
25: फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद करने से वकीलों को और लिटिगेंट्स यानी फरियादियों को बहुत मुश्किल आ रही है, लिहाजा इसे खोलने का आदेश दिया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट एक बजे तय करेगा, अभी तक अप्लीकेशन नहीं आई है, सिर्फ मेंशन किया गया है वकीलों की और लिटिगेंट्स की परेशानियों को लेकर, और इस पर चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया है कि वो एक बजे तक देखेंगे। लंच आवर तक अगर गेट नहीं खोले जाते हैं, मेट्रो स्टेशन नहीं खोला जाता है, तो इस मामले में आदेश पारित करेंगे। यानी स्पष्ट है कि अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट और इसके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए ही ये याचिका थी, ये अपील थी।
0: और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अगला आदेश देगा। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बंद करने का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लंच ब्रेक तक स्टेशन नहीं खुला तो दखल देंगे, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, क्योंकि आम यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है।
1: तो चलिए आपको बताते हैं कि जब मेट्रो स्टेशन बंद हो गए तो दिल्ली में लोगों को क्या दिक्कतें आई। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
7: हम पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर बंद है, जहां पर ये देखिए गेट अब बंद किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये गेट अगर आप देखेंगे तो इस गेट को अब यहाँ पर बंद किया जा रहा है। दरअसल 16 मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब है, उनके लिए ये आदेश आया था कि वहां के एंट्री एग्जिट सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो 7:30 बज गए हैं, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद किया कर दिया गया है। अगर हम पटेल चौक के सामने का हिस्सा दिखाएं तो ये सामने वाला जो रोड है, ये देखेंगे संसद मार्ग है, जहां पर सबसे पहले डीसीपी ऑफिस, फिर आगे टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए आप सीधे जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, और इधर से भी आप अगर जाते हैं तो चंद कदम की दूरी पर जंतर मंतर मौजूद है। तो वो तमाम मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब है या नई दिल्ली में है, जैसे राजीव चौक का इलाका हो, मंडी हाउस का इलाका हो, इन सभी जगह पर एंट्री एग्जिट बंद की गई है। लेकिन आईटीओ, मंडी हाउस और राजीव चौक, यहां पर इंटरचेंज की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी।
0: रुकेंगे आज ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
9: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
12: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया।
4: मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है।
3: करीब 2 घंटे तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को हरी झंडी दे दी।
5: आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप तो सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस दे दे।
6: अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी।
3: कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल सरकार ने जबरन लागू किया है। कांग्रेस इस पर अभी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद इसे चैलेंज करने की तैयारी है।
7: भाजपा की सरकार की सोची वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि यह लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो।
4: हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहते हैं? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है।
3: उधर कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
8: यूसीसी बिल विधानसभा में जहां एक तरफ पास हो गया, तो वहीं यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज धरने पे बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है भोपाल के शाहजहानी पार्क में।
9: बिल्कुल गलत बिल लेकर पास किया है, इससे इसके हम खिलाफ हैं।
10: हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि मोहन सरकार की कानून के तहत।
3: देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन पर संसद में जबरदस्त हंगामा। पहले मकर द्वार पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा भरोसा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे ना जाने का ऐलान किया। राहुल का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी बवाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचे तो मार्शल्स को आना पड़ा। अस्पताल में सोरेन वांगचुक का वीडियो संदेश, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन, छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा देंगे जवाब। और पूरब से पश्चिम तक मानसून की तबाही, गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से घरों पर पानी पहुंचा, महाराष्ट्र के कई हिस्से भी जलमग्न, असम में एक दिन में 10 की मौत।

0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की ओर।
1: क्या है हमको आप पर्सनल मिलकर बता सकते हैं? लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का
2: चर्चा करेंगे। हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार
3: हैं।
4: की बात करने लगे
3: हमने। हाउस इज अजोन्ड, वी विल मीट अगेन बाय 2 PM टुडे।
1: हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, एक दिन दो दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबके सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज NDA के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार पे पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू करें।
5: धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे है, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अजय तंता जी।
6: महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ।
5: आइटम नंबर 3, महासचिव जी।
7: To report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment.
0: कार्रवाई तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन लोकसभा में अभी भी हंगामा लगातार जारी है। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि हम विपक्ष से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप तय कीजिए कि कब चर्चा करनी है, कैसे चर्चा करनी है। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है, दोनों सदनों में। राज्यसभा में आपने देखा था जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा राज्यसभा की कार्रवाई को। लोकसभा में अभी भी हंगामा हो रहा है। दिलीप सैकिया लगातार कह रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बात करने को तैयार है तो बात करिए, अच्छी बात है, बात होनी भी चाहिए, लेकिन विपक्ष की जो कंडीशन है नियम 267 के तहत, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी, सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। यहाँ पर पेश फंसा हुआ है
5: मेहताब जी।
0: किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं,
4: जो है
0: आप बातचीत कीजिए, लेकिन जब आप ऐसे हंगामा करते हैं तो उससे गलत संदेश जाता है। ये किरण रिजिजू ने कहा कि आप इस तरह से हंगामा करते हैं, एक तरफ आप बात करने की आप बात कहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर बात कीजिए, लेकिन जब छात्रों के मुद्दे पर सरकार बात करने को तैयार है, पक्ष बात करने को तैयार है, तब आप नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, बिल तक आ जाते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है और ये छात्रों के हित में नहीं है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं विपक्ष से, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया लोकसभा में, लेकिन अभी भी हंगामा जारी है, अभी भी हंगामा जारी है। जबकि दिलीप सैकिया जो कि इस वक्त चेयर पर है, उनकी तरफ से कहा गया कि शांति बनाए रखें, लेकिन नहीं। पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है, हंगामा होता है, स्थगित हो जाती है, फिर शुरू होती है, फिर हंगामा होता है, फिर स्थगित हो जाती है, फिर शुरू होती है, फिर हंगामा, फिर स्थगित। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों का उज्जवल भविष्य सरकार का संकल्प है, सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे छात्र। प्रधानमंत्री जी के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आगे लिखते हैं कि पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया था। तो देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। पीएम मोदी की तरफ से आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि पेपर लीक के जो मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाए जाएंगे। तो वहीं पीएम
8: लीक मामले पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बताया है कि नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
0: तो पीएम मोदी के पोस्ट पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की सांसद है प्रियंका गांधी और वो कह रही है कि छात्रों की मांग कुछ और है, पीएम समाधान कुछ और दे रहे हैं। अगर सरकार को भरोसा जगाना है तो मंत्री का इस्तीफा लेना होगा।
9: देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
0: तो संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद तो मानसून सत्र शुरू होने के बाद ही मकर द्वार पर रोजाना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों का प्रदर्शन संसद की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के रुख के खिलाफ था, जो विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल सरकार ने साफ किया था कि सरकार नियम के तहत देश हित के हर विषय पर चर्चा को तैयार है, आज भी रिजिजू ने कहा, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इसी के विरोध में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया।
10: प्रदर्शन लगातार जारी है और एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक के सांसद यहां मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए के सांसद भी यहां पर आ गए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है। जितने भी तख्तियां हैं उन सभी को लेकर यहां पर सांसद पहुंचे हैं और फिलहाल तस्वीरें कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती हैं कि हाथ में जो तख्तियां थी, जो कागज लेके आए थे सांसद, उसको फिलहाल यहां पर फाड़ कर फेंका भी गया है। तो एक ये भी तरीका है जो जिसके माध्यम से जो सांसद है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। देखिए कैसे जो नारे जिनका कागजों पर लिख के लाए थे वो यहाँ पर फाड़ कर फेंके भी गए हैं। तो लगातार यहाँ पर स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसद इस वक्त यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और अब देखिए लगातार कैसे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। आधे घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ पर अब सांसद संसद भवन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे स्थिति कहीं ना कहीं अब ठीक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सुरक्षा बल है वो अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और एक सांसद अभी भी जो है वो बैठे हैं, उनके हाथ में तख्ती है। विपक्ष के सांसद हैं और स्थिति और मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
0: वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्र, युवा और नीट के मसले पर सरकार चर्चा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है।
4: हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा।
0: तो एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना है और इन सब के बीच तीसरा मोर्चा गुरुग्राम में, जहां मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं। एक वीडियो संदेश जारी कर सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के लिए सरकार के सामने शर्तें रखी। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर सरकार बच्चों पर ताकत या बल प्रयोग ना करने, छात्रों से FIR वापस लेने का आश्वासन दे तो वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह को भी चिट्ठी भेजी।
11: एक तरफ समूचा विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने सरकार के लिए एक वीडियो मैसेज जारी कर साफ कहा है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उनको ये भरोसा दे कि तमाम छात्रों के खिलाफ जो हिंसा हुई, जो मुकदमे हुए, उसमें सरकार एक्शन लेगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे और साथ ही साथ संसद के अंदर छात्रों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी तो वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। कल भी एक विपक्षी दलों का डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिला, सरकार की तरफ से भी दो मंत्री उनसे मिलने के लिए गए और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़े, लेकिन अब उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को छोड़ देना जाहिर है सरकार के लिए एक राहत की बात है। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना संसद चलाना बहुत मुश्किल होगा। संसद के अंदर सबसे पहले शर्त यह है विपक्ष की कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो। प्रदीप,
0: तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक की चिट्ठी पर क्या कहा, उनका बयान सुनाते हैं आपको।
12: के बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करेंगे।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद हैं और इन मेट्रो से एंट्री और एग्जिट यानी आना जाना बंद है, जबकि मंडी हाउस, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रहेगी।
13: DMRC ने दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। आज सुबह 7:30 बजे से ये 16 मेट्रो स्टेशन जो लुटियन जोन के आसपास हैं, जहां से आप जंतर मंतर तक किसी तरह से पहुंच सकते हैं, उन तमाम मेट्रो स्टेशन के दरवाजों पर ताला जड़ दिया गया। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस जैसे मेट्रो स्टेशन में इंटरचेंज की व्यवस्था जारी रखी गई, लेकिन आप इन मेट्रो स्टेशन के दरवाजों के थ्रू ना तो अंदर जा सकते हैं मेट्रो के, ना ही मेट्रो से बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ा गया है, क्योंकि ये कोशिश कर रही है सिस्टम की कहीं ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर तक ना पहुंचे। लेकिन इसकी वजह से कम्यूटर्स, ऑफिस गोअर्स और यहां तक कि स्कूल के छात्रों को आज सुबह बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर वो लोग जो या तो गुरुग्राम या नोएडा की तरफ बढ़ रहे थे या फिर मंडी हाउस जैसे है मेट्रो स्टेशन से उन्हें बाहर निकलकर अपने दफ्तर या स्कूल की तरफ जाना था, उन लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा।
0: तो वहीं छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में पुलिस को कौन निशाना बना रहा है? कल रात जंतर मंतर के पास फिर से प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। अब उस झड़प की तस्वीरें सामने आई है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा।
14: 22 जुलाई देर शाम नई दिल्ली इलाके में एक बार फिर पुलिस, आरएएफ के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक रोजाना की तरह पुलिस और आरएएफ के जवान

0: रहा था वजू खाने में पानी की सप्लाई के लिए, तो उसमें उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए, चूंकि ये धार्मिक मामला है और इस धार्मिक मामले में उन्हें अधिकार है अपने देवता की पूजा करने का, लिहाजा उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। और हम बता दें कि इससे पहले कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये एक और नई अर्जी दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, और साथ ही ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ा दी है, चूंकि जैसे ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई तो उन्होंने इसकी याचिका 10 अगस्त को सुनवाई की।
1: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट अयोध्या से। अयोध्या में आज संतों का महाकुंभ हो रहा है। दोपहर 3 बजे संत समाज की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसे हाल के घटनाक्रमों के बीच धार्मिक और संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में देश भर से करीब 250 से 300 संत और महंत के शामिल होने की संभावना है।

0: कल अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक के बाद आज फिर संत समाज की एक बड़ी बैठक है। दोपहर 3 बजे से होने वाली ये बैठक छोटी छावनी में होगी, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास करने वाले हैं। ये बैठक निर्णायक होने वाली है, संगठनात्मक तौर पर भी बेहद अहम होने वाली है। इस बैठक में चंदा चोरी के बाद अयोध्या का जो माहौल है उस पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर की गरिमा को जो ठेस पहुंची है, जो राम भक्तों का विश्वास टूटा है, उसको कैसे वापस लाया जाए, उसे लेकर भी संत समाज आज चर्चा करेगा और कुछ निर्णायक निर्णय भी ले सकता है। जानकारी के मुताबिक लगभग 250 से 300 संत आज अयोध्या इस बैठक को लेकर पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय को लेकर भी संत समाज आज मुखरता से अपनी बात रख सकता है, या यूं कहें उनके समर्थन में आ सकता है, क्योंकि संत समाज को लगता है कि चंपत राय निर्दोष हैं। हालांकि SIT की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद निर्णय होना तय है। लेकिन आज की बैठक अयोध्या के संगठनात्मक ढांचे को लेकर बेहद अहम है, जिसमें RSS और विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी पे पहुंचने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर क्या कुछ निर्णय होता है।
1: 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे मूसलाधार आफत की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी उफान पर है और ये बता रहे हैं क्या हालात है हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट।
2: जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो चिनाब नदी है इसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जल प्रवाह भी काफी तीव्र है और जो चिनाब नदी है इस समय अलर्ट मार्क से ऊपर बह रही है। 32 फीट जो है वो अलर्ट मार्क है और 35 फीट जो है वो खतरे का निशान है और फिलहाल जो नदी है वो खतरे के निशान के आसपास बह रही है, अलर्ट मार्क को पार कर दिया है। इसीलिए यहां पर प्रशासन ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं लोगों को कि वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर हो रही है। इस समय आप देखिए कि यहाँ जल प्रवाह कितना तीव्र है, जल प्रवाह कितना तेज है और जो आसपास के यहाँ मंदिर है, हम इस समय जिया पोता घाट पर जो है स्थित है, इसी के आसपास हम यहां खड़े हैं और जियापोता घाट जो है, यहां जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी चिनाब नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और मंदिर के अंदर भी पानी आ चुका है। और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर जो है बाढ़ आ गई है। राजौरी और पुंछ जिले जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ और बारिश के कारण।
1: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: At DSW, we ask the important questions like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust.

0: Just the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों।
5: पापा।
6: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
8: ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
13: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
12: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
14: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
15: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with
3: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे। सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 2036 तक 3 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा।
6: स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है इन द वर्ल्ड। सी देयर आर ओनली टू थिंग्स, प्राइस एंड वैल्यू। बफेट साहब ने एक सबसे बड़ी चीज सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड। एक का हजार दिखे तो भी लेवरेज लेने का नहीं, बाजार आपको डराएगा रोज आके, एक टका नीचे दो टका नीचे, तू आ ना भाई, हमारा तो पार्टी चालू रहेगा। हम वही के वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वही से हैं अभी भी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

संसद में जमकर हुआ संग्राम। संसद के बाहर मकर द्वार पर एनडीए सांसदों का भी प्रदर्शन। आमने सामने हुआ पक्ष और विपक्ष। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा भरोसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे ना जाने का ऐलान। राहुल का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल। कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा। वेल में पहुंचने पर मार्शल्स को आना पड़ा। अस्पताल में सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश, कहा सरकार भरोसा दे तो आज ही खत्म कर दूंगा अनशन। छात्रों पर बल प्रयोग और एफआईआर ना करने की रखी शर्त, जेपी नड्डा देंगे जवाब। और पूरब से पश्चिम तक मानसून की तबाही। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से घरों तक पानी। महाराष्ट्र के कई हिस्से भी जलमग्न। असम में एक दिन में 10 मौत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब आपके लिए चलते हैं यूपी एक्सप्रेस वे पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कई फैसले, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन, भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, 5 संतों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला, सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई चढ़ावा गिनती, कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद आरएसएस समर्थित संतों की बैठक, भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन, श्री राम मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी, संतों की बैठक में बनेगी रूपरेखा। श्री राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था के लिए 9 सदस्यीय संत समिति गठित, पूजा पद्धति, पर्व उत्सव और वैदिक रामानंदी परंपरा से जुड़े फैसले अब समिति लेगी। अयोध्या श्री राम मंदिर में बड़ा बदलाव, दान राशि की गिनती का जिम्मा अब SBI कर्मचारियों के पास, मंदिर में तैनात सभी 36 डोनेशन काउंटिंग कर्मियों को बदला गया। जनवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दायर की नई याचिका, सावन में सीलबंद एरिया में कथित शिवलिंग की पूजा और दर्शन और जलाभिषेक की अनुमति मांगी। 2027 मिशन में जुटी बीजेपी, यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, 180,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से मिले मुख्यमंत्री, अधिकारियों को दिया समाधान के निर्देश। सीएम योगी बोले, विपक्ष को यह बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट खसोट और अराजकता का माहौल था। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आज यूपी में प्रदर्शन, लखनऊ समेत कई जिलों में होगा विरोध, सपा नेताओं पर जाति सूचक टिप्पणी के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। गाजीपुर में आर्म्स लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा, सपा सांसद अफजाल अंसारी समेत 3 पर केस, 145 लाइसेंसों के सत्यापन में अनियमितताएं मिलने की जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर, यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव, करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपित मोहम्मद वारिस पर रासुका, SIT रिपोर्ट पेश होने से पहले NSA के तहत कार्रवाई, पहले भी 2 आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई। पेपर लीग आंदोलन पर मायावती की अपील, सरकार और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान की मांग, कहा आंदोलन का राजनीतिकरण टकराव बढ़ा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं आगे आएं। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर सपा का डेलीगेशन आज रामपुर में, छात्रों का धरना जारी, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में DM को सौंपा जाएगा ज्ञापन। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पर सपा का बड़ा कार्यक्रम आज, लखनऊ में पूजा शुक्ला के नेतृत्व में काशीराम स्थल पर कार्यकर्ता जुटेंगे। सहारनपुर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर दानिश के पैर में लगी गोली, चोरी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, 32,000 रुपए, तमंचा, बाइक बरामद। झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से GRP सिपाही की मौत, पत्नी ने साथी पर लगाया गंभीर आरोप, पत्नी का दावा साथी सिपाही ने धक्का दिया, रेलवे SP से लगाई न्याय की गुहार।

0: पेपर लीक मुद्दे पर चल रही राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पेपर लीक मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान आता है। सोशल मीडिया पर यह बड़ा बयान आया। मायावती ने सड़क पर हिंसा और संसद में टकराव को अनुचित करार दिया। मायावती ने कहा है कि पेपर लीक और चढ़ावा चोरी हर स्तर पर भ्रष्टाचार का नतीजा है। मायावती ने सरकार और अदालत से आगे आकर समाधान की अपील की। मायावती ने मामले के राजनीतिकरण को गलत बताते हुए सरकार से जल्द आंदोलनकारियों से बात कर समाधान तलाशने की अपील की है। वहीं आज एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ संत समाज की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ये बैठक करने वाले हैं। इसमें देश भर से करीब 250 से 300 संतों और महंतों के शामिल होने की संभावना है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह, प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, प्रांत प्रचारक प्रमुख गंगा सिंह और सह प्रांत प्रचारक मनोज कांत पहले से अयोध्या में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट की बनाई हुई धार्मिक समिति में संतों की भूमिका और ट्रस्ट के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। खबर यह भी है कि कुछ संत राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के समर्थन में भी अपनी राय सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। अब देखिए आज अयोध्या में जो बैठक हो रही है उससे पहले ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक कल यानी 22 जुलाई को हो चुकी है। कल यह बैठक क्यों बुलाई गई थी, बैठक में क्या फैसले हुए और किन मुद्दों पर फैसले नहीं हो पाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणिराम दास छावनी से जब ट्रस्टियों का काफिला निकला तो उससे पहले खबर आ चुकी थी कि ट्रस्ट के महासचिव और 3 खाली पदों पर नए सदस्यों के चयन और सीईओ की नियुक्ति जैसे बड़े फैसले फिलहाल टाल दिए गए हैं। 9 ट्रस्टियों की साक्षात मौजूदगी में हुई बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला ये कि नई धार्मिक समिति बनी है जो पूजा पाठ का ख्याल रखेगी। दूसरा ये कि चढ़ावा गिनती के लिए इंडियन बैंक के AGM और स्वर्ण जयंती फाइनेंस के प्रतिनिधि को गिनती में मौजूद रखने का फैसला हुआ। तीसरा, दान के सोने चांदी के चढ़ावे की शुद्धता मात्रा जांचने के लिए RBI की संस्था मिंट से करार को मंजूरी दी गई और स्टेट बैंक वाले करार की समीक्षा का फैसला हुआ। चौथे, वेबसाइट पर मासिक आय, दान, ब्याज का पूरा ब्यौरा देने का फैसला हुआ है। और 5वें, मीडिया से संवाद के लिए आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का फैसला हुआ।
2: निर्णयों की अगर आप बात कर लें तो अब एक प्रवक्ता रहेगा जो ट्रस्ट से जुड़ी सारी ही बातें बताएगा, यानी जिससे कि कोई अफवाह ना फैले कि ट्रस्ट में क्या हो रहा है, मंदिर परिसर में क्या होगा, उसको लेकर एक प्रवक्ता आएगा। इसके अलावा ट्रस्ट में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके कई लोगों का नाम सामने आया, उनको लेकर भी नाराजगी जताई गई है। एक और बड़ी बात ये कि एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष होंगे गोविंद देव गिरी और इसके अलावा कई साधु संत हैं जो इसमें इसका भाग होंगे और उनका भी एक तरीके से एक बहुत अहम किरदार इस पूरे ट्रस्ट में रहेगा, यानी कि दखल अब समिति की भी उतनी ही होगी।
1: इन तमाम फैसलों में सबसे असरकारी फैसला नई धार्मिक समिति के गठन का हुआ है, जिसमें चढ़ावा चोरी के बाद साधु संतों में फैली नाराजगी और अविश्वास की बहाली के लिए 9 संतों की समिति बनी है। इस समिति में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ज्योतिष बद्री पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, मध्य पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास, मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास, रमा वल्लभ कुंज के महंत राजकुमार दास, रामकथा कुंज के स्वामी रामानंद दास और स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण को सदस्य बनाया गया है। अब यही समिति पुजारियों के प्रशिक्षण, नियुक्ति, वेशभूषा पर सीधी निगरानी रखेगी। यही समिति मंदिर में पूजा पद्धति, पर्वोत्सव और वैदिक रामानंदी परंपरा के पालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। रामनवमी, सीता नवमी समेत अन्य प्रमुख पर्वों की तिथियां तय करने का अधिकार भी समिति को दिया गया है।
2: अब राम मंदिर का पूरा संचालन अयोध्या के संतों के हाथ में होगा। एक धार्मिक समिति बनाई गई है और उस धार्मिक समिति के निर्देशन में ही अब ये ट्रस्ट काम करेगा। जब इस पूरे ट्रस्ट को
3: एक तरीके से संत समिति के भीतर ला दिया गया है, यानी कि जो एक अयोध्या के पांच बड़े संतों की एक समिति बनाई गई है, धार्मिक समिति, और उसमें पूरा ट्रस्ट और पूरे मंदिर संचालन को उसमें समाहित कर दिया गया है।
4: ट्रस्ट की बैठक में बाकी बड़े फैसले इसलिए नहीं लिए जा सके क्योंकि चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच अभी जारी है और मामला न्यायालय तक जा पहुंचा है, इसलिए फिलहाल ट्रस्ट का काम अंतरिम महासचिव ही संभालेंगे और सीईओ के चयन का फैसला भी एक महीने के लिए टाल दिया गया है।
5: अरे हम लोगों का अनुमान था 400-500 आवेदन आएंगे, 5200 आवेदन आए हैं, 5200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि तीन लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें एक महीना और दीजिए क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे।
4: ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर 2026 को होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव समेत तीन रिक्त पदों पर चयन का फैसला किया जाएगा। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समर्थ, वीएचपी और आरएसएस की आज बैठक होने वाली है, 250-300 संत इसमें शामिल होंगे, इस बैठक का उद्देश्य और निष्कर्ष क्या हो सकता है?
6: देखिए, आज अयोध्या में एक बड़ी बैठक है, कल एक बैठक हुई है जहां पर ट्रस्ट को लेकर एक बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय हुए, चाहे एक प्रवक्ता को रखने का हो, चाहे अन्य चीजें हो, एसबीआई को लेकर सवाल उठाना हो, उसी को लेकर आज एक और बैठक है जिसमें 200 से 300 संत आज इकट्ठा होने वाले हैं। आसान भाषा में कहें तो आज संतों का महाकुंभ आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। इसमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, आरएसएस के भी कुछ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, और कुल मिलाकर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर चर्चा तो होगी। अयोध्या को जो पूरे प्रकरण की वजह से ठेस पहुंची है, या जो राम भक्त हैं उन्हें जो ठेस पहुंची है, वापस से वो उस गरिमा को कैसे हासिल किया जाए, वापस से राम।
0: अच्छा, एक बात बताइए समर्थ, क्या इस बैठक में चंपत राय को एक तरह से संतों से क्लीन चिट दिलाने की कवायद तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आज जुटेंगे?
6: देखिए, एक बात और सामने आ रही है कि चंपत राय को लेकर भी चर्चा आज होगी, क्योंकि जो संत समाज है उसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो चंपत राय के समर्थन में शुरुआत से दिखे हैं, फिर चाहे वो कमल नयन दास जो उत्तराधिकारी हैं नृत्य गोपाल दास के, चाहे दीनेन्द्र दास जो कि ट्रस्टी हैं। तो संतों को लेकर आज एक बात सामने आ सकती है कि चंपत राय को लेकर प्रखरता से और प्रमुखता से जो संत समाज है वो आज सामने आ सकता है। अब देखना यह है कि जो अन्य साधु संत है उनका क्या रुख रहता है चंपत राय को लेकर, क्योंकि चंपत राय का रोल जो है फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन में सामने तो आया है। अब देखना यह है कि संत समाज इस तरीके से कल पावर सेंटर बना हुआ था,
0: थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर सब निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। शुक्रिया समर्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था में बड़े बदलाव शुरू कर दिए और मंदिर में काम कर रहे 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। चढ़ावे की गिनती में जुड़े पुराने सभी 36 कर्मियों की भूमिका खत्म कर दी गई है और अब चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी बैंक की ओर से तैनात कर्मचारियों को सौंपी जा रही है। अब उधर सूत्र ये बता रहे हैं कि हटाए गए ट्रस्ट कर्मी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बिना किसी गलती, गुनाह और कारण बताए हटा दिया गया, जबकि उन्हें तैनात करने वाली एजेंसी को एक स्टाफ के बदले हर महीने 26,000 का भुगतान किया जाता था और कर्मियों को सिर्फ 15,000 ही मिला करते थे। अब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह कि चढ़ावा चोरी केस में अब पुलिस की जांच यूपी के 10 जिलों तक फैल चुकी है। अयोध्या की पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में जांच में सभी 8 आरोपियों के परिजनों की चल अचल संपत्ति की जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस ने 8 गिरफ्तार आरोपियों और उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने 10 जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा है, 8 गिरफ्तार आरोपियों और उनके लगभग 50 रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज चल और अचल संपत्तियों का विवरण मांगा है। अब इसमें लखनऊ, बस्ती, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई, अंबेडकर नगर और प्रयागराज जिलों में आरोपियों के रिश्तेदार हैं जहां से ब्यौरा जमा किया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की खरीदी गई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक और अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड की जांच करने को कहा गया है। राजस्व विभाग, नगर निगम और यूपी आवास विकास परिषद से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। राजस्व अधिकारी इन 10 जिलों में जमीन की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। अब पुलिस ने सभी 8 आरोपियों यानी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, राम शंकर मिश्रा, राम शंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव के परिवार के सदस्यों से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि या तो सीधे आरोपियों के नाम पर या उनके रिश्तेदारों के माध्यम से दान से कथित तौर पर निकाली गई रकम को रियल एस्टेट में लगाया गया हो सकता है। अगली बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, संभल में 2024 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपित मोहम्मद वारिस पर योगी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत कार्रवाई की है। अब बड़ी खबर है कि विधानसभा के मानसून सत्र में संभल पर एसआईटी रिपोर्ट पेश होने से पहले यह बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने ये आया है कि उपद्रव के दौरान मोहम्मद कैफ और नईम को सीधे मोहम्मद वारिस ने ही गोली मारी। इसके अलावा मुल्ला अफरोज और मोहम्मद गुलाम के साथ मिलकर उपद्रवियों को हथियार बांटने और उकसाने का आरोप भी वारिस पर है। अब इससे पहले संभल हिंसा के आरोपित मुल्ला अफरोज और मोहम्मद गुलाम पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद नवंबर 2024 में ही सरकार ने दंगे, आगजनी और साजिश की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इस एसआईटी की जांच जून 2025 में ही पूरी हो गई थी और कोर्ट में 1100 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इसमें एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत 22 प्रमुख लोगों को दंगा भड़काने, साजिश रचने और झूठे सबूत पेश करने का मुख्य आरोपित बनाया गया था। लेकिन अब इस रिपोर्ट को सरकार विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखने वाली है और उसके ठीक पहले आरोपियों पर हुई एनएसए की कार्रवाई अहम हो जाती है। अभिनव माथुर संभल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, मुख्य आरोपी पर एनएसए की यह कार्रवाई क्या संकेत देती है?
7: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो है आपसे कुछ ही दिनों के अंदर जो विधानसभा में संभल हिंसा की जो 450 पन्नों की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट थी उसको पेश किया जाएगा, जिसके अंदर जो पूरी विधानसभा के अंदर जो पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, उससे ठीक कुछ दिन पहले ही अब संभल में जो कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा हुआ बताया जाता है शारिक साठा, उससे जुड़े हुए गैंग के एक जो आरोपी मोहम्मद वारिस जो कि जेल में बंद है उसके खिलाफ रासुका की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं पुलिस ने संदेश दिया है कि किसी भी हाल में जो संभल हिंसा के आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से संभल हिंसा की ये पूरे 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है पेश होगी, उससे पहले इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है।
0: अच्छा, अभिनव, आपने एसआईटी रिपोर्ट का जिक्र किया तो एसआईटी रिपोर्ट में एसपी सांसद और जामा मस्जिद के सदर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें आगे क्या हो सकता है?
7: देखिए बिल्कुल, अभी उनका पूरे केसेस का जो है जो कोर्ट में जो ट्रायल जो है चल रहा है, चनौसी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही महीने के अंदर जो है उस ट्रायल पूरा होने के बाद उस पर जो कोर्ट का डिसीजन आ सकता है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उस वारिस पर जो है वो रासुका लगाने की पूरी कार्रवाई जो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो की है और ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद अफरोज, गुलाम और वारिस ये शारिक साठा गैंग से जुड़े हुए वो बड़े आरोपी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन डी कंपनी से भी जुड़ा हुआ होना पुलिस के द्वारा बताया गया था। लेकिन ऐसे में और साथ ही ये खुलासे भी किए गए थे कि इन्हीं लोगों के द्वारा 24 नवंबर की हिंसा के दौरान हथियार सप्लाई।
0: तो बहुत कुछ अभी इस पूरे मामले में होने वाला है। शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दूं और यह बड़ी खबर रामपुर से। रामपुर में आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी को डहाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी का 28 सदस्यों वाला एक डेलीगेशन प्रतिनिधि दल आज रामपुर के दौरे पर जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि दल अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 अवैध घोषित इमारतों के ढहाए जाने के फैसले का विरोध करने जा रहा है। 14 मौजूद विधायक, 10 पूर्व विधायक और 3 जिलाध्यक्षों के साथ माता प्रसाद पांडे जिलाधिकारी से मिलकर ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, अली जौहर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो वहां मौजूद हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं।
8: इस वक्त हमारी मौजूदगी है जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर और जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर आपसे थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन रामपुर पहुंचेगा। माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में 12 से 13 विधायक हैं, 10-12 जिला अध्यक्ष रामपुर पहुंचेंगे। 20 से 25 लोगों का उनके साथ जो डेलीगेशन है रामपुर आएगा। मैं आपको उससे पहले दिखाऊं कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियां लग रही हैं, सुरक्षाकर्मी यहां पे मौजूद हैं। तो अभी आने में थोड़ा उनको समय है। मैं अपने दिखाऊं कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है, आज छठा दिन है, छठा दिन भी आज जो है जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र जो है धरने पर मौजूद हैं, और धरने पर मौजूद होने के बाद हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है उनके सामने वो क्या मांग रखेंगे, क्या वो बात कहना कहेंगे। देखिए दिखाऊं कि आज जो है जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र जो है छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि छात्राएं क्या सोचती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर देखिए लिखा है, हमारे भविष्य के साथ न खेलें। तानाशाही फरमान के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, यह आज छठा दिन है।
0: और अगली जो बड़ी खबर है वो है काशी से। काशी के ज्ञानवापी पर विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में हिंदू पक्ष ने सावन के महीने में विवादित परिसर के सीलबंद एरिया में मौजूद शिवलिंग की पूजा, दर्शन और जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष का कहना है कि वो कोर्ट की सभी शर्तों और सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आपको याद दिला दें कि एडवोकेट कमिश्नर के 15 मई 2022 के सर्वे में ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष इसे जहां प्राचीन शिवलिंग मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फुव्वारा बताता रहा है। 20 मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये जगह अभी सीलबंद है।
9: हम बता दें कि इससे पहले कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये एक और नई अर्जी दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, और साथ ही ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ा दी है, क्योंकि जैसे याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई तो उन्होंने इसकी याचिका 10 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। तो कई दिनों से चला रहा विवाद, इसमें 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित स्थल को सीलबंद करने को कहा था, जहां पर वो तथाकथित ASI के सर्वे में जो आकृति मिली थी उसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहे हैं, ज्ञानवापी का शिवलिंग काशी विश्वनाथ, और मुस्लिम कह रहे हैं कि वो फवारा था। तो अब इसमें निर्णय तो बाद में आएगा, लेकिन इस बीच में ये तमाम चीजें ये इशारा करती हैं कि विवाद अभी थमा नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला नहीं आ जाएगा तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के भीतर शोर शराबा हंगामा, कार्रवाई लगातार स्थगित। संसद में चर्चा पर गतिरोध को लेकर ढीकरा फोड़ने की कवायद, सरकार का आरोप, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, खड़गे की दो टूक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं बनेगी बात। प्रधानमंत्री मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान, राहुल का जवाबी पोज, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल को आना पड़ा। और समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर हमला, गोरखपुर से गर्जे, राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।

0: राहत पर सरकार विपक्ष आमने सामने, रिजिजू ने कहा बहस से ना भागे विपक्ष, लोकसभा राज्यसभा में किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार होने का दावा। पेपर लीक पर किरण रिजिजू की मांग, बोले आज तक जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं ये विदेश के सामने आना चाहिए। पेपर लीक पर अमित शाह का बड़ा बयान, पीएम मोदी का फैसला बताया मील का पत्थर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द और कठोर सजा दिलाने पर जोर। नीट पर विपक्ष को नितिन नवीन की चुनौती, बोले सदन में आकर करें खुली बहस का, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में डीयू कॉलेज, कहा पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार, श्यामलाल कॉलेज लगाया वी स्टैंड में धर्मेंद्र प्रधान पोस्टर। नीट पेपर लीक पर संसद परिसर में घमासान, मकर द्वार पर एनडीए इंडिया सांसद आमने सामने, दोनों गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। नीट विवाद पर विपक्ष का हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री, लाठीचार्ज करने वालों पर हो कार्रवाई, संसद में इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक। छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस आक्रामक, प्रियंका गांधी बोली युवा अब नहीं झुकेगा, छात्रों से माफी की मांग दोहराई, कहा सबसे पहले लिया जाए मंत्री का इस्तीफा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से जवाब तलब, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट, सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद, अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी। नेट विवाद के बीच पीएम मोदी का संदेश, बोले युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता, पेपर लीक मामलों में जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। नीट पेपर लीक पर पीएम ने कहा विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में फास्ट ट्रैक कोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी बोले पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शेंगे, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश। पीएम मोदी के पेपर लीक एक्शन पर सीजेपी का बयान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, सीजेपी ने कहा नीट विवाद की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी, जंतर मेट्रो के बाहर उमड़ी भारी भीड़, टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नीट विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया, राहुल ने रखी तीन छात्रों की तीन मांगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। राहुल गांधी नीट मुद्दे पर सरकार को घेरा, छात्रों के समर्थन में उठाई आवाज, कहा शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के जिम्मेदार लोगों पर हो जल्द से जल्द कार्रवाई। नीट विवाद पर खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, बोले शिक्षा व्यवस्था हो गई है बर्बाद, कहा छात्रों को आश्वासन नहीं ठोस कार्रवाई की जरूरत है। नीट विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना, कहा छात्रों के मुद्दे पर सोशल मीडिया नहीं संसद में चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर कांग्रेस का पलटवार, सांसद नासिर हुसैन बोले पहले शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा, सरकार जवाबदेही तय करे। सोनम मांगचू का वीडियो संदेश जारी, मैं अभी भी जिंदा हूं, सरकार से बच्चों पर एफआईआर और बल प्रयोग न करने की अपील। मांगचू के वीडियो संदेश में कहा यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को तैयार है सरकार, युवाओं की हर जायज चिंता का करेंगे समाधान। पेपर लीक पर निशिकांत दुबे का संज्ञान, बोले कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कहा सजा इतनी कड़ी होगी कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, वीडियो जारी कर उठाया सवाल, बीजेपी ने पुराने बयानों को जोड़कर पूछा संयोग है या प्रयोग। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान की प्रतिक्रिया, बोले आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दे, हिंसा पर दुख जताते हुए घायल छात्रों और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान, बोले छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद है। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान, कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई को राज्यव्यापी शैक्षणिक बंद बुलाया। दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर सवाल, जांच के घेरे में वीडियो हत्या मकोका समेत कई मामलों का आरोपी रह चुका है हाजी अफजल, प्रदर्शन में दिखाई दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अहम बैठक में कई फैसले, सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्णमोहन, भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए सचिव की नियुक्ति की मंजूरी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, 5 संतों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांच की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला, सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। अयोध्या में आज बीएचपी आरएसएस समर्थित संतों की बैठक, भक्तों की चिंताओं पर होगा मंथन, राम मंदिर प्रशासन ने पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी, संतों की बैठक में बनेगी रूपरेखा। राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था के लिए 9 सदस्यीय संत समिति गठित, पूजा पद्धति, पर्व उत्सव और वैदिक रामानंदी परंपरा से जुड़े फैसले अब समिति लेगी। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव, दान राशि की गिनती का जिम्मा अब एसबीआई कर्मचारियों के पास होगा। ज्ञान व्यापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दायर की नई याचिका। सावन में सीलबंद एरिया में कथित शिवलिंग की पूजा दर्शन और जलाभिषेक की मांगी अनुमति। 2027 मिशन में जुटी बीजेपी। यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 1,80,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर मंदिर परिसर में लोगों से मिले मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले, विपक्ष को यह बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट खसोट और अराजकता का माहौल था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आज यूपी में प्रदर्शन। लखनऊ समेत कई जिलों में होगा विरोध। सपा नेताओं पर जाति सूचक टिप्पणी के आरोप को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। गाजीपुर में आर्म्स लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा। सपा सांसद अफजाल अंसारी समेत 3 पर केस। 145 लाइसेंसों के सत्यापन में अनियमितताएं मिलने की जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर। यमुना अथॉरिटी ने अपना प्लान में किया बड़ा बदलाव। करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। संभल हिंसा मामले में योगी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर रासुका एसआईटी रिपोर्ट पेश होने से पहले एनएसए के तहत कार्रवाई। पीपलीक आंदोलन पर मायावती की अपील। सरकार और प्रदर्शनकारी से शांतिपूर्ण समाधान की मांग। कहा, आंदोलन का राजनीतिकरण, टकराव बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाएं आगे आए। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर सपा का प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर में। छात्रों का धरना जारी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में डीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पर सपा का बड़ा कार्यक्रम आज। लखनऊ में पूजा शुक्ला के नेतृत्व में काशी राम स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्ट्रीट शीटर दानिश के पैर में लगी गोली। चोरी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। 32,000 रुपए, तमंचा और बाइक बरामद। झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से जीआरपी सिपाही की मौत। पत्नी ने साथी पर लगाया गंभीर आरोप। पत्नी का दावा, साथी सिपाही ने धक्का दिया। गुजरात में बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी सहित कई इलाके जलमग्न। लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। अहमदाबाद में लगातार बारिश के कारण जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। शहर की कई सड़कें सैलाब में तब्दील। यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े तो साथ ही वासना बैराज के 3 दरवाजे खोले गए। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वलसाड में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। कई गांव का संपर्क टूटा। NH-48 बंद। बाढ़ जैसे हालात के कारण लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों, सड़कों, खेतों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर। गुजरात के वलसाड में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश। वापी शहर में जगह जगह जल भराव। कई सोसाइटीज में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। औरंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तापी में एसडीआरएफ की टीम फंस गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसात में श्रमिकों की सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को आज पूरे दिन कामकाज बंद रखने के निर्देश। मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ने पर सभी 10 गेट खोले गए। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,734 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन में आज स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। पालघर, नासिक समेत कई शहर जलमग्न। रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का कहर। दहानू में, केटी नगर में बाढ़। सड़कें जलमग्न, कार बाइक डूबी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जिले की नदियां और नाले उफान पर। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों का आवागमन ठप। कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। उफनती बाढ़ के बीच जानलेवा रेस्क्यू। पानी से घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की बचाई गई जान। पुलिस और स्थानीय युवाओं की बहादुरी और सूझबूझ से सफल रहा रेस्क्यू। पिछले 2 दिन से लगातार नासिक में बारिश से तबाही। दारना डैम से पानी छोड़े जाने के कारण भावली डैम की ओर जाने वाली सड़क डूबी। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़, बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। जबरदस्त बारिश और बाढ़ से अब तक 25,000 लोगों की मौत। भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। यात्रियों से एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रा करने की अपील। रजौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। जगह जगह भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बाढ़ और पानी शहर के निचले इलाकों और बस स्टैंड तक घुसा। JNK में चिनाब नदी खतरे के निशान के पार। झेलम की सहायक नदियां उफान पर। प्रशासन लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील की। पहलगाम में उफान पर लिद्दर नदी। सेल्फी पॉइंट और आसपास के इलाकों में भर गया है पानी। असम में इस साल सबसे भीषण बाढ़ के भयंकर तबाही के आसार। जानकारी के अनुसार 25 जिलों में 72 लाख से अधिक लोग प्रभावित, बाढ़ से 41 लोगों की जा चुकी है जान। असम में बाढ़ बारिश का कहर जारी, 24 घंटे में 10 की गई जान। शिवसागर बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में आई तबाही की बाढ़ में करीब 100 लोग लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और जिला प्रशासन मिलकर युद्ध स्तर पर बचाव का काम कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, दौरान उन्होंने जलमग्न गांव का निरीक्षण किया, राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। सिक्किम लैंडस्लाइड में बड़ा मौत का आंकड़ा, 22 लोगों की मौत की पुष्टि। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मंजिला हेलमेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग, हादसे में 1 व्यक्ति की गई जान। आग लगने के कारणों की तलाश जारी। हरदोई बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा, 2 रोडवेज बसों के बीच फंसकर महिला की मौत, परिजनों ने ड्राइवर पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब के बरनाला में हड़ताल में बैठे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिलाओं समेत कई लोग घायल। प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया, लेकिन हड़ताल पर कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सल्फास की जहरीली गैस ने उजाड़ी परिवार की खुशियां, 13 दिन की बच्ची और 4 साल के मासूम की मौत, 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा, गाय को बचाने के चक्कर में 3 नाबालिग की बाइक ट्रक में घुसी, 3 की मौत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गाज का गुंडाराज, 15 साल के नाबालिग को बेरहमी से पीटा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, जानलेवा हमले के बाद बुरी तरह से घायल अवस्था में थाने पहुंचा युवक, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पंजाब के फजिलका में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर से कुचलकर देवर भाभी की हत्या। मसूरी के हवा घर मोड़ पर जीप अनियंत्रित, 1 पहिया खाई की ओर लटका, चालक की सूझबूझ से टला, बड़ा हादसा। थाने जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या की, प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद गोटा गला। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में घुसे चोर, लाखों की मोबाइल और नकदी लेकर फरार। वडोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा, होटल सर्वेंट क्वार्टर में छिपकर रह रहे थे 2 आरोपी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन नायकन टी शर्ट की भारी मांग, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। सिनेमाघर में रिलीज हुई विवादों में गिरी फिल्म जन नायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म है। विजय की फिल्म जन नायकन ने रिलीज होने से पहले की शानदार कमाई, फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, बिके 6 लाख से ज्यादा टिकट। बिग बॉस सीजन 20 का नया लोगो आउट, बिग बॉस सीजन 20 में सलमान का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज, फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े का अहम रोल, शुक्रवार को फिल्म होगी लॉन्च। ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पिचौरी और देवदत्त भदौरिया अहम किरदार में आएंगे नजर। आज से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। जिम्बाब्वे को हराने के इरादे से खेला जाएगा पहला मुकाबला, भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा मैच। आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का किया ऐलान, ईशान किशन नंबर 1 के पायदान पर बरकरार, ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा टॉप 10 की लिस्ट पर। पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ किया है करार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सप।
0: और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसमें आज भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ, 2 बार सदन स्थगित हो चुकी है। दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर 2 बजे तक के लिए। संसद में हंगामे के बीच संसद भवन के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। असल पूरा झगड़ा अब नियमों पर फंसा है, सरकार नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत सदन की समस्त कार्यवाहियों को स्थगित कर इसी पर चर्चा चाहता है। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
3: ऐसा तो कोई अर्जेंट मोशन तो यहाँ होता नहीं। तो ये तो रूल 267 के तहत हम चाहते थे कि वो हो जाए, उस वक्त उन्होंने नहीं माना। अब डेवलपमेंट ऐसा हो गए हैं कि उन्होंने जो कदम उठाए राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, और उनको जो मार मार के और हर एक को अपमानित करके जो काम वो कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि कोई बहस करना है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रिसिग्नेशन देना, उसके बाद बहस या चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
4: सरकार कह रही है
5: दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल डिमांड।
3: नॉन नेगोशिएबल ये सरकार को छोड़ी सो बात है, हमारा तो ये डिमांड है।
4: सर सरकार कह रही चर्चा करने के लिए तैयार है, सभी जो बात आप रेज करेंगे उस पर जवाब भी।
3: सर नॉन नेगोशिएबल है, हमारे जमाने में सिर्फ 2 पैसे रेलवे के टिकट बढ़ाए तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर का रिसिग्नेशन दिया। एक एलिगेशन हमारे बंसल साहब के ऊपर आया तो फौरन इस्तीफा दिया। हमारे जमाने में छोटी मोटी बात होती तो इस्तीफे मांगते थे, मांगने से पहले हमारे लोग देते थे, लेकिन इनको क्या हो गया? एक तरफ तो जो सही चीजों को भी, और हजारों बच्चे लाखों बच्चे हर जगह से आ गए हैं, हर जगह से वो लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम लाठी चलाते हो।

0: लिखा है और उसमें आपका कहना है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए।
1: मोदी जी को इसलिए लिखा है, सर्वोच्च नेता है, तो उनको ये समझना चाहिए हिंसा ठीक नहीं है, अहिंसा के मार्ग से हम चलना चाहिए। इसलिए मैं लेटर लिखा था कि अहिंसा के मार्ग से ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अहिंसा है।
0: लेकिन रास्ते पर हिंसा हो गई, पुलिस ने लाठीमारी की, सब कुछ सामने आ रहा है,
1: ये गलत है। मेरे भाई सैंक्शन वगैरह कई लाठीचार्ज नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा सबसे हमारे देश की नीति अहिंसक होना चाहिए, अहिंसक, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं।
0: क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया वो गलत है?
1: अभी सरकार क्या करे वो इसके बारे में मैं नहीं बोलता है, लेकिन जो हुआ वो गलत हो गया।
0: आपने खुद इस खत में लिखा है कि अगर कुछ गैर कृत्य होते हैं तो जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, लेकिन जो ऊपर है उनको कुछ नहीं होता। आपने खुद इसमें लिखा है कि अगर कुछ गलत होता है तो जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पर सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है, ऊपर वालों को कुछ नहीं होता।
1: सही, दोषी है वो दोषी होना चाहिए, और जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहराना ठीक नहीं।
0: एग्जैक्टली तो अब स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो क्या आप उसी पक्ष में हैं?
1: जनता मालिक है, ये सब अधिकारी सेवक है जनता के, तो मालिक बोल के जनता ने कहना दोष नहीं है, वो मालिक है, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही है।
0: आपने खुद 22 अनशन किए, लेकिन इस तरीके की हिंसा लाठीचार्ज कभी हुआ नहीं था इस बार?
1: मेरे 22 अनशन में कभी भी हिंसा नहीं हुआ, और 10 कानून आ गए, 10 कानून देश में, 10 कानून आ गए, 10 कानून आज जनता को लाभ हो रहा है, ये जनता के भलाई के है, जनता के भलाई के लिए।
2: इसी के साथ यहां रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क, और
6: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ P मार्क।

0: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
1: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: और अब बात बिहार की, जहां के कटिहार से छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत की खबर आ रही है। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, छात्रों ने भी पुलिस पर ईंट और पत्थर से हमला किया है। छात्र हैं या हुड़दंगी हैं कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी संख्या में कटिहार में एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके हैं, जिसके जवाब में पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
5: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis, so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क,
7: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
8: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
3: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है और टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है। पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह दिल्ली। आज
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

शोर विपक्ष सदन के भीतर शोर शराबा हंगामा, कार्रवाई लगातार स्थगित। संसद में चर्चा पर गतिरोध को लेकर ठीकरा फोड़ने की कवायद, सरकार का आरोप, चर्चा से भाग रहा विपक्ष, खड़गे की दो टूक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं बनेगी बात।

पेपर लीक पर पीएम मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान। राहुल का जवाबी पोज, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल को आना पड़ा। और समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर हमला, गोरखपुर से गरजे, राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।

0: नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ। मॉनसून के आने के बाद से अब तक कुछ राज्य जबरदस्त संकट का सामना कर रहे हैं। 3-4 दिन से पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही की तस्वीर आ रही है, कई जाने गई हैं, लेकिन अब बादलों ने गुजरात महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लिया है। दोनों राज्यों में बेहिसाब बारिश हो रही है। वैसे जम्मू कश्मीर भारी बारिश के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट गुजरात और महाराष्ट्र में दिखा है। तो आपको अलग अलग राज्यों की हालात दिखाएंगे कि ऐसे मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सबसे पहले बात गुजरात की होगी, जहां बीते दिन भारी बारिश का दौर है, वहां बादलों ने डराया है वलसाड़, अहमदाबाद, सूरत को। कई अन्य इलाकों में भी लोग संकट का सामना कर रहे हैं। ये तीन तस्वीरें गुजरात के वर्तमान हालात को बयां कर रही हैं। सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं वलसाड़ जिले के। वहां आज लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई है। वापी में जिंदगी मानो जलमग्न होने लगी है। घरों और दुकानों तक पानी पहुंचने लगा है, गाड़ियां तक डूब गई।
1: सड़कों पर कारें डूबी हुई हैं। स्कूल बसों की हालत देख लीजिए। दुकानों में पानी भर चुका है। घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई है। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए। पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आईं। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है।
2: इस बार बारे बरसात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
1: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
3: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूँ तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
1: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिकबाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है। आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड़ से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
0: अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसका गंभीर असर वहां के जनजीवन पर पड़ रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अतुल तिवारी।
4: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते एक घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये माणिक बाग इलाका, माणिक बाग चौराहा, वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है। और इस भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद की स्थिति की बात करें तो कुछ अंडरपास अब तक बंद करने की नौबत आई है। अहमदाबाद का अकबर नगर अंडरपास बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद का वासणा बैरेज की अगर हम बात करते हैं तो उसके 3 गेट अभी से ही खोल दिए गए हैं और मौसम विभाग की अगर माने तो आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की भी बात करें तो बारिश का आज रेड अलर्ट है। इसे अगर छोड़ें तो कच्छ, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं लगातार लोगों की मुसीबत हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। जो देश का दूसरे नंबर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बजट के हिसाब से है और किस प्रकार से करोड़ों का बजट होने के बावजूद एक घंटे की बारिश में अहमदाबाद की स्थिति क्या हो जाती है वो आप तस्वीरों से ही देख पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और आप ये सामने एक्टिवा जो जा रही है आप देख लीजिए सीट तक जो एक्टिवा है लगभग वो डूबी है। सामने जो बाइक सवार आ रहे हैं उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ गाड़ियां भी यहां से गुजर रही हैं। हर कोई परेशान है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि सुरक्षित जगह पे पहुंचे लेकिन अभी भी बारिश जारी है और मौसम विभाग का कहना है आज दिन भर इसी प्रकार से बारिश हो सकती है, यानी अहमदाबाद में जो जल भराव की स्थिति है वो और भी खतरनाक देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक अहमदाबाद।
0: इस बीच आपको बता दें सूरत में भी लगातार बारिश का असर दिख रहा है, ताप्ती नदी उफान पर है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिंह राठौड़।
5: इस वक्त तो मौजूद है सूरत से बहकर गुजरने वाली तापी नदी के तट पर और तापी नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ए वियर कम कोजवे की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो तापी नदी है वो उफान मार रही है। मॉनसून की सीजन में ये वियर कम कोजवे का जो रोड है जहाँ से आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं यहाँ से सामान्य दिनों में वाहनों की आवाजाही होती है लेकिन मॉनसून के सीजन में दूसरी बार वियर कम कोजवे यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ है क्योंकि तापी नदी में पानी का जो आवक है लगातार बढ़ रहा है और वो पानी अब नदी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वियर कम कोजवे पर तापी नदी जो है ओवरफ्लो हुई है और जिसका पानी यहाँ सड़क को क्रॉस करके तापी नदी में आगे समंदर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस मॉनसून की सीजन में दूसरी बार हुआ है। हालांकि चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ऊपरी सतह में जैसे डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ से कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे सूरतवासियों को कोई चिंता का विषय हो, लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता जरूर मॉनसून की सीजन में बंद हो जाता है और यहाँ से सामान्य दिनों में गुजरने वाले जो लोग हैं उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर लगा करके एक छोर से दूसरे छोर पर जाना पड़ता है। तो एक बार फिर से इस मॉनसून में पहले भी ये यहाँ पर तापी नदी ओवरफ्लो हुई थी और इस बार दूसरी बार आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर तापी नदी ओवरफ्लो हुई है और जो पानी है यहाँ पर तेज गति से बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मॉनसून के सीजन में जब वियर कम कोजवे बंद हो जाता है तो यहाँ के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रानदेर से सिंगणपुर इलाके तरफ जाने के लिए उन्हें अन्य वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई किलोमीटर का उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये अमूमन हर मॉनसून की सीजन में होता है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वियर कम कोजवे की तस्वीरें हैं जहाँ पर तापी नदी का जलस्तर आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और ये मॉनसून में दूसरी बार हुआ है, लेकिन चिंता की बात नहीं है लोगों के लिए कि किसी भी तरह से कोई भी बाढ़ की संभावना नजर नहीं आ रही है।
0: और महाराष्ट्र मानो बादल फट पड़े हैं, कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि जनजीवन पूरी तरह से ठप है। पानी के संकट के बीच सब कुछ सूना हो चुका है, लोगों का कहीं आने जाने पर संकट है, गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक सा लग गया है।

0: ये किसी झील के किनारे बसा शहर नहीं है और ना ही ये कोई तैरता शहर है। लगातार भारी बारिश ने इन रिहायशी इलाकों की हालत ऐसी कर दी है कि इलाका वीरान पड़ गया है। ये महाराष्ट्र के पालघर का तहानू इलाका है। यहाँ हालात ऐसे हैं मानो इस पॉश कॉलोनी के बीचों बीच नदी बह रही हो। जहां तक नजरें जा पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब वाले संकट के बीच खड़ी ये ऊंची इमारतें दिख रही हैं। इन लहरों में कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर आवाजाही कर रहे हैं। आना जाना मजबूरी है, ऐसे में वो संभल संभल कर रोजमर्रा के काम को पूरा कर रहे हैं। अब पालघर शहर की एक और तस्वीर देख लीजिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। शहर के बीचों बीच की हालत डरावनी हो गई है। वहां सड़कों पर 3 से 4 फीट तक तेज रफ्तार पानी बह रहा है। कहीं कहीं तो बाइक भी डूबी नजर आई। दहानू बस डिपो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहां भी समंदर जैसे हालात दिखे। लोग कमर भर पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर रहे। पालघर के ज्यादातर निचले इलाकों में यही मंजर है। शहर के कंकराटी रोड और ईरानी रोड पानी में डूब गए। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया। सोसाइटी में पानी भरने से अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर डूब गया। उधर वसई में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वहां लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद की हालत देखिए। कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। नाला सोपारापुर के नाला नगर में तो रिक्शा और अन्य गाड़ियां पानी में मानो तैरने लगी। यहां भी मॉनसून की आफत टूटी है। उसका असर है कि शहर में सन्नाटा पसरा है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉनसून दोबारा एक्टिव हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश थम गई थी। अब एक बार फिर से बारिश ने डराया है। नदियों, नालों और बांधों में जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति कई इलाकों में है, लेकिन पालघर और वसई में जारी संकट से लोग सावधान हैं। प्रशासन भी लगातार उन्हें आगाह कर रहा है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सतर्कता बरतें। पालघर से मोहम्मद हुसैन खान और वसई से प्रवीण नालावड़े के साथ आज तक ब्यूरो।
1: वहीं नासिक में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहां गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर एक व्यक्ति इस पानी में फंस गया। नासिक फायर ब्रिगेड इस व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गोदावरी का जलस्तर बेहिसाब तरीके से बढ़ा हुआ है। आशंका यही कि इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि नासिक में डारना और गंगापुर डैम से पानी छोड़ा जाना शुरू हो चुका है। और आफत की तस्वीरें लगातार जम्मू कश्मीर से भी आ रही, क्योंकि मूसलाधार बारिश यहां थम नहीं रही है। उसका असर पहाड़ी इलाकों और फ्लैश फ्लड में लैंडस्लाइड के रूप में दिख रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से संकट गहरा गया है।

0: जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं, कैसे हैं, खतरा कितना है, संकट कितना बड़ा है, इन बहुत से सवालों के जवाब इन हाहाकारी तस्वीरों से मिल रहे हैं। ये रियासी का सलाल डैम है। तस्वीरें एक दिन पहले की हैं जब डैम के गेट खोलने पड़े। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 17 जुलाई से ही रियासी का इलाका मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि चिनाब और अन्य नदी नालों का जलस्तर बेहिसाब बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। लगे हाथ बगलियार डैम के सभी गेट भी खोलने पड़े। अब NHPC सलाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि डेंजर लेवल पर पहुंच चुके चिनाब के जलस्तर को देखते हुए किनारे पर जाने से बचें।
1: देख सकते हैं कि डैम के सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। भारी मानसून चल रहा है जिसकी वजह से नदियां नाले जो है उफान पर हैं। पानी काफी जमा होने के कारण जो है वो डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। आपको बता दें रामबन जिला में स्थित बगलियार डैम के भी सारे गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं और एक चेतावनी जो है वो NHPC सलाल द्वारा जो है वो दी गई है कि चिनाब के नदी के किनारे अगर कोई भी माल मवेशी चराने जाता है तो किसी किस्म का हादसा ना हो, कोई भी इंसान जो है वो नदी के किनारे पर ना जाए।
0: राजौरी में लगातार बारिश के बाद से पहाड़ों पर सैलाब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। एक दिन पहले डोडा में भूस्खलन की दर्दनाक घटना हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तबाही मचाते हुए गिरे। एक गाड़ी बोल्डर की चपेट में आ गई। गाड़ी का अगला हिस्सा मलबे से पूरी तरह तबाह हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे तबाह गाड़ी को डेंजर जोन से निकाला। उफनती नदियों का तांडव रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। गुरेड में बदतर हालात की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां एक इलाके में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू कर्मी लगातार बचाव कार्य में जुटे दिखे। संकट का दायरा काफी ज्यादा है। जम्मू से कश्मीर तक आफत ही आफत है। श्रीनगर के तेलबन इलाके की हालत आपके सामने है। वहां भी नदी नाले उफान पर हैं। संकट बेहिसाब बढ़ा हुआ है। बांदीपोरा में तो सैलाब ने एक महिला की जान ले ली। वहां रेस्क्यू टीम ने उफनती लहरों के बीच से काफी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहे ताजा संकट में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और ये खतरा अभी टला नहीं है।
2: जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी वर्षा हुई है और जिसने फ्लैश फ्लड्स और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स, लैंड सिंकिंग जगह जगह हो रही है। अभी तक इन घटनाओं में, फ्लड रिलेटेड घटनाओं में तकरीबन 17 लोगों के मरने की खबर है। यानी कि अगर ऐसी बारिश जो है चलती रही, जो प्रिडिक्शन है IMD की, तो फ्लड का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उबाल पे है नदी नाले, चिनाब की कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पानी बहुत हाई लेवल उसका हो गया है। जेहलम की भी अगर आप बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में फ्लड अलर्ट है। IMD ने बहुत भारी जो है बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश हो रही है और उससे जो फ्लैश फ्लड है उसका भी खतरा लगातार बना हुआ है।
0: बिगड़े हालात के बीच पूरे जम्मू कश्मीर में SDRF की अगुवाई में कई एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और रियासी से गौरव पराशर के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
3: और इस बीच अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
4: इस समय आप देखिए कि पूरा ये क्षेत्र जो है जलमग्न हो चुका है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। मैं लगातार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। रौद्र रूप इस समय चेनाब नदी का देखा जा सकता है, स्थिति काफी गंभीर हो रही है। और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछले चार दिनों से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर जो है बाढ़ आ गई है। राजौरी और पुंछ जिले जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ और बारिश के कारण। वहां पर जानो माल का काफी नुकसान हुआ है। और अब अगर हम देखें तो यहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर है, यहाँ पर भी जो है अब चेनाब नदी उफान पर है, और चेनाब नदी का जो जल स्तर है वो अब खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि जो SDRF की टीम्स हैं वो भी यहाँ पहुंची है, और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घाट से दूर चले जाएं, क्योंकि इस समय स्थिति जो है काफी गंभीर होती जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, SDRF की टीम्स भी तैनात है। लोगों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाए। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछले चार दिनों से काफी वर्षा हो रही है। इस वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, नदियां उफान पर है। इस समय आप रौद्र रूप देख सकते हैं चेनाब नदी का। चेनाब नदी का जो प्राचीन नाम है वो चंद्रभागा नदी है। ये जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर कर यहाँ पहुंचती है अखनूर में। जो चंद्रभागा नदी है यानी कि चेनाब नदी है, वो किश्तवाड़ डोडा जिले से होते हुए रियासी पहुंचती है और फिर यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर में पहुंचती है। और यहाँ से कुछ ही दूर बाद जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, और कुछ ही दूर पर ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, और वहाँ पार करते हुए ये नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ इस समय अखनूर क्षेत्र में हम खड़े हैं, और अखनूर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है, पानी जो है यहाँ तट को पार कर चुका है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये जो ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की है प्रशासन ने, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनाए गए हैं, लेकिन इस समय ये पूरी तरह से ये जलमग्न है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर सीमेंटेड कुर्सियाँ लगी हुई होती हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ पर जो आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेते हैं। लेकिन इस समय स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, और जो चेनाब नदी का जल प्रवाह है वो भी काफ़ी तीव्र हो चुका है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें, और जो निचले इलाके हैं वहां पर सायरन भी बजाए जा रहे हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो इस बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से ले और नदी नालों से दूर रहे।
3: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. With available features like all-terrain tires and off-road tuned suspension, the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
8: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy, EPA Automotive Trends Report 2025.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: Presented by
13: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
16: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
17: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him? Well,
6: she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody who.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाई ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पेपर लीक पर संसद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, संसद के बाहर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन के भीतर भी शोर शराबा हंगामा, कार्यवाही लगातार स्थगित। संसद में चर्चा पर गतिरोध को लेकर ठीकरा फोड़ने की कवायद, सरकार का आरोप चर्चा से भाग रहा विपक्ष, खड़गे की दो टूक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं बनेगी बात। पेपर लीक पर पीएम मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान, राहुल का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल को आना पड़ा। और समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर हमला, गोरखपुर में गरजे, राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले जो बताते हैं आपको कि न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करने वाले, वो हम आपको बता देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीधे आपको लिए चलेंगे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, शुरू होने जा रही है। इसके बाद अब ये भी बात करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि होने वाली है। पेपर लीक मामले में आखिर सरकार की तरफ से अब क्या प्रस्ताव दिया गया है और क्या प्लानिंग की जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। अन्ना हजारे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तीसरी बड़ी खबर, वो भी हम आपको बताएंगे। छात्र आंदोलन पर क्या कहा अन्ना आंदोलन ने, क्योंकि एक आंदोलन वो पहले कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि मेट्रो के प्लान 16 ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन सीधे आपको लोकसभा राज्यसभा लिए चलते हैं, कार्रवाई शुरू हो रही है।
1: कृपया आप सब लोग अपने आसन पर जाकर बैठिए, प्लीज प्लीज। सदन को बार बार बाधित करने का ये प्रयास ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक नहीं है प्रयास। सदन को चलाने में आप सभी लोग मदद कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप सब लोग बैठिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने सीट आसन पर जा बैठिए। आपका विषय आपके सरसा होगा, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने विषय को रखा है। सदन को चलने दीजिए, प्लीज प्लीज। कृपा करके आप सब लोग बैठिए, अपने आसन पे बैठिए। 377 को चलाने दीजिए। आज जिन माननीय सांसद को 377 को मुद्दे को उठाने का अनुमति आज मिला है, कृपया उनको आज उस विषय उस मुद्दे को उठाने का आप सब लोग सहयोग कीजिए। देखिए, सभी सांसदगण का है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के सांसद लोगों का ये मुद्दा है। प्लीज, अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई हंगामा हुआ और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, और लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में मानने को तैयार ही नहीं है। और विपक्ष का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद बात होगी। हालांकि दिलीप सैकिया लगातार कोशिश करते रहे और बोलते रहे कि कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब हम आपको वो हंगामे की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की, जो विपक्षी सांसद थे वो हंगामा करने लगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे, और फिर जमकर प्रदर्शन हुआ, जमकर हंगामा हुआ। देखिए, अब आप ये समझिए, ये लोकसभा के बाहर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहस के लिए सरकार तैयार है, ये एनडीए सांसदों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो वो अंदर है वहां पर क्या हो रहा है, लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है, और जो वेल है उसके आसपास विपक्षी सांसद आ गए और वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम मानेंगे भी नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और किरण रिजिजू की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। किरण रिजिजू ने इससे पहले भी कहा था कि विपक्ष जैसे चाहता है हम वैसे चर्चा करने को तैयार हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चर्चा करें। लेकिन अब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, ध्यान भटका रहा है, और ये छात्रों के साथ ठीक नहीं है। किरण रिजिजू की तरफ से बयान आया था और उन्होंने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि विपक्ष आए और चर्चा करे, लेकिन नहीं हो पाया।
2: कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप क्वेश्चन में मिलकर बता सकते हैं? लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं।
0: तो देखिए, ये तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बात सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की हमारे सहयोगी पीयूष ने, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं।
3: सर, सरकार के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है, सभी जो बात आप रेज करेंगे उस पर जवाब भी।
4: सर, नॉन निगोशिएबल है। हमारे जमाने में सिर्फ 2 पैसे रेलवे के टिकट बढ़ाए तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिया। एक एलिगेशन हमारे बंसल साहब के ऊपर आया तो फौरन इस्तीफा दिया। हमारे जमाने में छोटी मोटी बात होती तो इस्तीफे मांगते थे, मांगने से पहले हमारे लोग देते थे, लेकिन इनको क्या हो गया? एक तरफ तो जो सही चीज़ों को भी, और हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हर जगह से आ गए हैं, हर जगह से वो लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम लाठी चलाते हो। रात में, कल भी चलाए आप, और घसीटते लेके जाते हो बच्चों को, और खास करके लेडी स्टूडेंट्स को। तो थोड़ी तो शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके बारे में, या उनको बुला के समझा के बात करके सुलझाने के बजाय वो डर के तुम लाठी चार्ज कर रहे, पत्रे तुम ही मार रहे हो। आप देखे होंगे, आपके टीवी पे भी है, आप चैनल में। हम
3: सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि चर्चा हो इसको लेके आगे।
4: बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा
3: हूँ। जरा एक बात, मिटपात है, कोई मिटपात है? संसद कब तक नहीं चलेगी सर? सर, कब
5: कोर्ट बना रहे हैं?
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की प्रधानमंत्री ने,
4: जब तक रिजिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं।
3: तो सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ ये कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और चर्चा तभी हो पाएगी जब इस्तीफा होगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
0: तो चर्चा की कोई बात बनती हुई अभी तो नजर नहीं आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, विपक्ष की मांग है पहले आप इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद चर्चा होगी, और विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। कैसे गतिरोध दूर होगा या फिर ये सब हंगामे के बीच चढ़ेगा?
6: देखिए, गतिरोध दूर करना सरकार का और विपक्ष दोनों का काम है, और इसीलिए दोनों ही चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो ये जब तय हो जाएगा तो चर्चा हो जाएगी। और इसके लिए बीएसई या ऑल पार्टी मीटिंग्स जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर बुलाएंगे, और उसमें ये तय किया जा सकता है कि कब चर्चा होगी, किस नियम के तहत होगी। अगर लोकसभा में चर्चा होगी 193 में होगी या 184 में होगी, या राज्यसभा में 267 पे होगी या 226 पे होगी, ये तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्ष आते हैं, लेकिन एक तरीके से अपना अपना पॉलिटिकल स्कोर जो है सब स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर जो है कांग्रेस की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया है कि 184 पे चर्चा हो जाए। राज्यसभा में जो है नोटिस दिया मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 267 पे, तो एक तरीके से चर्चा हो, ये दोनों पक्ष चाहते हैं, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर जो है बीएससी के अंदर जब तक तय नहीं होगा ये नहीं होगा, क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री
0: तो छात्र चाहते हैं कि उनके मुद्दे पर बात हो, और ये कैसे संभव होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनेगी और चर्चा होगी लेकिन हो नहीं पा रहा, किस नियम के तहत हो ही नहीं पा रहा है। शुक्रिया मानशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक तरफ बीजेपी हमला कर रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस हमला कर रही है बीजेपी पर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है वो हम आपको सुनाते हैं।
5: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़काओं की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको, फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे, आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे, भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
7: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
0: तो हर किसी की तरफ से अपनी अपनी तरफ के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर क्या हो रहा है? राहुल गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल ये बताइए, सत्ता पक्ष कह रही है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक बात नहीं, 267 के तहत बात करने की वो मांग कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त कांग्रेस की तरफ से?
8: देख कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है हिमांशु कि पहले पर्चा और फिर चर्चा, यानी पहले इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो और उसके बाद ही हम चर्चा के लिए तैयार होंगे, ये नॉन नेगोशिएबल है। तीन दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि देखिए 156 बार पेपर लीक हो चुके हैं, 7.5 करोड़ बच्चे इसकी वजह से अफेक्टेड हुए हैं, ये कई आंकड़े दिए कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की बनती है, तो शिक्षा मंत्री को जाना होगा, उसके बाद ही चर्चा होगी। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है बशर्ते हाउस के अंदर ऑर्डर हो, डेकोरम हो, लेकिन जैसे ही हाउस शुरू होता है एडजर्नमेंट के बाद तो आपने देखा होगा लगातार नारेबाजी होती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, उसके बाद फिर कोई चारा बचता नहीं है लोकसभा स्पीकर के पास या राज्यसभा के चेयरमैन के पास कि वो उसको स्थगित कर दे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को फिलहाल ये लगता है कि हमने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है, हम ही ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, छात्रों के आंदोलन ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा और अब हमको तापमान बढ़ाना होगा।
0: विपक्षी तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद यानी पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष छात्रों को गुमराह कर रहा है, उनसे बात की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने।
9: रवि जी आमना सामना हुआ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का,
10: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है और पूरे सरकार के सचिवों को कहा है कि नौजवानों की समस्या के लिए सारी कार्रवाई करें। ये संसद में बहस नहीं करते, माननीय लोकसभा के स्पीकर ने कहा बहस को तैयार है, सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते, हम जवाब देने को तैयार है वो भाग जाते हैं और कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये मतलब क्या है इसका? तो इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, बहस करेंगे नहीं और खाली भागेंगे, ये बहुत ही गलत है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं।
0: देखिए पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है, विपक्ष पक्ष पर निशाना साध रहा है, और आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा से बात की हमारी सहयोगी मौसमी ने, वो कैसे सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं वो सुनिए।
11: आज हमने देखा कि एनडीए और विपक्ष जो है आमने सामने नजर आया, एनडीए भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं विपक्ष को, क्या मायने थोड़ा धूप की तरफ कर
12: रहे हैं? एनडीए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भड़का रहे हैं।
11: हाँ विपक्ष भड़काने का काम कर रहा
12: नहीं,
11: है।
12: नहीं विपक्ष अगर स्वतः स्फूर्त आंदोलन को जन्म देता तो नजारा कुछ और होता, या करके ये सवाल जो यहाँ है ना जंतर मंतर चले जाए, उन बच्चों के समक्ष ये बात कह दे मैं उनके हिम्मत के दाद दूंगा।
11: प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट डाला कि हमें बहुत हितैषी है हम छात्रों के भविष्य को लेके और फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है?
12: जंतर मंतर संतुष्ट है, युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
11: 14 से कभी इस्तीफा नहीं हुआ किसी मंत्री का, आरोपों पे या विपक्ष
12: आप इसे सफलता मानती है सरकार की?
11: मैं पूछ रही हूँ इस बार
12: नहीं, अकाउंटेबिलिटी को जो भी निजाम कवर करता है ना वो बेईमान निजाम है।
0: तो देखिए विपक्ष एकजुट है, मोर्चा खोल चुका है सत्ता पक्ष के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के सांसद है राम गोपाल यादव, उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने।
13: प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि उनके लिए प्रायोरिटी युवा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट
0: और देखिए बहुत बड़ा मुद्दा ये पेपर लीक का बन चुका है। अब ऐसे में हर तरफ से आलोचना का सामना सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट की उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम चाहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चले और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पीएम का साफ संदेश है, जो युवा शक्ति के सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया था, लेकिन इसका जवाब देने में राहुल गांधी ने देर नहीं की और राहुल गांधी ने तुरंत इस पोस्ट का जवाब दे दिया।

0: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
1: तो देखिए, एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक तरफ पक्ष दूसरी तरफ विपक्ष, क्या कहा जा रहा है सुनते हैं।
2: आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
3: तो हम तैयार होते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा होता है और सदन नहीं चलने दिया जाता। सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी। मैं चैलेंज करता हूं, मीडिया बुला ली जाए और जो रिकॉर्ड हो रहा है अंदर रख दीजिए। जैसे ही सदन शुरू होता है जो रूलिंग पार्टी है वो डिस्टर्ब करने लगती है।
1: पेपर लीक का मुद्दा और छात्रों के साथ जो कुछ हुआ है, उस मुद्दे पर सरकार की आलोचना हर तरफ से की जा रही है। ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
4: पंतप्रधानांनी आज एक ट्वीट केले, खरं म्हणजे त्यांनी जाऊन बोलायला काही हरकत नव्हती, म्हणजे याच्यामध्ये कमीपणा बाळगण्याचं काही कारण नाहीये। आपली मुलं आहेत, आपली जनता आहे, यांच्याबरोबर चर्चा करायला कमीपणा वाटण्याची गरज नाहीये। पहिल्या दिवशी जर का सरकारने यांच्याबरोबर चर्चेचे दरवाजे उघडले असते किंवा पहिल्या दिवशी जर का यांना बोलवलं असतं, तर ही इथपर्यंत वेळ वाढली नसती, एवढी हे आंदोलन तांडलं गेलं नसतं। लोकांना आज व्यक्त व्हायचंय, इतके वर्ष साठलेला राग असंतोष हा उफाळून वर आलेला आहे आणि त्याला एक वाट करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय। ही वाट करून देत असताना सर्वांना सांगतोय की कोणीही, कारण बरेच जण या असंतोषाच्या ठिणगीला वेगळं वळण लावण्याचा प्रयत्न करतायत।
1: यावर कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
7: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
8: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
9: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
10: Learn more at APGE.com.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: In association with
5: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
6: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
7: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: पेपर लीक पर संसद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, संसद के बाहर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन के भीतर भी शोर शराबा हंगामा, कार्यवाही लगातार स्थगित। संसद में चर्चा पर गतिरोध को लेकर ठीकरा फोड़ने की कवायद, सरकार का आरोप चर्चा से भाग रहा विपक्ष, खड़गे की दो टूक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं बनेगी बात। पेपर लीक पर पीएम मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान, राहुल का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल्स को आना पड़ा। और समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर हमला, गोरखपुर से गरजे, राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: पेपर लीक को लेकर देश भर में उबाल है, अलग अलग जगहों पर राज्य के अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किए गए। बिहार के कटिहार से वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ये देखिए, जहां छात्र आते हैं और छात्र उसके बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस आमने सामने हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है, छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, वहीं छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थरों से हमला किया, या फिर ये कह सकते हैं कि छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व जो वहां पर पहुंचे उन्होंने पत्थर उठाए, उन्होंने हमला किया। बेगूसराय में भी छात्र सड़कों पर उतरे और वहां भी भारी विरोध की तस्वीरें देखी गई। ये देखिए छात्रों का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, आमने सामने बात यहां पर छात्रों के भविष्य की चल रही है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रदर्शन बना हुआ है, क्योंकि छात्रों की तरफ से विरोध करते हुए कई तस्वीरें ऐसी आई जो कतई ठीक नहीं कही जा सकती। अब रांची की भी कुछ तस्वीरें देखिए, बेगूसराय की आज तस्वीरें देखिए, बेगूसराय में भी लोगों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है, तो रांची में भी एक तरफ पुलिसकर्मी है तो दूसरी तरफ छात्र हैं, और छात्रों के साथ में आप कह सकते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ अराजक तत्व आते हैं और उनकी तरफ से भी लाठी डंडे मारे गए और फिर पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहर से। अब ये बेगूसराय की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में छात्र आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, तो दूसरी तरफ आयशा के भी छात्र हैं, देखिए आयशा की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उनके झंडे आप देख सकते हैं, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई, और बैरिकेटिंग इसीलिए की गई क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो और उसके बाद कहीं सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको शांत करने के लिए, काबू में करने के लिए ये पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी देख लीजिए, यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखिए, हाथों में तख्तियां लिए ये बच्चियां, ये छात्र छात्राएं अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं बेगूसराय से तस्वीरें हैं जहां पर ऐसा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, छात्र एकजुट हुए। एक तरफ छात्र सड़कों पर आ चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद में भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, अब ये क्यों कहा जा रहा है, तो ये तस्वीर बहुत अच्छी है, इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, प्रियंका आपको दिखाई देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, और बीच में आप देखेंगे तो अखिलेश यादव आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ एनडीए सांसद भी आ जाते हैं मकर द्वार पर, वो भी प्रदर्शन करते हैं, कल हम देख रहे थे कि विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया था, डीएमके का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तुरंत हंगामा होता है, स्थगित हो जाती है। लोकसभा का भी हाल अलग नहीं है, यहां भी कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, स्थगित हो जाती है, और कल्याण बनर्जी भी अब धरने पर आ गए हैं, भारी हंगामे के चलते एक्शन लिया गया था और अब ये देखिए किस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है। तो संसद से सड़क तक हर जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। अब विपक्ष नियम 2267 के तहत सदन की समस्या कार्रवाइयों को स्थगित करने पर चर्चा चाहता है।
2: चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
3: ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है।
4: मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
5: शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
6: हल्ला, हंगामा, शोर शराबा, ठप। मॉनसून सत्र में रोज संसद बैठती है, रोज माननीय आते हैं और फिर रोज ये होता है।
7: और सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है।
6: मॉनसून सत्र का चौथा दिन है लेकिन संसद में सिर्फ हंगामा है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, सरकार के पास एजेंडा अपना है। दोनों चाहते हैं कि संसद चले लेकिन चल नहीं पा रही। अभी जो मुद्दा गरमाया है वो नीट पेपर लीक और निहत्ते छात्रों पर लाठीचार्ज का है। मुद्दा उन बच्चियों का है जिनके कपड़े फाड़े गए।
8: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
6: अब विपक्ष चाहता है कि सरकार सदन में चर्चा करे। सरकार ने कहा कर लेते हैं,
9: सरकार तैयार है चर्चा के।
6: स्पीकर ने कहा आओ बैठते हैं, चर्चा की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। लेकिन विपक्ष ने कहा ठहरिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लाइए।
10: विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए और यूपी में 20 से ज्यादा हुए, तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित।
6: बस यहीं पर आकर सरकार बिफर जाती है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू कहते हैं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सबने एक साथ विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आरोप ये लगाया कि विपक्षी खासतौर से राहुल गांधी लगातार अपनी मांग बदल रहे हैं।
11: सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।
6: जब राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसद पीएम आवास का घेराव करने गए तो जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार का पक्ष लेकर वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी से बात की, नीट पेपर लीक पर संवाद में चर्चा का आश्वासन दिए, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई तो बात बिगड़ गई।
12: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
6: राज्यसभा में खड़गे, लोकसभा में वेणुगोपाल और अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं राहुल गांधी नीट पेपर लीक के मामले को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार के सामने अब तीन मांगे रखी हैं।
13: ये तो ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुइसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक हुए।
14: धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background.
6: राहुल गांधी ने साफ किया कि अपनी बातों से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीएम मोदी की माफी और छात्रों को निर्दयता से पीटने वालों पर कार्रवाई और फिर संसद में चर्चा। विपक्ष के रवैये पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं, संसद की बजाय सड़क पर समाधान चाहते हैं।
15: ये संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है।
6: कुल मिलाकर बात ये कि चर्चा सभी चाहते हैं लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। आज तक ब्यूरो।
0: देखिए बंगाल में भी अगर आप देखेंगे, बंगाल में भी अब जो डेमोग्राफिक बदलाव की बात कही गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि एक फेंसिंग की जाएगी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ पाए, इसको लेकर अब तैयारी पूरी तरह से चल रही है और बंगाल सरकार भी इस पूरे मामले में एक्टिव दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: पश्चिम बंगाल की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा और बड़ा हमला बोला था। अमित शाह ने साफ लफ्जों में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकार ने जानबूझकर सीमा पर तारबंदी के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी ताकि घुसपैठ को बढ़ावा मिलता रहे।
1: मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण।
0: गृह मंत्री के सख्त रोक के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हुई। शुभेंदु अधिकारी के ठोस कदमों के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य प्रशासन ने बीएसएफ को 1024.75 एकड़ जमीन सौंप दी है।
2: वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
0: जमीन मिलते ही सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अभेद बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।
3: जीरो प्वाइंट बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं, जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर है, और यहां से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश मौजूद है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले फेंसिंग यहां पर नहीं थी, कई राजनीतिक कारणों की वजह से इस पूरे इलाके में फेंसिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे इलाके में फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो लोग हैं, यहाँ भारत का गांव है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश का गांव है। भारत के गांव के लोग क्या सोचते हैं जब यहाँ पर नई फेंसिंग बनाई जा रही है?
4: अभी बहुत अच्छा तरीके से देख रहा हूँ, हम लोग गाँव वाला बहुत खुश है। तारकाड़ा जितना फेंसिंग होगा उसलिए गांव वाला का भी सुविधा है, हमारा फसल हमारा इंडियन जो जमीन है वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग गांव वाला भी सुरक्षित रहेगा। और उसका साथ साथ जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता भी हमका चलना फिरने के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा।
0: भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा 2217 किलोमीटर है। मौजूदा बाढ़ बंदी लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर हो चुकी है। करीब 300 से 350 किलोमीटर इलाका पानी से भरा है, जहां बाढ़ लगाना बेहद मुश्किल है। यहां जलमार्ग से पेट्रोलिंग की जाती है। बीजेपी के आते ही शुभेंदु अधिकारी ने 172.6 किलोमीटर नई स्मार्ट फेंसिंग के लिए 1024.75 एकड़ जमीन दे दी है।
3: एक तरफ जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ ने ग्राउंड पर आकर के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुर्शिदाबाद में जो सिंगल लेयर्ड स्टील फेंसिंग ये बनाना शुरू कर दिया है। ये स्मार्ट फेंसिंग होगी जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 फीट के आसपास होगी। और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जवान जो है उनकी निगरानी में इस तरीके की ये स्टील फेंसिंग तैयार की जा रही है। ये स्मार्ट फेंसिंग वैसी होगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई भी घुसपैठिया यहां से सीमा के उस पार से अंदर की तरफ भारत के अंदर ना आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती थी वो मुर्शिदाबाद के इलाके से होती थी। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद से इस तरीके के कड़े कदम उठाए गए।
0: बीएसएफ को ये जमीन 9 अलग अलग संवेदनशील जिलों में दी गई है ताकि उन रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके जहां से अब तक अवैध घुसपैठ और तस्करी होती थी। आज तक की टीम देश की पहली ऐसी मीडिया टीम है जिसने इन सभी इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है।
3: ये सिंगल लेयर्ड जो फेंसिंग बनाई गई है ये खास तरीके की फेंसिंग है और पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर जमीन नहीं पहले दी गई थी यहां पर अब जमीन का आवंटन हो चुका है। और इस तरीके से आप देखिए कि इन कटीले तारों को यहां पर लगाया जा रहा है कि जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। आज तक पहला चैनल है जो कि इस पूरे इलाके में यहां पर पहुंचा हुआ है और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये फेंसिंग ऐसी है जो कि पूरी तरीके से स्टील की बनी हुई है और इसमें जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसको ये पहली दीवार के तौर पर काम करेगा और घुसपैठ को पूरी तरीके से इससे रोका जा सकेगा।
0: जमीनी सीमा के बाद अब रुख करते हैं भारत बांग्लादेश के सबसे जटिल और खतरनाक सीमा क्षेत्र सुंदरबन का। सुंदरबन की इन पतली क्रीक गलियों में बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है। आज तक की टीम जब ग्राउंड पर मौजूद थी तभी वाटरवेज पर एक संदिग्ध नाव दिखाई दी। बीएसएफ की वाटर विंग ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस नाव को इंटरसेप्ट किया।
3: तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो सुंदरबन का इलाका है, आप दूसरी तरफ जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन है बांग्लादेश की। अब यहां जिस तरीके से एक फिशिंग बोट दिखाई पड़ी है संदिग्ध तौर पर, जिसको कि बीएसएफ के जवानों ने यहां साबरमती फोर, जो इनके पास इस वक्त नाव मौजूद है, उसके जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां इनको रोका गया है, इंगेज किया जा रहा है। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो इलीगल घुसपैठ की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर के बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस पूरे इलाके से हर एक व्यक्ति की छानबीन की जाए। और ये छानबीन यहां पर आपको की जा रही है, तस्वीरों में आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि दूसरी बोट जो है वो आकर के पीछे की तरफ से इधर इंगेज कर रही है, और इसके साथ साथ उनके सामान को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सुंदरबन का एरिया है इसके आगे की तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है, जहां से ये लोग फिशिंग करते हुए आगे की तरफ निकल आते हैं।
0: बीएसएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में घुसपैठियों को रोकने की है जहां सैलाब ही सैलाब है। इसका इलाज है बीएसएफ की 8 फ्लोटिंग बीओपी यानी तैरता बॉर्डर आउटपोस्ट।
3: पश्चिम बंगाल सुंदरबन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और बीएसएफ किस तरीके से 24 घंटे निगहबानी इस पूरे इलाके में कर रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है। यहां हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि आगे कुछ इलाके हैं जहां पर स्मार्ट फेंसिंग भी बनाई जा रही है, लेकिन जो वाटरवेज हैं यहां पर किस तरीके से निगहबानी करना है बीएसएफ के जवान, यहां तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो कि आगे की तरफ इसी पानी में ही जीरो लाइन पड़ता है जहां से बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, और वहां से घुसपैठ की आशंका हमेशा रहती है। ऐसे में इस आशंका को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बीएसएफ के जवान ऐसे ही चारों तरफ यहां पर मौजूद रहते हैं। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ ना हो, और उसके लिए बड़े स्तर पर कदम यहां पर बढ़ाए जा रहे हैं।
5: बीएसएफ की फ्लोटिंग बीओपी है यानी कि तैरती हुई सीमा चौकी, जहां पर जमीन नहीं है, वाटरवेज हैं पूरी तरीके से और इंटरनेशनल लाइन बनी हुई है, वहां पर निगहबानी करने के लिए बीएसएफ ने इस तरीके की फ्लोटिंग बीओपी तैनात कर रखी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जो है बीएसएफ के जवान मौजूद रहते हैं 24 घंटे, और पूरी तरीके से चारों तरफ जो बांग्लादेश बॉर्डर पर इसके द्वारा निगहबानी किया जा रहा है। दरअसल इस जगह पर मैंग्रोव का इलाका है और ऐसे ही ज्वार भाटा यहां पर आता रहता है, तो ये जल जो है काफी भर जाता है, दलदली इलाका भी बन जाता है। ऐसे में इन तमाम इलाकों में निगहबानी करने के लिए इस तरीके की फ्लोटिंग बीओपी लगाई गई है।
0: गृह मंत्रालय का ये स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी कॉरिडोर घुसपैठियों और तस्करों के लिए आखिरी कील साबित होने वाला है। बीएसएफ के इस महाअभियान के बाद अब संदेश साफ है कि भारत की सीमा में अवैध घुसपैठ का दी एंड हो चुका है।
3: भारत सरकार और राज्य सरकार ने यहां की पूरी 90 किलोमीटर की जमीन जो है वो बीएसएफ के हाथों में सौंप दिया है। उसके बाद ये पूरी जो फेंसिंग तैयार होगी तो किसी भी तरीके से घुसपैठ इस पूरे इलाके में नहीं हो सकेगी। कैमरामैन पवन के साथ जीरो पॉइंट से जितेंद्र सिंह, आज तक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
8: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Presented by
12: Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
11: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
3: अब नीट पेपर लीक को हो रहे छात्र आंदोलन पर फिल्म अभिनेता सलमान खान की भी प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया पर सलमान खान ने कहा है कि छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है वो गलत है, वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जो छात्र घायल हुए हैं उनको लेकर भी अपनी संवेदना जताई है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो क्रेडिट है वो छात्रों को जाना चाहिए और इस प्रदर्शन का राजनीतिक रंग इसको नहीं लेना चाहिए।
11: प्रेजेंटेड बाय
12: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
13: Tune In is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
14: I have no idea how this election is going to play out,
13: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
15: देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पर रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं,

संसद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, संसद के बाहर आमने सामने सत्ता और विपक्ष, सदन के भीतर भी शोर शराबा हंगामा, कार्यवाही लगातार स्थगित। संसद में चर्चा पर गतिरोध को लेकर ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू, सरकार का आरोप, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। खड़गे ने दो टूक कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं बनेगी बात। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शने ना जाने का ऐलान। राहुल गांधी का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल को आना पड़ा। समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर से हमला, गोरखपुर से गर्जे, राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर से में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि छात्रों से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि छात्र आक्रोश को लेकर, खासतौर पर नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि देखिये, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि छात्रों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। 4 बार छात्रों को बातचीत का प्रस्ताव दिया जा चुका है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि छात्र जहां कहेंगे बातचीत के लिए, सरकार वहीं आने के लिए तैयार है। दफ्तर या जेपी नड्डा के घर हो सकती है बातचीत, यह भी जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है। और 4 बार बातचीत की कोशिश छात्रों के साथ की जा चुकी है, यह भी जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जहां पर भी छात्र चाहेंगे वहां बातचीत की जाएगी। और प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत को लिए केंद्र सरकार तैयार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया।
1: मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं, आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से, सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी, और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा, और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए जितेंद्र सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां पे भी छात्र चाहेंगे वहां पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जितना समय चर्चा के लिए सदन में चाहिए वो भी हम तैयार हैं। तो सरकार लगभग हर उस विषय को लेकर तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं की गई।
2: देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। 24 घंटे जो है वो बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप हमारे घर आ सकते हैं, हमारे दफ्तर में बातचीत के लिए आ सकते हैं। कोई तीसरा स्थान जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कल सीजेपी के जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि घर में मंत्री जी यानी जेपी नड्डा के घर पर या दफ्तर में मुलाकात नहीं होगी, कहीं थर्ड प्लेस पे जो है वो मुलाकात होगी। उसी पर आज सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि जो भी मुलाकात होगी वो तो घर पर होगी या फिर दफ्तर के अंदर होगी। तो और धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग है उस पर सरकार की तरफ से कोई भी इस तरीके की चीज नहीं कही गई है कि वो इस्तीफा होगा। एक चीज बड़ी समझनी होगी, जो प्रोटेस्टर्स की मांग है, जो मेमोरेंडम है, जो ज्ञापन है, उसमें जो 3 मांगे हैं उन पर सरकार ने कोई भी अभी तक ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार ये कह रही है आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं, जहां सहमति बन जाए वो सहमति हो सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी, आपको हिंसा नहीं करनी है। तो ये तमाम इश्यू है। सरकार का कहना है 4 बार उनको कॉल किया गया है, अभी तक प्रोटेस्टर जो है वो बातचीत के लिए नहीं आए हैं। 1 राउंड की बातचीत हो चुकी है, सोनम वांगचुक के पास जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं वो जा चुके हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सरकार की तरफ से हुई है। अब देखना यह है कि कैसे और आगे जो है बातचीत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का रुख साफ है, जो भी बातचीत होगी वो घर पर या मंत्रालय में होगी।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और अब वक्त है बात करेंगे 100 शहर 100 खबरों की।

0: नीट विवाद पर सरकार विपक्ष आमने सामने, रिजिजू ने कहा कि बहस से ना भागे विपक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार होने का दावा किया। पेपर लीक पर किरण रिजिजू की मांग पर बोले, आज तक जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये भी देश के सामने आना चाहिए। पेपर लीक पर अमित शाह का भी बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी का फैसला बताया मील का पत्थर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द और कठोर सजा दिलाने का भी जोर दिया। नीट पर विपक्ष को नितिन नवीन की चुनौती, बोले कि सदन में आकर करे खुली बहस, कहा कि एनडीए सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने समर्थन में डीयू कॉलेज कहा कि पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार हूं, श्यामलाल कॉलेज में लगाया वी स्टैंड विद धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर। और नीट पेपर लीक पर संसद परिसर में घमासान, मकर द्वार पर एनडीए और एनडीए गठबंधन आमने सामने, दोनों गठबंधनों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीट विवाद पर विपक्ष का भी हल्ला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, कहा कि छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री, लाठीचार्ज कराने वालों पर हो कार्रवाई, संसद में एनडीए ब्लॉक नेताओं की बैठक। छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस आक्रामक हुई है, प्रियंका गांधी बोली है कि युवाओं अब भी नहीं झुकेंगे, छात्रों से माफी की मांग भी दोहराई, कहा कि सबसे पहले लिया जाए मंत्री का इस्तीफा। नीट लीक मामले पर सीबीआई से जवाब तलब, जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हाउस एवेन्यू कोर्ट में, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से मांगा गया जवाब। दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट, सुरक्षा कारणों के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद कर दिए गए, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। नीट विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले कि युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, पेपर लीक मामलों से जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा की जा रही है निर्णयों की श्रृंखला में फास्ट ट्रैक कोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी बोले कि पेपर लीक कराने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं जरूरी कदम उठाने के निर्देश। पीएम मोदी ने पेपर लीक एक्शन पर सीजेपी का बयान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, सीजेपी ने कहा है कि नीट विवाद की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, जनपद मेट्रो के बाहर उमड़ी भारी भीड़, टॉल्स्टॉय मार्ग पर भी प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नीट विवाद पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला, बोले युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया, राहुल ने रखी छात्रों के तीन मांगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर सरकार को घेरा, छात्रों के समर्थन में उठाई आवाज, कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की जिम्मेदार लोग को नहीं पर हो कार्रवाई, छात्रों से माफी मांगने की अपील भी की। नीट विवाद पर खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले शिक्षा व्यवस्था को की गया बर्बाद, कहा कि छात्रों को आश्वासन नहीं ठोस कार्रवाई की जरूरत है। नीट विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा कि छात्रों के मुद्दे पर सोशल मीडिया नहीं संसद में चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सांसद नासिर हुसैन बोले हैं कि पहले शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा, सरकार जवाबदेही तय करे। सोनम वांगचू का वीडियो संदेश, कहा कि मैं अब भी जिंदा हूं, सरकार से बच्चों पर FIR बल प्रयोग न करने की अपील की। वांगचू ने वीडियो संदेश में कहा कि यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार तैयार, युवाओं की हर जायज चिंता का करेंगे समाधान। पेपर लीक पर निशिकांत दुबे का सख्त बयान, बोले कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कहा कि सजा इतनी कड़ी होगी कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, वीडियो जारी कर उठाए सवाल, बीजेपी ने पुराने बयानों को जोड़कर पूछा कि सहयोग है या प्रयोग। नीट छात्र आंदोलन पर सलमान खान की प्रतिक्रिया, बोले कि आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दे, हिंसा पर दुख जताते हुए घायल छात्रों और परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। नीट विवाद पर सलमान खान बोले कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, हिंसा दुखद है, सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उनका साथ देगी। नीट विरोध प्रदर्शन में समर्थन में उतरे आर माधवन अभिनेता ने मेडिकल अभ्यर्थियों की चिंता को लेकर जताई एकजुटता। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान। कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन से आज राज्यव्यापी शिक्षा शैक्षिक बंद किया गया। दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर सवाल खड़े हुए। जांच के घेरे में वीडियो मकोका समेत कई मामलों में आरोपी रह चुका है हाजी अफजल। प्रदर्शन में दिखा था हाजी अफजल। बिहार विधानसभा में विपक्षी संसद सदस्यों के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया। लगातार हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। मार्शल के बीच बचाव कर स्थिति संभाली और हाथापाई होते होते बची। नीट पेपर लीक मामले में जारी प्रदर्शन की आग अब पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी पहुंच गई। बेगूसराय में कई छात्र संगठनों ने मोर्चा निकाला है। कटिहार में दिल्ली के जंतर मंतर हुई लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस ने के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का हल्ला और लाठीचार्ज भी किया गया। लखनऊ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था के लिए 9 सदस्यीय संत समिति गठित की गई है। पूजा पद्धति पर्व उत्सव और वैदिक राम परंपरा में जुड़े फैसलों पर अब समिति लेगी फैसला। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव किया गया। दान राशि की गिनती का जिम्मा SBI कर्मचारियों के पास। मंदिर में तैनात सभी 36 डोनेशन काउंटिंग कर्मियों को बदला गया है। ज्ञानगंगा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दायर की अपनी नई याचिका। सावन में सीलबंद एरिया में कथित शिवलिंग की पूजा दर्शन और जल अभिषेक की मांगी है अनुमति। 2027 मिशन में जुट गया बीजेपी। यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 1.80 लाख से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का जोर दिया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। फरियादियों से सुनी समस्या। गोरखपुर मंदिर परिसर में लोगों से मिले मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले हैं कि विपक्ष को ये बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे कर्फ्यू लूटपाट खसोट और अराजकता का माहौल था। सोहेल देव भारतीय समाजवादी समाज पार्टी का आज यूपी में प्रदर्शन। लखनऊ समेत कई जिलों में होगा विरोध। सपा नेताओं का जाति सूचक टिप्पणी के आरोप को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। गाजीपुर में आर्म्स लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा। सपा सांसद अफजल अंसारी समेत 3 पर केस। 145 लाइसेंसों के सत्यापन में अनियमितता मिलने का की मिली है जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर। यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया है बड़ा बदलाव। करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस का रसू का SIT रिपोर्ट पेश होने के पहले NSA के तहत कार्रवाई। पहले भी 2 आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई। दिल्ली का आंदोलन पर मायावती की अपील। सरकार और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। कहा कि आंदोलन का राजनीतिकरण टकराव बढ़ रहा है। संवैधानिक संस्थाएं आगे आए। जोहर यूनिवर्सिटी विवाद पर सपा का प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर में छात्रों का धरना जारी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने के नेतृत्व में DM को सौंपा जाएगा ज्ञापन। गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग पर सपा का बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में। पूजा शुक्ला ने के नेतृत्व में काशीराम स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता। सहारनपुर में पुलिस बदमाश में मुठभेड़। शीट दानिश के पैर में लगी गोली। चोरी के मामले में वंचित आरोपी गिरफ्तार। 32,000 रुपए का इनाम। झांसी में ट्रेन का चपेट में आने से GRP के सिपाही की मौत। पत्नी की साथी पर लगाए गंभीर आरोप। पत्नी का दावा है कि साथी सिपाही ने धक्का दिया। रेलवे SP से लगाई न्याय के आरोप। गुजरात में बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही है। अहमदाबाद वलसाड़ और नवसारी सहित कई इलाकों में जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए लोग। अहमदाबाद में लगातार बारिश के कारण जलभराव ने पड़ाई लोगों की मुसीबत। शहर के कई सड़कें सैलाब में तब्दील हो गए। यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े तो साथ ही वासाणा बैरेज पर 3 दरवाजे खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। कई गांवों का संपर्क टूट गया, NH 48 बंद कर दिया गया। बाढ़ जैसे हालातों के कारण लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों, सड़कों, खेतों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड़ में लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश है। वापी शहर में जगह जगह पर जलभराव हो गया। कई सोसाइटियों में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ खतरे के निशान से पहुंचने के कारण 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तापी में SGRF की टीमें फांसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वलसाड़ में श्रमिकों को सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को आज पूरे दिन के लिए कामकाज बंद करने के निर्देश दिए गए। मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ने से सभी 10 गेट खोल दिए गए। डैम में दमनगंगा नदी में 2,59,000 पानी छोड़ा गया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जेपी नड्डा के हवाले से। कहा जा रहा है कि देखिए सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मेरे दफ्तर या सरकारी आवास में करे बात, ये जेपी नड्डा के हवाले से कहा गया।
1: ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय
2: जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने
3: तो यहाँ पे जेपी नड्डा साहब ये कहते हुए कि या तो रेजिडेंस पे आए या कोई औपचारिक जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जो मंत्री जिनको ये निर्धारित किया गया है काम, या तो उनके आवास पे ये बैठक होगी और नहीं तो उनके ऑफिस में ये बैठक होगी, तभी जो है आगे की जो कड़ी इसमें जुड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार जो है बातचीत के लिए ओपन है, कह रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर ये बातचीत है तो औपचारिक जगह पे होनी चाहिए जहां पे सरकार का या दफ्तर या आवास हो। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
2: मौसमी ने क्या था ऑफिस।
0: और आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। जेपी नड्डा ने यह कहा, हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर या सरकारी आवास में बात करें। जेपी नड्डा के की तरफ से यह बयान आया। आपको बता दें कि इससे पहले जितेंद्र सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि सरकार तैयार है, 4 बार प्रयास किए गए और सरकारी आवास या फिर दफ्तर में आके छात्र मिल सकते हैं। और एक बार फिर से जेपी नड्डा की तरफ से भी कहा गया कि हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। दोनों मंत्री वो हैं जो लगातार छात्रों से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर या सरकारी आवास में करे बात। और इस पूरे मसले पर मौसमी सिंह ने जेपी नड्डा से बातचीत की थी, उसी दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही।

0: कल किसी और ने प्रेशर दिया। ओके
1: मुलाकात के लिए तैयार है सर आप?
0: नहीं अभी नहीं। हाँ हम तैयार हैं
1: सर। कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन
0: पे? वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय
2: सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने
1: का। तो यहाँ पे जेपी नड्डा साहब ये कहते हुए कि या तो रेजिडेंस पे आए या कोई औपचारिक जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जो मंत्री जिनको ये निर्धारित किया गया है काम या तो उनके आवास पे ये बैठक होगी और नहीं तो उनके ऑफिस में ये बैठक होगी तभी जो है आगे की जो कड़ी इसमें जुड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार जो है बातचीत के लिए ओपन है, कह रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अगर ये बातचीत है तो औपचारिक जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे सरकार का या दफ्तर या आवास हो। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
3: देखिए जेपी नड्डा ने कहा कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी ये बात दोहराई थी। आइए उन्होंने क्या कहा था आपको एक बार फिर से सुनाते हैं।
4: मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की,

0: तो ऑफिस में भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें।
1: और आप उन दोनों नेताओं को सुन रहे थे, मंत्रियों को सुन रहे थे, जिन पर स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए कहा गया है। दोनों ने कहा कि सरकार तैयार है, लेकिन बातचीत दफ्तर या फिर उनके आवास पर ही होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
5: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
8: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
7: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
4: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंद बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रदर्शनकारी छात्रों से जेपी नड्डा की अपील, सरकारी दफ्तर या आवास पर आकर करें बात, आज तक के सवाल पर दिया जवाब। पेपर लीक पर पीएम मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान, राहुल का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे पीएम। पेपर लीक पर संसद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, संसद के बाहर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन के भीतर भी शोर शराबा हंगामा, कार्रवाई लगातार स्थगित। छात्रों के मसले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का भारी हंगामा, वेल में पहुंचने पर मार्शल को आना पड़ा। समाजवादी पार्टी पर योगी का आज फिर हमला, गोरखपुर से गरजे राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। छात्रों से बातचीत के मुद्दे पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, छात्र उनके दफ्तर पर या फिर उनके सरकारी आवास पर बातचीत कर सकते हैं। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र उनसे मिलना चाहते हैं वो दफ्तर या सरकारी आवास पर आकर बात कर सकते हैं।
2: मुलाकात के लिए तैयार है सर आप?
3: नहीं अभी नहीं। हाँ हम तैयार हैं
2: सर। कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन
3: में? वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय
4: जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने।
2: तो यहाँ पे जेपी नड्डा साहब ये कहते हुए कि या तो रेजिडेंस पे आए या कोई औपचारिक जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो मंत्री जिनको ये निर्धारित किया गया है काम, या तो उनके आवास पे ये बैठक होगी और नहीं तो उनके ऑफिस में ये बैठक होगी, तभी जो है आगे की जो कड़ी इसमें जुड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार जो है बातचीत के लिए ओपन है, कह रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अगर ये बातचीत है तो औपचारिक जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे सरकार का या दफ्तर या आवास हो। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। जब से छात्रों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से कई स्तर पर हमने बैठकों को देखा है। जितेंद्र सिंह तब पहुंचे थे जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के साथ पीएम आवास के पास धरने पर बैठे थे। अब इस पूरे मामले में जितेंद्र सिंह की मुलाकात अमित शाह से उनके घर पर हो रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सरकार की तरफ से हर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सामने हम देख रहे हैं सीजेपी की तरफ से शर्तें भी बहुत सारी रखी जा रही हैं। मसलन ये कि जो धरना स्थल है वहीं पर आकर आगे मुलाकात हो। विपक्षी पार्टियां भी अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखे हुए हैं। सरकार जिस तरीके से डील कर रही है उसमें क्या नया है अभी हिमांशु?
5: देखिए, एक तो बड़ी चीज ये है कि अब जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात नहीं चल रही है गृह मंत्री की, वो लोकसभा स्पीकर पीयूष गोयल के साथ उनकी मुलाकात चल रही है गृह मंत्री अमित शाह की। दूसरी बात, सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुलाकात या तो जेपी नड्डा के घर पे या उनके दफ्तर में होगी, कहीं तीसरे प्लेस पे कोई मुलाकात नहीं होगी। कल सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि मंत्री के घर पर या दफ्तर में नहीं, जंतर मंतर या किसी और अन्य स्थान पर मुलाकात हो। इस चीज को सरकार की तरफ से जो है एक सिरे से नकार दिया गया। उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत जो है वो मंत्री के घर पर या फिर उनके दफ्तर में ही होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। तो एक तरीके से अभी जो है बातचीत के क्रम में ये कह सकते हैं थोड़ा सा गतिरोध होगा, लेकिन सरकार ये कोशिश जरूर करेगी बैक चैनल बातचीत के जरिए प्रोटेस्टर्स को मनाने के लिए कि वो मंत्री के घर यानी जेपी नड्डा के घर पर या फिर उनके दफ्तर में मुलाकात के लिए आए। और अहम बात यही है गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो है लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ पीयूष गोयल हैं, और जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई जो है वो नहीं चल रही है, उसमें गतिरोध बना हुआ है, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, इस रणनीति को लेकर भी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर के बीच में बातचीत हो रही है।
0: शुक्रिया हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर और पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हो रही है गृहमंत्री की। जाहिर है सदन में भी जो कार्रवाई चले वो सुचारू रूप से कैसे चले इसको भी सरकार को इस समय देखना है। वैसे पेपर लीक पर संसद से सड़क तक संग्राम है। संसद में आज विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गई। सदन के बाहर और भीतर जमकर टकराव हुआ। सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है तो विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। याद सुबह की तस्वीरें हैं संसद परिसर के भीतर ही जो धर्मेंद्र प्रधान के को उनके पद से हटाए जाने की बर्खास्त करने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और नारेबाजी आप देख रहे हैं। सदन के भीतर कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य पर सार्थक चर्चा हो, इसीलिए विपक्ष से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप तय कर दीजिए चर्चा कब शुरू करनी है। सरकार तैयार है लेकिन शर्तें लगाकर बहाना मत बनाइए। किरण रिजिजू की तरफ से विपक्ष को ये अपील।
6: सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया, हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप पर्सनल मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया, आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं।
0: आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो 267 के तहत बहस हो।
7: सर, सरकार के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है, सभी जो बात आप रेज करेंगे उस पर जवाब भी
8: सर नॉन निगोशिएबल है। हमारे जमाने में सिर्फ 2 पैसे रेलवे के टिकट बढ़ाए तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिया। एक एलिगेशन हमारे बंसल साहब के ऊपर आया तो फौरन इस्तीफा दिया। हमारे जमाने में छोटी मोटी बात होती तो इस्तीफे मांगते थे, मांगने से पहले हमारे लोग देते थे, लेकिन इनको क्या हो गया? एक तरफ तो जो सही चीज़ों को भी, और हजारों बच्चे लाखों बच्चे हर जगह से आ गए हैं, हर जगह से वो लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम लाठी चलाते हो, रात में कल भी चलाए आप, और घसीटते लेके जाते हो बच्चों को और खास करके लेडी स्टूडेंट्स को, तो थोड़ी तो शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके बारे में, या उनको बुला के समझा के बात करके सुलझाने के बजाय वो डर के तुम लाठी चार्ज कर रहे, पत्रे तुम ही मार रहे हो। आप देखे होंगे आपके टीवी पे भी है, आप चैनल में। आप
7: सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि चर्चा हो इसको लेके आगे।
8: बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ
7: सर। जरा एक बात, मिटपात है, कोई मिटपात है? संसद कब तक नहीं
9: चलेगी सर? कब तक कोर्ट बना रहे हैं?
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है प्रधानमंत्री ने,
8: जब तक रिजिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं।
10: तो मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ ये कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और चर्चा तभी हो पाएगी जब इस्तीफा होगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
0: बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। सांसद रविशंकर प्रसाद आज तक से बातचीत में विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं।
11: रवि जी, आमना सामना हुआ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का।
12: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और पूरे सरकार के सचिवों को कहा है कि नौजवानों की समस्या के लिए सारी कार्रवाई करें। ये संसद में बहस नहीं करते। माननीय लोकसभा के स्पीकर ने कहा बहस को तैयार है, सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते। हम जवाब देने को तैयार है, वो भाग जाते हैं और कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये मतलब क्या है इसका? तो इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, बहस करेंगे नहीं और खाली भागेंगे, ये बहुत ही गलत है, इसके बहुत भर्त्सना करते हैं।
0: विपक्ष हमलावर है, आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए।
2: आज हमने देखा कि एनडीए और विपक्ष जो है आमने सामने नजर आया। एनडीए भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं विपक्ष को, क्या मायने थोड़ा धूप की तरफ कर
13: रहे? एनडीए क्या कर रहा है? कह रहा है कि भड़का रहे हैं।
2: हाँ, विपक्ष भड़काने का काम कर रहा
13: नहीं,
2: है।
13: नहीं, विपक्ष अगर स्वतः स्फूर्त आंदोलन को जन्म देता तो नजारा कुछ और होता। या करके ये सवाल जो यहाँ है ना, जंतर मंतर चले जाए, उन बच्चों के समक्ष ये बात कह दे, मैं उनके हिम्मत के दांत दूंगा।
2: प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट डाला कि हमें बहुत हितैषी है हम छात्रों के भविष्य को लेके और फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है?
13: जंतर मंतर संतुष्ट है, युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, जिसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
2: 14 से कभी इस्तीफा नहीं हुआ किसी मंत्री का आरोपों पे या विपक्ष।
13: आप इसे सफलता मानती है सरकार की?
2: मैं पूछ रही हूँ, इस बारी फर्क होगा?
13: नहीं, अकाउंटेबिलिटी को जो भी निजाम कवर करता है ना, वो बेईमान निजाम है।
0: सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को जवाब दिया।
14: प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और अपील भी किया है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है
7: जी।
14: तो व्हाट वाज द डिमांड फर्स्ट ऑफ द अपोजिशन?
7: डिस्कशन
14: इन द पार्लियामेंट। वी सेड वी आर ओके, इवन नाउ पार्लियामेंट मिनिस्टर हैज सेड जस्ट ए आवर बिफोर दैट वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन। तो डिस्कशन करो, इस कानून में और आप सख्त करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और ओके 10 इयर्स।
7: आपको लग रहा है डिस्कशन पे क्यों नहीं आ रहे सर?
14: नहीं, वो तो बाकी सब लोग तैयार है एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी।
7: बाकी सब मतलब आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी
14: तो उन्होंने बोल ही दिया पहले डिबेट शुरू करो। तो ये सब जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग इसमें पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें ये भी सबको सोचना होगा, तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे के बारे में हम बहुत सेंसिटिव है, लेकिन कुछ इंसिडेंट जो हो रहा है, हमारे पत्रकार को मार रहे हैं, महिला पत्रकार को मार रहे हैं, और उधर जो हो रहा है वो देश के हित में है क्या, ये भी सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, लेट अस डिबेट। अगर हम इधर डिबेट शुरू करते हैं तो देश में शांति बनेगा।
0: प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, सुनाते हैं।
15: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है? ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
16: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
0: इस बीच एक और खबर आपको बता दें, एनडीएमसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कोनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे ऑफिस और रेस्टोरेंट बंद करने की अपील की है। व्यापारियों के संगठन ने कोनॉट प्लेस में यानी राजीव चौक में जितने भी रेस्टोरेंट हैं या दफ्तर हैं उन सबको बंद करने की अपील की है आज शाम 6:30 बजे से। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्यों है ये अपील?
17: देखिए, जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनका कहना है कि एनडीएमसी की जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनकी तरफ से अपील की गई है कि आज जो है 6:30 बजे तक तमाम जो मार्केट्स हैं उनको फिलहाल जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए, क्योंकि पिछले दो दिन से जनपद और टॉलस्टॉय मार्ग पर जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस पर जो है पथराव किया गया, उसके बाद काफी ज्यादा उपद्रवी जो है वो सामने नजर आए थे, इसलिए आज जो है वो अपील की गई है। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तमाम जो व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कनॉट प्लेस में हैं, उनको अपील करके कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से उनके पास एक सर्कुलर आया है उसको देखते हुए फिलहाल जो मार्केट्स हैं उनको फिलहाल आज जो है वो बंद किया जाए। ये सिर्फ एक न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से व्यापारियों को कहा गया है, बाकी कॉल जो है वो तमाम व्यापारी और रेस्टोरेंट जो सीपी के अंदर शॉपकीपर्स है वो ही लेंगे। फिलहाल सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है।
0: बहुत शुक्रिया सुशांत मेहरा। सुरक्षा के लिहाज से कोनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे से रेस्टोरेंट दफ्तर बंद करने की जो अपील है उसके बारे में बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम चाहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चले, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। पीएम का साफ संदेश है, जो युवा शक्ति के सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम के सकारात्मक राजनीति की अपील के बाद पोस्ट पर राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल ने आगे लिखा, आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। पीएम मोदी की घोषणा के बाद नीट पेपर लीक के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर सरकार मिशन मोड में है। नीट पेपर लीक के आरोपियों पर अब नए नकल विरोधी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। केंद्र सरकार इस कानून के तहत जो मामले दर्ज हैं उनकी सुनवाई के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और उच्च न्यायालयों से इन मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का अनुरोध करेगी ताकि रोजाना सुनवाई हो, मामलों का निपटारा जल्दी हो सके।

0: इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांग कुछ और, पीएम समाधान कुछ और दे रहे हैं। अगर सरकार को भरोसा जगाना है तो मंत्री का इस्तीफा लेना ही होगा।
1: देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
0: फास्ट ट्रैक जस्टिस के समर्थन में उतरी बीजेपी सांसद कंगना रनौत तो महुआ मोइत्रा ने विरोध का रुख किया।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
3: किसके लिए 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं, आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे दाई है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल।
0: दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इस सब के बीच लगातार चौथे दिन भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गई।
4: आज हम भाजपा और NDA के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
5: तो हम तैयार होते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारा होता है और सदन नहीं चलने दिया जाता। सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी। मैं चैलेंज करता हूं, मीडिया बुला ली जाए और जो रिकॉर्ड हो रहा है अंदर रख दीजिए। जैसे ही सदन शुरू होता है जो रूलिंग पार्टी है वो डिस्टर्ब करने लगती
0: है। छात्रों के मसले पर उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमलों की बौछार की।
6: पंतप्रधानांनी आज एक ट्वीट केले, खरं म्हणजे त्यांनी जाऊन बोलायला काही हरकत नव्हती, म्हणजे याच्यामध्ये कमीपणा बाळगण्याचं काही कारण नाहीये। आपली मुलं आहेत, आपली जनता आहे, यांच्याबरोबर चर्चा करायला कमीपणा वाटण्याची गरज नाहीये। पहिल्या दिवशी जर का सरकारने यांच्याबरोबर चर्चेचे दरवाजे उघडले असते किंवा पहिल्या दिवशी जर का यांना बोलवलं असतं तर ही इथपर्यंत वेळ वाढली नसती, एवढी हे आंदोलन तांडलं गेलं नसतं। लोकांना आज व्यक्त व्हायचे, इतके वर्ष साठलेला राग असंतोष हा उफाळून वर आलेला आहे आणि त्याला एक वाट करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय। ही वाट करून देत असताना सर्वांना सांगतोय की कोणीही, कारण बरेच जण या असंतोषाच्या ठिणगीला वेगळं वळण लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत।
0: खबरें सरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach In association with
8: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo
12: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty

0: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिमाचल से उत्तराखंड तक मानसूनी आफत, कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड से घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानो बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में बादल फटने के एक दिन बाद कांगड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। कांगड़ा के शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप देखने को मिला। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से करीब 18 घर, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। मलबे में 9 गौशालाएं और कई मवेशी बह गए। बादल फटने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के बाकी इलाके भी मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। चंबा जिला इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश से पूजा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को बख्शे न जाने का ऐलान। राहुल गांधी का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर से मिले अमित शाह और पीयूष गोयल, संसद परिसर में आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन के भीतर भी हंगामा, कार्रवाई अब कल तक के लिए स्थगित। छात्रों के मामले पर बिहार विधानसभा में भी उबाल, कल पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष का हंगामा, वेल में पहुंचने पर आए मार्शल। समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज फिर हमला, गोरखपुर में कहा राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। नीट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज देश की सियासत न केवल संसद में बल्कि सड़कों पर तापमान जो है वह सातवें आसमान पर है। दिल्ली की अगर बात करें तो छात्रों और सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का उग्र प्रदर्शन आज भी जारी है, वहीं संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए भारी हंगामे और शोर शराबे के कारण राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं को साधने के लिए सरकार ने अपना रुख खासा लचीला और आज संजीदा फिर दिखाया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारी छात्रों से अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद छात्रों से मिलने के लिए तैयार है, चाहे ये वार्ता मंत्री के औपचारिक कार्यालय पर हो या फिर उनके आधिकारिक निवास पर। केंद्रीय मंत्रियों ने यह भी कहा कि सुबह 4 बार छात्रों से संपर्क साधने का प्रयास किया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे विषय पर बेहद संवेदनशील हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत में प्रतिभा और परिश्रम दोनों का न्याय होगा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष ने भी आज अपना वार तेज किया। संसद में आज एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन तो विरोध का प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी घटक दलों के सांसद ने भी मोर्चा खोला। वहीं सरकार को घेरने और अपनी नीति आगे की नीति को तय करने के लिए आज शाम 6 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आधारिक आवास यानी 5 सुनहरी बाग रोड और कांग्रेस के सभी लोकसभा सांसदों की एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। संसद में गतिरोध, छात्रों के प्रदर्शन और सरकार का बातचीत का न्योता जिस पर विपक्ष का बड़ा मंथन, बहुत सी खबरें हैं, एक एक कर आपको विस्तार से हम इनके बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरकार की ओर से वार्ता की कमान संभाल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार बातचीत के लिए, छात्रों के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह से पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बातचीत या तो उनके सरकारी दफ्तर पर होगी या फिर उनके सरकारी आवास पर होगी। सुनिए क्या कहा बीजेपी पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने।
3: नड्डा साहब, मुलाकात के लिए तैयार है सर आप?
4: अभी नहीं, हम तैयार हैं।
3: सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन
4: में? वो हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय।
5: सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने
3: तो यहाँ पे जेपी नड्डा साहब ये कहते हुए कि या तो रेजिडेंस पे आए या कोई औपचारिक जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो मंत्री जिनको ये निर्धारित किया गया है काम, या तो उनके आवास पे ये बैठक होगी और नहीं तो उनके ऑफिस में ये बैठक होगी, तभी जो है आगे की जो कड़ी इसमें जुड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार जो है बातचीत के लिए ओपन है, कह रही है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर ये बातचीत है तो औपचारिक जगह पे होनी चाहिए जहां पे सरकार का या दफ्तर या आवास हो। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि छात्र सरकार उनसे बातचीत के लिए निरंतर तैयार है, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, और इसीलिए वो बातचीत करने गए भी थे, छात्रों से बात कर भी रहे हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। सुनिए।
6: मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आर यूथ फ्रेंड्स, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी, और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा, और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
0: अच्छा, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का धरना भी लगातार जारी है। संसद मार्ग से जंतर मंतर वाले जाने वाले रास्ते पर इस समय बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा भी है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ग्राउंड जीरो पर है। कुछ झड़पें जो पहले हुई थी उसके बाद इस समय स्थिति क्या है, देखिए ये रिपोर्ट।
7: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूं और यहां से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बीते दो दिनों से इसी जगह पर प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें दिखाई दिया कि एक इंस्पेक्टर को घेर कर भीड़ ने मारा और एक एसीपी को मारा। फिलहाल आरएएफ की टीम यहां पर इसी तरह से तैनात है। कल की अगर बात करें तो कल भी इसी तरह से आरएएफ की टीम तैनात थी। जब आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बोतल फेंके गए, पत्थर फेंके गए और जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हैं, हम आपको जरा करीब से तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इस पूरे इलाके में अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी इस वक्त 3 बज रहे हैं, प्रदर्शनकारी एक तरफ है और ठीक उसके सामने आरएएफ के जवान मौजूद हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात की। कुछ ही देर पहले यह मुलाकात अभी खत्म हुई है। संसद में जारी गतिरोध और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। जो गतिरोध है इस समय संसद में विपक्ष के साथ, चर्चा होगी। सरकार बार बार यह कह चुकी है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का आरोप यह है कि विपक्ष चर्चा से कतरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले मंत्री का इस्तीफा हो या उसका आश्वासन हो, फिर चर्चा होगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संसद में जो गतिरोध है उस पर पार पाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
8: देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये मुलाकात बहुत खास भी है, क्योंकि पिछले जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से जो है संसद के दोनों ही सदनों में गतिरोध बना हुआ है, और इसीलिए जो है लोकसभा स्पीकर से आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद थे, और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा स्पीकर लगातार जो है वो विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि सरकार ये चाहती है किसी तरीके से ये गतिरोध जो है वो खत्म हो, और सरकार का ये कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है किसी भी नियम के तहत, लेकिन नियम तय होने चाहिए, समय तय होना चाहिए किस तारीख को होगा, इन सब चीजों पर जो है बैठकर चर्चा हो जाए, उसके बाद सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस बात को जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस बात को कह दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इस पर जो है वो फैसला लेना है।
0: अच्छा हिमांशु, ये बताइए विपक्ष क्या एक मत है कि पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार आश्वासन दे फिर ये चर्चा होगी, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इसमें अलग अलग मत रखते हैं अभी भी?
8: देखिए कल क्योंकि अखिलेश यादव जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया था इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है, आप चर्चा कराइए, क्योंकि जो प्रोटेस्टर है जो लड़कियां उसमें थी उनके कपड़े फटे हैं फाड़े गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप जो है बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार भी चर्चा चाहती है, नियम किस तरह तो ये तय नहीं है और इसलिए चर्चा जो है अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर सरकार को जो है वो घेर रहा है।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही आ रही है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों की सलाह पर NDTA न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे सभी दफ्तर और सभी रेस्टोरेंट बंद करने की बात की है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपील की है कि कनॉट प्लेस में जितने भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, दफ्तर हैं, आज शाम 6:30 बजे उन्हें बंद कर देना चाहिए। क्या इस बात का अंदेशा है कि देर रात वहां पर बड़ी संख्या में अगर छात्र छात्राएं जब इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच कुछ उपद्रवी तत्व भी आ जाते हैं और वो इस परिस्थिति का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ये इसकी एक बड़ी वजह है? आखिर क्यों कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट और दफ्तर को बंद करने की समय अपील की जा रही है? और इस बीच एक और बड़ी खबर जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से आ रही है। देश में करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि पेपर लीक मामलों में सुनवाई जो है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पेपर लीक के आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चलाया जाए और उन्होंने कहा कि उन्हें कानून के तहत जो भी पेपर लीक में शामिल होते हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके खिलाफ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बकायदा एक पोस्ट में कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है, जो युवा शक्ति के सपनों को कुचलने की साजिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
9: प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी, भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जो ये आंदोलन हो रहा है इसको भी एक बार समझने की आवश्यकता है। बच्चे ये ठीकरा जो है ये लीक के माध्यम से देना चाहते हैं, वो माँ बाप को ये समझाना चाहते हैं कि हम तो पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन ये लीक हो जाता है इसीलिए हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से वो लोगों के मन में ये निराशा का भाव नजर आता है। सभी गार्जियन को और बच्चों को ये समझने की आवश्यकता है कि जंतर मंतर आपका जगह नहीं है। आपको यदि मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप सबों को पढ़ाई के दरवाजे पर जाना होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। उन्होंने एक पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया बल्कि उसे बढ़ावा दिया और इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। सरकार का कहना यह है कि चर्चा संसद में हो और हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पेपर लीक पर एक राष्ट्रीय मत बनाने की कोशिश इस समय कर भी की जा रही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक संसद में गतिरोध जारी रहेगा। डिंपल यादव ने मंत्री के इस्तीफे के बाद चर्चा की मांग की है। तो यहां पर आप एक अंतर देख रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था और उस पर आज समाजवादी पार्टी का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। सुनिए।
10: सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं जिससे नौकरी न मिल छात्रों को मिल जाए, और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। ये सरकार नहीं, अहंकार है, अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जाने, वो क्या चाहते हैं, कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है। दबाव सरकार का नहीं चलने वाला है, सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और सरकार की गलती है इसीलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई थी।
11: हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई राजधानी में, इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया, और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं। सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। कोई डिमांड नहीं है छात्रों की। छात्र खाली ये बताने आए थे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है, और वो चाहती है कि छात्रों का मुद्दा है वो अब आए ना सामने।
0: संसद से अब आपको लिए चलते हैं सरहद पर। आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था कि सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने का काम एक दिन होकर रहेगा और एक भी घुसपैठिया भारत की सीमा में कदम नहीं रख पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वही दावा और आज उनका वो वादा जमीन पर खरा उतरता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश सीमा की। वहां से घुसपैठ का दी एंड होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुर्शिदाबाद के बाद जो खुला इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहां से लेकर सुंदरबन तक एक जो खौफनाक क्रीक है वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन दी एंड इस समय चला दिया है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन दी एंड? देखिए, मुर्शिदाबाद और सुंदरबन डेल्टा के इलाके से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह की यह सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।

0: पश्चिम बंगाल की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा और बड़ा हमला बोला था। अमित शाह ने साफ लफ्जों में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकार ने जानबूझकर सीमा पर तारबंदी के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी ताकि घुसपैठ को बढ़ावा मिलता रहे।
1: जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण।
0: गृह मंत्री के सख्त रोक के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हुई। शुभेंदु अधिकारी के ठोस कदमों के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य प्रशासन ने बीएसएफ को 1024.75 एकड़ जमीन सौंप दी है।
2: वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
0: जमीन मिलते ही सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अभेद बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।
3: जीरो पॉइंट बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और यहां से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश मौजूद है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले फेंसिंग यहां पर नहीं थी, कई राजनीतिक कारणों की वजह से इस पूरे इलाके में फेंसिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे इलाके में फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहां आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते

0: फिरने के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा।
1: भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो दुनिया की पांचवी सबसे लंबी भूमि सीमा है। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा 2217 किलोमीटर है। मौजूदा बाढ़ बंदी लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर हो चुकी है। करीब 300 से 350 किलोमीटर इलाका पानी से भरा है, जहां बाढ़ लगाना बेहद मुश्किल है। यहां जलमार्ग से पेट्रोलिंग की जाती है। बीजेपी के आते ही सुवेंदु अधिकारी ने 172.6 किलोमीटर नई स्मार्ट फेंसिंग के लिए 1024.75 एकड़ जमीन दे दी है।
2: एक तरफ जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ ने ग्राउंड पर आकर के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुर्शिदाबाद में जो सिंगल लेयर्ड स्टील फेंसिंग ये बनाना शुरू कर दिया है। ये स्मार्ट फेंसिंग होगी, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 फीट के आसपास होगी। और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जवान जो है उनकी निगरानी में इस तरीके की ये स्टील फेंसिंग तैयार की जा रही है। ये स्मार्ट फेंसिंग वैसी होगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई भी घुसपैठिया यहां से सीमा के उस पार से अंदर की तरफ भारत के अंदर ना आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती थी वो मुर्शिदाबाद के इलाके से होती थी। जैसे ही सरकार बदली, उसके बाद से इस तरीके के कड़े कदम उठाए गए।
1: बीएसएफ को ये जमीन 9 अलग अलग संवेदनशील जिलों में दी गई है, ताकि उन रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके जहां से अब तक अवैध घुसपैठ और तस्करी होती थी। आज तक की टीम देश की पहली ऐसी मीडिया टीम है जिसने इन सभी इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है।
2: ये सिंगल लेयर्ड जो फेंसिंग बनाई गई है, ये खास तरीके की फेंसिंग है, और पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर जमीन नहीं पहले दी गई थी, यहां पर अब जमीन का आवंटन हो चुका है। और इस तरीके से आप देखिए कि इन कटीले तारों को यहां पर लगाया जा रहा है कि जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। आज तक पहला चैनल है जो कि इस पूरे इलाके में यहां पर पहुंचा हुआ है, और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये फेंसिंग ऐसी है जो कि पूरी तरीके से स्टील की बनी हुई है, और इसमें जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसको ये पहली दीवार के तौर पर काम करेगा, और घुसपैठ को पूरी तरीके से इससे रोका जा सकेगा।
1: जमीनी सीमा के बाद अब रुख करते हैं भारत बांग्लादेश के सबसे जटिल और खतरनाक सीमा क्षेत्र सुंदरबन का। सुंदरबन की इन पतली क्रीक गलियों में बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है। आज तक की टीम जब ग्राउंड पर मौजूद थी, तभी वाटरवेज पर एक संदिग्ध नाव दिखाई दी। बीएसएफ की वाटर विंग ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस नाव को इंटरसेप्ट किया।
2: तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो सुंदरबन का इलाका है, आप दूसरी तरफ जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन है बांग्लादेश की। अब यहां जिस तरीके से एक फिशिंग बोट दिखाई पड़ी है संदिग्ध तौर पर, जिसको कि बीएसएफ के जवानों ने यहां साबरमती फोर, जो इनके पास इस वक्त नाव मौजूद है, उसके जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां इनको रोका गया है, इंगेज किया जा रहा है। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो इलीगल घुसपैठ की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर के बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस पूरे इलाके से हर एक व्यक्ति की छानबीन की जाए। और ये छानबीन यहां पर आपको की जा रही है। तस्वीरों में आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि दूसरी बोट जो है वो आकर के पीछे की तरफ से इधर इंगेज कर रही है, और इसके साथ साथ उनके सामान को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सुंदरबन का एरिया है इसके आगे की तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है, जहां से ये लोग फिशिंग करते हुए आगे की तरफ निकल आते हैं।
1: बीएसएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में घुसपैठियों को रोकने की है जहां सैलाब ही सैलाब है। इसका इलाज है बीएसएफ की 8 फ्लोटिंग बीओपी, यानी तैरता बॉर्डर आउटपोस्ट।
2: पश्चिम बंगाल सुंदरबन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और बीएसएफ किस तरीके से 24 घंटे निगहबानी इस पूरे इलाके में कर रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है। यहां हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि आगे कुछ इलाके हैं जहां पर स्मार्ट फेंसिंग भी बनाई जा रही है, लेकिन जो वाटरवेज हैं यहां पर किस तरीके से निगहबानी करना है बीएसएफ के जवान, यहां तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो कि आगे की तरफ इसी पानी में ही जीरो लाइन पड़ता है, जहां से

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रदर्शनकारी छात्रों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अपील, सरकारी दफ्तर या आवास पर आकर बात करें, आज तक के सवाल पर दिया जवाब। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का ऐलान, राहुल गांधी का जवाबी पोस्ट, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर से मिले अमित शाह और पीयूष गोयल, संसद परिसर में आमने सामने सत्ता और विपक्ष, सदन के भीतर भी हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित।

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। और बात एक ऐसे रण की जो आसमानी आफत से है। जी हां, कुदरत का ऐसा कहर कि आसमान से बरसती हर बूंद अब आफत बन चुकी है। और देश में किसी एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में इस वक्त मूसलाधार वर्षा, और मूसलाधार वर्षा की वजह से बाढ़ और भीषण संकट की हम बात कर रहे हैं। नदियां समय उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न है। हालात इतने डरावने हैं कि गाड़ियां पानी में या तो तैर रही हैं या डूब रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर पानी घुस आया है और एक तरह से सैलाब समय सड़कों पर है। इस मानसूनी आफत में सबसे ज्यादा अगर हालात बिगड़े हैं तो भारत के पश्चिमी छोर पर। हम बात करते हैं गुजरात की, वलसाड जिले की। अगर बात करें तो वलसाड में आज लगातार तीसरे दिन भी बिना थमे मूसलाधार बारिश हो रही है। वलसाड के वापी से जो इस समय तस्वीरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां मानो जिंदगी का पहिया पूरी तरह से थम नहीं, डूब गया है। गलियों से लेकर मुख्य बाजार तक सिर्फ पानी ही पानी हर ओर नजर आ रहा है। पता नहीं चल रहा कहां नदी, कहां सड़क, कहां और पानी है, क्योंकि आफत सिर्फ वलसाड में सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पूरे गुजरात में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। क्या अहमदाबाद, क्या सूरत, क्या नवसारी, राज्य के कई इलाकों में लोग पहले तो बूंद बूंद के लिए तरसते थे, अब सांस सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुजरात में कुदरत के प्रहार के बीच देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी पूरी तरह एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की, राज्य में भारी बारिश से जो हालात है उसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की ओर से राहत बचाव और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

0: सड़कों पर कारें डूबी हुई है। स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई है। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए। पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। यह हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आईं। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है।
1: इस बार बारह वर्षा की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
0: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
2: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूँ तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
0: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिकबाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
3: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिकबाग इलाका, मानिकबाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
0: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
4: सड़कों पर लहरें जैसे आ गई हो आप देख रहे हैं गुजरात में, और यह स्थिति केवल गुजरात की नहीं है, आपको मैं महाराष्ट्र लिए चलता हूं। कई शहरों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जनजीवन कई इलाकों में ठप हो गया है। पानी के संकट के बीच सब सूना है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहीं भी जाने न जाने बस इसी संकट में लोग फंसे हुए हैं। गाड़ियों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगा हुआ है। ये खबर महाराष्ट्र से।

0: ये किसी झील के किनारे बसा शहर नहीं है और ना ही ये कोई तैरता शहर है। लगातार भारी बारिश ने इन रिहायशी इलाकों की हालत ऐसी कर दी है कि इलाका वीरान पड़ गया है। ये महाराष्ट्र के पालघर का तहानू इलाका है। यहाँ हालात ऐसे हैं मानो इस पॉश कॉलोनी के बीचों बीच नदी बह रही हो। जहां तक नजरें जा पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब वाले संकट के बीच खड़ी ये ऊंची इमारतें दिख रही हैं। इन लहरों में कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर आवाजाही कर रहे हैं। आना जाना मजबूरी है, ऐसे में वो संभल संभल कर रोजमर्रा के काम को पूरा कर रहे हैं। अब पालघर शहर की एक और तस्वीर देख लीजिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। शहर के बीचों बीच की हालत डरावनी हो गई है। वहां सड़कों पर 3 से 4 फीट तक तेज रफ्तार पानी बह रहा है। कहीं कहीं तो बाइक भी डूबी नजर आई। दहानू बस डिपो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहां भी समंदर जैसे हालात दिखे। लोग कमर भर पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर रहे। पालघर के ज्यादातर निचले इलाकों में यही मंजर है। शहर के कंकराटी रोड और ईरानी रोड पानी में डूब गए। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया। सोसाइटी में पानी भरने से अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर डूब गया। उधर वसई में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वहां लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद की हालत देखिए। कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। नाला सोपारापुर के नाला नगर में तो रिक्शा और अन्य गाड़ियां पानी में मानो तैरने लगी। यहां भी मॉनसून की आफत टूटी है। उसका असर है कि शहर में सन्नाटा पसरा है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉनसून दोबारा एक्टिव हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश थम गई थी। अब एक बार फिर से बारिश ने डराया है। नदियों, नालों और बांधों में जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति कई इलाकों में है, लेकिन पालघर और वसई में जारी संकट से लोग सावधान हैं। प्रशासन भी लगातार उन्हें आगाह कर रहा है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सतर्कता बरतें। पालघर से मोहम्मद हुसैन खान और वसई से प्रवीण नालावड़े के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो आपने पालघर और वसई से आज तक की ये रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको लिए चलता हूं नासिक, जहां पिछले 2 दिनों से तेज वर्षा हो रही है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नासिक फायर ब्रिगेड ने इस पानी में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए बकायदा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। गोदावरी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, आशंका यह है कि यह खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा सकता है। नासिक में डारना और गंगापुर डैम से पानी अब छोड़ा जाना शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। तो रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगह तैनात की जा रही हैं, लेकिन आफत की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको पश्चिम भारत से दिखाई, अब हम आपको उत्तर भारत लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार वर्षा इस समय हो रही है। उसका असर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों? 2 वजह। एक फ्लैश फ्लड और दूसरा एकाएक तेज पानी आने से भूस्खलन या लैंडस्लाइड भी हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से संकट गहराता जा रहा है और भूस्खलन की वजह से लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित इलाकों में चले जाएं।

0: जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं, कैसे हैं, खतरा कितना है, संकट कितना बड़ा है, इन बहुत से सवालों के जवाब इन हाहाकारी तस्वीरों से मिल रहे हैं। ये रियासी का सलाल डैम है। तस्वीरें एक दिन पहले की हैं जब डैम के गेट खोलने पड़े। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 17 जुलाई से ही रियासी का इलाका मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि चिनाब और अन्य नदी नालों का जलस्तर बेहिसाब बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। लगे हाथ बगलियार डैम के सभी गेट भी खोलने पड़े। अब NHPC सलाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि डेंजर लेवल पर पहुंच चुके चिनाब के जलस्तर को देखते हुए किनारे पर जाने से बचें।
1: देख सकते हैं कि डैम के सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। भारी मानसून चल रहा है जिसकी वजह से नदियां नाले जो है उफान पर हैं। पानी काफी जमा होने के कारण जो है वो डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। आपको बता दें रामबन जिला में स्थित बगलियार डैम के भी सारे गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं और एक चेतावनी जो है वो NHPC सलाल द्वारा जो है वो दी गई है कि चिनाब के नदी के किनारे अगर कोई भी माल मवेशी चराने जाता है तो किसी किस्म का हादसा ना हो, कोई भी इंसान जो है वो नदी के किनारे पर ना जाए।
0: राजौरी में लगातार बारिश के बाद से पहाड़ों पर सैलाब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। एक दिन पहले डोडा में भूस्खलन की दर्दनाक घटना हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तबाही मचाते हुए गिरे। एक गाड़ी बोल्डर की चपेट में आ गई। गाड़ी का अगला हिस्सा मलबे से पूरी तरह तबाह हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे तबाह गाड़ी को डेंजर जोन से निकाला। उफनती नदियों का तांडव रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। गुरेड में बदतर हालात की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां एक इलाके में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू कर्मी लगातार बचाव कार्य में जुटे दिखे। संकट का दायरा काफी ज्यादा है। जम्मू से कश्मीर तक आफत ही आफत है। श्रीनगर के तेलबन इलाके की हालत आपके सामने है। वहां भी नदी नाले उफान पर हैं। संकट बेहिसाब बढ़ा हुआ है। बांदीपोरा में तो सैलाब ने एक महिला की जान ले ली। वहां रेस्क्यू टीम ने उफनती लहरों के बीच से काफी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहे ताजा संकट।
2: और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार की ओर से बातचीत का जो ऑफर दिया गया था छात्र दलों को, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों का कहना है कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के आवास पर नहीं मिलने जाएंगे, ना ही मंत्रालय में उनके दफ्तर जाएंगे। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि बातचीत की जगह या तो सरकार जंतर मंतर आए या फिर कोई न्यूट्रल जगह तय की जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन की अपील भी की है। पीयूष मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार ने 4 बार बातचीत के लिए अपील की, कॉकरोच जनता पार्टी ने उसे ठुकरा दिया है कि हम ना सरकार के पास जाएंगे, उनके दफ्तर, ना मंत्री के घर। किस न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं पीयूष?
3: जी बिल्कुल गौरव, एक चीज साफ है कि सरकार ने बातचीत के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। CJP को आज ऑफर भी दिया गया, उनको कहा गया कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है और बातचीत जो है या तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के घर पर हो सकती है या फिर उनके मंत्रालय में हो सकती है। लेकिन अब इस ऑफर को CJP ने ठुकरा दिया और उनका ये कहना है कि या तो वो एक न्यूट्रल जगह बताएं या जंतर मंतर पर आए। इससे पहले CJP ने कहा था जंतर मंतर के दायरे के 700 मीटर के दायरे में कोई जगह तय कर ली जाए जहां पर बातचीत हो। लेकिन सरकार का यह मानना है कि ये एक सरकार है और एक सिस्टम के तहत ही चीजें होती हैं। अब जो न्यूट्रल जगह है उसको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई लोकेशन जो है वो क्लैरिफाई नहीं की गई है CJP के द्वारा। लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस पूरी इन सभी चीजों का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है जानने की कि इससे पहले जो पहले राउंड की वार्ता सीजेपी के साथ हुई थी वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर ही हुई थी, लेकिन अब सीजेपी इस बात को क्यों ठुकरा रहा है ये आगे आने समय में पता चलेगा।
2: आप पीयूष इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। कुछ समय पहले इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि सीजेपी चाहती है कि संभवतः कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत हो जाए या कहीं और ऐसी जगह जहां यह न लगे कि कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदे सरकार के पास बातचीत करने के लिए पहुंचे। सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
9: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits. Classic rock. Coffee House, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
10: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट।

0: प्रदर्शनकारी छात्रों से केंद्रीय मंत्री नड्डा की अपील, सरकारी दफ्तर या आवास पर आकर करे बात, सीजेपी का जवाब, जंतर मंतर या किसी तटस्थ जगह पर करेंगे मुलाकात, कल देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान। पेपर लीक पर पीएम मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का ऐलान, राहुल की मांग, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर से मिले अमित शाह और पीयूष गोयल, संसद परिसर में आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष, हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने फिर बोला हमला, गोरखपुर में कहा राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की करते हैं बात, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे। उत्तर से पूरब और पश्चिम तक जल प्रलय, गुजरात के बलसाड और सूरत में बिगड़े हालात, पीएम मोदी ने सीएम से की मदद की बात, असम में अब तक 41 लोगों की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और संसद में चल रही राजनीति पर है। आंदोलन के आज 26 दिन हो चुके हैं, जबकि संसद में सियासत के 4 दिन। चौथे दिन पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदर्शन करते देखे गए। विपक्षी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। सत्ता पक्ष के लोग सांसद संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे। दोनों सदनों में वैसे ही शोरगुल के बाद स्थगित किया गया, लेकिन आज सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई का भरोसा दिया है। दूसरा, सरकार ने कहा है कि सीजेपी वाले जब चाहे सरकारी दफ्तर या मंत्री के घर पर बात करने के लिए आ सकते हैं। बीजेपी की तरफ से जवाब, सीजेपी की तरफ से जवाब पहले नहीं दिया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि वो या तो जंतर मंतर पर या किसी ऐसे स्थल पर जो सरकारी दफ्तर या मंत्री का घर न हो वहां पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी अड़े हुए हैं। और इसी बीच सीजेपी ने ग्राउंड पर काम कर रहे पत्रकारों पर हमले नहीं करने की अपील भी की है। उधर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शाम 6:30 बजे तक कैनॉट प्लेस की दुकानें बंद कर देने की अपील भी की है। सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, लेकिन इस बीच सवाल बना हुआ है। और अब सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठने लगा है। सीजेपी और विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि पेपर लीक पर कार्रवाई तो अनिवार्य ही है, लेकिन सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम का है। इस सिस्टम में कैसे देश के नौजवानों के भविष्य की चुनौतियां बढ़ाई है और देश का नुकसान कैसे हो रहा है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। तो तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। यह संसद का लॉक जैम कब खत्म होगा, यह राजनीति कब खत्म होगी, इस पर भी सवाल पूछेंगे। तमाम चर्चा है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: चार दिन हो गए देश की संसद में लॉक जाम खत्म नहीं हुआ। विरोध आमने सामने के प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। सरकार कहती है चर्चा कर लो, कांग्रेस कहती है पहले इस्तीफा लो। पहली बार संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग रखते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
2: पहला डिसिग्नेशन डिस्कशन शुरू होता।
3: सरकार बहस को तैयार है, वो बात शुरू नहीं करते। हम जवाब देने को तैयार है, वो भाग जाते हैं।
4: पैरोकार होते तो उनकी समस्याओं को लेकर के सिर्फ तख्ती नहीं दिखाते, बल्कि चर्चा को तैयार होते।
1: मुद्दा वही, मांगे वही, प्रदर्शनकारियों की भी और विपक्ष की भी। उन मांगों पर तवज्जो दिए बिना सरकार ने एक बड़ा आश्वासन जरूर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। लिखा, बहुत जल्द मिशन मोड में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसमें 2024 में बने एंटी पेपर लीक कानून के तहत सुनवाई होगी। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट 4 राज्यों में बनेंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में इसी कानून के तहत अब तक 4 FIR दर्ज हैं। इन मामलों की सुनवाई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार में प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल 4 दर्ज मामलों में से 2 मामले बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
5: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है? ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है।
6: जंतर मंतर संतुष्ट है, युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं।
7: मूल मांग पे कुछ नहीं कहा, और मूल मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो।
8: प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
1: दरअसल मौजूदा हालात में सरकार और सीजेपी ने जो रुख अख्तियार किया, उसे देखकर लगता है सरकार के लिए पेपर लीक का मुद्दा मतलब सिर्फ नीट 2026 का पेपर लीक, जबकि प्रदर्शनकारियों का मुद्दा दर्जनों पेपर लीक का है। सरकार के लिए कार्रवाई का मतलब 13 आरोपियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, लेकिन विपक्ष और सीजेपी के लिए कार्रवाई मतलब पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सरकार के लिए सुधार मतलब सफलतापूर्वक रीनीट करा लेना, जबकि प्रदर्शनकारियों के लिए सुधार का मतलब पेपर लीक की ठोस जवाबदेही और नुकसान का मुआवजा। मांग और कार्रवाई के इसी फर्क में तमाम सियासत जारी है। विपक्षी दल अपनी मांग लेकर सरकार से स्कोर सेटल कर रहे हैं। उधर सरकार इस आंदोलन के पीछे सियासत से सावधान रहने की अपील करती है। कभी सरकार के मंत्री नेता गैर बीजेपी शासन में हुए पेपर लीक के आंकड़े दिखाकर विपक्ष पर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। धरना अनशन जारी है। उधर मेदांता से सोनम वांगचुक ने आंदोलनकारियों पर केस नहीं करने के वादे पर अनशन तोड़ने की शर्त रखी है। इधर सरकार सीजेपी से बातचीत का ऑफर दे रही है।
9: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। के साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। वहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
10: मुलाकात के लिए तैयार है सर आप?
11: हाँ, हाँ। नहीं, अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं।
10: सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन?
11: नहीं, वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्री।
1: लेकिन सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। बाकी सियासी दलों की मांगों की लिस्ट लंबी है। अब सीन कुछ ऐसा है, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का एक असली मोर्चा जंतर मंतर पर खुला है, जहां प्रदर्शनकारी नौजवान हैं। दूसरा मोर्चा नेताओं ने खोल रखा है, जो बारी बारी से जंतर मंतर जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे खुला है, जहां चंद्रशेखर आजाद के धरने में ओवैसी और आम आदमी पार्टी सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। चौथा मोर्चा मेदांता अस्पताल में है, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती किया गया, वहां भी नेताओं का तांता लग रहा है। बाकी राजनीति जारी है, संसद में सिर्फ शोर है। बाकी कार्रवाई कल फिर शुरू होगी। कल तक सियासत कुछ नया रुख अख्तियार कर सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो सरकार कह रही है कि हमारी निजी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के एजुकेशन सिस्टम के प्रतिष्ठा का सवाल तो जरूर बन गया है, और वहां पर स्टूडेंट्स अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कैसे चर्चा होगी उस पर ध्यान देंगे। लेकिन इस बीच चर्चा शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर यह है कि हिंसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। और यह भी कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, अगर दंगा करते पकड़े गए तो पासपोर्ट तक रद्द हो सकते हैं। ये कार्रवाई करने की का सूत्रों के हवाले से ऐलान दिल्ली पुलिस कर रही है। दरअसल सोनम वांगचुक ये मांग कर चुके हैं कि छात्रों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या खबर है? दिल्ली पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है इस मामले पर, और किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है?
12: देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है साहिल की, जो लोग दंगा करते हुए पकड़े जाएंगे, अब पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनका पासपोर्ट भी रद्द करेगी। ये हमें जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने दी है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी है, उनके लिए जंतर मंतर है, वहां पर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो बीते दिनों खासतौर से 21 और 22 जुलाई को जिस तरह से कुछ लोगों ने पुलिस पर अटैक किया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा, कई पुलिस कर्मी जख्मी है, एसीपी जख्मी है, उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है कि जो दंगा करेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो दंगा करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा, और रद्द करने की कार्रवाई
0: अब तक 10 FIR अननोन अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उन्हें आइडेंटिफाई करने का क्या सिलसिला शुरू हो चुका है?
12: बिल्कुल, देखिए, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज और वीडियो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। 10 से ज्यादा FIR दर्ज है। शुरुआत में जब 20 जुलाई को पूरा यह हिंसा हुआ था, तो एहतियात के तौर पर 70 लोगों को हिरासत में लिया गया था। बाद में उनको गिरफ्तार करके, उनको कानूनी कार्रवाई करके, चूंकि वो शांति भंग करने का आरोप था, इस वजह से उनको जमानत मिल गई थी। फिलहाल वीडियो में जितने लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, उसके बाद फिर आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी
0: ठीक है, पुलिस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि सख्ती पुलिस की तरफ से बरती गई। 65 लोग राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा हमको ये जानकारी दे रहे थे कि अगर दंगा करते पकड़े गए वहां पर प्रोटेस्ट के बाहर, तो उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पासपोर्ट भी उनका रद्द किया जाएगा। लेकिन इस इस एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, ये तो कार्रवाइयां चलती रहेगी। लेकिन इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही है, खबर यह आ रही है कि जंतर बंतर के प्रदर्शन से दरअसल जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। खबर यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि अब यह नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, 24 तारीख को यानी कल नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने का भी ऐलान किया गया है। और उसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि विदेशी हाथ भी इसके पीछे हो सकता है। तो जंतर बंतर के प्रदर्शन से जुड़ी यह खबर एक बार फिर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि विदेशी साजिश का हाथ इसके पीछे हो सकता है, यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। पिछली बार नोएडा में भी जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी पुलिस का यह दावा था कि कहीं विदेशी हाथ इसके पीछे हो सकता है क्या। हालांकि सोशल मीडिया खातों की पहचान की गई है और कहा गया है कि 400 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स यहां पर अलग अलग खबरें प्लांट कर रहे हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। एक बार फिर सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अभी तक अधिकृत तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ पीयूष इस वक्त संवाददाता हमारे पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी यहां पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, गलत खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, यही आरोप है सूत्रों के हवाले से।
13: जी बिल्कुल साहिल, ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लगभग 400 ऐसे अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो इस वक्त एक्स पर एक्टिव हैं, और इन सभी अकाउंट्स के जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इन सबके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और ये जो अकाउंट्स हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ चीजें फैला रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सरकार के खिलाफ फैला रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन लगातार जो है अब कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ गलत जानकारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश इन अकाउंट्स के द्वारा की जा रही है, और इन सभी अकाउंट्स के पाकिस्तानी कनेक्शन है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि अब जल्द इन 400 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी
0: जो भारतीय अकाउंट्स हैं जिनके जरिए भी बातें रखी गई है इस सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर काफी चर्चा चल रही है पीयूष, तो क्या उस पर भी नजर रखी जाएगी?
13: देखिए एक चीज साफ है कि जो इंडियन अकाउंट्स हैं और उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उन पर नजर तो है ही, साथ साथ जो पाकिस्तानी अकाउंट है जो जिनका कोई नाम नहीं है, कोई ऐसा स्लैंग यूज कर लिया जाता है जिससे पता नहीं चल पाता कि ये कहां का इसका ओरिजिन है, और कुछ इंडियन नेम्स के साथ
0: कई बार ये देखा गया है कि लेजिटिमेट आंदोलनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी की जाती है और सरकार की तरफ से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम पर भी बहस होना जरूरी है, और इस एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, उस श्रृंखला के तहत पहला कदम प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक वो भी इस चर्चा में आ रहे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण ये वाइस चांसलर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के TISS के, वो भी चर्चा में आएंगे, और प्रोफेसर JS राजपूत पूर्व डायरेक्टर है NCERT के, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री ये प्रिंसिपल है शहीद भगत सिंह कॉलेज के, वो भी चर्चा में आएंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखूंगा। पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था की उनके इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों, अगर समस्याएं हल करनी है तो सिर्फ इस्तीफे से हल होगी क्या, ये एक सवाल होगा। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी के 26 दिन के आंदोलन CJP के 26 दिन के आंदोलन के बाद फास्ट ट्रैक का ऐलान ये एक पर्याप्त कदम है? हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में ये पहला कदम है, लेकिन क्या ये पर्याप्त कदम है, क्या और भी कदम उठाना जरूरी है? तीसरा सवाल, पेपर लीक पर विपक्ष संसद में चर्चा की पेशकश से पीछे क्यों हट रहा है? क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष अब आरोप लगा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले पर्चा फिर चर्चा, यानी पहले इस्तीफा और उसके बाद ही चर्चा शुरू करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आखिरकार यह है कि आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा किस बात पर होगी, पेपर लीक पर होगी या जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं आज की स्थिति में, उस पर आप चर्चा करना चाहते हैं?
14: देखिए साहिल जी, समग्र शिक्षा प्रणाली पर भी चर्चा की जा सकती है। परीक्षाओं में जिस तरह की लीक्स हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष विपक्ष के सत्ता पक्ष के दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं और हम किस प्रक्रिया से कितनी देर के लिए किन किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर हम तय कर सकते हैं। विपक्ष को इससे भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसद का सदन जो है इस तरह की सार्थक चर्चा का सबसे बेहतरीन मंच है और उस मंच का सदुपयोग मुझे लगता है विपक्ष को करने से जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। समग्र शिक्षा प्रणाली पर भी चर्चा करने में मुझे लगता है कि किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था किस तरह से करें, हम परीक्षाओं की व्यवस्था से किस तरह से करें, हम रोजगार परक शिक्षा प्रणाली को में क्या और जो है नई चीजें क्या हम उसमें ला सकते हैं, इस पर चर्चा करें। शिक्षाविदों से भी हम इस पर विमर्श कर सकते हैं और हमारे संसद में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा क्षेत्र में योगदान रहा है, ऐसे लोगों को भी अपनी बातें रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो चर्चा करने से भागने का क्या औचित्य। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से
0: विपक्ष कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, जिस तरीके का माहौल सदन के बाहर बना हुआ है, देश में बना हुआ है, ऐसे में स्थगन प्रस्ताव लाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। कई बार पार्लियामेंट के भीतर जो अहम मुद्दे हैं उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। कई बार जो सदन के बाहर जो चीजें हो रही है उस पर अगर अर्जेंट चर्चा कर रही है तो उस पर भी हो सकती है।
14: नहीं, स्थगन प्रस्ताव स्वीकारना या अस्वीकार करना है तो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष का जो है विशेष अधिकार, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर जो है व्यापक चर्चा भी तय की जा सकती है। वो दीर्घकालिक चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी जो है बात हो सकती है। आप जो सदन के नेता राज्यसभा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल ही स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि हम हर तरह से चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक सार्थक चर्चा का अंग बनना चाहिए।
0: सार्थक चर्चा का अंग बनिए अखिलेश प्रताप सिंह, पर्चे की मांग छोड़ दीजिएगा, चर्चा शुरू कर दीजिएगा।
15: साहिल जी,
0: सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे
15: हैं। साहिल जी, पिछले कई वर्षों से राहुल जी कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि देश में जितने पर्चे लीक हो रहे हैं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें विशेष तौर से परीक्षा, वो सिर्फ कुछ रिच और प्रिविलेज लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे सुधार होना चाहिए। कई सालों से कह रहे हैं और हर महीने कहते हैं, हर महीने इस तरह की बातों में जाकर के मीटिंगों में जनसभाओं में लड़कों के बीच छात्रों के बीच ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा, क्योंकि सरकार ने बीजेपी की जो 14 अटल जी के बाद की जो बीजेपी है उसने भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार बना लिया है और वो काम पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 7.5 करोड़ नौजवानों ने पिछले 8-10 वर्षों में इससे प्रभावित हुए और उनको निराशा हाथ लगी और आज भी ये सरकार चेत नहीं रही है। बार बार कहा जा रहा है राहुल जी की बातों से, फिर भी सरकार पे असर नहीं पड़ता है। एक नकारा शिक्षा मंत्री जो 5 साल से अधिक समय में है, सिर्फ उसके उदामन पे दाग ही दाग हैं उस विभाग के और शिक्षा के, उसे क्यों बचाया जा रहा है? साफ है उसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं, किसी के इशारे पर वो ईमानदारी से ये भ्रष्टाचार कर रहा था। तो जिन लोगों के लिए ईमानदारी से वो भ्रष्टाचार कर रहे थे वो लोग उन्हें बचा रहे हैं। कहा जा रहा है, अभी आपने कहा कि बदल देने से क्या फर्क पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी है जवाबदेही उसकी होती है, और अगर कुछ भी नया व्यवस्था अपना दें और वही नकारा व्यक्ति रहेगा तो क्या वो व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चलेगी। तो नकारे को तो पहले हटाना पड़ेगा, अब मोदी जी नहीं हटा रहे हैं, अभी अपने शिक्षा मंत्री प्रधान को नहीं हटा रहे हैं तो कल कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री को हटना पड़ जाए। क्योंकि देखिए बच्चे जो है, नौजवान जो है ना, ये देश के भविष्य हैं, इनके भविष्य मत खेलिए। इनको गंभीरता से लीजिए, इनको जनरल डायर वाला रवैये समत इनको डील करिए, ये अपने बच्चे हैं, अपने घर के हैं, अपने देश के
0: हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है क्योंकि आज सुबह से तीन बार स्टेटमेंट आ चुके हैं अखिलेश जी, सरकार से तीन बार स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप आइए हम चर्चा करते हैं, विपक्ष को कह रहे हैं कि सदन के भीतर चर्चा करिए, अलग अलग मंत्रियों के बयान, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बयान, तो एक व्यापक चर्चा होना जरूरी है या इस्तीफा आपके लिए जरूरी है? और इस्तीफा जरूरी है तो क्यों जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उसके बिना चर्चा नहीं हो पाई?
15: मैंने आपको समझाया, फिर समझा रहा हूं, इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी बेहतर से बेहतर भी व्यवस्था बना लेंगे नकारा व्यक्ति के नेतृत्व में, वो बेहतर व्यवस्था भी फ्लॉप ही होगी, इसलिए इस्तीफा पहले जरूरी है। और इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा सकता है, किस कौन से उसमें मेरिट है उस मंत्री में, इतना फेल्योर, इतने नौजवान बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाला जिसपे किसी को यकीन नहीं रहा, उसे क्यों उस मंत्रालय में रखा गया है, क्या जाता है, क्यों नहीं हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? बच्चों के मुद्दे पर नहीं हटाएंगे जो इतना फेल्योर हो? कारण क्या है? कारण यही है सीधा सीधा कि वो उनके जो हमारे आका लोग बैठे हैं नागपुर में दिल्ली में, उनके अनुसार वो काम कर रहा है, उनका प्रिय है, इसलिए नहीं हटा रहे हैं।
0: आमतौर पर
15: चाहिए, क्यों नहीं हटाना चाहिए?
0: ये कहा जाता है कि जो काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी तभी आप मामला आगे बढ़ पाएगा, यही सरकार ने कई बार बात करने की कोशिश की है, यही बात रखने की कोशिश की है। तो क्या कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है ताकि ये लॉक जैम कम से कम टूट सके, कम से कम चर्चा का माहौल शुरू हो सके?
14: साहिल जी, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े फेल्योर श्रीमान राहुल गांधी जो 100 से अधिक चुनाव हार चुके हैं, वो ये इनके सिर्फ नेता हो जाते हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाते हैं। तो पहले फेल्योर की बातें करने से पहले अखिलेश प्रताप सिंह को जरा अपने गिरेबान में झांकने का की आदत डालनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में 420 के केस, जमानत पर रिहा व्यक्ति, नेशनल हेराल्ड से कोई क्या कर दिया भाई? नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति में गबन करने वाले चाची 420 और उनके पुत्र दोनों जो है 420 के मामले में अभियुक्त, ये दोनों अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय तक दौड़े चले गए और सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। इसके बावजूद बेशर्मी की हद है कि आज तक नेशनल हेराल्ड से इस्तीफा दिया क्या इन्होंने? तो ये बातें इस तरह से करते हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप है? 12,00,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले, यहां से धन लूट कर इटली पहुंचाने वाले, भारत के जो है बहुत सारे जो

0: कर रहे हैं?
1: स्टूडेंट
0: क्या कारण है कि जितेंद्र सिंह आकर कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है? क्या कारण है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस आइए और बात करने के लिए तैयार है? एक ऑफिशियल लाइन बताइए ना कि किसके साथ बात करने के लिए आप तैयार है?
1: हम बातें करने के लिए तैयार हैं।
0: जो बात जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं वो भी कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए पहले।
1: हम मानसूक से बात करने के लिए तैयार हैं। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल आया ना,
0: जरा स्टेटमेंट सुना देते हैं। सोनम वांगचुक का जिक्र तक नहीं किया है। जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री है, उनका बयान जो अभी अभी आया है उसमें सोनम वांगचुक का जिक्र भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है, ये उनका बयान है। आप बयान सुन लीजिए एक बार फिर। एग्जैक्टली वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। उनकी पहली मांग तो इस्तीफे की है।
1: नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभिजीत दीप के छात्र हैं क्या? किस विश्वविद्यालय के छात्र? नीट की एग्जाम दी है क्या उन्होंने? कौन से विश्वविद्यालय के छात्र, जरा बताइए तो सही। हाँ, जो छात्र उसमें शामिल हो, कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान में जो छात्र शामिल हो, जो राजनीतिक अराजक शक्तियों के साथ ना हो, ऐसे लोगों से।
2: साहिल जी
0: अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए मामला अभी वो अभी कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के होते कौन है, उनसे क्यों बात करें हम?
1: नहीं, अभिजीत दीप के छात्र क्या? मैं ये नहीं, कौन है, नहीं कुछ छात्र है क्या? मेरा प्रश्न अभिजीत दीप के छात्र है क्या?
2: छात्र।
0: अरे तो बात क्यों कर रहे हैं? जो आके आपको मिले थे प्रतिनिधि मंडल में, उनसे बात क्यों की आपने?
2: अरे आपने मुझसे सुना, मुझसे सवाल क्या, सुन तो लीजिए। अब सवाल मुझसे क्या, सुन तो लीजिए। साहिल भाई देखिए, जो लोग लोकतांत्रिक होते हैं ना, उनमें संवेदनशीलता होती है। तानाशाह में संवेदनशीलता नहीं होती। यहाँ पे हमारे मित्र, हमारे मित्र जो है, देखिए भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, थोड़ा इसका बनाए रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छात्र नहीं है वो बात नहीं कर सकता। तो सांसद में कौन छात्र हैं? नेता जितने संसद में चुन के वो कौन छात्र हैं?
1: अच्छा,
2: देखिए विचारधारा, देखिए तानाशाही की, कि यह व्यक्ति कह रहा है कि जो छात्र नहीं है उनसे हम क्यों बात करें?
1: तो
2: जो लोग आज छात्रों के पक्ष में, देखिए प्लीज ये इसे जो है, प्लीज ये देखिए, ये बीजेपी के सबसे विचारधारा के, ये बीजेपी के चेहरे हैं, ये बीजेपी के विचारधारा हैं, बीजेपी के आदर्श
1: हैं शुक्ला
2: भाई मेरे, ये बीजेपी के आदर्श हैं, ये देखिए बीजेपी के आदर्श हैं, ये इनके संस्कार देख लीजिए साहिल भाई, देखिए इनके संस्कार कितने अच्छे हैं, इनकी पार्टी अपने परिचय दे रहे हैं, अपने परिवार
0: के सारे लोग भी हैं। आप अपनी बात खत्म करिए,
2: इनको चुप करा तब मैं बोलूंगा। साहिल भाई
0: आप अपनी बात खत्म करिए, आपकी बात सुनाई दे रही
2: है। इनको चुप कराइए तब ना मैं बोलूं। देखिए
0: बोलिए,
2: देखिए साहिल भाई, बात यही है कि आप किसी से बात करने के लिए सबसे पहले अहंकार को त्यागना होगा, फिर उसके बाद सही रास्ते पे चलना। बातचीत करने के लिए बातचीत का नतीजा भी निकलना चाहिए। तो नतीजा कैसे निकलेगा? जिससे रगड़ा है, जो फेल्योर है, फ्लॉप है, उसके रहते बातचीत से क्या फायदा होगा? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उसको हटा रहे हैं? उस व्यक्ति को हटा दें, बातचीत करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राहुल जी ये बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा है उसके सिस्टम में खोट है और जो हमारी प्रणाली है उसमें खोट है। वो बार बार ये कहते हैं प्रिविलेज रिच लोगों के लिए ही ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जिनको लाभ मिलता है सबको नहीं मिल पाता है।
0: करोड़ों लोग जो बातचीत यहां पर हुई है उससे यह बात तो साफ निकल कर आती है। लेकिन रजत सेठी, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री ने हर चुनावी रैली में बात की है। मैं यहां पर नजर डाल रहा था, देखिए कोटा में 2023 में राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सोल्ड पेपर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, कांग्रेस ने पेपर बेचे और इसी के वजह से कांग्रेस को हटाइए, हमारी सरकार लाइए, हम यहां पर पेपर लीक नहीं होने देंगे। 2023 में सीकर में भी राजस्थान चुनाव के वक्त पे एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया था कि पेपर लीक के वजह से लोगों का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, युवाओं का नुकसान होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ में भी अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो पेपर लीक में जो करप्शन है उसको रोक

0: की कोशिश की जाएगी। जयपुर में अक्टूबर 2023 में एक बार फिर वही बयान, नागौर में नवंबर 2023 में एक बार फिर पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल उठाया गया, और कोटा में जाहिर से बात है कि कोटा में भी मुद्दा उठाया गया। उसके बाद 2024 जुलाई में, दिसंबर 17 2024 जयपुर में एक बार फिर, और उसके बाद संसद में भी उनका बयान। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि पेपर लीक का मुद्दा पहले भी उठाया गया है, इस बार लेकिन सरकार पर बूमरैंग हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर पहले से ही सरकार ने कदम उठाए होते तो आज बात यहां पर नहीं पहुंची होती?
1: देखिए साहिल जी, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए पेपर लीक को लेकर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल को, किसी भी पार्टी का हो, उनको एक तो समझ में आता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, एक दूसरा उसके तकनीकी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे एजुकेशन मंत्रालय में या एनटीए के अंदर में, वहां पर इतने सक्षम ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जिनके पास की ढंग के एप्टीट्यूड एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के की क्षमता है। हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था इतनी अंदर तक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है कि आप सिर्फ मंत्री को, जो आपका मूल प्रश्न, सिर्फ मंत्री को हटा भी देंगे, अब दूसरे मंत्री को भी ले आएंगे तो चीजें बदलेंगी कैसे? गहलोत जी की सरकार चली गई थी राजस्थान में, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोल सकती कि ये मुद्दा कमजोर है, ये मुद्दा है, रहेगा ही जब तक कि आप इसके परमानेंट फिक्सेस नहीं ला सकते। और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सिस्टम अगर वही रहा कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी अभी वो फर्टिलाइजर का ब्यूरोक्रेट है उसको लाके एग्जामिनेशन के उसका सीईओ बना देंगे एनटीए का, ऐसा कैसे चलेगा? यूटीयू
0: की एग्जाम रद्द कर दी गई है, हम अब जब बात कर रहे हैं तभी ये खबर आ रही है, उत्तराखंड में यूटीयू की एग्जाम रद्द कर दी गई है पेपर लीक के आरोप के बाद में। सहायक प्रोफेसर पर आरोप लगाया कि उन्होंने पेपर लीक करने की कोशिश की है, ये सिस्टम का फेलियर है।
1: नहीं, कल की बात है, पंजाब में यही आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, पंजाब में वहां पे फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। ये जो पेपर है ये लगातार लीक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये सिंपल पॉलिटिकल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जरूर है, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार भाग सकती है इससे, लेकिन क्या आपको उससे हल मिलेगा? उससे हल नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट माइंड्स लगाने पड़ेंगे, ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से चीजें नहीं होंगी।
0: पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी?
1: देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिसका भी रेजिग्नेशन लेना हो उसकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में प्रधानमंत्री को तय करनी है। उनको लगता है कि उसके बदलाव से चीजें, व्यवस्था अपने आप सुधरने लगेगी, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बदलेगा जब तक कि आप अकाउंटेबिलिटी, अब आर्टिकल 311 लेके बैठे हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेट को परमानेंसी मिली हुई है कि वो पेपर लीक उसकी अगर आंखों के नीचे भी अगर हो रहा है तो आप उसको फायर नहीं कर सकते। तब तक इस देश में आर्टिकल 311 रहेगा जो कि ब्यूरोक्रेट्स को बचाता रहेगा। पॉलिटिकल पॉलिटिशियन का जो के ऊपर अकाउंटेबिलिटी हर 5 साल बाद भी तय होती है और बीच में भी तय होनी चाहिए, और यहां पर अगर रेजिग्नेशन चाहिए मंत्री का तो लेना चाहिए, बट मैं ये जानना चाहता हूं आज एनटीए हर बार तय होनी चाहिए, हर दिन तय होनी चाहिए, पार्लियामेंट भी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म के तरीके हैं, बट आप मुझे ये बताइए इस देश में कभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? जब तक आखिरी बाबू,
0: वही तो बात है, एनटीए बनाया गया, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि आपने एनटीए तो बना दिया, आपने कहा कि राज्यों में पेपर लीक होती है इसके लिए हम एनटीए बना रहे हैं, और एनटीए बनाने के बाद भी तो पेपर लीक नहीं रोक पाया, एनटीए के किसी भी कर्मचारी पर या जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं उन पर कभी कार्रवाई नहीं हो पाई, और इसीलिए प्रोफेसर
1: आर्टिकल 311 है, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं।
0: तो कौन बचा रहा है?
1: ज्यादा गलती
0: कौन बचा रहा है?
1: नॉर्थ ईस्ट में आप आर्टिकल 311
0: संविधान बॉस तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, उनके बॉस तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही होते हैं ना, उनके बॉस तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही होते हैं,
1: बिल्कुल होते हैं ना, हटाएंगे करेंगे का क्या? आपको एक ब्यूरोक्रेट कोटा के दूसरे को ले आएंगे, स्किल्स कहां से आ रहा है? आप अखिलेश जी, आप सपोर्ट करिए,
2: संविधान बदलवा दीजिए,
1: 311 बदलना चाहिए इस देश में, आर्टिकल में आप परमानेंसी,
0: प्रोफेसर बद्रीनारायण
1: आपको नहीं देनी है परमानेंसी,
0: सिर्फ फास्ट ट्रैक करने से मामले बदलेंगे क्या? सिर्फ फास्ट ट्रैक करने से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी क्या? सिर्फ कार्रवाई करने से अकाउंटेबिलिटी फिक्स? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट,
2: सरकार का होती है,
0: हाँ, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए नंबर्स, देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट पेपर लीक 2002 में पेपर लीक हुआ था, 2025 में जाकर कन्विक्शन होता है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक 2009 में पेपर लीक होता है, 2026 में जाकर उसका कन्विक्शन किया जाता है, 2024 में नीट पेपर एग्जाम का पेपर लीक था, अभी तक उसका कन्विक्शन नहीं है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई में पेपर लीक होता है 2010 में, कन्विक्शन होता है 2024 में, तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने आपको मिलेंगे, तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कैसे रुकेगा ये, कैसे सिस्टम बदलेगा?
3: साहिल, ये बहुत बड़ा निर्णय है जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए सजा जब तक नहीं होता था, कल्प्रिट पकड़ा जाता था, सालों सालों वो केस चलते रहते थे, पैसा देके छूट जाता था, तो इससे कड़ी कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी, त्वरित सजा होगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये जो पूरा हो रहा है शाहिद जी, यानी कांग्रेस के समय में पेपर लीक, आम आदमी पार्टी के सरकार में पेपर लीक, अभी की सरकार में पेपर लीक, इसका मतलब ये समस्या सरकार से जुड़ी होने से ज्यादा सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी लालच का इन्फेक्शन, ये जो लालच का इन्फेक्शन है ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बहुत बातें हो रही है, और मैं तो देख रहा हूँ ये पहला मतलब पहली बार है कि शिक्षा मंत्री को इतना टारगेट किया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री जिसने लगातार आमूलचूल परिवर्तन किया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, उन्होंने आप समझिए कोर्स से लेके टेक्स्ट से लेकर के सिस्टम तक नई नई योजनाएं, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, बहुत सारी चीजें, यानी अगर आप स्कूलों की सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है, 13,000 पीएम श्री स्कूल, बहुत सारे गांव के स्कूलों से लेके शहर के स्कूलों तक बहुत सारा काम हुआ है, इनॉर्मस, और इतने सजीव ढंग से वो चीजों को हैंडल करते हैं जैसा हम लोगों ने देखा है, लेकिन इतना ज्यादा आक्रमण
0: सामाजिक
3: तो
0: विकृति
3: पहली
0: तो
3: बार,
0: हर जुर्म भी होता है।
3: पहली बार,
0: बद्रीनारायण जी,
3: पहली बार,
0: बद्रीनारायण
3: जी
0: जी, आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के वाइस चांसलर हैं, आपको भी
3: जी
0: पता है कि जुर्म भी सामाजिक विकृति होती है। पिछली
3: बिल्कुल
0: बार,
3: बिल्कुल
0: पिछली साल जब नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ था, तब एनटीए के चेयरमैन ने आके नहीं कहा था कि पेपर लीक अगली बार नहीं होने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसने कहा था ये
3: नहीं, देखिए
0: स्टेटमेंट याद
3: साहिल
0: है
3: जी,
0: आपको?
3: हाँ बिल्कुल, और ये जिम्मेवारियां होती ही हैं, और जो अभी रजत कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर के ये सारे पक्ष इसमें जिम्मेवार है, लेकिन इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद इसको आप नहीं मानेंगे या मानेंगे तो मीडिया को कितना वो मिलेगा, लालच का इन्फेक्शन, सब कुछ आप रोक सकते हैं, लालच को रोकना बहुत मुश्किल है, यानी वो प्रोफेसर जिसको पेपर बनाने का काम दिया जा रहा है
0: विनोद
3: वो पेपर
0: अग्निहोत्री
3: लगे
0: जी,
3: तो
0: क्या सरकार
3: आप
0: में
3: कैसे
0: बैठे
3: सॉल्व
0: हुए व्यक्ति ये
3: करेंगे।
0: कह सकते हैं कि ये सामाजिक
3: तीसरी
0: विकृति है,
3: बात
0: पूरे समाज को इससे लड़ना पड़ेगा, सरकार क्या करे इसमें?
3: नहीं, ये
0: क्या ये कह सकता है कोई? करप्शन
3: धर्मेंद्र प्रधान ने अभी,
0: सामाजिक विकृति है,
3: हाँ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है 1 महीने पहले अपने बयानों में
0: करप्शन
3: बार
0: सामाजिक
3: बार,
0: विकृति है।
3: बिल्कुल करप्शन एक सामाजिक विकृति है
0: विनोद
3: ही,
0: अग्निहोत्री जी,
3: और उससे निकलने का
0: विनोद
3: रास्ता भी निकालना हमारा ही
0: अग्निहोत्री,
3: काम
0: विनोद अग्निहोत्री,
4: है। नहीं, सामाजिक विकृति तो
2: यहाँ से
4: भ्रष्टाचार ही है
2: क्या हो गया
4: पूरा,
2: बद्री भाई आप?
4: लेकिन इसको जनरलाइज करके समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। देखिए, पेपर लीक हो या नकल की समस्या हो, ये शिक्षा के निजीकरण में जो माफियागिरी आई है उससे इसकी जड़ें हैं, और इसीलिए कोई भी सरकार हो ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया है, जो निजीकरण के बाद लगातार फला फूला है पूरे देश में, उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट घुस गए हैं, वो हर उसकी घुसपैठ हर राजनीतिक दल में है, हर सरकार में है, इसलिए कोई भी सरकार हो पेपर लीक नहीं रुकता है, और इसको उसको लेके मुझे लगता है कोई सरकार बहुत गंभीर भी नहीं है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मांग तो हो रही है कि चर्चा हो संसद में हो या हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि अभी तक एक कमेटी बननी चाहिए एक्सपर्ट्स की कायदे से, और जिस जो राजनीति से परे हो और जो इसके तमाम पहलुओं पर विचार करें, और ये भरोसा दिलाया कि एक ऐसा फुलप्रूफ मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे नकल भी रुके, पेपर लीक भी रुके, और सीबीएसई जैसे वाले गड़बड़ जाले भी ना रुके। अब धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं, उनको आगे आके या तो पहल करनी चाहिए। अब जैसे अभी समस्या बहुत सारे सुधार शिक्षा में हुए हैं, लेकिन ये भी सही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के ही कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा स्कूल भी बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल, इसको आप कैसे भूल सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा, खाली जो है इसको आप एक तरफा नजरिए से अगर देखेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, चाहे कितने इस्तीफे हो जाए और चाहे कितनी कार्यवाही हो जाए, और कन्विक्शन कितना हुआ, कन्विक्शन
0: प्रोफेसर अरुण, प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री, जो जिक्र यहां पर किया गया सीबीएसई एग्जाम का जिक्र किया गया, देखिए बड़े दिलचस्प नंबर्स हैं यहां पर। जो सीबीएसई एग्जाम के 12वीं के परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटेज है, वो ड्रॉप हो गया, 85.20% पासिंग परसेंटेज रहा, पिछले साल के मुकाबले 5% से ज्यादा ड्रॉप इसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से ओएसएम का सिस्टम लाया गया, या फिर कहा गया कि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसका कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी विद्यार्थियों पर पड़ा है। कौन जिम्मेदार होगा इसका, कैसे बदलेंगे इसको?
1: देखिए, मैं काफी देर से ये चर्चा सुन रहा था, तो किसी ने ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहराया, किसी ने धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि
0: समाज को भी जिम्मेदार ठहराया किसी ने,
1: बिल्कुल समाज को भी जिम्मेदार ठहराया कि देखिए ऐसा कोई भी फूल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है और हर जगह माफिया होते हैं और हर जगह लोग, लेकिन बात यह है कि क्या सरकार ने पिछले जब ये 12 मई को एफआईआर हुई, 3 मई को पेपर हुआ, 11-12 की नाइट को ये पता चला कि पेपर लीक हुआ, 12 मई को तुरंत एफआईआर हुई, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए? तो इसमें और जो एक जनाब कह रहे थे आर्टिकल 311 का हवाला दे रहे थे, तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 311 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्शन एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की देता है कि किसी भी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो उन पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई जो वो जो डिसीजंस लेते हैं वो बड़े एक नेशनल इंटरेस्ट में लेते हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्रोटेक्शन है, कोई अनड्यू प्रोटेक्शन नहीं है। तो अच्छा दूसरी बात, मैं छात्रों के संपर्क में रहता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन को हेड करता हूँ, तो छात्रों के संपर्क में भी रहते हैं, तो लार्जली जो छात्र हैं, ये ऐसा नहीं है कि लार्जली जो छात्र हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मेजोरिटी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए एंड दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट हैज बीन डन। अभी तक जो हुआ है
0: के बाद एक्शन काफी है अरुण अत्री जी,
1: मुझे मुझे आप मुझे बताइए
0: लीक के बाद एक्शन होना, गिरफ्तारियां होना, सरकार ये काफी है,
1: बिल्कुल आप बताइए, तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप कानून को दरकिनार करके फांसी पे चढ़ा देंगे लोगों को इमीडिएटली? आप सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है और जितने भी जो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। आप जरा एक छोटी सी मतलब एक बात सुनिए, 22,00,000 लोगों के फीस रिफंड की है, री एग्जाम किया कराया गया 37 दिनों में, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 25 दिनों में, 5,440 सेंटर थे, पहली बार ऐसा हुआ कि एयरफोर्स ने यूज की गई ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेपर,
0: 1.3 लगाए गए, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सैंटिटी पर सवाल उठना शुरू हो गया है इसके वजह से, जो एग्जाम्स वो कंडक्ट करते हैं उन पर सवाल उठना शुरू हो गया है।
1: जो बात ये है कि आप किसी एक व्यक्ति का, किसी मंत्री का आप इस्तीफा, वो एक
0: इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप इक्का दुक्का लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी पर जो सवाल उठेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
1: देखिए सीबीआई की आप जांच होने से पहले ही आप चाहते हैं कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक बात करते हैं,
0: ये जंगल का कानून नहीं है, ये जंगल का कानून नहीं है कि सड़क पर फांसी दिलवा दो, वो वाले कानून की बात कोई नहीं कर रहा है, हम तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उनके जब देश के शिक्षा मंत्री आकर ये वादा करते हैं कि अब की बार से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और उसके बाद जब पेपर लीक होता है तब इंस्टीट्यूशन के सैंटिटी पर सवाल खड़ा होता है, नहीं मानते आप इस बात को?
1: अरुण, देखिए ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखिए आप अखिलेश जी, आप जब आप बोल रहे थे तो सभी लोग सुन रहे थे, तो कृपया आप भी हमें सुनने की थोड़ी सी सहनशीलता दिखाएं, तो मैं ऐसा नहीं समझता,
2: मैं समय मांग रहा हूं, बीच में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, मैं समय मांग रहा हूं।
1: जी जी जी, तो आप ये देखिए कि जब टेलीग्राम के ऊपर भी ये बताया गया कि भाई टेलीग्राम पे रोक लगा, तो ये नैरेटिव जो फैलाने का काम करते हैं वो ना करें। मेरी यही इन लोगों से और बाकी सबसे यही एक बात आर्गुमेंट जो है जो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश ना करें। यूथ ऐसा नहीं है कि जो वो आप सड़कों पर जबरदस्ती आप देखिए कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस वालों को आप मार रहे हैं,
0: तो जो
1: पुलिस
0: पर पहले आंदोलन करने के लिए छात्र उतरे वो गुमराह है। पूरे इस देश में जितने छात्र के आंदोलन हुए हैं वो गुमराह छात्रों के आंदोलन हुए हैं।
1: देखिए
0: जब भी छात्रों के आंदोलन हुए हैं सरकार की तरफ से यही कहा गया कि गुमराह किया गया उनको।
1: देखिए
0: रजत सेठी को भी मालूम होगा कि उनके
1: ऐसे कई
0: संगठन उनको पता होंगे कि जो आंदोलन इस तरीके से कर चुके हैं रजत सेठी,
1: आप खुद देखिए
0: ये नैरेटिव ठीक है? ये नैरेटिव ठीक है?
5: नहीं नहीं, ये देखिए अब वो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अगर गुमराही की बात है और ये सब बातें हैं तो आप एंगेज क्यों कर रहे हैं? तो सरकार अगर एंगेज कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी इस पूरे मंथन में। नहीं नहीं सर, मैंने भी नहीं बोला था, तो आप प्लीज, आप प्रिंसिपल है, सम्मान है सर आपका, लेकिन आप दूसरों की बात भी सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी व्यवस्था है इस पूरे मंथन का निचोड़ ऐसा निकलना चाहिए कि दोबारा कभी भी पेपर लीक स्टेट प्रदेश के स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे ना हो। इसका ये अगर आप सिर्फ सीबीआई की जांच हो गई ये मान लेंगे इसी से सब कुछ हल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता हल होगा। बुनियादी चीजें बदलनी होंगी,
0: बुनियादी बदलाव की जरूरत है सबको। अखिलेश प्रताप सिंह, समय खत्म हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह,
2: साहिल जी देखिए, साहिल भाई यहाँ सब शिक्षाविद हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन के बड़ा दुख हुआ। आप लोग जो एक एनटीए बनाया है उसको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? ये क्यों बनाया गया था? इसमें क्या एक्सपर्ट बैठे हैं? ये एक संघ के लोग बैठे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? दूसरे, एक मंत्री को बचाने के लिए संविधान को दोष दे दिया गया, समाज को दोष दे दिया गया, अधिकारियों को दोष दे दिया गया, व्यवस्था को दोष दे दिया गया, लेकिन जो दोषी है उसको क्लीन चिट दी जा रही है। कहां इसके ये लोग शिक्षा दे भैया, जिन बच्चों को आप लोग
0: पढ़ा शुक्ला जी 20 सेकंड आखिर के, सरकार सीरियस है, गंभीर है, बातचीत होगी क्या? 20 सेकंड आखिर के।
6: राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, इन्होंने अशोक गहलोत को कब दोषी कहा? प्रियंका वाड्रा को सर्टिफिकेट बांट रही,
2: तुरंत चेयरमैन बर्खास्त हुआ था।
0: उम्मीद यही है कि जो बातें कही गई है उस तरीके से विद्यार्थियों के साथ बात हो, कब बात होगी, कैसे होगी ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल 24 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आंदोलन की मांग रखी है और कहा है कि हर जिले में इस तरीके का आंदोलन किया जाए। नजर बनी रहेगी उस पर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: जहाँ जुर्म वहीं कहानी, जहाँ कहानी वहीं साजिश, जहाँ साजिश वहाँ क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको, फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे, आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे। भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
7: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है.
4: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है.
5: सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए.
6: संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे.
7: सदन में बहस के लिए तैयार है.
8: सरकार की ओर से अब तक किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा खुलकर कह चुके हैं कि आइए छात्रों के मुद्दों पर बात करते हैं. लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आ गए हैं. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने साफ किया कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजकर जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा. इधर पीएम का पोस्ट आया, उधर राहुल गांधी ने भी उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया. राहुल गांधी ने अपनी मांगे फिर दोहराई कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. विपक्ष ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं, मुद्दे पर झुकेंगे नहीं. विपक्ष की मांग सिर्फ पेपर लीक पर चर्चा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी है. खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के निष्पक्ष चर्चा हो ही नहीं सकती.
9: और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए.
8: फिलहाल सरकार इस मामले को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहती है. लेकिन विपक्ष इस बार सरकार को हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं है. आज तक ब्यूरो.

हिमाचल से उत्तराखंड तक मानसूनी आफत। कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही। फ्लैश फ्लड से घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानो बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में बादल फटने के एक दिन बाद कांगड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। कांगड़ा के शाहपुर की वो घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप देखने को मिला। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से करीब 18 घर, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। मलबे में 9 गौशालाएं और कई मवेशी बह गए। बादल फटने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के बाकी इलाके भी मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। चंबा जिला इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश से पूजा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: जंगल में मेरे साथ बस इतना ही, अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रदर्शनकारी छात्रों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अपील, सरकारी दफ्तर या आवास पर आकर करें बात, सीजेपी का जवाब, जंतर मंतर या किसी तटस्थ जगह पर हो मुलाकात, कल देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का आश्वासन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का ऐलान, राहुल गांधी की मांग, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की चेतावनी, दंगे में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई, पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी होगी शुरू। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर बोला हमला, गोरखपुर में कहा राम भक्तों पर हमला करने वाले आस्था की करते हैं बात, राम मंदिर में रोड़ा अटकाने वाले क्या बोलेंगे। उत्तर से पूरब और पश्चिम तक जल प्रलय, गुजरात के वलसाड़ और सूरत में बिगड़े हालात, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से की मदद की बात, असम में अब तक 41 लोगों की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं।
1: आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए।
2: कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे?
3: वो हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय
2: जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने के लिए।

0: देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। पेपर लीक के मुद्दे पर छिड़े संग्राम पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पेपर लीक के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री की इस बड़ी घोषणा के बावजूद डेडलॉक जस का तस है, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे से आज भी संसद नहीं चली। वहीं संसद के बाहर विपक्ष और एनडीए दोनों ने प्रदर्शन किए। इस बीच जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को सरकार ने बातचीत का एक नया प्रस्ताव दिया, लेकिन बातचीत के लिए सरकार जंतर मंतर आने को तैयार नहीं है। और सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के वार्ताकार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर या दफ्तर जाने को तैयार नहीं। सीजेपी ने कल देशव्यापी विरोध का ऐलान भी कर दिया है। सवाल है कि क्या सरकार और पेपर लीक पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच सुलह की गुंजाइश खत्म हो रही है? क्या पेपर लीक पर सरकार और विपक्ष के टकराव से संसद ठप ही रहेगी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वादा छात्रों को इंसाफ की उम्मीद जगाता है? पेपर लीक पर पीएम का फास्ट ट्रैक इंसाफ, हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: श्री विद्युत वरण महतो जी,
2: आप सभी लोग,
0: पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का सॉल्यूशन है, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और फिर संसद में चर्चा, तो सरकार का सॉल्यूशन है पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक एक्शन और सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में ऐलान किया, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीएम की इस घोषणा के साथ ही सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगा दिया है।
3: माननीय सदस्यगण,
4: नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया, बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं।
0: सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को भी फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है।
5: कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे?
6: हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में, जो हमारे मंत्रालय
7: जो ऑफिशियल है सर, वहाँ पर आने की ना?
8: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर के। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: संसद की चर्चा और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए राजी होने के बावजूद सरकार समझ रही है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की शर्त उसे राजनीतिक तौर पर और घेरेगी। लिहाजा विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब एनडीए ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन से दिया है। उधर संसद में गतिरोध के बीच विपक्ष ने कह दिया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं तो चर्चा नहीं।
9: और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए, और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है, और बहुत से हॉस्पिटल्स में है, और उनके माँ बाप परेशान है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार है डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए, और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे, डिस्कशन शुरू नहीं होगा।
0: आई चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त लाइव हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री, मौजूदा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि पूरा विपक्ष हो, कांग्रेस जनता पार्टी हो, और जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं रविशंकर जी, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बिना बात समझौते की तरफ नहीं बढ़ेगी। अब ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान किया है लेकिन एक डेडलॉक की स्थिति बन गई है सर?
2: पहली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी पहल की है कि नौजवानों युवकों का भविष्य के साथ हम लोग खड़े हैं, उनकी सरकार खड़ी है और फास्ट ट्रैक बनाने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी बाद में करूंगा। लेकिन ये गोल पोस्ट चेंज कौन कर रहा है? ये अगर नौजवानों के कुछ बुनियादी मामले हैं उसकी जगह पर राजनीतिक दल अपने वन अपमैनशिप की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना बताए प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं, जबकि उनके पिताजी, दादी जी, परनाना जी प्रधानमंत्री रहे हैं। संवेदनशील होती है, सुरक्षा होती है, और बिना खबर किए चले जाते हैं, ये उचित है क्या? फिर कहते हैं मेरी मर्जी, अब कहते हैं कि इस्तीफा दोगे। हम भी चाहते हैं बहस हो, अच्छी बहस हो, और हम भी उनसे पूछेंगे कि अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री तो राजस्थान में कितना पेपर लीक हुआ था, आप क्यों खामोश थे? देखिए श्वेता जी, पेपर लीक का मामला एक पीड़ादायक मामला है, हम समझते हैं और हम लोग सभी नौजवानों के साथ हैं, उनके भविष्य के साथ हैं, उनके वर्तमान की पीड़ा के साथ हैं। अब देखिए अगर पेपर लीक गड़बड़ हुआ तो नया परीक्षा हुई कि नहीं तुरंत? और जिस तरह से पूरी भारत सरकार लगी, प्रदेश सरकार लगी, सॉरी अंजना जी, आप देखिए क्या बदलाव हुआ, और आप देखिए अंजना जी कि किस तरह से 58% हमारी छात्राएं उसमें सफल हुई, 56% हमारे बाकी रिजल्ट हुआ, किसी कोई शिकायत नहीं हुई, तो ये भी करके दिखाया। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स करिए, अब यूपी के इलेक्शन से किसी को परेशानी है? कल तो अखिलेश यादव ने कह दिया क्या हमसे नहीं बात करेंगे क्या? तो इस तरह का वन अपमैनशिप जो अंजना जी हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको बच्चों के साथ आप मत जोड़िए, इसलिए रोज वो बदलते हैं। अब आज जो प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक की बात कही है, थोड़ा इसको मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। फास्ट ट्रैक क्या होता है? कानून मंत्रालय समसामयिक विषयों पर तेजी से ट्रायल करने के लिए फास्ट ट्रैक को क्रिएट करता है। मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाता है, वो क्रिएट करते हैं। अभी देश में दो प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, एक हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और दूसरे हैं रेगुलर फास्ट ट्रैक कोर्ट। अभी 774 ऑपरेशनल स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें रेप, प्रोटेक्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को के केसेस होते हैं और बाकी में हीनस क्राइम, सीनियर सिटीजन्स वगैरह वगैरह आते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष रूप से जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उनमें क्या होता है, वहाँ जल्दी ट्रायल होता है, वहाँ 9.51% केसेस हर महीने डिस्पोज ऑफ होते हैं। रेगुलर कोर्ट में कितने होते हैं? 3.26। सरकार उसमें फंड देती है और आपको जानकर खुशी होगी अभी तक 3.61 लाख केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं स्पेशल रेगुलर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपके लिए हम फास्ट ट्रैक बना रहे हैं और आज उसके लिए प्रयास शुरू हो गए, तो जितने नीट और पेपर लीक के मामले हैं उन सबको ट्रायल फास्ट ट्रैक किया जाएगा। हो सकता है महीने भर में हो जाए। सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, सीबीआई चार्जशीट देने जा रही है, तो 13 लोग पकड़े गए वो जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिला है। तो जितनी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है वो हो रही है। और मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री विशेष रूप से स्वयं पेपर लीक के मामले के जड़ में जाने के लिए कटिबद्ध हैं। ये उन्होंने एनडीए की मीटिंग में भी कहा था और आज देखिए उसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई जो हो रहा है। अब ये है कि लोग जो नेतागिरी करते हैं वो करने दें, लेकिन सवाल देश के हित का है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए।
0: बिल्कुल रविशंकर जी, हमने कल भी चलाया था कि इतने सारे मामले हुए पेपर लीक के, उनमें सिर्फ दो मामलों में कन्विक्शन हुआ आज तक। दो विधायक ऐसे हैं, दो विधायक उत्तर प्रदेश के, जो पेपर लीक के आरोपी हैं, फिर वो छूटे, फिर पेपर लीका उन्होंने अपने ही एफिडेविट में भरा है चुनाव के दौरान। और उनमें से एक तो सुहेल देव पार्टी के हैं जो समर्थन देती है आपकी सरकार को। मेरा सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या वाकई एक हल निकाल पाएगा? मैं पूरा सवाल आप सुन लीजिए सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट हल निकाल पाएगा? हमने सर निर्भया के वक्त भी आंदोलन देखा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हुई, निर्भया कांड के ही निपटारे में 7 साल लगे। क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से वाकई इंसाफ मिल पाएगा?
2: देखिए, वो जो लेट हुआ उसको हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्भया कांड के आरोपियों को सजा मिली। आज मैं जानता हूं कि बलात्कार के मामलों में, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में फास्ट ट्रैक से सजा मिल रही है, और अगर के नहीं मिली तो अपील में जाने का अधिकार है, सरकार जा सकती है, प्रोसिक्यूशन जा सकता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने स्वयं पहल की है कि त्वरित न्याय, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है और सुबह दिया, अभी से कार्रवाई शुरू हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 से 6 महीने में सारा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां इस तरह के मामले हैं उनके बारे में इसको टेकअप करना चाहिए और किया जाएगा। क्योंकि हम सभी, नीट हो या पेपर लीक हो, बच्चों की पीड़ा और उनके अभिभावकों की पीड़ा से परिचित हैं, हम उनके साथ हैं, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। मैं स्वयं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूं और मैं जानता हूं कि परीक्षा ठीक ठाक हो। और देखिए, एक बात और है अंजना ओम कश्यप जी, देश भर में एक प्रकार का सिंडिकेट काम करता है। वो किसी राज्य में परीक्षा होती है, कहीं बिहार से लोग पहुंचते हैं, कहीं सीकर से लोग पहुंचते हैं, कहीं आपके महाराष्ट्र से लोग पहुंचते हैं, कहीं साउथ इंडिया से पहुंचते हैं, तो एक प्रकार का सिंडिकेट काम करता है, यूपी से पहुंचते हैं। इस सिंडिकेट को भी तोड़ना जरूरी है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना है। और जब ट्रायल फास्ट ट्रैक होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई ने टेकअप किया है इस पूरे नीट के मामले में, तो इसमें अब कोताही नहीं होगी। और जब प्रधानमंत्री स्वयं इसको मॉनिटर करेंगे और पूरी भारत सरकार मॉनिटर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा होगी वो भी मॉनिटर करें, तो इसमें निश्चित कन्विक्शन होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जिस तरह से सीबीआई ने जल्दी से जल्दी इस पूरे नीट के मामले में पकड़ा और लोग जेल में, उनको बेल नहीं हुआ, चार्जशीट फाइल हो गई, तो आप समझ सकती हैं कि सक्रियता कैसी है।
0: एक सवाल अब मैं रविशंकर प्रसाद जी, आपने खुद कहा कि आप भी एक छात्र नेता रह चुके हैं और एक्टिविस्ट रह चुके हैं, यूथ एक्टिविस्ट, बच्चों के बिहाफ पर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी आंदोलन होता है तो एक रंग देने की कोशिश होती है, और ये सच है कि कई जगहों पर लंपेन एलिमेंट्स घुसे हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि देश भर से बच्चे आए हैं और ये जो इतना बड़ा हुजूम हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पर, बहुत सारे देश भर से बच्चे आए हैं। पुलिस की ज्यादतियों पर उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी इस बात से है कि उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबल करके उनका इस्तीफा लिया जाए। छोड़िए राहुल गांधी को, छोड़िए बाकी पॉलिटिक्स को, अखिलेश यादव को, सबको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन इन बच्चों को क्या जवाब होगा आपका, जो आज भी डटे हुए हैं? और कांग्रेस जनता पार्टी जिसने ये पूरा प्रदर्शन शुरू किया है, वो कह रही है कल से वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी,
2: देखिए, उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा, मूल समस्या है परीक्षा की गड़बड़ी, है ना? और जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले को देखेंगे, जो भी सिस्टमैटिक चेंजेस करना होगा हम करेंगे, तो उनको ट्रस्ट करना चाहिए ना। लेकिन आज तो उन्होंने काम करके दिखा दिया कि नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ी के बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, सुबह से उनका ट्वीट आया, तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। और जो बच्चे आए हैं उनकी भावनाओं के हम साथ हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह से कल टॉलस्टॉय मार्ग पर हुआ वो ठीक हुआ क्या? जिस तरह से पुलिस वालों को पीटा गया वो ठीक हुआ क्या? ये कभी चर्चा करनी पड़ेगी आपको, ये कौन लोग हैं, ये क्या घुस गए हैं? तो जो भी इस पूरे आंदोलन के नेतागण हैं, मैं उनसे एक अपील करूंगा, उनके सक्रियता का सम्मान है, उनके सक्रियता की आड़ में जो लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी सावधानी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये हम कहना चाहेंगे। बाकी जो कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, उसमें मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन इस तरह की अराजकता दिल्ली में कब देखी गई है, मुझे बताइए आप, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुलिस वाले भी परिवार है ना, उनका भी परिवार है, वो पिटते हैं। कल एसीपी का माथा फोड़ दिया गया, कल जो दरोगा को आप लोग दिखा रही हैं, तो दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। ये कौन से लोग हैं, क्या वो प्रामाणिक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, ये बताइए। और जिस तरह से बाकी हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं देश के विभिन्न भागों में, ये देश की संपत्ति है ना, इसका विचार करना। हाँ, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, उनका अधिकार है, धरना दे रहे हैं उनका अधिकार है, हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि आप समाधान के पक्ष में हैं या नहीं है। और समाधान के पक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री ने प्रामाणिकता की कोशिश शुरू कर दी है, और जैसा मैंने बताया जल्दी उसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा।
0: रविशंकर जी, आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा जिन छात्रों को चोट लगी है।
2: ये मैंने देखिए, जब मैंने कहा मैं उनकी पीड़ा के साथ हूं तो मैं उनके साथ भी हूं, अगर नहीं कहा तो अभी कहता हूं, जो छात्र अगर जिनको चोट लगी है तो मेरी भावनाएं उनके साथ भी हैं। मैं बहुत पीड़ित होकर कह रहा हूं कि अगर किसी को चोट लगी है तो जो भी होगा, उनको दवा दारू हुई, उनकी स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलने गए, जितेंद्र जी उनसे मिलने गए, वांचू जी से मिलने गए, तो उनकी भावनाओं के साथ हम हैं, और उनको अच्छी सेहत अच्छी रहे, उनके स्वास्थ्य में जल्दी तेजी से सुधार हो, ये सब कार्रवाई तो हो ही रही है, क्यों नहीं होगी। देखिए, हम नरेंद्र मोदी की सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, और जिस तरह से आपने देखा कि जो बच्चे घायल हुए उन बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए बड़े बड़े मंत्री अस्पताल पहुंचे, उनको अच्छी किया जाए इलाज, उसकी व्यवस्था की, ये ठीक है, उसी अस्पताल में बहुत से पुलिस वाले भी घायल पड़े हुए हैं। अच्छा होता जो विपक्ष के लोग नेतागिरी कर रहे हैं एक बार उनको भी देख लेते, इतना ही कहना चाहूंगा। और अभी तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, जो दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग जबरदस्त हिंसा कर रहे हैं, ये उचित मानते हैं क्या उसको?
0: रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और मौजूदा सांसद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज तक पर आने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से बांटने के लिए, धन्यवाद सर। आइए अब आपको सीधे बहस में लिए चलते हैं। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अमित जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चूंकि अभी रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है तो सुप्रिया जी से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं गौरव जी आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने सुना उनको, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कदम है, ये तय करना होगा कि हम समाधान चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक जंग की स्थिति बनी रहे। सुप्रिया जी,
3: ये स्थिति किसने बनाई है, स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था ये हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी, जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था, पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? और मैं एक बात यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है, एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जो मंजर हमने जंतर मंतर पर और उन स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रही थी पुलिस और जिस तरह से यह होने दिया गया, अमित शाह को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, देश के गृहमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, जिम्मेदारी कहां है? इतना कुछ देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री कहां है? हम नड्डा जी को देख रहे हैं, हम जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, नुमाइंदा कौन है इस सरकार का, कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री। और एक बात मैं छोटी सी जरूर कहना चाहती हूं, ये फैशनेबल हो गया है, हम राजनीति कर रहे हैं। मतलब देश में अगर स्टूडेंट्स की के ऊपर बर्बरता की जाए, निर्दयता से पीटा जाए, वो लहूलुहान किए जाए, नेता विपक्ष के साथ वो बदसलूकी की जाए कि उनकी नाक और मुंह से खून आ जाए, तो विपक्ष चुपचाप बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना करे। ये राजनीति अगर है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं छोटी सी, ये थोड़ी विडंबना है, अगर ऐसा 0.0001% भी मोदी जी के साथ हो गया होता तो पूरी पार्टी, लार्ज सेक्शन ऑफ मीडिया और खुद मोदी जी विलाप करके कहते कि कैसे उनकी जान को खतरा है, कैसे उनकी जान लेने की साजिश की गई। तो मैं भी कह सकती हूँ तो साजिशन किया गया नेता विपक्ष के साथ, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा स्टूडेंट्स है, मुद्दा फोकस वो है और उनके साथ क्या किया जा रहा है। संजीव मुखिया के खिलाफ तो प्रूफ ला नहीं पा रहे, चले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की।
10: चलिए ठीक है, गौरव भाटिया जी अब आप जवाब दीजिए। उनका कहना फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक, उससे पहले एक खबर आ रही है, राहुल गांधी के घर पर थोड़ी देर में बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद पहुंच चुके हैं और टीएमसी सांसद सौगात रॉय भी इस राहुल गांधी के घर पर होने वाली बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि टीएमसी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, ये सभी एक बैठक और शायद आगे की रणनीति घर पर बनाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी। गौरव भाटिया जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो तो सीधे कटघरे में खड़ा कर रही और बता रही कि सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है वो सही नहीं है।
11: देखिए ऐसा है कि उनकी बातों का जवाब देना इसलिए अभी उचित नहीं है क्योंकि कोई ठोस बात उन्होंने कही नहीं। दलगत राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन कर दलगत राजनीति कर रही है। पहले मैं वो बात कहूंगा जो कहना आवश्यक है। देखिए आज जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, पिता तुल्य हैं

0: फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है अंजना जी? देखिए, आपका चैनल ही दिखा रहा था, कांग्रेस के समय में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पर्चा लीक होता है। इनकी सरकार थी 2009 में प्रदेश में, 2026 में कन्विक्शन हुआ, 17 साल लग गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010, इनकी सरकार थी केंद्र में, कन्विक्शन हुआ 14 साल बाद। तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कोई कानून लाए? हम तो लाए हैं, एंटी चीटिंग का कानून लाए हैं, बहुत सख्त प्रावधान है, 10 साल की भी सजा है, 5 साल की भी सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। मैं पूछना चाहता हूं, जब डे टू डे ट्रायल होगा, अगर 3 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा और सजा हो जाएगी जो कि पर्चा करता है, तो ये तो स्वागत योग्य बात है ना?
1: ठीक है गौरव जी, पटल पे गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द निपटारा होगा, लेकिन सवाल आज ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जो प्रदर्शनकारी है या जो स्टूडेंट्स आए हैं, वो तो बढ़ गए हैं कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही आपने किसकी फिक्स की? और वो कल देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, खबर आ रही है राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक तो बैठक उनके घर में चल रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सौगातराव, टीएमसी के तमाम सांसद हैं। और इस बीच वहां बाहर से खबर आ रही है कि वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, सांसदों के अंदर जाने की तस्वीरें आ रही हैं। बोलिए गौरव जी, अड़े हुए हैं जो इस बात पर कि हमको चाहिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वो तो नहीं लौटेंगे उसके बिना?
0: ठीक, तो दो बातें कहूंगा। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की बातें कर लेते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। आप बताइए, जब वो जेपी नड्डा जी से मिले थे, एक प्रतिनिधि मंडल आया था 2 लोगों का, तो हमारी बातचीत उनसे हो रही है। उनकी तो कोई जिद नहीं है, उनकी कुछ जायज मांगे हो सकती हैं, हम उन जायज मांगों पे पूरा विचार करके ठोस कदम लेंगे। उनको मनाना भी हमारा काम है और मजबूत कदम उठा के सुनिश्चित करना, आगे पर्चा लिखना हो, ये हमारा काम है। लेकिन अब विपक्ष पे आते हैं। राहुल गांधी से जब जितेंद्र सिंह जी मिले, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि संसद के पटल पे चर्चा कराइए, और कुछ समय बाद जितेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया, तो पहले क्यों नहीं कहा कि इस्तीफा दे, उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे? ये क्या है, इन लोगों के पास चर्चा करने का भी मादा नहीं है, ये लोग चर्चा से दूर भागते हैं। दूसरी बात, ये बताइए मुझे कि अशोक गहलोत ने क्या इस्तीफा दिया था? और मैं बताता हूं, राजस्थान में देखिए 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ, क्या बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था? बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कहा वो सुनने लायक है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है, और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितनी भी की हो गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा है। और सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पेपर लीक हो जाते हैं। अब ये लोग आके यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं उनके कंधों पे बंदूक रख के इस्तीफा मांगेंगे?
1: ठीक है, क्या छात्रों इस्तीफा नहीं दिया? ठीक है, यही पूछ ले रहे हैं। हाँ, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जब राजस्थान में स्थिति थी, आपकी सरकार थी तब की, वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ रही हूँ, राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को?
2: जी हाँ, बस अभी थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा एजेंडा क्या है। सारे वहां पे एमपीज मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी, कुछ ही देर की बात है बस। अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो मैं चलाए दे रही हूँ जिससे संदेह ना रहे।
3: दहशतगर्दों का बी टीम है,
4: उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू।
3: छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ।
2: ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, इस देश के युवा हैं।

0: 16-17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द भेड़ी और भाड़े के टट्टू हैं? क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं, तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करी है कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? ये इस देश के बच्चे हैं, पैलेट्स दिखाई दिए। एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है, या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है शो के पहले।
1: पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए।
0: यूटीयू वीटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, छोटी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू वीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया।
1: बिल्कुल,
0: ये शो के पहले की खबर थी।
1: बिल्कुल,
0: क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं।
1: गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए,
0: हटाने की क्या मजबूरी?
1: ठीक है, और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई है, वो भी बताए क्या वजह है?
2: देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा, तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी की वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला? नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए? कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो, क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है, क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है, 2004 में यूपीएससी सीडीएस का पेपर लीक, 2005 में एनडीए का, 2006 में एसएससी स्टेनोग्राफर का, 2007 में आरबीआई का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं, मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, जेपी नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। मुझे दुख इस बात का है कि इन बच्चों का इस्तेमाल,
1: एक बार अमित जमी जी बोले, एक बार अमित जमी जी बोले
2: तो वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को लॉन्च करने के लिए।
1: अमित जमी जी उसके बाद से आ रही हूँ आपके पास। अमित जमी जी, आज सवाल इस बात का भी है, कई लोग ये मान रहे हैं कि जो बच्चों की आवाज जंतर मंतर पर बुलंद हुई है वो सियासी शोर में मतलब भटक ना जाए, क्योंकि देखिए इससे मतलब अगर ये पॉलिटिकल फाइट बनती है तो उससे बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल फाइट लड़ना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि उन बच्चों का सामना करना या उन प्रदर्शनकारियों का जो लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं। और आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स अगर इतनी हावी हो जाएगी तो फिर उससे बीजेपी को ही फायदा होगा?
3: देखिए अंजन जी, सबसे पहली बात तो हम ये हमेशा ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, हम ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे, कितने बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे, और अंजना जी मीडिया की क्या ताकत थी यूपीए वन यूपीए टू में। आप लोगों की आवाज से, सुप्रिया जी को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों की आवाज से गृह मंत्रियों का रिजिग्नेशन होता था। भैया गृह मंत्री छोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो जो गृह मंत्री के पद पे थे, वो भी दिन था। लेकिन ये जो अहंकारी चाणक्य है हमारे यहाँ केंद्र की सरकार में, इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया तो केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी, हम झुक जाएंगे। हमने समाजवादी पार्टी के सामने झुकने को नहीं कहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, तो आप हमें बताइए कि पूरे कनॉट प्लेस में ये कश्मीर जैसा छावनी आप क्यों बना रहे हो? ये सीआरपीएफ का जो पूरा बंगाल से फोर्स लाके आप पूरे कनॉट प्लेस को घेर क्यों रहे हो? हजारों बसें कहां से आ रही हैं? आज रात में अगर वो बच्चे हमारे हैं, उन बच्चों छात्रों के साथ क्या होने वाला है? आज हमारे गौरव भाटिया ये कह के जाएं कि हमारे बच्चों के साथ आज पूरी रात में कोई घटना नहीं होगी। और सीधी सीधी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं गृहमंत्री जी से कि गृहमंत्री जी दिल्ली पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दिए हो? ये हमारी बेटियों का लड़कियों का कपड़ा फाड़ने की, ये किस पुलिस के मैनुअल में है? ये किस, ये जो माँ बाप हमारे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोचिंग के लिए कर्जा लेते हैं रिश्तेदारों से, और पर्चा लीक होता है, और उत्तर प्रदेश में
1: ठीक है ठीक है। जल्दी से सुप्रिया जी, दो लाइन जल्दी से, आप भी अपनी बात बोलिए, एक साथ जवाब लूंगी जल्दी से।
3: 10 सेकंड,
1: जल्दी जल्दी जल्दी।
3: उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा लीक होता है, गुजरात की एक बड़ी फर्म उसका नाम आता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं एसटीएफ लगा दिया है, मकान बुलडोज कर दूंगा, और वो जो उसका मालिक है विनीत आर्या, वो अमेरिका भाग जाता है।
1: चलिए ठीक है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी,
3: भारतीय जनता पार्टी भगा दी।
1: बच्चों पर आइए, बच्चों के, बच्चों का इश्यू है, बच्चों पर, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पेपर लीक, स्टूडेंट्स पेपर लीक। जी सुप्रिया जी,
0: अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहां पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे हैं और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे हैं, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, निकाल बाहर करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी, एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे, मोदी जी और शाह जी हैं कहां, पता तो चले, गुमशुदगी के पोस्टर लगाए क्या, गुमशुदा लिखाकर कहां है,
2: आज के मुद्दे पे रहूंगा। हाँ देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता भी तैयारी से नहीं आई हैं, और इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं तो बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद से ले लीजिए जरा इस्तीफा, जो सारे बयान दिए जाते हैं, जब आप कहते हैं मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, इन सब का इस्तीफा लीजिए। आज जो चर्चा का विषय, मैं उसी पे रहना चाहता हूं। सपा को आज ये बताना होगा कि जब स्पीकर महोदय ने मौका दिया केसी वेणुगोपाल जी को वक्तव्य रखने के लिए, तो अखिलेश यादव जी के दिल में ऐसी आग क्यों लगी कि अखिलेश यादव जी ने स्पीकर से कहा कि आपने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन सपा को नहीं दिया?
1: परसों की खबर हो गई गौरव जी, पुरानी खबर हो गई है गौरव जी,
2: जाएगा, इनको छात्रों की चिंता नहीं है।
1: उसके बाद से अखिलेश जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा हम तालमेल कर लेंगे। आज आइए ना, स्टूडेंट्स पेपर लीक टॉपिक है, स्टूडेंट्स पेपर लीक प्रोटेस्ट, और उस
2: चलिए
1: क्या रणनीति है। जी
2: अंजना जी, मैं एक बात कहता हूं, आप बड़ी जो है प्रख्यात एंकर है, मैं पूछता हूं क्या गलत कहा है जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं संसद के पटल पे चर्चा कर लो, कितना मर्जी समय लो, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे लो ना, क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि संसद से दूर बैठ के कैसे चर्चा हो सकती है? दूसरी बात आपको बता दूं, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर्चा लीक हुआ 2016 में, कौन था होम मिनिस्टर पता है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, गृह विभाग उनके पास, इस्तीफा दिया था 2017 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन।
1: गौरव जी, गौरव जी, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, केंद्र हो, अब आपकी सरकार है और सरकार आप ही इन तमाम जगहों पर चला रहे हैं। जनता ने कुछ सोचकर आपके हाथों में सरकार सौंपी है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर योगेश सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि कुलपति हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप देख रहे हैं कि जो देश भर से छात्र हैं, युवा हैं, वो पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है इस वक्त जंतर मंतर पर। सबसे पहले बतौर वीसी
4: बिल्कुल
1: आप क्या कहेंगे उन छात्रों से जिनका भरोसा टूटा है, जिनको कई जगहों पर प्रदर्शनकारी जब वो सड़कों पर थे बीते दिन 20 तारीख को प्रोटेस्ट के दिन उनको चोटें भी आई हैं, बहुत आहत हैं और बहुत सारी बातें उनके मन में इस वक्त है, बतौर वीसी आप क्या कहेंगे?
4: देखिए ये सब बच्चों के भविष्य की बात है और जो कुछ हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसको नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हो गया, क्योंकि देश में बहुत सारे एजुकेशन के माफिया हैं जो ये काम करते रहते हैं, अलग अलग तरह से कमजोर करते हैं, उसका कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक्ट भी किया और एग्जाम हो गया और अब एडमिशंस का प्रोसेस चलता है वहां का। अब बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब इसमें जो कुछ हुआ, अब इसको अगर एक तरीके से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, पर बात यह है कि इसकी आवश्यकता कितनी है इस समय। अभी यूनिवर्सिटीज में सेशन शुरू हो रहा है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी आएंगे, पुराने भी हैं, उनका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमको ध्यान रखना है। मैं तो सभी स्टूडेंट्स से अपील करना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में आएं, अपना मन से पढ़ाई करें। चीजें इंप्रूव हुई हैं, आगे भी और इंप्रूव होंगी, ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन ऐसी एक दुर्घटना हो गई, पहले भी होती रही होंगी और हुई भी है देश के अंदर, उससे सबक सीखने की जरूरत है और इंप्रूव करने की जरूरत है। परंतु आज आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप भी बात कर रहे हैं वो बनाएंगे, ये एक एग्जाम्पलरी बेसिकली पनिशमेंट देने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसको जल्दी करके पनिशमेंट देंगे, ये तो चोर पुलिस वाला मामला हो रखा है, लोग छूट जाते हैं या सजा नहीं होती, उनको डर कम लगता है। जब तक डर नहीं लगेगा, सिस्टम कितना भी फुल प्रूफ हो, उसको तोड़ने की गुंजाइश लोग बना ही लेते हैं, वो डर को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। शायद फास्ट ट्रैक से इसमें एक ये इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल हो, मेरा ऐसा मानना है कि निर्णय जल्दी आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये गलत काम हमको करना नहीं चाहिए, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है।
1: बिल्कुल, और यही वीसी साहब सवाल यही है कि इतने सारे केसेस आज तक हुए हैं पेपर लीक के, सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। आप सोचिए ऐसी स्थिति है कि विधायक बन के बैठे हुए हैं, पेपर लीक के आरोपी रह चुके, एक बार छूटे फिर पेपर लीक का आरोप लगा और खुद ही एफिडेविट में दिए हैं। सवाल है कि एक ये जो पूरी व्यवस्था है ये कैसे बदलेगी, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है ना इन बच्चों में जिसकी वजह से वो निकले हैं।
4: नहीं, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन दुख जो है सब जायज है और इसको बहुत सख्ती से, अभी क्या है कि पहले अगर सजा नहीं हुई तो लोगों का हिम्मत बढ़ती रहती है, अरे क्या हो गया, एक बार थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, और उनकी हिम्मत बढ़ी और वो करते रहते हैं। इस कारण से इसको सख्ती से निपटने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं, और ये सरकार निपटेगी भी। अब देखिए ना, पेपर कैंसिल हुआ नीट का, ये आसान निर्णय तो नहीं था ये पेपर कैंसिल करने का भी, पर जिस लेवल पे लीक हुआ सरकार ने सही समय पे निर्णय तो लिया है। अब जो है ये फुल प्रूफ रहे, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये जिम्मेदारी है, शिक्षा से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर टीचर्स ही पेपर को लीक करने में पाए जाएंगे, जो इस बार हुआ है, जो नाम आए हैं बहुत सारे, उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता था, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता था, सारे शिक्षा जगत के लिए भी ये शर्म की बात है। और सिस्टम्स को तो इम्प्रूव करने की जरूरत ही है। अभी जो भी ये आंदोलन अभी चला है, सोनम वांगचू जी से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अब आप फास्ट को छोड़ दीजिए, क्यों अब जो है ये इशू है जिसको कि सबने अच्छे से समझा है, करेक्टिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, तो ये फास्ट डिसकंटिन्यू करना चाहिए उनको इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि एक शांति आए, कैंपसेस में भी शांति आए और पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक हो सके, ये मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, उनको भी अपील करना चाहूंगा।
1: वीसी साहब, क्या आपको लगता है कि प्रदर्शनकारियों को एंगेज करने में देरी हुई जिसकी वजह से मतलब एक गुस्सा होता है ना वो पाइल अप करता चला गया?
4: नहीं देखिए, ये तो है ही कि देरी की तो बात नहीं कहूंगा, पर गुस्सा तो जायज ही था। पेपर लीक होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि अरे कैसे हो गया, बार बार हो रहा है, हम पढ़ाई करते हैं। वो तो अपनी जगह सब बच्चे तो सही हैं ही, लेकिन आज जब वो इशू तो हो गया ना, सबको समझ आया, सरकार को भी समझ आया और उस पर एक्शंस भी कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है पढ़ाई की तरफ ध्यान देने का समय आ गया, एडमिशंस का भी टाइम खत्म होने जा रहा है, यूनिवर्सिटी सारी खुलेंगी तो पढ़ाई पे सबको ध्यान देना चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वही हमारा और देश का भी भविष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए। और मैं पेरेंट्स को भी अपील करना चाहूंगा कि समझाइए इसको कि ये इससे बहुत मिलने वाला कुछ नहीं है। क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटीज में, लेबोरेटरीज में जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे वो हमारी जिंदगी में काम आएगा। इशू तो सबको समझ आया है, तो अब मुझे आवश्यकता नहीं लगती, इसी कारण से फास्ट की भी मुझे आवश्यकता अब नहीं लगती है।
1: जी वीसी साहब, कॉकरोच जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में ये पूरा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, वो कह रही है कि कल अब वो देशव्यापी आंदोलन करेगी, उसके बाद से यूनिवर्सिटीज भी, जैसा आप कह रहे हैं अब जुलाई अंत अगस्त आ ही गया है, अगस्त में शुरू होने वाला है, आप इसको कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं, अगर वो अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कर रहे हैं?
4: देखिए, अगर वो अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखते हैं और कहते हैं कि अब उसको जो है पैन इंडिया लेकर जाएंगे, तो इसका मतलब तो मंशा पर ही संदेश होता है ना। आपकी मंशा पे संदेह है कि आप जो चाह रहे हो और आप जो कह रहे हो और जो करने की कोशिश कर रहे हो, दो अलग चीजें हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पर ये जो है बच्चों के भविष्य की बात है। शिक्षा को जितना इससे दूर रखेंगे उतना अच्छा होगा, एक अच्छा स्वस्थ माहौल बनेगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। और अगर राजनीति लंबी करेंगे तो नुकसान होगा शिक्षा संस्थानों का, देश का नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों का जो भविष्य है वही प्राइम कंसर्न है हम सबके लिए। आज मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता है, और उनको भी नहीं करना चाहिए ऐसे, अब छोड़ देना चाहिए सब्जेक्ट को।
1: एक आखिरी सवाल मेरा अब आपसे है कि आप लंबे वक्त से आप शिक्षाविद हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स का ऐलान तो प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन इसके अलावा एक शिक्षाविद, एक प्रोफेसर के तौर पर और जाहिर तौर पर एक पेरेंट भी आप होंगे, क्या ऐसी बातें आप बताएंगे जिससे इस तरह की स्थितियां फिर से दोबारा देश में पैदा ना हो? क्या मूल चूक, बदलाव, परिवर्तन करने की जरूरत है हमारी व्यवस्था में? क्या एनटीए को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो वाजिब नहीं है? मतलब क्या गलत है सिस्टम में? आप सोचिए ना सर, उत्तराखंड में आज भी एक परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया है, भाई ये रुकता ही नहीं है, इसका क्या किया जाए?
4: नहीं देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये शिक्षा से बाहर निकला हुआ सब्जेक्ट है इस समय। कारण क्या है, ये इस पर सबसे पहला, सही बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, लेकिन अब एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। और इसमें जो है बिल्कुल भी, अदालतों से भी निवेदन है कि नरमी ना दिखाएं इसमें, अदालतें सख्त रहेंगी तो बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। दूसरी बात है कि सिस्टम को मजबूत करने की जो बात है पेपर लीकेज की, वो जो बात है कि सिस्टम फुल प्रूफ बने
1: जी,
4: उसके लिए जो ये जो एजुकेशन माफिया देश में बना है उस पर भी एक्शन करने की जरूरत है। ये ना लिकर माफिया की तरह, ये ड्रग माफिया की तरह एजुकेशन का माफिया है। सरकार जितना करती है, जितना एजेंसीज करती हैं जो एग्जाम करा रही हैं, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और ये उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे चले जाते हैं। तो ये जो डर बिठाना, मैं समझता हूं ये बैठेगा ना तो काफी चीजें अपने आप ठीक होंगी। दूसरा ये है कि जो सेंटर्स बनते हैं और उसको भी, सेंटर्स बनाते हुए हमें ध्यान रखने की आगे जरूरत होगी कि ऐसी जगह हो जहां पे कि लोग हाई इंटीग्रिटी के हों, और क्वेश्चन पेपर्स की जहां तक बनाने की बात है उसमें, और जो ट्रांसलेशन जिन्होंने करी, अगर पेपर जब उनसे लीक हुआ, अभी वो सिद्ध होगा उन्होंने किया, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। इसकी सिलेक्शन में भी ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इतना सारा अभी जो इशू बना है, मैं नहीं समझता कि ये दोबारा ऐसा होना चाहिए। जहां तक एनटीए की बात है, देखिए कोई भी संस्था कराएगी तो चैलेंजेस वैसे ही रहेंगे। एनटीए को यदि मजबूत करने की और आवश्यकता है, सरकार करेगी, कुछ एनटीए को और मजबूत किया भी है।
1: जी योगेश, वक्त इतने की इजाजत देता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आज तक के जरिए। रात 9 बजे जरूर देखिएगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे तब तक प्रदर्शनकारी नहीं हटेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे पेपर लीक पर देश में कितने जंतर मंतर बन चुके हैं। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम। And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
10: Sanitary Solutions.
11: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
12: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
11: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
12: अर्ज किया है
11: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
13: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
11: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
14: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
15: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: वी आर ओवर जिमी।
16: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
17: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
18: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क, the mustard specialist since 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitaryware. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
11: Kuch to baat hai is dil mein.
12: We are over, Jimmy.
13: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
4: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड। इफ यू डू द मैथ, सो वन अ मंथ अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टोल्ड दैट ऑल द स्ट्रेस दैट यू वेंट थ्रू यू गोइंग टू हैव टू गो थ्रू अगेन. And after that, they told, we really don't care.

0: किसी दूसरी जगह पर हो मुलाकात। सरकार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा, राव के घर सोनिया और खड़गे समेत दूसरे दलों के सांसदों का जमावड़ा, आवास के बाहर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया आश्वासन, राहुल की मांग, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, शो की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है, जिसके बाद एक बस से इंडिया ब्लॉक के नेता गांधी स्मृति जाने वाले हैं। वहीं आरएफए की टीम तैनात कर दी गई है वहां पर, इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आरएएफ की टीम की तैनाती ये दर्शाती है किस तरह से कोई अशांति अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर पहले से ही तमाम सुरक्षा घेराबंदी कर दी गई है। जहां पर इंडिया ब्लॉक की बैठक है उसके आसपास सुरक्षा टाइट है। इंडिया ब्लॉक के नेता गांधी स्मृति की ओर रवाना हो चुके हैं। राहुल के घर से बस से जा रहे हैं सांसद, और जो तमाम दल हैं इंडिया ब्लॉक के वो इस बैठक में शामिल हुए थे। राहुल गांधी के घर पे पिछले एक घंटे से लगभग ये बैठक चल रही है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, बस रवाना हो गई है या फिर इसे घर पर ही रोक दिया गया? ऑडियो क्लैश करेगा दूसरा।
1: जी देखिए, अभी हम लोग पांच सुनहरी बाग के बाहर हैं और यहाँ पे राहुल गांधी इस बस में चढ़ने वाले हैं। केसी वेणुगोपाल और तमाम नेता यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। और 30 जनवरी जाएंगे, 30 जनवरी मार्ग की तरफ ये बस ने रुख किया है। पहले था कि शायद राजघाट जाएं, लेकिन अभी जो हम लोग को कहानी पता चल रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संजय थोड़ा पीछे से व्यू दिखा दो आप, कोई बात नहीं। और यहाँ पे 30 जनवरी मार्ग जाने की पूरी तैयारी। अब आप धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे एक एक करके तमाम सांसद इस बस में भरे जाएंगे। दो बसें लगी हुई है, देखिए एक और दो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग 30 जनवरी तक जा पाएंगे, क्योंकि आगे आप देखें तो पुलिस की भी तमाम बसें यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या ये रास्ता क्लियर होता है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे राहुल गांधी के गेट दिखाइए संजय, राहुल गांधी के घर के गेट पे आपको नजर आएगा कि तख्तियां नजर आ रही हैं। यहाँ से ही राहुल गांधी निकलेंगे। और ये देखिए सांसद सब बसों में बैठने लगे हैं, तमाम सांसद।
0: मौसमी, बसों में तो बैठना ठीक है, लेकिन जिस तरह की आप तस्वीर दिखा रही हैं वहाँ पर एकदम चौको ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रही है, लग नहीं रहा ये बस आगे मूव कर पाएगी।
1: एक तरीके से लगातार दो दिन बाद परसों राहुल गांधी पीएम आवास पर नजर आए थे और आज गांधी स्मृति जो है राहुल गांधी पूरे तमाम सांसदों विपक्ष के सांसदों के साथ जा रहे हैं। नारेबाजी भी हो रही है और बस देखिए सांसदों को लेके अब आगे जाते हुए राहुल गांधी इसमें मौजूद नहीं है। जरा आगे चलते हैं और एक तरीके से लगातार जिस तरीके से कोशिश ये है कि इस पूरे मुद्दे को गरम रखे, अपनी मांगों को आगे रखे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भी ताता है पूरा योजना और रणनीति के तौर पे। ये देखिए भीड़ जहाँ आपको दिख रही है, राहुल गांधी नजर आ जाएंगे इस भीड़ में, राहुल गांधी नजर आ जाएंगे। हमने देखा था कि किस तरीके से पिछली बार तो औचक प्रदर्शन करने बैठ गए थे राहुल गांधी। और यहाँ पे आप देखिए इमरान प्रताप के सर
2: राहुल जी दोनों तरफ आपके हैं।
3: आज महात्मा गांधी जी के समाधि पे जाकर हम जो हिंसा फैल रही है उसका मुकाबला शांति से अहिंसा से किया जा सकता है, उसी लिए जा रहे हैं,
1: उसके लिए जा रहे हैं। आप
4: पूरी पूरी
5: यस वी आर तैयार।
1: तो ये तो कांग्रेस सांसद हैं और यहाँ पे प्रियंका गांधी की भी गाड़ी और सिक्योरिटी यहाँ पे तैयारी में है। और आप देखिए भोड़ लग गई है यहाँ सांसदों की, और वो 152 पेपर लीक का पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे। 152 पेपर लीक, तख्तियां भी हैं, पूरी तैयारी भी है। तो एक तरीके से कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही है, फोन लाइन कट गई है।
0: ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें बस के जरिए गांधी स्मृति जाने का प्लान है। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद इस बस में भरे जा रहे हैं, कि करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तस्वीर आ रही है। दरअसल ये प्रदर्शन किया जाएगा इस बात को लेकर जो हिंसा अभी तक हुई है सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक इतने पेपर लीक हुए हैं लेकिन कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो प्रधानमंत्री किस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं जब अभी तक इतने पेपर लीक मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ? तो क्या फास्ट ट्रैक प्लान से कोई एक्शन लिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर ही सियासी घमासान सुबह से ही जारी है। अब सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता संसद के भीतर बहस के लिए तैयार नहीं है, ये बाहरी प्रदर्शन करना चाहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जो आप तस्वीरें पहुंचा रही हम तक, वो बेहद अहम इसलिए है कि तैयारी तो कर ली गई है प्रदर्शन के लिए, बस ये आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं? आगे तो पूरा चौको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, सुरक्षा का घेरा वहां पर लगा हुआ है, और जिस तरीके का प्रदर्शन उस दिन पीएम आवास के बाहर हुआ उसके बाद तो अब और भी ज्यादा सतर्कता है।
1: भैया थोड़ा सा एकदम देखिए, बस यात्रा राहुल गांधी चुनावों में और वोटर अधिकार यात्रा में बस में और गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब देखिए 30 जनवरी मार्ग यहां से बहुत दूर नहीं है। ये तस्वीर में आप देखिए सबसे आगे केसी वेणुगोपाल लोगों को, सांसदों को बस में भर रहे हैं, पर ऊपर आपको दिखाई देगा राहुल गांधी वही ड्राइवर सीट पर खड़े हुए हैं, इंश्योर करने के लिए कि उनके सारे सांसद गाड़ी में आ जाए, बस में भर जाए। और ये राहुल गांधी आप देखिए पीछे नजर आएगा, तमाम सांसद भी हैं यहाँ पे, राहुल गांधी आपको आगे नजर आ जाएंगे और कुछ इस तरीके का ताता। हालांकि आप उधर देखिए, संजय उधर दिखाइए, तो ये पूरा तो रास्ता जाम है। आगे लड़के, आगे जो है आरएएफ की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ी है। तो ये आइए थोड़ा पास से आप जाके दिखा दीजिए, संजय थोड़ा आगे जाइए, हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा सा तस्वीर अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए सामने चलते हैं। तो ये आपने सही कहा नेहा कि पता नहीं बस आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, और पुलिस जो है अंदाजा लगा रही थी कि शायद राजघाट चले जाएं, लेकिन अब 30 जनवरी जा रही है गांधी स्मृति, और राहुल गांधी सामने से आपको बेहतर शायद नजर आ जाए। ये सामने से ये बस जो राहुल गांधी के घर से बाहर निकली है, दो बसें हैं और तैयारी है गांधी स्मृति जाने की। तो एक तरीके से लगातार
0: ये बताइए कौन कौन सी पार्टी के सांसद इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने एनसीपी को देखा था, समाजवादी पार्टी को देखा था, इस बार इस प्रदर्शन में कौन से और पार्टी के लोग जुड़ गए हैं, कौन से सांसद हैं, नए चेहरे कौन से हैं?
4: जहां भी जाए यार, देश हमारा है, ये कायर अपने बैठ कर पुलिस को बुला के हमें डरा रहे, हमारे इसमें डर नहीं है।
2: राजीव का गला से तार हटाओ,
1: गांधी स्मृति जाने की तैयारी है, मंशा क्या है?
5: 30 जनवरी मार्ग जाएंगे मैम, 30 जनवरी मार्ग,
1: 30 जनवरी मार्ग जा रहे हैं
5: भाई, देखिए वही निकल रहे हैं अभी तो, अमेरिका से बसों का था वहां तक जाएंगे, लेकिन शायद बसों में रोका तो पैदल मार्च करेंगे, देखते क्या करना है। तो गांधी जी के यहाँ जाके अपना समर्थन जो है युवाओं के लिए हम लोग व्यक्त करेंगे, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से।
1: विजुअल्स दिखाते रहिए कैसे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की नारेबाजी भी चल रही है। तो संदीप जी आगे चलते हैं, तो पैदल क्यों नहीं जा
5: जी?
1: पैदल पैदल
5: पैदल जाना है।
1: संजय आगे चल,
6: बारिश होने दीजिए, तूफान आने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे देश में छात्रों ने, युवाओं ने सड़कों पे, गलियों पे तूफान ला रखा है। 12 साल से जो गलियां, जो सड़कें वीरानी थी, उन गलियों को, उन सड़कों को हमारे छात्रों ने गुलजार कर दिया।
7: पहली बार देखा गया कि संदेश ये है कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं।
8: गांधी स्मृति क्या है? एक संदेश है कि हमें
9: गांधी जी के पास
10: इसलिए
9: किस लिए
11: सर कहाँ तक जाने का आप लोग का आवाज़?
0: मौसम में आपको मेरी आवाज मिल रही है
1: जी? नहीं हाँ, मौसम
0: में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या
1: चीज बताना
0: क्या पुलिस की बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है? क्या ये बस आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दी जाएगी? क्या जंतर मंतर जाने का प्लान है या फिर कोई औचक प्लान है यहाँ पर?
1: आपको एक चीज बताना चाहती हूँ नेहा, देखिए बस वहीं फंस गई है, यानी कि 10 मीटर चल के बस जो है आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इस वजह से नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या मीडिया का ताता है। बाईं तरफ संजय आपको 180 डिग्रीज घूमिए संजय और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगी है। एक बस, सफेद बस, बिल्कुल सीधे सड़क के आर पार खड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मौजूद है, बैरिकेड है, यानी कि राहुल गांधी की बस उनके घर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। घर के सामने ही ये बस को रोका जाएगा। कुछ इस तरीके की तस्वीर पुलिस की जो दो बसें अभी थोड़े देर पहले हम दिखा रहे थे, वो दो बसें खड़ी हुई हैं और उसके पीछे राहुल गांधी उस बस में हैं। तो एक तरीके से यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, आइए सुन लेते हैं क्या अनाउंसमेंट हो रही है। एक तरीके से तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारा 163 लगी हुई है और बीएनएस की धारा 163 के तहत बस आगे नहीं जा सकती। संजय यहाँ पे दिखाइए किस तरीके से, बारीकी से दिखाइए जो खाकी का समुंदर है और पूरी आर पार कोई भी नहीं जा सकता, बैरिकेड लगाए पैदल भी नहीं जा सकते। इस तरह की तस्वीर सुनहरी बाग लटियंस दिल्ली वीआईपी एरिया में आपको देखने को मिल रही है नेहा, यानी कि एक बार फिर धरना राहुल गांधी क्या यहां देंगे, बस से उतरेंगे? अब आगे स्थिति जल्द यहाँ पे बदलती हुई।
0: ठीक है, कम से कम एक बात तो तय है कि ये बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिस तरीके से वहां पर आरएएफ की तैनाती है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि आगे ये बस तमाम सांसदों को लेकर ना बढ़ सके। तो क्या जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं वहीं पर धरना करना शुरू कर देंगे? एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मौसी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उस दिन की जो तस्वीर थी उससे आज की तस्वीर कितनी अलग दिखाई दे रही है और आज कौन कौन से सांसद राहुल गांधी के साथ?
11: 4 बसें तो आपकी, 3 बसें, 6 बसें तो पुलिस की, सीआरपीएफ की, आरएएफ की खड़ी हुई।
12: हाँ, तो डर के मारे बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहाँ 30 जनवरी मार्ग गांधी जी के जहाँ रहते थे।
13: क्या हम कोई झगड़ा करने नहीं जा रहे? सद्बुद्धि ले, देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उनको उनके बारे में कुछ सोचे देश के नेता।
14: अभी सब लोग गांधी स्मृति की तरफ जा रहे हैं, लंबी मीटिंग हुई।
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां से क्या तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे?
15: हेलो हेलो हेलो, हेलो
0: अमित, फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है,
1: जी देखिए नेहा, नेहा
0: ठीक है, मौसमी तस्वीरें दिखाइए।
1: आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नेहा?
0: हाँ, आवाज आ रही है आपकी।
1: ये देखिए पीछे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जूम इन जाइए संजय। प्रियंका गांधी कह रही है शायद राहुल गांधी को आगे आ गई हैं बस के पास, ड्राइवर सीट के पास, और उनको शायद सुरक्षा कर्मी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो रास्ता बता रही हैं, कुछ इशारों इशारों में कह रही हैं। उनके पीछे राहुल गांधी खड़े हुए हैं और देख रहे हैं ये तस्वीर। अब गाड़ियों का ताता है और बिल्कुल आप देखिए प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल से कुछ बात कर रही हैं। संदीप जी क्या हो रहा है जरा बताइए, जरा बताइए पीछे तस्वीरों में क्या हो रहा है।
5: देखिए इसमें बसों में ये था कि जितने सांसद हैं विपक्ष के, हम लोग 30 जनवरी मार्ग तक जाएंगे, वहां पैदल चल के गांधी समाधि जाएंगे और वहां एक अपना विरोध और एक प्रतिरोध अपना प्रकट करेंगे, युवाओं की जो मांगे उसे समर्थन में खड़े होंगे। अब पता नहीं सरकार ने क्या कर रखा है, अपनी बसें खड़ी कर दी है। देखिए सामने दोनों पुलिस की बसें हैं, जब मालूम था कि हमको यहां से जाना है। और ये बैरिकेड क्या भाई, ये कोई गुंडे बदमाश हैं? अरे जो लोग संसद में जा सकते हैं, जो हमारा मंदिर माना जाता है डेमोक्रेसी का, वो क्या गांधी समाधि नहीं जा सकते हैं? क्या मतलब ये क्या सरकार की मंशा, मुझे नहीं समझ में आ रही।
1: लेकिन नेहा आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, पिछले वाले धरने और इसमें क्या फर्क है? दरअसल 4 घंटे पहले ये मैसेज गया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे दूध का जला कहते हैं छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो यहाँ भारी बंदोबस्त कर दिया है। हमें लगा अमूमन यातायात में राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये बस जाएगी, लेकिन बस देखिए दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, दिखाइए सफेद बस पे,
0: ठीक है
1: दिल्ली पुलिस की बस में कर्मी नहीं
0: है। जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित जहां पर आप खड़े हैं वहां से तस्वीरें दिखाइए, अब प्लान बी क्या होगा इन सांसदों का, क्योंकि यहां से तो बस आगे बढ़ नहीं सकती। अब जहां पर ये बस रुकी हुई है क्या वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे या फिर जंतर मंतर तक जाएंगे किसी भी तरीके से, या कोई और ऑल्टरनेट रूट भी है?
10: देखिए कांग्रेस के नेता तो अब धीरे धीरे राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते से ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रिया सीनेट जा रही है और बसों का तांता गाड़ियों का तांता यहां पे लगा हुआ है। पुलिस ने बहुत हेवी बैरिकेडिंग की है यहां पे और कृष्णा मेनन मार्ग की तरफ भी काफी ज्यादा बैरिकेडिंग हुई है, ताकि जो विपक्षी सांसद इस वक्त निकल रहे हैं उनको जाने ना दिया जाए। गाड़ियां सांसदों की गाड़ियां हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भी कई सारे साथी राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं आज इस मार्च में, तो आपको सिर्फ गाड़ियों का ही तांता दिखाई देगा। और सबकी कोशिश है कि 30 जनवरी जो मार्ग है जहां गांधी स्मृति है वहां तक पहुंचा जाए। छात्रों के समर्थन में इंडिया गठबंधन अब इसे सड़क पे इस लड़ाई को लेकर आ रहा है और इसकी वजह से देखिए दिल्ली में पहले से ऐसे हालात बन गए थे लुटियन जोन में कि जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखेंगे यहां पे सड़कों पे, बारिश भी हो रही है, बसों के अंदर कई सारे नेता हैं, मनोज झा मुझे
0: प्लान भी क्या है, अमित प्लान भी क्या है, अब तो रुक गई है बस, अब तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अब प्रदर्शन कैसे होगा, कैसे इसको हवा दी जाएगी?
10: अब ये मान जी जी जी मान के चलिए आपकी यहीं पे मोर्चा खुल जाएगा, जहां गाड़ी उनकी रुक जाएगी वहीं मोर्चा खुल जाएगा। जॉन ब्रिटास हैं आप यहां बस के अंदर, आपको दिखेंगे जॉन ब्रिटास हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। सर आप लोगों को रोक लिया गया है, प्लान भी है क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे?
15: कैसे रोक सकते हैं, हम तो जा रहे हैं 30 जनवरी गांधी स्मृति में, किसको रोक सकते है? गांधी स्मृति में जाने के लिए जाने में क्या मना है क्या? ये दे हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हियर, मार्शल लॉ है, अभी देखो ये सब दुकान बंद करने के लिए बोला, पुलिस है, पुलिस टेक ओवर कर दिया है, एनएसए डिक्लेयर कर दिया है, ये क्रैकडाउन के लिए प्लान कर रहे हैं,
10: जगह जगह बैरिकेड्स है, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है वो स्नैप बंद कर
15: रहे हैं। अभी अभी देखो ये मोदी साहब बोल रहे हैं ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हाल क्या है, तो ये दिल्ली आके देखना है।
10: जॉन ब्रिटास है ये सीपीएम के सांसद हैं,
0: क्योंकि आप उस बस को देख पा रहे हैं। एक बार अमित मुझे बताइए उस बस के अंदर कौन कौन से सांसद हैं, किस किस पार्टी के सांसद मौजूद हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं शीशे के आर पार कौन कौन इस बस से ले जाया जा रहा है।
10: जी जी सी
0: ठीक है, मौसमी के पास मैं जाऊंगी, मौसमी हाथ ला रही है, मौसमी
1: देखिए नेहा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम खड़े हैं बैरिकेड के ऊपर, यहाँ पे दाई तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड चढ़ रहे हैं और पीछे पर 4 कदम की दूरी पर राहुल गांधी है। भैया नीचे उतरो, 4 कदम की दूरी पे आपको राहुल गांधी नजर आएंगे उस बस में जो कि सामने बिल्कुल खड़ी हुई है। और राहुल गांधी ये देखिए आप, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं बस को आगे ले जाओ, यानी कि बैरिकेड हो या ना हो वो लगातार इशारा कर रहे थे ड्राइवर को। और अब महज 4 कदम की दूरी पर राहुल गांधी की ये बस, ये बैरिकेड, ये तस्वीर आप पीछे आप देखें तो अगर कोई भी गुंजाइश नहीं है, पीछे आप देखेंगे तो पुलिस की बस खड़ी हुई है और हम लोग यहाँ पे इस तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये बस आगे जा सके। अब देखना होगा ये जो एक स्थिति बन गई है, जो परिस्थिति है, इसमें किस तरीके से राहुल गांधी क्या पैदल जाते हैं, क्योंकि पुलिस पैदल
0: ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। यही वजह था कि पिछली बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था तब उन्हें हिरासत में लिया गया था, वहां से हटा दिया गया था। अब चाहे वो पैदल मार्च करें या फिर वहां बैरिकेड तक अपनी बस ले जाएं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद एक्शन तो तय है। ऐसे में प्लान बी क्या है? वहीं पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे?
1: प्लान बी ये है, राहुल गांधी बस से उतर गए हैं, राहुल गांधी बस से उतर गए हैं, शायद पैदल मार्च करें। पीछे का रास्ता है, पुलिस ने खोल दिया है, ये लीजिए आइए।
16: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को,
17: यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। कुछ मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को,
18: आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहे हैं,
16: जनवरी मार्च जाना चाहते थे सिंबॉलिकली, एसेसिनेशन स्पॉट है इसलिए। वो शायद अब खोल रहे
17: हैं, क्या बात है, क्या रास्ता खुल रहा है,
16: पता नहीं।
0: एक्शन वहां पर इस वक्त बना हुआ है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। तो मौसमी, राहुल गांधी बस से बाहर निकले, उन्होंने कहा है कि हमें आगे जाने से रोका जा रहा है गांधी स्मृति तक। ऐसे में जो तमाम छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनके साथ इस वक्त विपक्षी सांसद खड़े हुए हैं, ये मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये मैसेजिंग सोमवार से चल रही है। आज क्या हम एक्सपेक्ट करें अगले 2 से 3 घंटे में ये तमाम जो सांसद हैं कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे और

0: को आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तक तो ऐसा लग रहा था कि ये बैरिकेड्स लगे रहेंगे और बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अचानक से क्या हो गया?
1: बिल्कुल, थोड़ा काफी नाटकीय अंदाज था और आखिर समझ नहीं आया कि अगर पुलिस को जाने ही देना था तो इस तरह की बैरिकेडिंग क्यों लगाई। शायद ऊपर से इन लोगों को इनके आला अधिकारियों ने कहा हो कि जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि बिल्कुल बस जो है बैरिकेड के बिल्कुल सामने आ गई थी। और यहाँ पे आप देखिए फिर दोबारा चेन बना दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि जाहिर तौर पर ये आगे का रास्ता आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह के घर तक जाता है। अगर हम यहाँ से 100 मीटर और आगे जाएं तो गृह मंत्री अमित शाह का घर है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वो पूरा रास्ता जो है वो बंद रहता है। और अब एक बार फिर से दोबारा दूसरी कोशिश हो रही है रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा कि इससे आगे बढ़ने ना दें, यहाँ पे चेन, ह्यूमन चेन कह लीजिए या फोर्स की चेन बना के ये नीली खाकी नीली जो वर्दी के तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे
2: लगातार कई दिन इनको अत्याचार कर रही है। इसी सरकार का नहीं, गांधी का है, संदेश को देने के लिए लोग इंडिया लाइन के सब नेता वहाँ जा रहे हैं।
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही थी, अब बस वहां उस सड़क तक आप पहुंची है जहां से 100 मीटर पर अमित शाह का घर है। तो जो औचक प्रदर्शन उस दिन हमने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर देखा था, वैसा अमित शाह के घर के बाहर ना हो, उस स्थिति से निपटने के लिए एक बार फिर से वहां क्या बैरिकेडिंग की जा रही है?
3: विपक्षी नेताओं की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है गांधी स्मृति की तरफ।
0: ठीक है अमित, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए।
3: जी नेहा, देखिए जो ह्यूमन चेन यहां पे बनाया गया था दिल्ली पुलिस और पैरा फोर्स कांग्रेस हटा दिया, मूव कर दिया ताकि उनके नेता की गाड़ी राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ पाए, और उस ह्यूमन चेन को तोड़ के अब राहुल का काफिला आगे बढ़ रहा है, गांधी स्मृति की तरफ जा रहा है, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जिन बच्चों की जान गई है नीट की परीक्षाओं की री एग्जामिनेशन की वजह से, वहां तक वो जाएंगे। और रेणुका चौधरी को बस में बिठाने के लिए गाड़ी को रोका गया है। रेणुका चौधरी जहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं उसी बस में शामिल हो रही है। और कांग्रेस के नेताओं का जमघट जो है अब केसी वेणुगोपाल से देखिए रेणुका चौधरी मिल रही है, क्योंकि इस इलाके में आने के लिए जितनी भी सड़कें हैं वहां पर पुलिस द्वारा हैवी बैरिकेडिंग को एक तरह से आप कहें बाईपास करके यहां तक पहुंचने की कई नेताओं ने कोशिश की है। और रेणुका चौधरी उनको अब यहां मिली है। गृहमंत्री अमित शाह का घर यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस वजह से भी लगातार हर मुमकिन कोशिश की गई दिल्ली पुलिस द्वारा कि गाड़ियों के मूवमेंट को रोका जाए। देखिए फिर अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, आगे देखना होगा कि क्या एक और लेयर की वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर रखी गई है राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को रोकने की। तो ये एक बार फिर से 48 घंटे बाद आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जिस तरह से राहुल गांधी का जो प्रदर्शन चला 3 घंटे तक, अब उसके 48 घंटे बाद एक बार फिर से विपक्ष दिल्ली की सड़कों पर। और ये कब हो रहा है? जब लुटियंस दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया, छात्रों को जंतर मंतर पहुंचने से रोक,
4: सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए।
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं 30 जनवरी बाद जाना चाहते थे, अब जाने दिया जा रहा है।

0: बस भी आगे बढ़ गई है। एक पॉइंट के बाद लगता है उन्हें रोक दिया जाएगा क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर अमित शाह का घर है, वहां से पैदल मार्च करेंगे राहुल गांधी।
1: एक और बार ब्रेक लग गया नेहा, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक एक और बार ब्रेक लग गया है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पे फिर से लगी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जद्दोजहद शुरू हो गई है। राहुल गांधी विपक्षी नेता इन बसों में सवार हैं, आगे बैरिकेड है। हमने देखा कि कैसे पहले राहुल गांधी के का घर जहां 5 सुनहरी बाग वहां बैरिकेडिंग थी दोनों तरफ, उसको तोड़कर राहुल गांधी आगे बढ़े। फिर जो गृह मंत्री का घर जहां पे है वहां पर ह्यूमन चेन बनाकर रोकने की कोशिश की गई, उसको तोड़कर राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे चढ़कर इन बैरिकेड्स को तोड़ के राहुल गांधी और अपने नेता के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर।
3: सर क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को कुछ सुना गया है?
4: देखिए ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से इन पर अत्याचार कर रही है। इसी से देश को की देश
0: मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी क्या अपडेट है, वहां पर क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है? ये पता लग पा रहा है कि बस को अब आगे जाने नहीं दिया जाएगा, अब आगे पैदल मार्च का प्लान है क्या?
5: तीसरा बैरिकेड आने वाला है, दूसरा बैरिकेड अभी पीछे आपने आपको अमित ने दिखाया, उसको किरण रिजिजू का घर वहां पे है, वहां पे एक बैरिकेड था उसको हटाया है उस बस ने, तो दो बैरिकेड हो गए। अब संजय इधर दिखाइए, गृह मंत्री अमित शाह का घर और उसके सामने पुलिस की ये पूरी तैनाती जो हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे वो बस आ रही है और यहाँ पे धारा 163 लगी हुई है बीएनएस की, यह अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ पे पुलिस यहाँ देखिए उल्लंघन ना करें धारा 163 का, कुछ इस तरह की टुकड़ी आप देखिए, पूरी पुलिस की फोर्स, रैपिड एक्शन की फोर्स, तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पे मौजूद है। बाई तरफ गृह मंत्री अमित शाह का घर है, ये बैरिकेड लगा हुआ है और ये सुनहरी बाग रोड से आप 30 जनवरी मार्ग की ओर, यहाँ पे आप देखिए पूरा किस तरीके से दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। हमने दिखाया था यही तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के बाहर 2 दिन पहले देखी गई थी और अब देखिए आपकी कि इस तरीके से घेरा बना के खड़े हुए हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये तो दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ पे पूरी अपनी रायट गियर में है, लेकिन दाई तरफ जो सड़क है वो खुली हुई है, यानी कि जो रास्ता 30 जनवरी मार्ग की तरफ जाता है वो खुला है। सर आगे जाने दिया जाएगा उनको 30 जनवरी? अच्छा ये देखिए हमें अभी बताया है यहाँ पे आला अधिकारियों ने, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे जाने दिया जाएगा, 30 जनवरी मार्ग जा सकते हैं लेकिन धारा 163 का उल्लंघन ना करें। अमित शाह के घर के सामने पुलिस फोर्स और दाई हाथ 30 जनवरी के लिए रास्ता खुला हुआ है।
0: शायद मौसमी सोमवार से सबक लेते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं अमित शाह के घर के बाहर ही धरने पर ना बैठ जाए जैसे पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे। इसी वजह से इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है क्योंकि उस दिन काफी मशक्कत के बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, तमाम अन्य नेताओं को बस में बिठाया गया था, लेकिन आज वो स्थिति पैदा ना हो इस वजह से शायद इतनी भारी सुरक्षा है वहां पर।
5: महज 10 कदम की दूरी पे अब ये बस है, बाई तरफ हमारे आप और नारंगी बस देख सकती हैं और दाई तरफ अमित शाह के बैरिकेड के बेहद करीब। जाहिर तौर पे मुझे लगता है राहुल गांधी खुद भी ये कह चुके हैं कि वो 30 जनवरी जाना चाहते हैं, तो रास्ता तो 30 जनवरी का खुला है, अब इसमें भी कोई रणनीति है ये अलग बात है, पर ये वो सियासत की वो तस्वीर जो हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने पूरे सांसदों की टोली, सुप्रिया सुले और तमाम विपक्षी नेताओं की टोली के साथ इस बस में अमित शाह गृह मंत्री देश के गृह मंत्री के घर के सामने ऐसे मौजूद यहाँ पे बस पे लगा है ब्रेक। अब क्या बस करेगी टर्न या करेगी यहाँ पे वेट, ये बड़ा सवाल है। आइए चलते हैं आगे और बस के पास क्या स्थिति अनफोल्ड हो रही है ये जानने के लिए देखते हैं कि क्या ये दरवाजा खुलता है। क्या जाएंगे आगे? ये आप देखिए केसी वेणुगोपाल आगे बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रियंका गांधी से। गाड़ी मुड़ रही है, कैमरा मैन, ओ अच्छा गाड़ी मुड़ रही है, बता रहे गाड़ी मुड़ रही है, गाड़ी की गाड़ी मुड़ेगी, अगर गाड़ी मुड़ती है। यहाँ पे मीसा भारती बैठी है आगे, यहाँ आगे बैठी कौन जी?
6: प्रियंका जी उस तरफ है
5: और प्रियंका गांधी उस तरफ है। यहाँ पे आप देखिए विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं और गाड़ी मुड़ते हुए। तो आइए ये तस्वीर आप देखिए कि सियासत में किस तरीके से दिल्ली पुलिस की नींद पक्का उड़ी हुई है नेहा। जिस तरीके से राहुल गांधी सड़क पर ये पूरा सियासी जो रणनीति अपनी दिखा रहे हैं, पैतरे दिखा रहे हैं, पूरा दिल्ली पुलिस लगातार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है। और उधर दिखाइए संजय किस तरीके से अब बस जो है मुड़ती हुई 30 जनवरी बार की ओर, अमित शाह के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और अब 30 जनवरी की ओर ये बस आगे निकली है।
0: मौसमी मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी 3 मांगे रखी थी, उन मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट कर दिया गया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई, कहीं ना कहीं मूवमेंट वीक ना पड़े इसी के तहत आज शाम ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी दल एकजुट दिख रहे हैं या इसमें भी सबकी अलग अलग राय है?
2: नहीं चलेगी।
5: देखिए हम देख रहे हैं तमाम विपक्षी नेता उसी बस में बैठे हुए हैं, 2 बस चल रही हैं और ये तय है। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गृह मंत्री के इस्तीफा के नीचे वो कोई भी बात नहीं मानेंगे। आप देखिए भले ही सोनम वांगचुक की कल चिट्ठी आई है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा के नीचे वो कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पीछे आप देखिए कि राहुल गांधी अब एक दिन के ब्रेक के बाद दोबारा सड़क पर भले ही बस में इस तरह से नजर आ रहे हैं और 30 जनवरी जाके वो अहिंसा का संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए रात हो चुकी है लेकिन सड़क पर वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो नजर नहीं आते थे, मुश्किल होता था कि कांग्रेस सड़क पर विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नजर नहीं आती है। यहाँ पे
0: 2 बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ मौसमी, गांधी स्मृति ही जा रहे हैं अब सभी, ये बात तय है, और जब गांधी स्मृति पहुंच जाएंगे तब कितनी देर वहां पर अनशन चलेगा इस पर कोई तस्वीर साफ हुई है?
5: देखिए नेहा अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है पर राहुल गांधी का जो औचक स्टाइल रहा है उसमें हो सकता है कि ये धरना लंबा चले, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे गांधी स्मृति में वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और एक तरीके से पहले ही चर्चा थी कि राजघाट जाएंगे, लेकिन आप देखें कि इलाके में पूरी किस तरीके से ये लटियंस दिल्ली का इलाका है, यातायात ठप पड़ चुका है। संजय उधर ट्रैफिक दिखाइए कि पूरी ट्रैफिक,
7: अब ये बताइए ये हम लगभग 80 वर्ष होने को आए भारतीय लोकतंत्र के और इस भारत के लोकतंत्र में जिस तरह रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से जिस निर्ममता से बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, व्यवहार हुआ, वो बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाइए वो कम है। आज हमने देखा, कल भी हमने प्रदर्शन किया था, आज फिर प्रदर्शन है। सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं खामियां हैं सरकार की तरफ से उसमें सुधार हो। पर मोदी सरकार पता नहीं किस घमंड में है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुननी चाहिए, विपक्ष मिलकर चलता है तो ही देश तरक्की करता है।
0: ठीक है अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, गांधी स्मृति जाना तय है या फिर एक बार फिर से कोई औचक प्लान राहुल गांधी का बन सकता है ताकि वो सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे सकें और किसी तरीके से इस आंदोलन को और स्ट्रांग बना सकें जैसा कि उन्होंने संदेश मंडे को दिया था प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना करके?
1: नहीं, देखिये गांधी स्मृति ही जा रहे हैं राहुल गांधी और जो उनके नेता हैं वो सड़कों पे कार्यकर्ता हैं, सड़कों पे लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को लेकर गाड़ी में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे ये जो कुनबा है ये काफिला अब 30 जनवरी की तरफ बढ़ रहा है, गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहा है। तो जो बात राहुल गांधी ने कही थी उसी बात पे अमल करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता भी वहीं पहुंच रहे हैं। बस अब इस मोड़ पे पहुंच चुकी है, आखिरी मोड़ पे जहां से गांधी स्मृति का रास्ता है और तिरंगा लगा दिया गया है उस बस पे। राहुल गांधी उस तिरंगे के ठीक पीछे आपको दिखाई देंगे नेताओं के साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा उनके दाएं हाथ की तरफ बैठी हुई है और इशारा कर रही है कि इस तरफ गांधी स्मृति का रास्ता है और कार्यकर्ता धीरे धीरे इस कट से भी, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग अब लगी नहीं हुई है लेकिन पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, 5 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं है यहाँ इकट्ठा होने का।
0: क्या आप ये बता सकते हैं कि अब अगर ये साफ हो गया है कि गांधी स्मृति, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अगर वहां पर शांतिपूर्ण धरने की इजाजत है या फिर शांतिपूर्ण धरना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे तो क्या कुछ समय बाद वहां से भी उन्हें हटाया जाएगा?
1: देखिए गांधी स्मृति पे जो सभा करने, शांतिपूर्ण सभा करने के लिए राहुल गांधी यहाँ आए हैं उसको लेके पुलिस कह रही है कि कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कितनी देर तक वहाँ बैठते हैं, क्या वो धरना लगाकर लंबे समय तक बैठेंगे, इस पर भी निर्भर करेगा कि दिल्ली पुलिस अभी आगे का एक्शन क्या करती है। राजा वड़िंग मुझे दिख रहे गाड़ी को आगे आगे सिग्नल करते हुए लेके जा रहे हैं। सर आगे का गेम अभी, अच्छा राजा वड़िंग कह रहे हैं कि वहां पहुंचेंगे उसके बाद ही जो है बातचीत होगी। और अब ये तैयारी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कि पहले इस काफिले को गांधी स्मृति तक लेकर जाया जाए और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए।
0: क्या आप आंखों देखी बता सकते हैं कितना लंबा ये काफिला है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, कितने दायरे में फैला हुआ है, कितने कार्यकर्ता वहां पर शामिल हुए हैं, जो विपक्षी सांसद हैं वो कितनी संख्या में है? क्योंकि जैसा कि जानकारी मिली थी कि RJD, समाजवादी पार्टी, ये तमाम इंडिया ब्लॉक के जो पार्टियां हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। कौन कौन दिख रहा है इस वक्त आपको?
1: देखिए बहुत कम समय में ये मोबिलाइजेशन हुआ है कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का, उस हिसाब से बड़ी संख्या में लोग आपको दिखेंगे। लेकिन बस के अंदर मैं अजय को कहूंगा वो दिखाए, राहुल गांधी के साथ मीसा भारती बैठी हुई है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हो गई है, वो महिला सांसदों के साथ खड़ी मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ पीछे की तरफ और जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो बैठे हुए, रणदीप सुरजेवाला मुझे दिख रहे हैं यहाँ से खिड़की से, जो बैठे हुए हैं रणदीप सुरजेवाला आपको दिख जाएंगे। और हर सीट पे लगभग आपको जो 152 पेपर लीक एंड जीरो कन्विक्शन जैसे पर्चे हैं वो लगे हुए हैं। छात्रों की मांग, इस्तीफा, लाठी चार्ज पर कार्रवाई और इसके बाद जवाबदेही, ये जो 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों को भी यहाँ पे डिस्प्ले करके उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आपको पप्पू यादव दिखेंगे जो मार्च करते हुए जा रहे हैं। इसके पीछे एक और बस है जिसमें विपक्षी सांसदों का बड़ा जमघट है उस बस के अंदर, और केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी गाड़ी साथ साथ चल रही है, उनका भी टारगेट साथ साथ चल रहा है।
0: यानी कि दक्षिण भारत से भी नेताओं को जोड़ने की कोशिश की गई है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, यक्ष प्रश्न अभी भी यही बना हुआ है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे या नहीं इतने दबाव के बीच, क्योंकि अब विपक्ष इस बात पर हावी हो गया है कि उनके इस्तीफे से कम में नहीं मानेंगे,
6: पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। आप उनको बोल दीजिए ऐसे किसी से बात नहीं करना चाहिए।
1: पप्पू यादव,
0: अमित आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित मेरा सवाल मौसमी से यही था और आपसे भी यही रहेगा कि अभी भी सवाल इस बात पर फोकस्ड है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे इतने दबाव के बीच, क्योंकि इससे कम में तो विपक्ष मानने नहीं वाला है। रोज इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा, अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा, तमाम घटक दल इसमें शामिल होंगे।
1: और नेहा सवाल यही है, सीजेपी के जो छात्र बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो कह रहे हैं इस्तीफे से कम में तो नहीं मानेंगे। सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिख के जरूर कही कि वार्तालाप से सरकार कंसिडर करे इस्तीफे को लेकर, लेकिन विपक्षी सांसद एक सुर में कह रहे हैं इस्तीफा तो वो लेकर रहेंगे। सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से बात जरूर आज पार्लियामेंट में कही गई थी कि किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे अब फ्लोर लीडर्स से विपक्षी पार्टियों को, यानी कि ज्वाइंट विपक्ष के बजाय अब स्ट्रैटेजी में तब्दीली होगी। हर पार्टी जो विपक्ष की है उसके फ्लोर लीडर से वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो।
0: कितना समय लगेगा गांधी स्मृति पहुंचने में इस बस को अमित?
1: जी बिल्कुल 100 मीटर की दूरी नेहा, 100 मीटर की दूरी में सारे विपक्षी सांसद राहुल गांधी आपको गांधी स्मृति के अंदर दिखेंगे। जॉन विटास मुझे अभी भी दिख रहे हैं आगे की तरफ, सीपीएम के नेता नासिर हुसैन जो कांग्रेस के राज्यसभा में चीफ व्हिप हैं, वो दिख रहे हैं आगे बिल्कुल खड़े हैं। और लगभग पप्पू जी आप लोग यहां आ रहे थे, जगह जगह बैरिकेड्स था, इंटरनेट स्नैप्ड है इस इलाके में, क्या कैसी स्थिति देख रहे हैं आप?
8: अच्छा एक बात बताइए, 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है, 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया, तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर लोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है?
1: ठीक है, मार्च करते हुए पप्पू यादव और बाकी जो बसों में हैं वो कांग्रेस के नेता
0: रोकूंगी आपको अमित, लगातार हमारा एक खास कवरेज जारी रहेगा। हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब राहुल गांधी और उनकी टीम मार्च कर रही है गांधी स्मृति की ओर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: आगे आगे
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
6: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
5: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
7: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
12: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: वी आर ओवर जिमी।
18: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है
3: और टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है।
2: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
4: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
1: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo
0: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर. तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली. आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं. माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 days माय वेट गोज 85. सो इट्स अ ट्रजामिनल न्यूरोलॉजिया. मुझे डॉक्टर ने ही बताया.
2: हाँ
1: ये सलमान खान को भी बीमारी है. वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है. सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है. दिस इज अ सुसाइडल डिजीज.

0: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है? ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
1: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

0: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। बस में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति। कहा छात्रों के साथ पूरा विपक्ष। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जगह को लेकर अटकी बात। नड्डा ने अपने सरकारी दफ्तर या आवास का दिया न्योता। सीजेपी का जवाब जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह पर हो मुलाकात। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया आश्वासन। राहुल की मांग, पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री। पटना में कल के हिंसक प्रदर्शन के बाद 117 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें जारी। सैकड़ों एफआईआर दर्ज, 56 गिरफ्तार। सीएम सम्राट ने पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में डाला। पहले टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक। 126 रन का मिला था लक्ष्य।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन, धरना, हंगामा, सियासत लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम खबरदार आपको कर दें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के करीब 120 सांसदों के साथ बस बैठकर अपने घर से 2 किलोमीटर दूर गांधी स्मृति भवन पहुंच गए हैं। गांधी स्मृति वो जगह है जहां महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये 3 जनवरी मार्ग पर है। 30 जनवरी मार्ग वो तारीख थी जब 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इसी जगह विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं। निकलने से पहले राहुल गांधी ने यह कहा कि उन छात्रों की याद में वो ये करने जा रहे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि वो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों के समर्थन के लिए भी गांधी स्मृति गए हैं। वहीं एक पक्ष ये भी कहता है कि राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर चलते प्रदर्शन से लगातार दूरी बनाए हैं, तब खुद अपना जंतर मंतर सड़क पर उतरकर दिखाना बनाना चाहते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ठीक उसी जगह से जहां पर विपक्ष के ये सभी सांसद पहुंच रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हैं और राहुल गौतम हमारे साथ हैं। मौसमी, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब से अपने पहले धरने की शुरुआत की प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसके बाद से वो प्रेशर हटाना नहीं चाहते हैं सरकार से।
1: बिल्कुल, देखिए श्वेता, कुछ 48 घंटे पहले हम और आप यूं ही सामने खड़े थे और वो तस्वीर हम लोग ने देखी थी किस तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास में थे। अभी गांधी स्मृति की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा लेके तमाम सांसदों के साथ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे विपक्ष के सांसद भी मौजूद है। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है, सुप्रिया सुले और तमाम राजीव राय से लेके तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी भी आप देखिए। और ये तमाम सांसद हैं जो अभी पिछले आधे घंटे का सफर, जो कि 5 मिनट का सफर होता है, आधे घंटे में तय करके यहाँ पहुंचे हैं। रेणुका चौधरी जी से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि रेणुका जी परसों भी आप वहां पे मौजूद थी और आज भी, क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं और क्या मकसद है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग अराजकता फैला रहे हैं।
2: अरे बीजेपी जो मर्जी करे कहे, वो तो ऐसे कहते जाते हैं, पहले से कहे 15 लाख अकाउंट में देंगे, नौकरी देंगे, किसान का रोजगार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम भी जानते हैं अकलमंद को इशारा काफी है, अगर ये समझ में नहीं आए तो भुगतना पड़ेगा परिणाम।
1: तो आज गांधी स्मृति में आके क्या संदेश देने की कोशिश, क्या छात्रों को संदेश है या सरकार को?
2: सरकार को भी और देश भर को भी, कि जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया वो आज तक लागू होता है।
1: यहाँ पे रेणुका चौधरी भी उधर जाते हुए और राहुल गांधी, यहाँ पे कैंडल मार्च श्वेता निकाला जा रहा है। राहुल गांधी आप देखिए, कुछ कैंडल्स जलाई जा रही है और एक तरीके से गांधी स्मृति पर कैंडल मार्च नहीं है, ये तो मोबाइल मार्च है, मोबाइल की टॉर्च लाइट जला के राहुल गांधी जो है यहाँ बता रहे हैं। पूरा बस पे भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से बस को आगे ले जाओ। हमने देखा कि 5 कदम की दूरी पर बस और बैरिकेड थे और उसके बाद 2 बैरिकेड हटाने पड़े, कई बैरिकेड कांग्रेस कार्यकर्ता ने गिरा दिए। और अब यहाँ पे क्लियर कट तस्वीर, जो संदेश कांग्रेस जमीन से देना चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये मांग के साथ 152 पेपर लीक हुए हैं। ये इस मांग के साथ आप देखिए पूरी फेरिस्त सांसदों की यहाँ पे टॉर्च लाइट के साथ। उस दिन हमने देखा था कि कैसे बैंड पहने हुए थे और हथकड़ियां दिखा रहे थे।
0: ये चीज बहुत इसमें नोटिसेबल है। राहुल गौतम भी हमारे साथ हैं। राहुल, ये चीज बहुत इस पर सबका ध्यान जा रहा है कि एक तो जब हम जेन जी के प्रोटेस्ट को देखते हैं, उन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हैं, तो किस तरीके से एक आम प्रोटेस्ट होता है, एक आम प्रदर्शन होता है जिसके पोस्टर्स अलग भाषा में रहते हैं, लेकिन जो जेन जी का प्रोटेस्ट होता है वहां पर भाषा बदल जाती है। आज जब कांग्रेस पार्टी के इन पोस्टर्स को हम देख रहे हैं, जा धर्मेंद्र जा, जी लेने दे हमें अपनी जिंदगी, ये एक पोस्टर पर लिखा हुआ है, उसके जरिए वो एक कनेक्ट भी उस पीढ़ी के साथ बनाने की कोशिश देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कर रही है। राहुल,
3: बिल्कुल, देखिए सबसे बुजुर्ग पार्टी आपने सही जिक्र किया और वो कोशिश कर रही है कि वो जो जेंजी है उनके साथ एक रास्ता बनाया जाए। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के जरिए यहां पर क्या घट रहा है गांधी स्मृति पे। देखिए एक ह्यूमन चेन बनाया गया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके द्वारा। ये वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी बापू की हत्या हुई थी और आप देखिए ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं ताकि जो नेतागण है यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बाकी तमाम नेता हैं इंडिया ब्लॉक के वो यहां पर पहुंच पाए। पोस्टर बैनर्स की देखिए ये एक तरीका होता है पॉलिटिकल मैसेजिंग करने का किसी भी पार्टी के लिए। जब भी वो किसी का मुद्दा उठाते हैं जाहिर है उनकी भाषा उनकी बोली आपको बोलनी पड़ती है और यही आप देखिए इन्हीं पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज या आउटरीच किया जा रहा है कि देखिए हम आपकी बात को समझते हैं और लगातार ये भी मैसेज किया दिया जा रहा है कि देखिए सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। इसीलिए कम से कम पिछले 48 घंटे से सुपर एक्टिव हाइपर एक्टिव आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी है। लगातार आप देख रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी ने, राहुल गांधी धरने पर बैठ गए प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उसके अलावा वो लगातार वीडियो मैसेज रिलीज कर रही है पार्टी उनकी। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है और इसीलिए धीरे धीरे धीरे धीरे तापमान बढ़ाया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी कुछ इसी प्रकार से ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के मुद्दे पर या फिर ये मैसेज देने के लिए नैरेटिव बनाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं तमाम चीजें कर सकते हैं। आप देखिए मैं चाहूंगा मेरे सहयोग आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। राहुल गांधी अब बड़े चले आ रहे हैं ठीक उसी तरफ जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी भी हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, चाहे वो स्वागत राय हो या फिर महुआ मोइत्रा हो, इसके अलावा जो सुप्रिया सुले हैं शरद पवार की पार्टी से, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर जुटे हैं और एक बड़ी विपक्षी एकता की तस्वीर और खाका खींचने की भी कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए अब यहां से एंटर होंगे राहुल गांधी अपने तमाम जो सांसद हैं उनके हाथ में, अब दोबारा से आप देखिएगा संविधान की वो जो कॉपी है बड़ी चिर परिचित तस्वीर है राहुल गांधी की जिसमें वो संविधान की एक कॉपी होती है पॉकेट कॉपी, उसको लेकर चलते हैं और आप देखिए वो उन्होंने अपने हाथ में फिर ले लिया है। 2024 का चुनाव आपको याद होगा, आप देख सकते हैं राहुल गांधी को तस्वीरों के अंदर, राहुल गांधी अपने जूते निकाल रहे हैं प्रिमाइस के अंदर आने से पहले, तमाम लोगों ने यहां पर अपने जूते निकाले हुए हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और अब राहुल गांधी आप देखिए वो तमाम नेताओं को बुला रहे हैं कि आप देखिए वो लगातार अपने हाथ में किताब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महुआ मांझी को मैं देख पा रहा हूं, केसी वेणुगोपाल को मैं देख पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एनके प्रेमचंद्रन हैं, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, रामजी लाल सुमन हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। और देखिए कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ये दिखाया जाए कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एकजुट है इस मामले में। आप देखिए राहुल गांधी फिलहाल अभी रुककर तमाम नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। पहले ही एक ह्यूमन चेन को फॉर्म किया गया है ताकि जो नेता हैं उनको कोई परेशानी ना हो, यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही है अलग अलग ऑप्टिक्स के थ्रू कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हमें छात्रों की बात समझ में आती है और जो सरकार है वो आपकी बात नहीं सुन रही है या आपके साथ में जो डायलॉग है उसको ओपन नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए संसद से लेकर आप कह सकते हैं सड़क तक तमाम जो मुद्दे हैं, काफी बार कांग्रेस की आलोचना होती थी कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं आती, लेकिन पिछले कम से कम दो दिनों से
0: नहीं आती। और दूसरी आलोचना ये रहती थी मौसमी कि राहुल गांधी मिसिंग इन एक्शन रहते हैं, विपक्ष सबसे ज्यादा यही आरोप लगाता था, लेकिन इस मुद्दे पर जो दबाव वो बनाए हुए हैं सरकार पर वो उसे जाने नहीं दे रहे। यहां पर ये भी बताइए कि जब पहले दिन धरना दे रहे थे तो अखिलेश यादव हमने देखा था कि वहां पर पहुंच गए थे, आज एनसीपी शरद पवार के नेता वहां पर दिख रहे हैं, कौन से प्रोमिनेंट चेहरे विपक्ष के हैं जो आज वहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं, विपक्षी एकता की आवाज दे रहे हैं?
1: देखिए जेएमएम से लेके आरजेडी और संजय आप तब तक विजुअल्स दिखाइए, चलिए उस तरफ चल के, जेएमएम है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव नहीं है लेकिन राजीव राय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार जो है वो यहाँ पे आगे की तरफ आई है, आप इधर तो एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उससे सुप्रिया सुले है, मीसा भारती जो है खुद यहाँ पे मौजूद है और ये गांधी स्मृति पे इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से विपक्ष की एक जुटता की भी ये तस्वीर है जहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी श्रद्धांजलि कुछ इस तरीके से गांधी स्मृति पर देते हुए। कई बारी हमने देखा है कई आंदोलनों में राहुल गांधी जो है गांधी स्मृति आए हैं एक तरीके से एक संदेश देने के लिए, पर ये सच है श्वेता जो आपने कहा कि कांग्रेस अक्सर जमीन की लड़ाई दिखते हुए नजर नहीं आती है। अभी बीच में राहुल गांधी जब गए थे बाहर तो ये सवाल हुआ था कि राहुल गांधी कहाँ है, और लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वापस आए हैं जिस तरीके से उन्होंने छात्रों के इस मसले पर जो लाठीचार्ज हुआ उन्होंने एक तरीके से मीडिया का रिएक्शन दिया। कल्याण बैनर्जी यहाँ पे, महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भारत भाग्य विधाता जो है वन गाते हुए यहाँ पे राहुल गांधी और बाकी सारे नेता, आइए सुन लेते हैं।
0: राष्ट्रगान के साथ यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी नेता जनगण मन गाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, दर्शन किया है, अपनी जो सम्मान है वो अर्पित किया है, और उसके बाद नेशनल एंथम के साथ यहाँ सभी विपक्षी नेता दिखे हैं। राहुल गौतम, एक और चीज जो है, एक तो ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या आज का कार्यक्रम केवल यहाँ तक आना और यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उन नीट के छात्रों को याद करना, ये है? आगे क्या ये कोई और भी इसमें आगे होने वाला है जो राहुल गांधी जो लीड करके आए हैं सभी विपक्षी नेताओं को?
3: देखिए, अभी के लिए आप कह सकते हैं कि यही कार्यक्रम था, लेकिन जाहिर है जो आखिरी फैसला है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल साझे तौर पर ले रहे हैं, और लगातार क्योंकि और भी विपक्षी नेता यहां मौजूद हैं तो क्योंकि राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा कि दो दिन पहले सबको चौंका दिया, वो राहुल गांधी जो है वो चले गए, तो तब से ये कहा जा रहा है कि लगातार पार्टी इसी प्रकार से आपको चौंकाएगी। आप कई जगहों पर आपको ऐसी जगहों पर नजर आएगी जहां पर अमूमन तौर पर आपने पार्टी को नहीं देखा होगा। कुल मिलाकर ये ऑप्टिक्स है, ये
4: पॉलिटिकल प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है उसको किसी भी तरह से बंद करना चाहिए। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया है, पूरा देश उनके साथ है, खास करके विरोधी पक्ष के सभी सांसद आप देख सकती हैं।
1: आगे भी ये चलता रहेगा क्या? ये
4: चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए।
1: तो ये चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात अखिलेश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम सांसदों का हुजूम जो यहाँ से निकल रहा है। संजय आगे आइए तो जरा बात करने की कोशिश करते हैं बाकी सांसदों से भी, और उनसे पूछते हैं कि रणदीप जी अब यहाँ पहुंच गए, काफी 5 मिनट का फासला 30 मिनट में क्यों तय?
5: सरकार को सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। गांधी स्मृति इस देश की आत्मा है, गांधी संदेश इस देश की आत्मा है। जब इस देश के बच्चों को कील वाली लाठियों से, पैलेट गन से, इलेक्ट्रिक शॉक से और टियर गैस शेल से मारा जाएगा, तो गांधी स्मृति पर आकर एक बार फिर ये संकल्प कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, न्याय की डगर पर पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बच्चों के लिए लड़ेगा। ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी बनाम विपक्ष की भी नहीं, ये लड़ाई न्याय की है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री माफी मांगो, चर्चा करवाओ, पेपर लीक रोको।
1: अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी?
5: आप आप देखते जाइए गांधी जी की स्मृति पे जो समूचे विपक्ष ने संकल्प लिया है ये एक नया रंग लाएगा,
1: नया रंग लाएगा समूचा विपक्ष। आइए बात करते हैं यहाँ पे सुप्रिया मैम और नजर आ रही है मैम के को एक्चुअली डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ज्यादा बोल नहीं सकती। मीसा जी है यहाँ पे, मीसा जी क्या संदेश देने की कोशिश, तमाम विपक्ष के नेता भी साथ में?
6: देखिए संदेश एक ही है कि देश के साथ जो ये सरकार कर रही है, खास तौर पे जो युवाओं के साथ जो हमारा भविष्य है उसके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, पिछले एक महीने से बच्चे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और देश में लाठी चार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं थी भारत के लिए, लेकिन जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, आप देखिए कि पुलिस के साथ साथ आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले, पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये लोग कौन है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में चिन्हित किया गया,
7: अरे वो बोल रही है,
8: बोल रही है भाई, बोल रही है,
7: आईडी दूर किया, बोल रही है ना। आप प्रियंका जी, प्रियंका जी
6: और लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना उचित था। लेकिन
1: शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, तो यहाँ पे आइए बात करते हैं।
9: तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारी देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या
10: है।
9: महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे, जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश में उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं।
11: मैडम,
9: आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं, किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए? क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं।
12: इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको
10: प्रियंका जी?
13: प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे हैं, जो कि इस समय गांधी स्मृति पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से
9: लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ नहीं नकार सकते।
1: तो यहाँ पे प्रियंका गांधी ये कहते हुए कि सरकार लाखों बच्चों को नहीं नकार सकती, देश की जनता को नहीं नकार सकती, आज तक से खास बातचीत में, और इस सवाल का जवाब देते हुए श्वेता मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार आपकी सुनेगी, आप गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि सरकार सुनेगी कि नहीं, सवाल लाखों लोगों की जिंदगी का है और सरकार उसको नकार नहीं सकती। खुद प्रियंका गांधी इस बात की को बेहद आक्रामक तरीके से कहते हुए नजर आ रही हैं आज तक पर।
13: मौसमी, हमने सुना कि क्या प्रियंका इस समय कह रही हैं यहाँ पर राहुल गांधी के घर पर, जब अचानक सभी सांसद विपक्ष के जुटने लगे तब भी ये कोई नहीं सोच पा रहा था कि कहां जाएंगे। और आजकल एक सरप्राइज मेंटेन करते हुए राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर दबाव और ये प्रदर्शन का ये तरीका जो है वो वाकई चौंका रहा है प्रशासन को, सरकार को, सबको मोश में। और आपने भी जो नेताओं से बात की है उसमें कल क्या होने वाला है उसके बारे में किसी ने अभी नहीं बताया है, क्योंकि वहां वो नंबर वन लगता है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो बचाए रखना चाहते हैं, और दूसरी बात शायद इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को मालूम हो कि आगे क्या।
1: श्वेता आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं लंबे समय से विपक्ष को कवर कर रही हूं और कांग्रेस अक्सर जो है उसकी उसकी जो जमीन पर प्रेजेंस है वो कम पाई गई है। अक्सर हमने देखा है चाहे वो किसान आंदोलन हो या तमाम मसले हो, एक कैंपेन को वो सस्टेन नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि आप देखिए 2014 से कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप गांधी स्मृति के सामने देख रही है अपने आप में ये कांग्रेस की कहानी व्यक्त करती है। औचक प्रोटेस्ट कांग्रेस के कैलेंडर प्लान में नहीं होता है, एक तरीके से फ्लैश प्रोटेस्ट, औचक प्रोटेस्ट, तमाम सांसद साथ में खड़े हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते थे, लखीमपुर खीरी से दिल्ली तक वही 15 कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहते थे, लेकिन अचानक कांग्रेस जो है एक तरीके आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बैक एंड ऑन ट्रैक है, पर जनता के मसलों को लगातार सस्टेन तरीके से उठाने की कोशिश नजर जरूर आ रही है। और यहाँ पे राहुल गांधी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, प्रियंका सारथी के रोल में है, लेकिन राहुल गांधी अपने आक्रामक तेवर से टस से मस नहीं हो रहे हैं। भले ही खबर आ रही हो कि सोनम वांगचुक ने कहा हो, बाकी मुद्दों पर कहा हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हो, लेकिन 2-3 दिन में हमने देखा है कि कांग्रेस दोबारा उस बात पे आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बीच में चर्चा की मांगों की बात आई थी, लेकिन इस वक्त आपको जो तस्वीर हम ग्राउंड पे दिखा रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोबारा रिएक्शन प्रियंका गांधी का प्ले करेंगी, जो सवाल का जवाब उन्होंने मेरा दिया जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार सुन रही है, काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि आक्रामक प्रियंका नजर आ रही थी, और वो आश्वस्त इस बात को लेके है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है प्रधानमंत्री का आज पोस्ट, जिस तरीके से जेपी नड्डा की कल प्रेस वार्ता हुई है, उनको लगता है मौसम बदल रहा है। गौरव गोगोई इसमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि डिप्टी लीडर भी है लोकसभा में, मौसम चेंज हो रहा है क्या?
8: देखिए मौसम बिल्कुल व्यापक रूप से उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार जो लोग
13: मौसमी गौरव गोगोई से बात कर रही है, उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा से बात कर रही थी, उससे पहले मीशा भारती से बात कर रही थी, विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। पूरा मामला फिलहाल थमता नहीं दिखता है। जहां सीजेपी ने कल देश भर में प्रदर्शन की अपील की है, आज जंतर मंतर के पास 1.5 किलोमीटर के इलाके में इंटरनेट रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आज बताया है कि हिंसाकर्ता जो भी पकड़ा जाएगा उस पर केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि पासपोर्ट तक रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है, निर्णय पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का, युवाओं के गुनहगारों के बचने का हर रास्ता बंद करने का। और सवाल यह है कि क्या इससे प्रदर्शन, धरना, सियासत सब रुक पाएगा?
10: सोनम वांगचुक के अनशन को 26 दिन हो चुके हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन 33 दिन से जारी है, संसद में चौथे दिन भी कार्यवाही ठप रही है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन 2 दिन से जारी है। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे।
11: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम
14: अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने

0: तक 4 FIR दर्ज की गई है। इन मामलों की सुनवाई के लिए दावा है कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है, ताकि नीट पेपर लीक के आरोपियों को दोष साबित होने पर तुरंत सजा दिलाई जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या इस फैसले से जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, जो विरोध विपक्ष का छात्रों के मुद्दे पर सामने आ रहा है, क्या वो शांत होगा?
1: आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है, और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
4: मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे।
5: प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा।
6: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
7: इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। पहले धरना प्रधानमंत्री आवास के नजदीक, और उसके बाद आज अचानक कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में, इंडिया ब्लॉक के सभी नेता गांधी स्मृति पहुंचे, वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, और वहां से वापस निकलते हुए की ये तस्वीरें राहुल गांधी और प्रियंका की।
8: एक गांधीवादी तरीका।
7: सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस साल जो नीट का पेपर लीक हुआ उस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने जिन 13 आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया वो सभी फिलहाल जेल में हैं। सभी के खिलाफ सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं और जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सजा भी उन्हें जल्द मिले, इसीलिए पीएम ने आज एक फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला लिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे पहले समझ लीजिए।
9: आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो चेहरे हैं, एक का नाम है बेदी राम, दूसरे का नाम विपुल दुबे। ये दो चेहरे इस वक्त पेपर लीक कराने वालों को तुरंत तय समय में कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले फैसले की एक वजह है। आप सोचेंगे कैसे, तो जवाब ये कि हमारे देश में पेपर लीक कराने के आरोपियों को न्याय की चौखट पर सजा की दहलीज तक पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि 2006 की परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोपी बाद में विधायक तक बन जाते हैं, लेकिन पेपर लीक का केस अदालत में अटका रहता है। बेदी राम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथी ओपी राजभर की पार्टी के विधायक है। विपुल दुबे यूपी में बीजेपी की साथी पार्टी संजय निषाद की पार्टी के विधायक है। इन दोनों में केवल ये समानता नहीं कि ये यूपी में एनडीए के विधायक हैं।

0: समानता ये भी कि दोनों 2006 की पेपर लीक के आरोपी हैं।
1: फोटो कार्ड मालूम है कि नहीं है? अरे जेई बोल रहे हो कि यार कौन बोल रहे हो तुम? जेई बोल रहे हो, मैं विधायक बेदी राम बोल रहा हूँ।
0: बेदी राम उत्तर प्रदेश के वो विधायक जो अब चौड़े से प्रोटोकॉल की याद सरकारी कर्मचारी को दिलाते हैं, लेकिन इनका इतिहास पेपर लीक और भर्ती धांधली से सना हुआ है। गाजीपुर के विधायक बेदी राम पर 9 FIR दर्ज है, ये उनके हलफनामे में ही पता चलता है। इनमें 8 FIR रेलवे परीक्षा में धांधली से जुड़ी है, 3 मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन 2006 के बाद से अब तक कई परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी बेदी राम से जुड़े मामले इतना लटके कि वो विधायक तक बन गए और फिर अपनी पार्टी के विधायक को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कई साल से पल्ला झाड़ते आ रहे हैं।
2: आप उनसे क्यों नहीं पूछते, जाके उनसे पूछो कि हमसे पूछ रहे हैं कहाँ गए? कौन भगा दिया?
3: बेदी राम ने हमको घर से भगा दिया।
2: नहीं, सवाल है नहीं,
3: कोई जांच करवाएंगे सर?
2: अब बाद में मिलिए तो बाद में।
3: सर कहाँ पर मिले बाद में? सर
2: यही मिलिए यार, हम यही रहते हैं।
3: कोई जांच करवाएंगे अपने विधायक के ऊपर? राजभर जी,
4: कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 के मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना।
0: इसी बयान से आप बेदी राम को आधार मानकर समझिए किस तरह पेपर लीक के आरोपियों का मामला लटका रह जाता है।
5: रही बात जेल जाने का, था जेल कल गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
0: 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तब आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। तब आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ने कई खुलासे किए, जिसने यूपी के मौजूदा विधायक बेदी राम मतलब 20 साल से पेपर लीक के आरोपी को अपना गुरु तक बताया था।
5: इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदी राम का नाम सुने होगा?
6: किसका नाम?
5: बेदी राम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया जेल चल गया।
0: ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका नाम अब महाराष्ट्र टेट परीक्षा के पेपर लीक में आया है। ये पेपर लीक माफिया आज तक के कैमरे पर 2 साल पहले बता चुका है कि वो बेदी राम के साथ जेल तक जा चुका है। 26 फरवरी 2006 को यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से समूह घा की परीक्षा होती है। यूपीएसटीएफ को तब खबर मिली थी कि कुछ लोग एक घर में लीक पेपर याद करा रहे हैं। यूपीएसटीएफ की छापेमारी में तब जो पेपर 20 साल पहले मिला वो भर्ती परीक्षा में आ गया था। 16 लाख परीक्षार्थी उस भर्ती परीक्षा में बैठे थे जिसे तब रद्द कर दिया गया था।
7: बेदी राम उसमें जो उस मुख्य सरगना था पेपर लीक का, वो पकड़ा गया। देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ वो शुद्ध अपराध की बात बता रहा हूँ, अपराधी की बात बता रहा हूँ, और इस समय वो माननीय विधायक हो गए हैं।
0: मतलब ये है कि पेपर लीक के केस में इतना लंबा जांच और सुनवाई चलती रहती है कि आरोपी दावा होता है पेपर लीक से कमाए पैसे से चुनाव तक लड़कर जीत लेते हैं। यही अब ना हो इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट 2026 के पेपर लीक के आरोपियों को तय समय में सजा दिलाएंगे।
8: फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो बात पेपर लीक के केस में दोषियों को तय समय में सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने की है, उसकी जरूरत क्यों है, इसे आपने बेदी राम और विपुल दुबे जैसे विधायकों की कहानी से समझा है। अब और पीछे ले चलते हैं। 18 अगस्त 2002 की बात है। प्रोबेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर परीक्षा में 1 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक होने की सूचना मिली, परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद नई परीक्षा 1 साल बाद आयोजित की गई। करीब 23 साल बाद 21 जुलाई 2025 को अहमदाबाद की विशेष CBI अदालत ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने 7 रेलवे अधिकारियों और 1 RPF कांस्टेबल को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन जून 2026 तक की मौजूदा जानकारी के अनुसार फिलहाल सभी दोषी जमानत पर हैं और उनकी याचिकाएं गुजरात हाईकोर्ट में लंबित हैं। यानी 24 साल पुराने पेपर लीक के मामले में भी आज तक पूरा न्याय नहीं हो पाया। 20 वर्षों के 45 बड़े पेपर लीक मामलों में यही सामने आया कि केवल दो मामलों में दोष साबित हो सका। ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं, जबकि कई मामलों में जांच की रफ्तार पूरी तरह धीमी पड़ चुकी है। जबकि ये वो परीक्षाएं हैं जिससे 3,86,00,000 बच्चे प्रभावित हुए। हालांकि ये बात भी सच है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब इंसाफ मिल जाने की गारंटी नहीं है। इस बात को समझने वाले तथ्य से भी आप खबरदार हो जाइए। जनवरी 2026 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 रेगुलर फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे थे। इनके साथ ही 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिनमें 398 खास पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं, काम कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट में मामलों के निपटारे की दर लगभग 96% है। 2024 में 88,902 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 85,595 मामलों का निपटारा किया गया। औसतन एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हर महीने लगभग 9.5 मामलों का निपटारा करता है, जो इसी तरह के अधिकार क्षेत्र वाले रेगुलर ट्रायल कोर्ट की तरफ से हर महीने निपटाए जाने वाले 3.3 मामलों की तुलना में लगभग 3 गुना है। मामलों के निपटारे की इतनी अच्छी दर के बावजूद मुकदमों की बड़ी संख्या के कारण लंबित मामलों की समस्या लगातार एक चुनौती है। 2023 के आखिर तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2.4 लाख से ज्यादा मामले अभी भी लंबित थे। अब से कुछ देर पहले जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा विपक्ष के सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे तो प्रियंका ने आज तक से बात की, सुनिए क्या कहा।
6: सरकार सुनेगी आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी। सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है? इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते।
9: तो यहाँ पे प्रियंका गांधी ये कहते हुए कि सरकार लाखों बच्चों को नहीं नकार सकती, देश की जनता को नहीं नकार सकती, आज तक से खास बातचीत में और इस सवाल का जवाब देते हुए श्वेता, मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार आपकी सुनेगी, आप गांधी के चिन्हों पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि सरकार सुनेगी कि नहीं, सवाल लाखों लोगों की जिंदगी का है और सरकार उसको नकार नहीं सकती। खुद प्रियंका गांधी इस बात की को बेहद आक्रामक तरीके से कहते हुए नजर आ रही हैं आज तक पर।
8: पेपर लीक के खिलाफ इस वक्त देश भर में हंगामा मचा हुआ है। नीट पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा एनटीए के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त है, लेकिन राज्यों में होने वाली परीक्षाओं का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने से राज्य में हड़कंप मचा है।
10: मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है।
11: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस वक्त परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, तभी उत्तराखंड से आई एक खबर ने उन्हीं के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, परीक्षा से पहले छात्रों तक पेपर पहुंच जाता है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है, प्रोफेसर ने खुद ही व्हाट्सएप पर पेपर शेयर कर दिया। जिस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन होने लगा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां बीटेक थर्ड ईयर के 2 पेपर लीक होने का दावा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी प्रोफेसर आशीष कुमार है, जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया। आरोप है कि इस प्रोफेसर ने परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों के साथ शेयर कर दिए। इसके बाद फिर दोनों पेपर रद्द कर दिए गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये परीक्षा 7 जुलाई को हुई थी। आरोप लगने के बाद पेपर बनाने वाले प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा से जुड़े कामों से 7 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
12: तो आपको लगता है ना कि इसमें कड़ा एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए?
13: मुकदमा अगर दर्ज कराना है तो फिर उस कॉलेज का जिसका कि वो टीचर है, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है वो टीचर, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है सारे इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड के, तो हमने उस कॉलेज को एक दोबारा चिट्ठी लिखी है कि आप हम इसकी आपका जो एक पनिशमेंट है उससे हम संतुष्ट नहीं है, आप इस पर और गंभीरता से कार्रवाई करें।
11: पेपर लीक मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए दो कमेटी बनाई, जिसकी जांच में पाया गया कि शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात आशीष कुमार ने आर्थिक फायदा उठाने के लिए परीक्षा से पहले दोनों प्रश्न पत्रों से मिलते जुलते सवाल साझा किए हैं।
14: इस संबंध में यूटीयू के द्वारा जो है आंतरिक दो जांचें जो है निष्पादित की गई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनके द्वारा कुछ अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से उपरोक्त जो परीक्षाएं थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पत्र छात्रों को प्राप्त करा दिए गए थे। ये तहरीर आज थाने पर प्राप्त हो गई है, इसमें तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
11: देश भर में पेपर लीक के खिलाफ बने माहौल के बीच उत्तराखंड में यह मामला सामने आते ही राजनीति भी शुरू हो गई और NSQI ने विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
15: वही यूनिवर्सिटी है जिसमें पहले भी इतनी सारी अनियमितता पाई गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस यूनिवर्सिटी में ऐसी धांधली हुई है जिसके कारण छात्रों को आंदोलन करना पड़ा था और यहाँ के VC को हटाया गया था।
16: हमारे पहाड़ के दुर्गम इलाकों से हमारे साथी कई पौड़ी टिहरी चमोली से आकर यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं और जब उन्हें शिक्षा में पेपर लीक मिलेगा तो आप समझिए कि आने वाला भविष्य हमारे उत्तराखंड का गर्त की ओर जा रहा है।
17: हम मांग करते हैं जितने भी लोग इसमें शामिल हो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार हों और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी हम इसी तरह से लामबंद रहेंगे। और
18: ये छोटा मामला नहीं है और सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, यह इस समय पूरे देश का मामला बन चुका है।
11: NSQI का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर जिस कॉलेज से जुड़ा है उस पर पहले भी जांच गठित की गई, फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अब कांग्रेस इस पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई मांगती है।
19: एक स्पेशल SIT जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। मैं मांग करता हूं कि सरकार की साख बची रहे, इसलिए मंत्री जी को जब तक ये जांच होती है मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए।
11: उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भले एग्जाम रद्द करने की बात करे लेकिन छात्रों के साथ हुए धोखे का क्या, उनके साथ हुए विश्वासघात की जिम्मेदारी कौन लेगा?
20: फिलहाल जो प्रशासन है वो लगातार दावा कर रहा है कि इस मामले में अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, लेकिन हमारा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये पेपर लीक का सिलसिला खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? देहरादून से अंकित शर्मा आज तक।
8: मुद्दा छात्रों का है, मुद्दा रोजगार का है। झारखंड में पेपर लीक तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी 1,36,000 छात्र रो रहे हैं, जहां भर्ती परीक्षा के दिन ही एडमिट कार्ड पहुंचा तो परीक्षा छूट गई।
21: वर्तमान स्थिति काफी कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं।
11: दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के साथ केंद्र पर सवाल उठाते विपक्षी दलों की सरकारों में भी छात्रों का हाल बुरा ही है। इतना बुरा कि छात्र परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। परीक्षा के इस एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा जो झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का है, जिसकी परीक्षा 2 साल बाद जाकर 19 जुलाई को होती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी गड़बड़ी है, तो अब इस ईमेल की इस फोटो को देखिए जो बताती है कि झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 जुलाई को दोपहर 2:59 पर आया, जबकि इस परीक्षा में सुबह 7 बजे पहुंचना था और 8 बजे परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद हो जाना था। लेकिन राजेश लाहौर नाम के इस छात्र को मेल से एडमिट कार्ड तीसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के आसपास मिलता है।
22: 19 जुलाई जो कि 2:59 में जो है मुझे एक मेल प्राप्त हुआ, जो कि देख सकते हैं मेल का जो है टाइमिंग 2:59 में, और मेरा एग्जाम सेंटर जो है लतेहार में था, जो कि ना पॉसिबल नहीं था वहां जाना लतेहार, क्योंकि यहाँ से जो है जमशेदपुर से लगभग 500 या 600 मीटर किलोमीटर दूरी जो है जाना पड़ता है, एक दिन में जो है संभव नहीं होता।
11: तो झारखंड में बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियां दूर की कौड़ी बन गई हैं। पहले तो नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए जाने के बाद इम्तिहान लेने में वर्षों लगा दिए जाते हैं, इसके बाद परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है,
0: लेकिन जेएसएससी ने 19 जुलाई को आयोजित 510 फील्ड वर्कर्स की परीक्षा को लेकर हद ही पार कर दी और परीक्षा करीब करीब खत्म होने के बाद उसके एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को मिलते हैं। यही नहीं, दावा है कि सेंटर भी काफी दूर रखे गए, इसीलिए 3,22,000 अभ्यर्थियों में केवल 26% यानी 86,000 युवा ही परीक्षा में शामिल हो पाए, जो झारखंड सरकार के कामकाज पर बहुत बड़ा सवाल या निशान।
22: कितना साल जो है मेहनत करने के बाद जो है एक बहुत ही पछतावा हो रहा है कि इस तरह से जो है गलत नोटिफिकेशन मिला, और मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे कुछ कुछ जो है पता चला कि किन्हीं का तो नोटिफिकेशन आया भी और किसी किसी का मेल आया भी नहीं।
0: अब आप ही सोचिए, रांची विश्वविद्यालय में 9 साल घर से दूर रहकर किसान माता पिता का यह बेटा जिस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है उसमें शामिल होने का मौका जेएसएससी ने उसके जैसे लाखों छात्रों से छीन लिया। इस तरह झारखंड में भले पेपर लीक इस बार नहीं हुआ, लेकिन लाखों छात्रों को निराशा के गर्त में धकेला गया।
22: आज मैसेज आया परीक्षा पर चले, यानी 20 तारीख को, वो भी 8:53 में। लागूरी ये बोल रहा है कि क्या ही बोलूँ, सब नहीं है मेरे पास, इसका आया 6:50।
0: सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
8: आज तक में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आप रहिए खबरदार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया
7: है। ओला ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: ओला बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
13: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
14: कुछ तो बात है इस तेल में।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
20: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
21: आगे आगे।
22: अरे उधर
21: उधर।
22: करेक्ट करेक्ट।
20: मिल गया।
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: In association with
25: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like yeah. Pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime. I still remember that. And Third Eye Blind. Semi-tall kind of life. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
6: वी आर ओवर जिमी.
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
10: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों.
11: कुछ तो बात है इस दिल में.
12: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए. आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं. फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी. ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
13: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट. इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है. अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है. सदन में आप चर्चा नहीं करते, LOP को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते. वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो. स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं. ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है.
14: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं. और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है. और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे. नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट.

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में पेपर लीक पर मचे घमासान के बारे में बताएंगे, जहां एक नई रात के साथ हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है और ये ऐलान है कि कल देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और ये अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता तक फैल चुका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सीजेपी का साफ कहना है कि यह आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हालात की गंभीरता देखते हुए गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी अचानक अपने घर से निकले। प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ जब वो गांधी स्मृति जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनकी बस को जगह जगह पर रोका। तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद गांधी स्मारक पहुंच गए। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी कर कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6:30 बजे ही बंद करने की अपील की है। विपक्ष ने सवाल उठाए कि क्या जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी एक्शन से इनकार किया है। आज आपको दिल्ली में मचे बवाल से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर लीक पर देश में कितने जंतर मंतर बन गए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ आज शाम को गांधी स्मृति भवन तक मार्च निकाला और ये कहा कि जब इस देश के छात्र सड़कों पर हैं तब वो अपने घरों में बैठकर इसे सिर्फ देख नहीं सकते।
1: राहुल जी दोनों तरफ बैरिकेड है, आपके घर के दोनों तरफ बैरिकेड है। राहुल जी, राहुल जी
2: आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे हो जाइए, बाकी सब लोग पीछे हो जाइए।
0: ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने अचानक कोई फैसला लेकर सबको चौंकाया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, जिसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। हमने आपको बताया था कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का घर प्रधानमंत्री के उस गेट से जहां ये विरोध प्रदर्शन पहुंचा था सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे था तो सब उनको बधाई देने की वजह से वहां पहुंच रहे थे। किसी को शक नहीं हुआ कि सारे कांग्रेस के नेता क्यों उनके घर पर इकट्ठा हो रहे, और फिर वहां से सारे के सारे नेता पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास के उस गेट के बिल्कुल करीब जहां से पीएम का कैवलकेड निकलता है और वापस जाता है। और आज भी जब राहुल गांधी गांधी स्मृति भवन पहुंचे तब भी इसकी भनक किसी को नहीं थी। पहले आप यहां ये समझिए कि कांग्रेस ने उस गांधी स्मृति भवन जाने की योजना कैसे बनाई जो जंतर मंतर के आंदोलन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जंतर मंतर जा सकते हैं, और इसके पीछे एक कारण यह था कि आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उस वक्त यह खबर आई कि इस बैठक में विपक्ष के आगे की रणनीति, संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा हुई है। इसके बाद सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद दोनों नेता वहां से निकल गए। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात संसद से जुड़े मुद्दों और विपक्ष की मांगों को लेकर हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने फैसला किया कि शाम 6 बजे राहुल गांधी के आवास पर उसके लोकसभा सांसदों की एक बैठक होगी। फिर सांसद पहुंचते हैं बैठक के लिए और खबर यही आती है कि बड़ी बैठक हो रही है, और जब यह खबर आई कि बैठक बुलाई गई है ताकि सभी सांसदों को इकट्ठा किया जा सके एक जगह पर और फिर गांधी स्मृति भवन जाने की योजना बनाई जाए। शाम 5:43 पर कई बसें राहुल गांधी के घर पहुंची और इस दौरान बसों को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि इस बार राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के घर पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो यहां चाय पीने आए हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए राहुल गांधी के सरकारी आवास के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। आज शाम 6:37 पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लेकर वहां एक बस पहुंची। आरएएफ आमतौर पर भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए तैनात की जाती है, और यहां भी शायद यही सोचकर आरएएफ जवानों को भेजा गया कि कांग्रेस को नया धरना, विरोध प्रदर्शन कुछ करने वाली है, या फिर राहुल गांधी जंतर मंतर जा सकते हैं, यह खबर भी चल रही थी। लेकिन इसी के बाद शाम 6:53 पर यह खबर आई कि इंडिया ब्लॉक के सांसद गांधी स्मृति के लिए निकले हैं। वो वहां उन छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। हालांकि यहां कई लोग इसे लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता जंतर मंतर ना जाकर अपना एक अलग आंदोलन क्यों खड़ा कर रहे हैं। कई लोग तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि अब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल पड़ा है। देखिये, ये बात सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी कल हमारे साथ इंटरव्यू में कही थी कि कांग्रेस के नेता जंतर मंतर से दूरी क्यों बना रहे हैं। सुनिए।
3: With the purity of heart and whoever has comes with their own agendas will fall by the wayside because this movement out of sincerity and purity. We are aligned with the future of the nation and we are aligned with every political party, every well-meaning individual that wants to take India to the next level. Mm-hmm. And as was evident from the protest outside PM's house yesterday, that everybody knows that it lacked sincerity. You know, it would have been more sincere if it had been done by joining hands at Jantar Mantar. So the public cannot be fooled.
0: आइए आपको सीधे ले चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं। मौसमी, राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये हो रहा था, दरअसल हम दिखा रहे थे सोनम वांगचुक की पत्नी ये कह रही है कि भाई साथ में रहते बीते दिन भी अलग से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंतर मंतर के साथ कंपटीशन हो गया है क्या। लेकिन क्या स्थिति है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी के नेता कहां हैं और क्या वहां पर गांधी स्मृति से निकल चुके हैं?
4: बिल्कुल, देखिए अब स्थिति बैक टू नॉर्मल हो गई है क्योंकि उस सड़क पर हम खड़े हैं अंजना, 5 सुनहरी बाग, जहां राहुल गांधी का आवास है और उनके आवास के सामने सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन 2 घंटे पहले यह स्थिति नहीं थी, 2 बसें खड़ी हुई थी जिन्होंने चक्का जाम कर दिया था। उसके पीछे एक ऐसी बस थी जिसमें राहुल गांधी समेत करीबन 50-100 सांसद सवार थे, तमाम विपक्ष के सांसद सवार थे। और गांधी स्मृति यानी कि यहां से 30 जनवरी मार्ग जो है ज्यादा दूर का फासला नहीं है, महज 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो फासला कवर करने में आधे घंटे का वक्त बीत गया। और रास्ता गुजरा किरेन रिजिजू साहब जो कि संसदीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के घर से होते हुए, तो काफी पुलिस के पसीने जरूर छूट गए। 2-3 बैरिकेड जो है उनको धक्का लगा और उनको हटाते हुए पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उन बैरिकेड को लगभग नीचे गिराते हुए फिर वो बस आगे बढ़ी और गांधी स्मृति पे श्रद्धांजलि दी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के सांसदों ने।
0: धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम ये समझेंगे कि क्या आज जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है और आखिर ये चर्चा क्यों चल पड़ी है। देखिए, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें ये कहा गया कि आज यानी 23 जुलाई को कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और जितने भी होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वहां पर हैं, वो शाम 6:30 तक बंद कर दिए जाएं। ये अपील न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर की गई, लेकिन इस पर कुछ विपक्षी नेताओं ने ये कहते हुए सवाल उठा दिए हैं कि अपील सिर्फ आज के लिए ही क्यों की गई और क्या आज जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। ये सारे दावे सोशल मीडिया पर तेजी से चलने लगे कि कुछ साजिश हो रही है, कुछ विपक्षी नेताओं ने ऐसा होने की आशंका जताई और बात बढ़ती चली गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज रात, अब देख रहे हैं, लगभग 9:05 हो रहे हैं, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है। कनॉट प्लेस में हिंसा और उपद्रव की कोई घटना नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अगर आगे इस तरह की कोई घटना होती है या जंतर मंतर पर कोई नया एक्शन होता है या नई हलचल दिखती है तो हम उसके बारे में आपको सीधा लाइव जरूर आज तक पर दिखाएंगे। लेकिन मौजूदा अपडेट यह है कि जिस तरह की आशंकाएं जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर जा रही थी कि आज शाम कुछ बड़ा होने वाला है, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह एडवाइजरी कनॉट प्लेस में मौजूद दफ्तरों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को लेकर जारी की। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार कनॉट प्लेस में हिंसा, उपद्रव, कई घटनाएं हुई हैं और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि इन सभी घटनाओं में कई दुकानों पर पथराव हुआ है। यानी ऐसा संभव है कि हिंसा को देखते हुए कनॉट प्लेस में इन दुकानों, दफ्तरों को आज शाम 6:30 बजे तक बंद कर देने के लिए कहा गया और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कल रात करीब 8:15 पर उसे यह खबर मिली कि कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर इकट्ठा हुई भीड़ हंगामा कर रही है। इनमें भी हमने आपको दिखाया था कल क्या हुआ था, सबसे ज्यादा तनाव कनॉट प्लेस के पार्क होटल के बाहर हो रहा था। प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों पर पानी की बॉटल्स शुरू में फेंक रहे थे। पुलिस का ऐसा दावा है कि जब उसने इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। इस पथराव के बाद भी पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट कराई गई कि लोग वहां से चले जाएं, पथराव को बंद कर दें। लेकिन आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उन्हें मारपीट के बाद नीचे गिरा दिया। इस घटना के जिन वीडियो की पुष्टि हो चुकी है उनमें पुलिसकर्मियों पर हमला करने ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरों को कपड़े से छिपाया हुआ था। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोग प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके चेहरों पर कपड़ा था। लेकिन जब यह हमला हो गया तब इसी दौरान कई युवा इन्हीं घायल पुलिसकर्मियों की मदद करते हुए नजर आए और इन युवाओं के जो मदद कर रहे थे उनके चेहरों पर कोई मास्क या कपड़ा नहीं था। इससे यह आशंका हो जाती है, बढ़ जाती है कि प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर कुछ लोग हिंसा और उपद्रव का माहौल बनाना चाहते हैं। और जब आप भी कनॉट प्लेस से आई 22 जुलाई की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली में इस वक्त दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है जहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, जहां हालात बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इसी जंतर मंतर से कुछ दूर कनॉट प्लेस में कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचते हैं, इसमें भी इन लोगों द्वारा पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि ये लोग आखिर है कौन। देखिए
5: पत्थर फेंक रही है, ये देखिए
0: कल रात जब कनॉट प्लेस में पुलिस पर यह हमला हुआ तब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी जंतर मंतर के मंच से यह कहा कि इस हिंसा का छात्रों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है और यह आंदोलन शांति और अहिंसा से चलेगा। देखिए
6: हम लोगों को यहाँ पर शांति से बने रहना है, बीजेपी वाले को झूठे भेजेंगे आपको उकसाने के लिए, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको शांति से बैठे रहना है। पीस एंड नॉन वायलेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो 1 महीना सस्टेन करा है, 1 महीना जो चला है वो इसीलिए चला है कि फ्यूचर पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है।
0: कॉकरोच जनता पार्टी दावा कर रही है कि बाकी दिनों के मुकाबले आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने भी बाकी दिनों के मुकाबले आज नई दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में अपनी सुरक्षा को बढ़ाया है और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज लगातार दूसरे दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा। ये वही मेट्रो स्टेशन है जो कल शाम को दिल्ली मेट्रो ने खोल दिए थे, लेकिन आज सुबह 7 बजे ये जानकारी दी गई कि इन मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं और ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन भी शामिल है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जताया था। और इस विरोध पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट स्टेशन नहीं खोला गया तो इस मामले में दखल देंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसका कोई अपडेट अभी आया नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे भी मुद्दा बनाकर ये पूछ रहे हैं कि अगर मेट्रो स्टेशन दुकानों और दफ्तर बंद कराए गए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या आज रात कुछ होने वाला है। हालांकि हम आपको यह फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सभी अभी तक जितनी भी बातें हैं ये सब सिर्फ आशंकाएं हैं, और अब भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक जंतर मंतर पर हालात सामान्य हैं। कहीं कोई पुलिस का एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, कोई खबर आती है आज तक लाइव आपको बताएगा, आगे ऐसा कुछ होता है तो हम सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे और वहीं की तस्वीरें दिखाएंगे।
7: सोलह मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब है उनके लिए आदेश आया था कि वहां के एंट्री एग्जिट सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे।
8: बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और जो भी मेट्रो स्टेशन के भीतर है वो इस एग्जिट से बाहर नहीं आ सकते।
9: ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं।
0: इसी बीच आज ये दावा भी हुआ कि दिल्ली पुलिस को एनएसए कानून के तहत कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि क्या सरकार अब एनएसए कानून लगाकर इस विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहती है। ये आरोप इसलिए लगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक सख्त कानून माना जाता है, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को ये कहते हुए हिरासत में ले सकती है कि अगर उसे बाहर छोड़ा गया तो वो कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब तक एनएसए उन्हीं लोगों पर लगा है जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, लेकिन यहां आरोप लगा कि जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को एनएसए कानून के तहत कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को फेक न्यूज बताया है। पुलिस का कहना है कि एनएसए की शक्तियां इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नहीं बढ़ाई गई हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर 3 महीने में होती है, यानी हर 3 महीने में एनएसए कानून की शक्तियां दिल्ली पुलिस के लिए रिन्यू की जाती हैं और इस बार भी वही हुआ है, जिसका इस आंदोलन या इसमें जो प्रदर्शनकारी शामिल हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिस पर प्रदर्शनकारी विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अभी यही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाना चाहती है। यहां इन तस्वीरों को भी देखना जरूरी है जो आज दोपहर 12:30 बजे जंतर मंतर से आई थी। आरोप है कि उस वक्त जंतर मंतर पर आए निहंग सिखों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। झड़प का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड से आगे बढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब निहंग सिखों ने इसका विरोध किया तो वहां ये झड़प शुरू हो गई। और आप भी इन तस्वीरों को देखिए। खैर, अब ये देखिए कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के और कितने राज्यों में जंतर मंतर जैसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब तक देश के 9 बड़े शहरों में ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें मुंबई, नासिक, देहरादून, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरु, राजस्थान, बांसवाड़ा, पटना, मिजोरम का आइजवाल शहर शामिल है। इन सभी शहरों में लोगों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। इनमें भी मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अब तक पुलिस कुल 13 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और ये दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की कुल एफआईआर से भी ज्यादा है। इन मामलों में करीब 400 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस ने कहा है कि उसकी जांच अब भी जारी है। जिन विरोध प्रदर्शनों को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई वो मुंबई के शिवाजी पार्क, चैत्यभूमि, चेंबूर, शिवसेना भवन के बाहर हुए थे, जिनमें कई अभिनेता और कलाकार भी शामिल हुए। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि इन जगहों पर विरोध प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। यहां इस तस्वीर की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी ने पुलिस की वैन को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा मुंबई में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ युवाओं ने एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा और ये धमकी भी दी कि अगर वो इस प्रदर्शन में फिर से शामिल होने के लिए आए तो उन्हें ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा। देखिए
10: समझे कसम से घर पे
11: इधर वापिस अगर किधर मिला
10: नहीं नहीं नहीं,
11: तो
10: नहीं
11: फिर मेरे साथ बेकार आदमी
10: नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल
11: मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा केजीर में।
10: अरे नहीं नहीं
11: गया जिंदगी गया।
10: अरे
11: नो जामीन
12: वो तो सर वो तो और ही खराब
11: तुम लोग के वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी।
12: ठीक है सर जाएंगे
11: मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए।
10: नहीं नहीं नहीं
11: तुम लोग को
0: जिस पुलिसकर्मी ने छात्रों को यह धमकी दी थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है और इस मामले में जांच कराने की बात भी कह दी गई है। दूसरी तरफ बिहार के पटना से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन पर पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले लोग चिंता जता रहे हैं। पटना में आज जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे तो उन्होंने पुलिस से ये पूछा कि क्या उसके पास आंसू गैस यानी टियर गैस नहीं है। ऐसा इसलिए पूछा गया ताकि ये लोग भी दिल्ली जैसी पुलिसिया कार्रवाई पटना में दिखा सके और उसके वीडियोस बने। इस घटना पर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले कई लोग चिंता जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं, लोगों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए, ये हमारे बच्चों की उनकी मेहनत उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए
13: ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, पूछो व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे।
14: वाटर कैनन का
13: पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है।
0: पटना में भी पुलिस ने अब तक 3 अलग अलग थानों में कुल 268 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है और कुल 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और वहां भी पुलिस की इस कार्रवाई को लोग असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। आप खुद देखिए जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में कैसे देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं और आज सुबह 11 से 1 बजे तक अहिल्यानगर के गांधी स्टैचू के सामने मौन आंदोलन के लिए बैठे। इसके बाद वो अपने गांव रालेगांड सिद्धि के लिए रवाना हो गए। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे का हल निकाले। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। आज का एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बातचीत कैसे होगी। आज कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है 34 और सरकार ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हम आपको पहले ये बताते हैं कि सरकार इस पर कह क्या रही है। सरकार ने ये कहा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, प्रदर्शनकारी जब चाहे तब सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार रहेगी। बातचीत का वक्त भी प्रदर्शनकारी युवा खुद चुन सकते हैं। बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को जितना वक्त चाहिए वो भी सरकार देने के लिए तैयार है। ये भी कहा गया है कि सरकार की कोई शर्त नहीं है, वो आंदोलन के अलावा बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, जो भी मुद्दे छात्र उठाएं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। पिछले एक दिन में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए 4 बार प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि कहां बातचीत होगी या नहीं होगी ये उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन मामला कैसे फंसा है वो समझिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर भी आ सकते हैं या ये मुलाकात उनके दफ्तर में भी हो सकती है। अब ये सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन इन पर कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने यह बात मानी है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। वजह, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत तभी हो सकती है जब सरकार ये मान ले कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी है तो वो जंतर मंतर के आसपास कोई न्यूट्रल जगह ढूंढे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब जेपी नड्डा के घर या दफ्तर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये बातचीत भी उसी स्थिति में होनी चाहिए जब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ठोस फैसले लेने के लिए तैयार हो। यानी अभिजीत दीपके ये चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से कोई नेता उनसे बातचीत करने आए तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लिखित गारंटी दें। और इन्हीं मांगों के बीच अभी ये बातचीत पूरी तरह से फंस गई। और वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि कल से वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सुनिए,
14: आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं प्रत्येक विषय को लेकर के।

दूसरा आप कोई जंतर मंतर के पास की जगह पर आइए। एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आज ऐलान किया है। आज दिन भर चर्चा इसके इर्द गिर्द होती रही क्योंकि ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तरीका एक है और वो है फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को विशेष अदालत भी कहा जाता है। ये ऐसी अदालतें होती हैं जो खास तरह के मामलों में जल्द सुनवाई और जल्द फैसला देने का काम करती है। पेपर लीक के मामलों में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। हमारे देश में साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिनमें कम से कम 1,00,000 बच्चे शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 पेपर लीक के मामलों में सिर्फ 2 ही मामले ऐसे रहे जिनमें अदालत का फैसला आया। ये बात हमने कल भी आपके सामने उठाया था। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल गई या कोर्ट आज तक भी इन मामलों में इंसाफ नहीं कर पाई है। सोचिए, अगर पेपर लीक होते रहेंगे, अदालतों में दोषियों को सजा नहीं होगी, तो ये चोरी रुकेगी कैसे? इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। ये कोर्ट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बनाई जा सकती है और इनमें भी बड़ी बात यह है कि ये अदालतें सभी पेपर लीक के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगी। जो परीक्षाएं केंद्रीय स्तर की होंगी उन्हें ही इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई होगी। जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, सरकारी बैंकों में भर्ती की परीक्षा है और जो परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती हैं उन्हीं के पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करके दोषियों को सजा सुनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई या मान लीजिए कर्नाटक सरकार ने कराई या तमिलनाडु सरकार ने कराई, वहां अगर उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इन्हीं राज्य सरकारों को अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होंगी और यही तरीका है, राज्य अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी लगभग सभी राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं लेकिन कहीं भी इन मामलों में जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या ऐसे राज्य हो जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, यहां यह भी समझना होगा कि हमारे देश में अब तक फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रदर्शन कैसा रहा है। उदाहरण के लिए रेप और पॉक्सो, आपको याद होगा जैसा हमने कल भी आपको बताया था, निर्भया कांड के बाद जब पूरा देश आंदोलित था, पूरे इंडिया गेट पर जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है लोगों का हुजूम उतरा था इंसाफ के लिए हाथ में मोमबत्ती लेकर, तब अंत में यह फैसला लिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है। तो फिर आज मुद्दा यही है कि रेप, पॉक्सो ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान है तो यहां पर क्या रेट है? ये अदालतें हर महीने औसतन लगभग 9.5 मामलों का निपटारा करती हैं, जबकि सामान्य अदालतें हर महीने औसतन 3.3 मामलों का निपटारा कर पाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य अदालतों के मुकाबले इन फास्ट ट्रैक अदालतों की फैसला सुनाने की जो गति है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। 30 जून 2025 तक हमारे देश में कुल 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही थी जिनके संचालन पर केंद्र सरकार ने अकेले 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से न्याय की गारंटी नहीं मिलती और यह भी एक सच्चाई है कि निर्भया कांड में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत हुई और निर्भया कांड के ही अंतिम फैसला आने में 7 साल लग गए। अगर पुलिस जांच धीमी है, फोरेंसिक रिपोर्ट देर से आती है, गवाह समय पर नहीं आते तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जल्दी फैसला नहीं दे सकते। यानी ऐसी अदालतों के साथ ये भी जरूरी है कि हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी जो जांच की व्यवस्था है वो ऐसे मामलों की जांच की गंभीरता को समझे और फिर उसका निपटारा करे। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब तक पेपर लीक के कई मामलों में पुलिस की जांच इतनी कमजोर रही है कि आरोपियों को अदालतों से फौरन जमानत मिल गई, बाहर आए और इन लोगों ने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, फिर आरोपी बने, फिर छूट गए। यानी पुलिस की जांच पर काफी कुछ निर्भर करता है और कोर्ट के फैसलों पर निर्भर करता है छात्रों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस मामले को टोटालिटी में देखना होगा, यानी यह समझना होगा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है, सभी राज्यों की सरकारों को इसके लिए गंभीर होना होगा।

जैसे आज भी देखिए, आज उत्तराखंड में खबर आई है, उत्तराखंड से खबर आई कि आज वहां पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है। झारखंड में फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा हुई जिसमें 75% छात्र इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी बहुत देर से दी गई। कई छात्रों को परीक्षा से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ईमेल मिला, ये झारखंड की खबर है। और बहुत से छात्रों को उनके गृह जिले की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र में बुलाया गया, तो संभव ही नहीं था। सोचिए, इस परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले 3,22,000 छात्रों में से 2,36,000 छात्र सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे सके क्योंकि सरकार और सिस्टम ने अव्यवस्था का पूरा जाल बुना हुआ था। यह बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, उत्तराखंड जो हमने आपको बताया, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, खबर आई कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होने वाली 2 परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। इनमें एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने की जिम्मेदारी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता के पास थी। जांच में पता चला कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज के अंदरूनी पोर्टल पर शेयर कर दिया, यानी कई छात्रों को पहले से ही पेपर मिल गया। कमाल है। सवाल यह उठता है कि पेपर लीक की इस बेईमानी को, इस चोरी को आखिर कैसे रोका जाएगा और सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं? आज पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हम भी एक सुझाव देना चाहते हैं। हमारा सुझाव यह है कि पेपर लीक से जुड़े हर मामले को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। हर जिले शहर में शिक्षा विभाग प्रशासन की ओर से सार्वजनिक डिजिटल डिस्प्ले, बड़े सूचना बोर्ड्स पर यह जानकारी अपडेट दी जाए बच्चों के लिए कि अब तक कितने पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितने खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, कितने मामलों की सुनवाई चल रही है, कितनों की अदालत ने सजा सुनाई है। जब तक पुलिस से लेकर शिक्षा मंत्रालय इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेगा, पारदर्शिता नहीं रखेगा, बच्चों का यह गुस्सा नहीं ठंडा होगा। छात्रों, आम जनता को यह स्पष्ट तस्वीर तो मिलेगी कि सरकार इस समस्या पर कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, एग्जाम आता है, पेपर लीक होता है, री एग्जाम अनाउंस हो जाता है, लेकिन कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके साथ ही दोषी साबित होने वाले पेपर लीक के अपराधियों के नाम, तस्वीरें सार्वजनिक हो, समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है जो अभी तक माना गया है। लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ धोखा है। हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी ना कि पेपर लीक के आरोपी देश की, आप विधानसभा में सोचिए, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए विधायक बनकर, ऐसा सार्वजनिक जवाबदेही भविष्य में पेपर लीक कराने वाले लोगों के मन में डर तो पैदा कर सकती है और बेईमानी को रोकना बहुत जरूरी है। कुछ भी करिए लेकिन बड़ी बात है और इसमें आपको कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसमें पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को गलत बता रही है और ये कह रही है कि उसके पास पैलेट गन है ही नहीं। लेकिन अब हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने एक नई रिपोर्ट भेजी है जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक प्रदर्शनकारी की एमएलसी में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि उसे पैलेट गन से चोटें आई थी। और यहां ये बात अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप सफदरजंग अस्पताल में तैयार की गई इस एमएलसी को देखेंगे तो शरीर पर आई चोटों के लिए पैलेट इंजरी मार्क लिखा गया है। देखिए ये जो शब्द वहां पर लिखे गए हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, पैलेट इंजरी मार्क्स। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती एक प्रदर्शनकारी के मेडिकल दस्तावेज हैं जिनमें ये लिखा है कि इस प्रदर्शनकारी को जो चोटें आई वो पैलेट गन की हैं और उसके शरीर में लगे पैलेट गन के छर्रे भी बाहर निकाल दिए गए हैं। और सुरक्षा कारणों से हम इस प्रदर्शनकारी का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शनकारी ने खुद हमें ये तस्वीरें दी हैं जिसमें पैलेट गन से आई इन दो चोटों को दिखाया गया है। हमारे सहयोगी आशीष की ये रिपोर्ट है और इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या वाकई में 20 जुलाई के संसद मार्च में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। अभी दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन नहीं है लेकिन दिल्ली में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है जिसे पैलेट गन दी गई है। इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पैलेट गन दागे जाने का दावा किया था तब दिल्ली पुलिस ने इसे फेक न्यूज बताकर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और दावा यह हो रहा था कि 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह दावा पूरी तरह गलत है और किसी लड़की की इस प्रदर्शन में मौत नहीं हुई है।
पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि ऐसे दावे करके सोशल मीडिया पर युवाओं को मोबिलाइज किया जा रहा है, उन्हें जंतर मंतर आने के लिए कहा जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे क्या होता है। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान युद्ध की बात अब करेंगे। सीजफायर के खत्म होने के बाद से लगातार 12वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें कल उसने ईरान के खुजस्तान प्रांत के शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर अटैक किया और यह अमेरिकी सेना का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया एक्शन माना जा रहा है। ये जो शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ईरान और इराक की सीमा पर है। ये दोनों देशों के बीच रसद और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में इस बॉर्डर से ईरान और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच रसद और सैन्य साजो सामान का लेन देन बढ़ा है और इसीलिए अमेरिका ने इस बॉर्डर क्रॉसिंग को अपना निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के साथ अब किसी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं हो पाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह की डील के लिए तैयार नहीं है और अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस रुख से इतने नाराज हैं कि वो ईरान के पुल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिकी सेना ने जो हमले किए इनमें ईरान के ऐसे सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है जहां से ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रही थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुल और पावर प्लांट को तबाह करने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को धमकी दी है कि अब से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया तो अमेरिका उनके एक पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ने अगर एक शिप पर हमला किया तो उसके बदले में उसका एक पावर प्लांट या पुल तबाह किया जाएगा। देखा जाए तो ईरान में छोटे बड़े करीब 400 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं, कुल क्षमता 95 गीगावाट है और इन पर हमले होने का मतलब है बिजली सप्लाई ठप होना। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने भी जैसे को तैसा नीति के तहत जवाब देने की बात कही। देखा जाए तो अब की बार के युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में हॉर्मुज़गान के एक डीसलाइनेशन प्लांट पर हमला किया था जिसके बाद करीब 10,000 लोगों के लिए पीने के पानी की दिक्कत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने भी कुवैत और बहरीन के डीसलाइनेशन प्लांट्स पर हमला किया जिससे पीने के पानी की समस्या अब गहराने लगी है। यानी अब की बार कोई भी देश एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डीसलाइनेशन प्लांट्स पर हमला करने से नहीं चूक रहा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से इस तरह के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं ये हमले करना गलत है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है युद्ध के नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। अमेरिका ने तो अब युद्ध को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स को उतार दिया है। B-1 बॉम्बर्स लॉन्ग रेंज के फाइटर जेट्स हैं। एक बार में 900 किलोग्राम तक के 24 बॉम्ब, दर्जनों क्रूज मिसाइल्स दागने में सक्षम है। ये बॉम्बर एक बार में करीब 34,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब ले जा सकते हैं। B-1 बॉम्बर्स 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा घातक माने जाते हैं। एक्सियोस के मुताबिक B-1 बॉम्बर्स ने यूके के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने B-1 बॉम्बर्स के मिशन में उतारने के लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर मंगलवार को जो बमबारी की गई थी उसमें B-1 का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान भी अमेरिका ने ईरान के मिसाइल बेस, कमांड सेंटर्स, हथियारों के ठिकानों पर इन्हीं बॉम्बर्स से हमले किए थे।

युद्ध में ईरान पर भयंकर हमलों के ऐलान के बीच अमेरिका और सऊदी अरब में एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ है। इस समझौते को लेकर इसराइल ने खूब विरोध जताया, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक नहीं सुनी है। अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु सहयोग समझौता किया है और इस समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देगा जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। यह परमाणु समझौता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। सऊदी अरब की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो सऊदी अरब अब भी परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में बढ़ेगा। ऐसे में अमेरिका के साथ हुए इस परमाणु समझौते को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। हालांकि इसराइल समेत अमेरिका के कई अधिकारी इस नए समझौते का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस समझौते से सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी तकनीक मिलेगी जिससे भविष्य में वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने की एक होड़ शुरू हो जाएगी। अभी तक अमेरिका ने जितने भी गैर परमाणु देशों के साथ ये समझौता किया है उनके आगे एक शर्त रखी है कि वो देश यूरेनियम एनरिचमेंट खुद से नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब के साथ जो समझौता हुआ उसमें यह शर्त नहीं है। इसी वजह से इसराइल विरोध कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से खबर आई है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पीओके का पीएम बनना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद में हो रही एक रैली में उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि उन्हें पीओके का पीएम बना दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीओके में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो 27 जुलाई से 10 अगस्त तक होने हैं, लेकिन वहां गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, सरकार पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़े हैं और इस विरोध के बदले में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। स्थिति यह है कि लोग अब पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग कर रहे हैं। नवाज शरीफ इन लोगों को शांत करने के लिए विकास कार्यों को अपनी निगरानी में करने वालों का कराने का भरोसा दिला रहे हैं। नवाज शरीफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर पीओके के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। दरअसल उन्हीं की पार्टी सेंटर में है और उनकी पार्टी के इशारे पर ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को बुरे हालात में रखा गया है, और जब वो अपना मूलभूत अधिकार मांगते हैं तो बदले में गोलियां चलाई जाती हैं। नवाज शरीफ भी जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें पीओके के पीएम नहीं बन पाएंगे। वैसे पाकिस्तान का कोई ठिकाना नहीं, वैसे पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का हिस्सा था और जबरन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया। दिखावे के लिए वो वहां पर चुनाव करवाता है, बाकायदा एक नकली कानून भी उसने बनाया हुआ है। इसे पीओके का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 कहते हैं। इसकी धारा 13 के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि पीएम चुने जाने के लिए पीओके की विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, और इसी की धारा 24 के पहले पॉइंट के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पीओके का स्टेट सब्जेक्ट प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट उसे ही मिलता है जो पीओके का मूल निवासी है। अब नवाज शरीफ इन दोनों क्राइटेरिया में फिट होते नहीं है, यानी नवाज शरीफ सीधे सीधे पीओके के लोगों को वादों का चूरन दे रहे हैं। भारत नवाज शरीफ के इन दावों पर हंस रहा है और इस बात पर नाराजगी जता रहा है कि यह चुनाव पूरी तरह अवैध है। पाकिस्तान उस जगह चुनाव कैसे करवा सकता है जो उसका है ही नहीं। पीओके तो दरअसल भारत का हिस्सा है। और अब आपको असम में बाढ़ से मचे हाहाकार पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में इस वक्त बाढ़ और बारिश का भयानक कहर जारी है। ऊपरी असम के हालात बहुत चिंताजनक है। शिवसागर और जोरहाट जिले में पूरी तरह से, एक तरह से कहिए, जलमग्न हो चुके हैं। शिवसागर के सभी 14 वार्ड्स, 400 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उतारना पड़ा है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात सीने तक पानी उनके भरा हुआ है और सीने तक भरे पानी में उतरकर वो लोगों की जान बचा रहे हैं। हर बीतते घंटे के साथ पानी नए इलाकों में घुस रहा है और लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए।

0: আসাম মে শিবসাগৰ যোৰহাট চৰাইদেউ নাজিৰা সোণাৰী বাৰকা চাপত মে আ ৰহি উচিকে দৌৰান আসাম আপাৰ আসাম মে চাৰ লাখছে ওপৰ আমি বাৰকা বাৰ মে প্ৰভাৱিত হে
1: असल में मानसून के दस्तक देते ही असम में हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। बहते घर, बहते ठिकाने, टूटते पुल, कटती जमीन, इसका सारा दोष बारिश पर मर दिया जाता है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? असल में बारिश तो सिर्फ एक जरिया है, कमियां छिपाने का बहाना है, क्योंकि अपने वक्त पर बारिश तो होनी ही है, ये कोई औचक होने वाली घटना तो है नहीं। असली गुनहगार है नदी के पेट में छुपा मलबा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, दशकों पुरानी इंसानी गलतियां हैं ये। हमारे देश में सिर्फ 12.5% इलाका बाढ़ संभावित है, लेकिन असम का 40% हिस्सा बाढ़ संभावित क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय औसत से 3.5 गुना ज्यादा है। साल 1950 से अब तक असम की 7.5% जमीन नदी में समा चुकी है। असम को डुबोने में बारिश से बड़े कई विलन है। पहला है सिल्ट यानी गाद। तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल से असम के मैदानी इलाकों में उतरती है तो यहां ढलान खत्म हो जाता है और उसके बाद से इस दौरान पहाड़ों से बहकर आई लाखों टन बालू मिट्टी नदी के तल में बैठ जाती है। इस वजह से ब्रह्मपुत्र गहरी नहीं रही, ये नदी उथली हो चुकी है, यानी थोड़ा सा पानी और नदी उफान पर। असम को डुबोने वाला दूसरा विलन है ऊपरी पहाड़ियों पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। और यहीं पर सरकार की बात आती है, क्योंकि आखिर सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी? बारिश होती है, पहाड़ धंसते हैं, लाखों टन मलबा जब नीचे आता है तो कई सारे पेड़ उसके साथ भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कई जगहों पर अंधाधुंध जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको कौन रोकेगा? और तीसरी वजह है पुराने को हो चुके तटबंध। असम के 70% जानते हैं 70% जो तटबंध है, जो बांध बने हुए हैं, मियाद पार कर चुके हैं और ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। 1950 के बाद ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर 423 तटबंध बने, उनमें से 295 की हालत जर्जर है। सवाल यह है कि फिर क्या रास्ता बचता है? और कंक्रीट की ऊंची दीवारें ब्रह्मपुत्र की बाढ़ को रोक पाएंगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि उपाय भी कारगर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक अस्थिर नदी है, बार बार अपना रास्ता बदलती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी की औसत चौड़ाई ही 5 किलोमीटर से ज्यादा है, कई जगहों पर इसकी चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर हो जाती है। बारिश में तो हाल और भी बुरा हो जाता है, इसीलिए कंक्रीट या मिट्टी के सीधे तटबंध बनाकर इसे बांधना लगभग असंभव है। जब नदी अचानक दिशा बदलती है तो बने बनाए गांव, खेत रातों रात कटकर पूरे के पूरे बह जाते हैं। असम की बाढ़ का इलाज कंक्रीट की दीवारों में नहीं, बल्कि असम की पारंपरिक मिसिंग जनजाति के तौर तरीकों में है। ये लोग सैकड़ों सालों से ऊंचे बांस के बने घरों पर रहकर इस नदी के मिजाज को समझकर इसके साथ जीना सीख चुके हैं। इसीलिए जब तक ऊपरी पहाड़ों पर वनों की कटाई नहीं रुकेगी, जब तक सरकार इस पर नहीं जागेगी, जब तक नदी के साथ रहने का वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाएगा, असम हर साल यूं ही डूबता रहेगा। सिस्टम हर साल इसे बारिश का कहर कहेगी, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता रहेगा। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: Sanitary Solutions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर किधर?
6: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंड बड़े आराम से,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको, फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे, आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे। भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
3: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हर जगह ज्ञान न दे। आजकल लोग सलाह को ताना समझते हैं और फिक्र को दखल अंदाजी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: सरकार के विरोध में राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जगह को लेकर अटकी बात, नड्डा ने अपने सरकारी ऑफिस या घर का दिया न्योता, कॉकरोच जनता पार्टी का जवाब, जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह पर ही होगी मुलाकात। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया आश्वासन, राहुल की मांग पहले माफी मांगे पीएम मोदी। पटना में कल के हिंसक प्रदर्शन के बाद 117 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें जारी, सैकड़ों एफआईआर दर्ज, 56 गिरफ्तार, मुख्यमंत्री सम्राट ने पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में डाला। और पहले टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया, वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक, 126 रनों का मिला था भारत को लक्ष्य।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक उस जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्र अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को यह क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी सारी शर्तें आपको बता दी है। अब आपको हमसे बातचीत करनी है तो जंतर मंतर पर आइए, बातचीत कीजिए, हम तैयार हैं। बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी आज वहीं पर हैं, तो हम जंतर मंतर की ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए खाना आ रहा है, कैसे जंतर मंतर के चारों तरफ सुरक्षा बलों ने पूरा घेरा बनाया हुआ है, और कैसे अधिक से अधिक प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर आने से रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन से बंद कर दिए गए हैं। तो आइए दिखाएं आपको जंतर मंतर से राजनीतिक तंत्र तक पूरी रिपोर्ट।
1: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजीपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत 2 दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
2: 1.5 महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर हैं, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने एक पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
1: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
2: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
1: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
4: आप क्या लेके आए भैया? पानी है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा है ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे, तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं,
5: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
4: लेकर के आ रहा हूँ,
5: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
4: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के?
5: दिल्ली, दिल्ली।
6: हम दिल्ली के।
4: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
6: रोज इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है।
4: बाहर से आए? कहाँ से आए ऑर्डर?
7: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
4: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया?
8: दे दिया।
4: आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
8: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर,
4: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
8: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
4: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम पता? कोई
8: नाम नहीं बताया,
4: बस बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
8: कम से कम 20-25।
4: आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
9: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, हु आर वेरी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
4: का ऑर्डर कहाँ से आया है?
7: करोलबाग,
4: दिल्ली का ही है।
1: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
10: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
1: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
11: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
1: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
10: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
1: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आपने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और आइए अब हम आपको इसी प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार और विपक्ष में पेपर लीक को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा है। सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
1: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम। विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
2: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
1: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
12: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
13: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
1: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
14: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
15: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
1: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
16: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
17: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
1: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
18: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
19: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
0: DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों से अपील की है कि वो जंतर मंतर के आसपास जाने से बचें, इस प्रदर्शन से दूर रहें। छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी अपील की गई है। ये कहा गया है कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखें, आप ऐसी गतिविधियों से दूर रहें जिनसे पढ़ाई लिखाई और आपके करियर पर असर पड़ता है। गैर कानूनी प्रदर्शन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए आप वहां से दूर रहें। छात्र और शिक्षक दोनों से कहा गया है कि कानून का पालन करें और किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से प्रशासन DU प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की अपील की है, सलाह दी है। छात्रों को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से असर पड़ता है आपके करियर पर, आपकी पढ़ाई पर। छात्रों के लिए इंसाफ का फास्ट ट्रैक क्या भविष्य में पेपर लीक को सही ट्रैक पर ला पाएगा, ये सवाल है। लेकिन इसी मुद्दे पर बीते चार दिनों से संसद ठप है। सरकार की तरफ से पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर चर्चा की पेशकश की गई है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की एक ही शर्त है, चर्चा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
1: सरकार बनाम विपक्ष, सरकार बनाम प्रदर्शनकारी, इस पूरी लड़ाई के केंद्र बिंदु में है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी इसी मांग को लेकर खड़े हैं, तो संसद में विपक्ष भी इस्तीफे पर अड़ा है।
20: कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए।
1: कांग्रेस का कहना है कि छात्र सड़क पर हैं, तो विपक्ष भी इसीलिए सड़क पर उतरने पर मजबूर है। राहुल गांधी का आरोप है कि वो पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन तब सरकार तैयार नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री JP नड्डा का दावा है कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष छात्रों का बहाना बनाकर सियासत कर रहा है।
21: अपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरा पूरी इशू को इग्नोर कर दिया।
22: हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मौन धारण कर लिया है। महाराष्ट्र के अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे ने अपने घर में ही मौन धारण किया है। आज तक ने अन्ना हजारे के मौन धारण करने से पहले उनसे बातचीत की। अन्ना ने क्या कहा ये सुनिए।
3: में जंतर मंतर पर हो रहे सीजीपी के आंदोलन को लेकर अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं और सबसे अहम यह है कि सरकार ने जिस तरीके से अपना रुख अपनाया है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी मामले में अन्ना हजारे ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और खत में अन्ना आपका कहना है आपने खत लिखा है प्रधान मोदी जी को आपने खत लिखा है और उसमें आपका कहना है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए।
5: मोदी जी को इसलिए लिखा सर्वोच्च नेता है तो उनको ये समझना चाहिए हिंसा ठीक नहीं है, अहिंसा के मार्ग से हम चलना चाहिए। इसलिए मैं लेटर लिखा था कि अहिंसा के मार्ग से ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अहिंसा है।
3: लेकिन रास्ते पर हिंसा हो गई, पुलिस ने लाठीमारी की, सब कुछ सामने आ रहा है,
5: ये गलत है। मेरे भाई सैंक्शन हो गए, कई लाठीचार्ज नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा सबसे हमारे देश की नीति अहिंसक होना चाहिए। अहिंसक हिंसा नहीं, हिंसा नहीं।
3: क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया वो गलत है?
5: अभी सरकार क्या करे वो इसके बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन जो हुआ वो गलत हो गया।
3: आपने खुद इस खत में लिखा है कि अगर कुछ गैर कृत्य होते हैं तो जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, लेकिन जो ऊपर है उनको कुछ नहीं होता। आपने खुद इसमें लिखा है कि अगर कुछ गलत होता है तो जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पर सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है
5: और जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहराना ठीक नहीं।
0: और अब खबर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक। जी हां, पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वो अनशन तोड़ने के लिए अपनी शर्तें सरकार को बता चुके हैं। मतलब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के लिए सरकार को रास्ता दिखा दिया है, जबकि अब इस आंदोलन को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है और खुद पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थक बता रहा है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब यह आंदोलन कहां तक जाएगा।

0: 26 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे? क्या सोनम वांगचुक की शर्तें मान देगी सरकार? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सीजेपी और छात्रों के लिए सोनम वांगचुक का नया संदेश क्या है? क्यों वांगचुक की पत्नी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर उठाए सवाल? जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन की कमान संभाल रखी है और हजारों प्रदर्शनकारी पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अपनी मांगे बनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के अनशन को आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वांगचुक का अनशन कब खत्म होगा? जब जंतर मंतर पर सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है, इस बीच सोनम वांगचुक एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं और सरकार को अपना अनशन तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की शर्त सरकार को बता दी है।
1: सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा।
0: इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ये भी कह चुके हैं कि एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद वो छात्रों से आंदोलन रोकने की अपील करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक की मांगों के बीच कांग्रेस और पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक पर सरकार को घेर रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के सांसद 30 जनवरी बाद यानी गांधी स्मृति के लिए निकल पड़ते

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
4: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
3: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
4: अर्ज किया है
3: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
5: वाँ वाँ वाँ वाँ।
3: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
6: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
7: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
8: है।
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
14: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
15: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
2: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान के प्लान लादेन की। अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर ट्रंप के आदेश पर ईरान पर हमले जारी रहे तो अब अमेरिका में ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाएगा और अमेरिका में ऐसा हमला हम अंजाम देंगे जिससे पूरा अमेरिका मातम में डूब जाएगा। ईरान का प्लान पूरे अमेरिका को मातम मनाने पर मजबूर करने का है। अब सवाल यही कि क्या अगले कुछ घंटों में अमेरिका पर कोई बड़ा हमला ईरान करेगा।

0: अगले 72 घंटे दुनिया पर बहुत भारी हैं। ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप। अमेरिका ने ईरान बॉर्डर भेजे हैं B-2 बॉम्बर। ब्रिटेन ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। ईरान पर नए हमले के लिए तैयार है इजराइल। अमेरिका के नाम ईरान की विस्फोटक धमकी। हमला हुआ तो अमेरिका में 9/11 जैसा अटैक। ईरान का प्लान लादेन तैयार है। बीते 12 दिनों से ईरान पर अमेरिकी हमले जारी हैं। चुन चुन कर ईरान के ठिकानों को अमेरिका निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी धमकी दे चुके हैं कि होर्मुज पर ईरानी हमले बंद नहीं हुए तो ईरान के एक हमले के बदले में वो ईरान के एक पोल या पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। अगर ईरान ने होर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला किया तो अमेरिकी सेना तेहरान और उसके आसपास ईरान के एक पोल या बिजली घर को तुरंत बमबारी कर नष्ट कर देगी। ये ट्रंप की वही धमकी है जिसका जवाब अब ईरान की तरफ से आया है। IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका पर ईरान ऐसा हमला करेगा जिसके बाद पूरा मुल्क मातम में डूब जाएगा। सबसे पहले सुनिए IRGC की धमकी में क्या है। अगर युद्ध जारी रहा तो हम ऐसे ऑपरेशन चलाएंगे कि अमेरिका पछताएगा। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की नौबत आ जाएगी। IRGC की इसी धमकी को 9/11 हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से 9/11 हमले जैसे प्लान को अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले ईरान ये भी ऐलान कर चुका है कि उनके एटमी सेंटर को निशाना बनाया गया तो अमेरिका के एटमी सेंटरों पर हमला करके बदला लेगा। अगर ईरान की परमाणु सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया जाता है तो ईरानी अपनी निवारक नीति और आंख के बदले आंख के सिद्धांत के तहत अज्ञात स्थानों से अमेरिकी परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले करेंगे। अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो क्या ईरान के निशाने पर अमेरिका के एटमी सेंटर हैं? क्या अमेरिका के एटमी सेंटर पर ईरान 9/11 हमले की तर्ज पर हमला करेगा? मतलब अमेरिका पर हमले की तैयारी ईरान कर चुका है क्योंकि ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
1: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
2: अगर ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका के हिटलिस्ट पर हैं, अगर ईरान के खारग द्वीप पर ट्रंप की नजर है, वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैनिकों को भेज सकते हैं, तो ईरान ने भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। होर्मुज और लाल सागर करीब करीब बंद हैं। मिडिल ईस्ट के गैस तेल प्लांट्स को ईरान निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका ने भी बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी की है। ईरान की तैयारी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी और लगातार ईरान के खिलाफ तेज हो रहे हमले हैं।
3: Ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably.
0: Trump ट्रंप की धमकी के बाद बीते कुछ घंटों के दौरान हालात तेजी से बदल रहे हैं। संकेत यही है कि ईरान में भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज में हमला करता है तो अमेरिकी सेना ईरान के अंदर किसी पुल या पावर प्लांट को उड़ा देगी। इसके बाद ईरान की तरफ से भी अमेरिका और मिडल ईस्ट के देशों में भयानक मिसाइल हमला करने की चेतावनी दी गई है। हम निश्चित रूप से नए उपाय अपनाएंगे। हमने नए परिदृश्यों का अनुमान लगाया है और उन पर काम किया है, और हम निश्चित रूप से दुश्मन को युद्ध जारी रखने से रोकने के लिए नए तरीके अपनाएंगे। ईरान के पास दूसरी रणनीतियां हैं जिनका खुलासा उचित समय पर किया जाएगा, और युद्ध विराम की अवधि का उपयोग करके युद्ध की तैयारी में सुधार करने के बाद उसकी वायुसेना और वायु रक्षा प्रणाली बेहतर ढंग से तैयार है। यानी दुश्मन जमीन से आक्रमण करता है तो उसकी भेद्यता हवाई या लंबी दूरी के हमलों की तुलना में कहीं अधिक होगी। जमीनी अभियानों से ईरानी सेना को हताहत करने से ज्यादा अवसर मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इजराइल को बताया है कि उसका इरादा ईरान के अंदर हमले तेज करने का है। इन सब के बीच ब्रिटेन ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को खाली कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगले 72 घंटों में हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इजराइल अगले हमले की तैयारी कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद युद्ध और भड़का तो इजराइल भी इसमें शामिल हो सकता है। इजराइल की सेना ईरान में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है और उच्च स्तर की तत्परता बनाए हुए है। सेना ने दिन में पहले लाल सागर पर स्थित जॉर्डन के बंदरगाह शहर अकाबा की ओर से किए गए एक प्रक्षेपण पर नजर रखी थी, और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली अलर्ट पर थी। हम तुरंत लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, और जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे। इजराइल का मानना है कि पिकेक्स माउंटेन पर अमेरिका B-2 बॉम्बर से बम गिरा सकता है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पिकेक्स माउंटेन उनकी हिट लिस्ट पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विस्तार पर मुहर लगा चुके हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ विध्वंसक हथियारों का जखीरा ईरान बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। बड़ी बात यह है कि स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कमांडो भेजे गए हैं, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है जिसमें B-2 बॉम्बर भी शामिल हैं।
4: But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: अमेरिका ईरान तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप की नीति आंख के बदले सिर वाली है। ईरान अपने किए की भारी कीमत चुकाएगा। ये पहले से ही भारी कीमत चुका रहे हैं। ईरान के औद्योगिक और रक्षा औद्योगिक आधार पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ईरान हर रात अपने मिसाइल लॉन्चर और रडार खो रहा है। उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ईरान की बयानबाजी के बावजूद वे बहुत कष्ट झेल रहे हैं, और जब तक वो होश में नहीं आ जाते तब तक उन्हें और भी कष्ट झेलना पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सत्ता परिवर्तन के अधूरे ऑपरेशन को ट्रंप पूरा करना चाहते हैं। ट्रंप का प्लान यही है कि कुछ दिनों तक हमले जारी रहेंगे और इस दौरान बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को निशाना बनाया जा सकता है ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा सकें। इसके लिए ट्रंप ईरान में गृह युद्ध को भड़काने के एजेंडे को भी हवा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कई फ्रंट पर अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की रणनीति बना रखी है। होर्मुज बंद है और अब लाल सागर भी मिसाइलों के साए में है। ईरान के इशारे पर हूती ने लाल सागर से गुजर रहे सऊदी अरब के 2 टैंकरों को निशाना बनाया है। हूती ने दावा किया है कि हमले की वजह सऊदी की तरफ से उनकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि अमेरिकी हमलों के बाद मिडल ईस्ट के तेल गैस और पावर प्लांट उनकी मिसाइलों की जद में हैं। होर्मुज बंद रहेगा। अगर किसी भी जहाज को इससे गुजरना है तो उसे सिर्फ निर्धारित मार्ग से और पहले से घोषित व्यवस्थाओं की गाइडलाइन पर ही यात्रा करनी होगी। अगर अमेरिका की धमकियों पर अमल किया गया तो ईरानी सेनाएं इस क्षेत्र से तेल की एक बूंद भी निर्यात नहीं होने देंगी। अमेरिका और उसकी सेना की तरफ से बार बार दी जाने वाली धमकियों से सिर्फ युद्ध का विस्तार होगा और ये पूरे इलाके में और उससे भी आगे फैलेगा। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ईरानी सेना के सीनियर कमांडरों के एक ग्रुप ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को एक चिट्ठी लिखी थी चिट्ठी में ईरानी सेना के अफसरों ने अली खामिनई की हत्या का बदला लेने और ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मांग की थी। चिट्ठी में ईरानी सेना के अफसरों ने मुश्तबा से खामिनई की हत्या का बदला लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की बात तक कही थी। चिट्ठी में IRGC और ईरानी रक्षा मंत्रालय के सीनियर कमांडरों के दस्तखत थे। माना जा रहा है कि इसी चिट्ठी के बाद मुश्तबा के आदेश पर IRGC ने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए एक डेथ स्क्वाड का गठन किया है। डेथ स्क्वाड का कोड नेम रखा गया है मुख्तार यूनिट। प्लान के तहत मुख्तार यूनिट हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए मेक्सिकन गैंग और विदेशों में रहने वाले कुछ ईरानियों से मदद ले सकती है। खुद ट्रंप ने मीडिया के कैमरों के सामने कबूल किया था कि ईरान उन्हें मारने की साजिश रच रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की गुंजाइश कम बची है क्योंकि ना तो ट्रंप अपने हमले रोकने को तैयार हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की अपनी अपनी तैयारी आने वाले कुछ घंटों में दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा करने को काफी है। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि POK में भड़के विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान को किस तरह से हिलाकर रख डाला है। स्थिति यह हो गई कि POK में बगावत का ऐसा एटम बॉम्ब फूटा कि इस्लामाबाद में भी राजनीतिक शोले भड़क उठे। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN अपने नेता नवाज शरीफ को POK का कथित प्रधानमंत्री बनाने के लिए संविधान में बदलाव करने जा रही है। हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान POK में चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है और बिलावल भुट्टो POK के समर्थन में अपने पाले में POK का समर्थन खींचना चाहते हैं। ऐसे में वो पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर पर हमले करने से नहीं चूक रहे, तो आइए अब देखें कि POK में आगे होगा क्या।
0: POK में बगावत का विस्फोट, इस्लामाबाद तक चोट। शरीफ खानदान और भुट्टो परिवार में POK पर छिड़ी जंग। क्या नवाज शरीफ बनेंगे POK के अगले कथित प्रधानमंत्री? बिलावल भुट्टो ने POK में बगावत पर पाकिस्तान सरकार को घेरा। POK में रावला कोट की ईदगाह से महा आंदोलन की तैयारी तेज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK ने रावला कोट की ईदगाह के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी फिर से जमा हो चुके हैं। और इस दफा तैयारी बड़ी है क्योंकि अब मुनीर के खिलाफ महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। POK में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने ऐलान कर दिया है कि जितनी तादाद में हो सके इस महा आंदोलन का हिस्सा बने।
5: दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, शहादतें दी हैं, लेकिन रावला कोट का ईदगाह ग्राउंड आज भी भरा हुआ है। बारिश होती रही लेकिन लोग घरों में नहीं बैठे, रोड्स के ऊपर मार्च हुआ, नारे लगे। एक बात साफ नजर आ रही है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक अवामी तहरीक अब बन चुकी है।
0: POK में JAAC और जनता के आक्रोश को देखते हुए पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान सरकार भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी POK में 3 चरणों में चुनाव कराने जा रही है। ये चुनाव 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ ने एक रैली में मजाक के तौर पर कहा था कि वो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे POK का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PMLN चाहती है कि रायबरेली का एक नागरिक जो पाकिस्तान का 3 बार PM रह चुका है उसे POK का प्रधानमंत्री बनाया जाए।
6: दो अहम इस्लाहात, एक इस्लाहात ये कि वो आईन में तरमीम लेकर आए
7: اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام نہیں کرے گی. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کرے. اور جب یہ ترمیم لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترمیم ہو کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا کوئی کنڈیشن نہ ہو کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھے, کہ وہ میرپور سے تعلق رکھے, کہ وہ راولاکوٹ سے پونچھ سے تعلق رکھے یا مظفر آباد. ان کا تجویز سنے, تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے, اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے بند کا شہری جو چار تین دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے.
8: آپ کو بتا دیں کہ رائے بند شریف پریوار کا گھر ہے. بلاول نے یہ بھی کہا کہ پی ایم ایل این نواز شریف کو پی او کے کا پی ایم بنانے کے لیے سمویدھان میں سنشودھن کرنا چاہتی ہے. اس کے ذریعے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کو پی او کے کا پی ایم نیوکت کر سکیں گے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ پی او کے کا یہ چناؤ کوئی سادھارن چناؤ نہیں ہے, یہ اتہاس کا سب سے اہم چناؤ ہونے جا رہا ہے. بلاول نے نواز شریف کی بیٹی مریم پر بھی نشانہ سادھا ہے. انہوں نے کہا کہ مریم ایسے بیان دے رہی ہیں جیسے پنجاب کے ہر حصے سے دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں. پی ایم ایل این کیول رائے بند کو ہی پنجاب مانتی ہے, باقی جگہ کوئی وکاس نہیں ہے. بتا دے کہ پی او کے چناؤ میں بلاول کی پی پی پی کا نواز شریف کی پارٹی سے سیدھا مقابلہ ہے.
9: آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو, جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے. انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا, تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے, تاریخ رقم کرنا ہے, مل کے تاریخ بنانا ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو, آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو پاکستان, باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں.
8: ایک طرف اسلام آباد کی سیاست میں پی او کے کو لے کر شولے بھڑک رہے ہیں, تو دوسری طرف پی او کے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان سرکار اور آصف منیر کے خلاف مہا آندولن کی تیاری شروع کر دی ہے, جس قبضے والے کشمیر کے لیے پاکستان کی سیاست کھول رہی ہے اور نیتا آپس میں پھر رہے ہیں. اس پی او کے میں جے اے سی کے نیتا اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ پی او کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے.
10: یہ ایک متنازع علاقہ ہے, لیکن یہ متنازع نہیں ہے, یہ مقبوضہ علاقہ ہے, یہ مقبوضہ علاقہ, اس پر قبضہ ہے. اس تحریک میں شہید بھی ہو جائیں تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی, اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی. اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں, فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ ختم اب یہ حقوق کی جنگ ختم.
8: پی او کے میں اپنی مانگوں کو لے کر ویروھ پردرشن کی اگوائی کر رہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جے اے سی نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنی تعداد میں ہو سکے اس مہا آندولن کا حصہ بنیں. آپ کو بتا دیں کہ پی او کے میں منیر کی بربرتا کے بعد جے اے سی نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر 21 جولائی تک ان کی شرطیں نہیں مانی گئیں تو پھر آر پار کی لڑائی ہوگی. پی او کے کی طرف سے جو مانگے رکھی گئیں ان میں ستھانیہ ودھان سبھا میں 12 آرکشت سیٹوں کی ویوستھا ختم کرنا, ستھانیہ لوگوں کو ادھک راجنیتک پرتینیدھتو, گرفتار نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی رہائی, بہتر شاسن, بجلی اور انیہ آرتھک مدوں پر سدھار. پی او کے میں آندولن کو لیڈ کرنے والے 600 سے زیادہ نیتاؤں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. پاکستان کے اندر سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ اس آندولن میں 70 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں.
11: جب بچے بھی ڈرنا بند کر دیں تو پھر ملٹری آکوپیشن جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. مزید بھی ویڈیوز ہیں, دیکھ لیجئے آپ. دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں, گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, کھانا پینا راشن بچوں کا بند کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ 35 دن ہو چکے ہیں شٹ ڈاؤن ہے, پیرا ملٹری ٹروپس, پنجاب رینجر, فرنٹیئر کنسٹیبلری, ایک پورا ڈویژن اسٹرینتھ وہاں پہ مزید لگا دیا گیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں رینجرز وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں, پنجاب رینجرز ہزاروں کی تعداد کے اندر ایف سی وہاں پہ بھیجی ہوئی ہے, لیکن ہر روز یہ جو کراؤڈ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج اگلی نسل, اگلی جنریشن بھی کھلے عام سامنے آ گئی ہے. یہ اسلام آباد کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے.
0: लेकिन अब पाकिस्तान का कोई पैतरा पीओके में काम करने वाला नहीं है, इसीलिए आर पार की लड़ाई के लिए पीओके में महा आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो
2: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
15: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी.
4: कुछ तो बात है इस दिल में.
5: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से सरसों.
7: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए. आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं. फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी. ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
8: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट. इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है. अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है. सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते. वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो. स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं. ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राहुल के सरकार के विरोध में राहुल ने तेज किया युद्ध। कांग्रेस इंडिया गठबंधन सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, कहा धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जगह को लेकर अटकी बात, नड्डा ने अपने सरकारी ऑफिस या घर का दिया न्योता। सीजेपी का जवाब, जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह पर हो मुलाकात। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया आश्वासन। राहुल की मांग, पहले माफी मांगे पीएम मोदी। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने किया आगाह, कई जगहों पर कुछ अराजक तत्व शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने भड़काना चाहते हैं हिंसा, शांति ही हमारा मार्ग। उत्तर से पूरब और पश्चिम तक जल प्रलय, गुजरात के वलसाड़ सूरत में बिगड़ी स्थिति, जम्मू कश्मीर में तबाही, असम में अब तक 41 लोगों की मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 20 दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार सोनम की जमानती जिंदगी का फैसला हो ही गया। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम की उस जमानत को रद्द कर दिया जो उसे दो दो अदालतों से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम से अगले 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है, यानी वापस जेल जाने को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अगले 6 महीने में राजा रघुवंशी मर्डर केस का फैसला नहीं आ पाता तो सोनम फिर से जमानत की अर्जी दे सकती है। यह अदालत सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। यह अदालत सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है। यह अदालत सोनम को जमानत देने के मेघालय हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सोनम को 3 हफ्ते के अंदर मेघालय पुलिस के सामने सरेंडर करने का हुक्म देती है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन की सुनवाई के बाद आखिरकार सोनम रघुवंशी की दो दो अदालतों से मिली जमानत खारिज हो गई और अब अगले 3 हफ्ते के अंदर सोनम को वापस फिर से जेल जाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को एक राहत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अगले 6 महीने के अंदर अंदर राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ट्रायल पूरा नहीं हो पाता तो सोनम जमानत की नई अर्जी दे सकती है। यानी अगले 6 महीने में अगर निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया तो सोनम को वापस जमानत मिल सकती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अगले 6 महीने में सोनम के पति राजा रघुवंशी मर्डर केस का फैसला आ सकता है। तो जमानत पर बहस के दौरान मेघालय सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, अब बस चार्ज फ्रेम होना बाकी है। चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने कुल 94 गवाहों को रखा है। अब देखना यह है कि सभी 94 गवाहों की गवाही अगले 6 महीने में पूरी हो पाती है या नहीं। इससे पहले मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर उठाई गई आपत्ति का कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कहना था कि रिकॉर्ड और चार्जशीट में ये साफ साफ दर्ज है कि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था। साथ ही उन्होंने दोहराया कि तकनीकी गलतियों के आधार पर मिली जमानत को जारी रखना गलत होगा। दरअसल मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस के लिए BNS की धारा 103 लगाने की बजाय गलती से 403 लगा दी थी, जबकि 403 धारा BNS में है ही नहीं। इसी को आधार बनाकर सोनम को पहले निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जवाब में सोनम के वकील ने दलील दी कि सोनम ने यूपी के गाजीपुर में 9 जून 2025 को सरेंडर नहीं किया था, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, इसीलिए सरेंडर की बात गलत है। और जब सरेंडर की बात ही गलत है तो फिर ये बात भी खारिज होती है कि सोनम को अपना जुर्म पता था। सोनम के वकील ने यह भी कहा कि मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और सोनम को कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली है जिसका वो पालन कर रही है। सोनम के फरार होने का अब कोई अंदेशा नहीं है, इसीलिए उसकी जमानत बरकरार रखी जाए। सोनम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में खुद को बेकसूर बताते हुए ये भी कहा कि उसे इस मर्डर केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने सोनम की जमानत रद्द करते हुए कहा कि मेघालय पुलिस की तरफ से पेश दस्तावेज से ये साफ हो जाता है कि सोनम को उसकी गिरफ्तारी की वजह पहले ही बताई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, 9 जून 2025 को जब सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था उससे भी ये साबित होता है कि सोनम अपना जुर्म जानती थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कानून की एक गलत धारा जो कि टाइपो एरर की वजह से हुआ, सिर्फ उसकी बिना पर पहले शिलांग की लोअर कोर्ट और फिर मेघालय हाई कोर्ट का सोनम को जमानत देना गलत था। सोनम पर जो गंभीर इल्जाम है उसे देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को फौरन वापस जेल भेजने की बजाय सरेंडर करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, यानी सोनम अगले 3 हफ्तों के अंदर कभी भी खुद से सरेंडर कर सकती है।
1: आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि जो मामला ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाता है और जो लोगों के संज्ञान में रहता है, और ये सिर्फ एक मेघालय का या सोनम का मैटर नहीं है, उसके बाद कई ऐसे मामले आए हैं सामने जिसमें जो शादीशुदा कपिल हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं वो इस तरीके के एक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो अपने स्पाउस का या पार्टनर का जो है वो हत्या कर देते हैं। तो एक तरीके से एक अंकुश लगाने वाली बात है या एक समाज को एक संकेत देने वाली बात है, शायद इस वजह से भी ये बेल कैंसिल करी।
0: इस बीच इसी सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही यानी बुधवार को एक केस में एक फैसला सुनाते वक्त ये टिप्पणी की कि अगर किसी को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो उसे फाइनल जमानत समझा जाए। हाई कोर्ट के जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से एक बार को लगा था कि सोनम की जमानत शायद जारी रहेगी, क्योंकि सोनम को मेघालय हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।
2: सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के आबकारी नीति मामले में चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि हाई कोर्ट अगर जमानत दे दे तो सुप्रीम कोर्ट में उसे आमतौर से चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब चैतन्य बघेल के मामले में ऐसा हुआ तो फिर सोनम रघुवंशी के मामले में सरकार मध्य प्रदेश मेघालय सरकार यहाँ आई तो उसको एंटरटेन क्यों किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में वकील और कानून के जानकार हमारे साथ हैं फुजैल खान साहब। फुजैल भाई, ये बताइए कि इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है, ये एक थंब रूल है या ये केस टू केस वेरी करता है, ये क्या है इसके पीछे?
1: देखिए, ऐसा है कि जब भी हाई कोर्ट बेल देता है तो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैक्टिस है, जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक गोल्डन रूल है कि नॉर्मली वो हाई कोर्ट जब ग्रांट करता है बेल को तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, और इसके आपको सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जब कभी भी राज्य सरकार किसी कैंसिलेशन और बेल के लिए आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको गंभीरता से देखता है, और उस न्यायालय उस उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है बेल का, उसकी जो वो समीक्षा करता है वो काफ़ी ध्यान से करता है, और फिर वो देखता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो बेल दी है क्या वो रद्द होने लायक है कि नहीं है। तो ये एक रूल है कि जब कंप्लेनेंट आता है तो मैक्सिमम केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, और ये कहता है कि हाई कोर्ट जब बेल दे देता है तो वो फाइनल बेल है। लेकिन कैंसिलेशन के मामले में जब राज्य सरकार आती है या सरकार की कोई भी बॉडी आती है, जैसे CBI हो गई या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो गए, तो उसका जो समीक्षा का जो उसमें लेवल होता है वो डिफरेंट होता है।
0: इंदौर की सोनम वही सोनम है जिस पर पिछले साल अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाकर मार डालने का इल्जाम है। अब सवाल ये है कि ऐसे संगीन और हाई प्रोफाइल केस में भी, जो एक वक्त पूरे देश में सुर्खियां बनी, गिरफ्तारी के महज 10 महीने के अंदर सोनम को दो दो अदालतों ने जमानत कैसे दे दी, तो इसकी कहानी भी बेहद अजीब है। दरअसल मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल से जुड़े मामले में नए नए जन्मे भारतीय न्यायिक संहिता यानी BNS की जो धारा लगाई थी वो कानून की किताब में तो छोड़िए किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के पन्नों तक में दर्ज नहीं। यानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सोनम पर जो धारा लगाई उस धारा का कोई वजूद ही नहीं। अब जब वो धारा ही नहीं तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने सोनम को किस जुर्म में पकड़ा है, और जब पुलिस को ही पता नहीं तो पुलिस सोनम को कैसे बताएगी कि उसे किस जुर्म में उसने गिरफ्तार किया है। ये लाइनें हमारी नहीं है, ये मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है सोनम को जमानत देते हुए। अगर अब भी आप पूरी कहानी नहीं समझ पाए तो चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पिछले साल मई में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 3 किराए के कातिल थे और 1 सोनम का प्रेमी। बाद में मेघालय पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सोनम को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में आरोपी नंबर एक बनाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू होते ही सोनम ने शिलांग की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सीआरपीसी और आईपीसी में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदल दिए गए बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई धाराओं को एक साथ जोड़ दी गई। अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का जन्म हो चुका था। इस बीएनएस के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को कुल 358 धाराओं में लपेट दिया गया। यानी बीएनएस के तहत देश में होने वाले हर तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं हैं। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही आईपीसी की धाराओं की जगह जब बीएनएस और उसकी नई धाराएं आईं, तो आम लोगों को छोड़िए खुद पुलिस और कानून के रखवालों को इसे समझने, रटने और याद करने में मुश्किलें आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था कि आईपीसी की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा उस मर्डर के लिए मिलेगी। बीएनएस में धारा 300 की जगह 100 हो गया। 101 मतलब मर्डर केस का है, जबकि बीएनएस में 302 की जगह 103 नई धारा बनी। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 यानी मर्डर के केस की जगह 403 लिख दिया। अब चूंकि बीएनएस की धारा 358 पर आकर ही खत्म हो जाती है, तो जाहिर कानून की किताब में 403 नंबर की धारा कोई हो ही नहीं सकती। बस इसी एक गलती को शिलांग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था कि जब धारा 304 है ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया है। यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसीलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। मेघालय पुलिस भी हैरान था। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद यही थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत खारिज कर देगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया।
3: The grounds of arrest, it is not that the grounds of arrest were not made to understand. When the transit demand was made also, the grounds of arrest were made, given to understand, to understand to the accused. During production also, the grounds of arrest were given to understand, and the accused had understood that that she was arrested for murder. Court has taken a different stand and given order that, you know, grounds of arrest were not made to be understood by the accused. We have appealed for that. It does not mean that there will be any difference in the trial.
0: दरअसल मेघालय हाई कोर्ट ने भी सोनम के केस में बीएनएस की वही 403 वाली धारा पकड़ ली जो कहीं कानून में है ही। हाईकोर्ट का कहना था कि बीएनएस की धारा 403 जो वजूद में ही नहीं है, उससे कैसे पता चलेगा कि सोनम पर इल्जाम क्या है। हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि गलत धारा लगाने से ये भी पता चलता है कि खुद सोनम भी इस बात से अनजान थी कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा। इसीलिए निचली अदालत का फैसला सही है और सोनम जमानत की हकदार। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को इसी बिना पर मेघालय पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें सोनम की जमानत खारिज करने की गुजारिश की गई थी। अब सोचिए, कानून की एक छोटी सी गलती ने सोनम को वो आजादी दिला दी जो आने वाले कई बरसों तक शायद ही उसके हिस्से आने वाली थी। सोनम जमानत पर बाहर आने के बाद से ही शिलांग में रह रही। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। 20 जुलाई को डीजीपी की लाश अगरतला में पुलिस हेडक्वार्टर में उनके दफ्तर के अंदर मौजूद बाथरूम से मिली थी, फंदे से झूलते हुए। हालांकि अब तक कोई सुसाइड नोट भी सामने नहीं आया। उधर डीजीपी के घर वालों का कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत की पहेली अब भी अनसुलझी है। डीजीपी ने पुलिस हेडक्वार्टर में खुदकुशी की थी, तो खुदकुशी की वजह क्या थी? कोई सुसाइड नोट अब तक क्यों नहीं मिला? घर वाले क्यों ये दावा कर रहे हैं कि वो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकते? और अगर मौत के पीछे की साजिश कुछ और है, तो फिर वो क्या है? ये मामला इसलिए और भी रहस्यमयी हो गया है क्योंकि त्रिपुरा सरकार या पुलिस डीजीपी की मौत पर अब तक खामोश है। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ यूपी के बागपत के बिहारीगढ़ के रहने वाले थे। उनके भाई बड़ौत में रहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद अनुराग धनखड़ का शव उनके पैतृक गाँव लाया गया।
4: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत के बाद आज उनका शरीर है, पार्थिव शरीर, वो उनके आवास पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ त्रिपुरा पुलिस की जो जवान हैं वो भी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही है, आखिर इतने बड़े पद पर रहने वाले अधिकारी फांसी कैसे लगा सकते हैं? कई सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो पुलिस को देना होगा। पुलिसिया जांच के बाद ही इस चीज़ का स्पष्ट कर पाएंगे आखिर क्या वो समस्या थी और क्या वो वजह रही। फिलहाल आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा पुलिस के जवान हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो जो पहुंचे हैं वो भी साथ में हैं, उनके साथ काम किया है। यहीं आप देख सकते हैं कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं जो उनके गांव के, क्योंकि जो अनुराग धनखड़ थे वो बागपत के बिहारीपुर गांव के रहने वाले थे और उन 94 बैच के वो अफसर थे। फिलहाल इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर एक बड़े पद पर रहने वाले अधिकारी की मौत इस तरीके से कैसे हो गई।
0: अनुराग धनखड़ के शव के साथ त्रिपुरा पुलिस के आला अफसर भी बड़ौत पहुंचे थे। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से भी यूपी पुलिस के आला अफसर यहाँ आए हुए थे। इन सब की मौजूदगी में बड़ौत में ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर अनुराग धनखड़ के भाई ने कहा कि जिन हालात में उनके भाई की मौत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुराग धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से बड़े घोटालों की भी जांच की थी, उस एंगल से भी मामले की जांच हो।
5: किसी ने फांसी सुनी, किसी ने गोली सुनी, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना।
6: आपके तो बेहद करीबी रहे होंगे, बात भी होगी। लास्ट बार कब मुलाकात?
5: 10 तारीख में आए थे।
6: क्या कुछ ऐसा लगा, कुछ बताया, किसी परेशानी?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। परेशानी उसके जीवन में कभी नहीं आई। जो देश के हाई प्रोफाइल केस थे सारी दुनिया जाने, उसने बम्बई बम ब्लास्ट रहा हो, 84 के दंगे रहे हो, आपका यो नीरव मोदी का रहा हो, 2G घोटाला रहा हो, और विदेश में भी उन्होंने तत्व करा हमारे भारत का, ये तो उनके जीवन में था नहीं।
6: कभी कुछ आपसे कोई बातें ऐसी शेयर की हो जिससे वो कभी या कुछ परेशानी?
5: नहीं नहीं नहीं।
6: क्या लग रहा है आपको?
5: बस हमें तो जो लग रहा बहुत बुरा है, ये हमें यकीन नहीं है जो हुआ इसका। मैं ऐसा नहीं था, वो इतना कमजोर नहीं था वो, और वैसी कमजोरी कोई है नहीं उनकी, कोई जांच कर दे या कोई कुछ कर दे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। और रही बात वो कमजोर नहीं था, अब कुछ भी हो सके, हम तो इस बात पे बिल्कुल इस बात को नहीं मानते, उनके साथ भी कुछ भी हो सके।
7: जब कोई एक जवान सिपाही आत्महत्या करता है तो अफसरों के ऊपर इल्जाम लगता है, लेकिन उन सबका सर्वोच्च कमांडर ही अगर ये घटना घट रही है तो इसके पीछे किसका आता है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और वो कारण नहीं था, वो बहुत ईमानदार थे, बहुत देशभक्त थे, कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी बड़े सरकार का, किसी बड़े आदमी का मजबूरन करके उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उनको दंड मिलना चाहिए। त्रिपुरा में हमारी सेना है, इंटेलिजेंस है, CBI के बजाय भी मैं चाहता हूँ वहाँ की आर्मीज की जांच करे और तुरंत उस स्थान को सिक्योर किया जाए।
0: उधर इस बीच त्रिपुरा पुलिस ने डीजीपी की रहस्यमय मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। अगरतला में मौजूद त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर में जहां से डीजीपी की लाश बरामद हुई थी उनके उस दफ्तर के फॉरेंसिक नमूने लिए गए। साथ ही अनुराग धनखड़ के मोबाइल और लैपटॉप को भी पुलिस खंगाल कर मौत की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद ये त्रिपुरा पुलिस का हेडक्वार्टर है। दो मंजिला इस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर राज्य के डीजीपी का दफ्तर है। रोजाना की तरह सुबह करीब 10:30 बजे अनुराग धनखड़ अपनी सरकारी गाड़ी में दफ्तर पहुंचते हैं। अमूमन दफ्तर आने के बाद डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद सीनियर पुलिस अफसरों के साथ सुबह की मीटिंग करते हैं, लेकिन सोमवार को अपने दफ्तर में दाखिल होने से पहले उन्होंने वहां मौजूद गार्ड और अपने पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को हिदायत दी कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कुछ जरूरी काम में बिजी है। इसके बाद वो अपने दफ्तर में दाखिल हो गए। दफ्तर में दाखिल हुए डीजीपी अनुराग धनखड़ को अब करीब 1.5 घंटे हो चुके थे। गार्ड और पीएसओ को वो पहले ही आगाह कर चुके थे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस दौरान उन्हें लैंडलाइन नंबर पर भी जो फोन आ रहे थे वो डीजीपी पिक नहीं कर रहे थे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। 1.5 घंटे तक उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं। कई सीनियर अफसर भी उन्हें कॉल कर रहे थे पर वो किसी का मोबाइल पर भी कॉल नहीं उठा रहे थे। तब पहली बार सिक्योरिटी गार्ड और पीएसओ को कुछ अजीब लगा। उन्होंने डीजीपी साहब के कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन तब वो और हैरान रह गए जब धक्का देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद था और ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले 10 महीने से जब से अनुराग धनखड़ डीजीपी बने थे कभी अंदर से उनका दरवाजा बंद नहीं हुआ था। जब आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। फौरन आला पुलिस अफसरों को इत्तला दी गई। इसके बाद वो भी डीजीपी के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। मगर जब तमाम कोशिशों के बावजूद अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ना ही दरवाजा खुला, तब ये तय किया गया कि डीजीपी साहब के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जाए। इसके बाद दरवाजा तोड़ दिया गया, पर कमरे में दाखिल होने वाले लोग हैरान थे। डीजीपी साहब अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पूरा दफ्तर खंगालने के बाद जब एक पुलिस अफसर उनके ऑफिस के अंदर ही वॉशरूम में झांकता है तो सन्न रह जाता है। अंदर वॉशरूम में डीजीपी अनुराग धनखड़ की लाश फंदे से छूट रही। यह देश का पहला ऐसा मामला है जब एक राज्य के डीजीपी यानी सबसे बड़े पुलिस अफसर की लाश पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर उन्हीं के दफ्तर में यूं फंदे से झूलती मिली। अमूमन ऐसे आम केस में आम लोग लाश को फंदे से उतारने से पहले पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन यहां अजीब सीन था। खुद पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर डीजीपी साहब की लाश फंदे से झूल रही थी और राज्य के ज्यादातर सीनियर पुलिस अफसर उस वक्त उसी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थे, लिहाजा पुलिस वालों की मौजूदगी में ही आनन फानन में डीजीपी साहब की लाश फंदे से नीचे उतारी गई और फिर फौरन पुलिस वाले एम्बुलेंस के साथ नजदीक के सरकारी अस्पताल गोविंद बल्लभ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टरों को पता चलता है कि इस वक्त सीरियस हालत में किसी और को नहीं बल्कि त्रिपुरा के डीजीपी को लाया गया है, पूरा अस्पताल हरकत में आ जाता है। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब डीजीपी साहब को यहाँ लाया गया था। अस्पताल में लाते ही डॉक्टर उन्हें सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। सीपीआर यानी सीने पर हाथों से दबाव डालकर सांस को वापस लाने की कोशिश। इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टर डीजीपी साहब को वही सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद

0: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सचमुच डीजीपी अनुराग धनखड़ ने खुदकुशी की है तो उसकी वजह क्या है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अफसर पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अपने ही दफ्तर के अंदर खुदकुशी क्यों करेगा। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया। अगर ऐसा कोई सुसाइड नोट है तो हो सकता है बाद में सामने आए। अनुराग धनखड़ एक बेहद ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते थे। पूरे करियर में उनकी छवि बेदाग रही। करीब 3 दशक के अपने कार्यकाल में त्रिपुरा पुलिस के अलावा डेपुटेशन पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ साथ सीबीआई में भी वो काम कर चुके थे। धनखड़ सीबीआई में रहते हुए उस जांच टीम का हिस्सा थे जिसने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच की, जिसमें नीरव मोदी मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा 1984 के सिख दंगों की जांच में भी वो शामिल रहे। त्रिपुरा के डीजीपी बनने से पहले वो राज्य के इंटेलिजेंस के हेड थे। तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला, त्रिपुरा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

का जवाब जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह मिलो। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर का किया गठन, पेपर लीक मामलों की सुनवाई करेगी अदालत, पीएम मोदी ने सुबह ही किया था ऐलान। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने किया आगाह, कई जगहों पर कुछ अराजक तत्व शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने भड़काना चाहते हैं, हिंसा शांति ही हमारा मार्ग। उत्तर से पूर्व और पश्चिम तक जल प्रलय, गुजरात के वलसाड़ सूरत में बिगड़ी स्थिति, जम्मू कश्मीर में तबाही, असम में 41 लोगों की अब तक मौत।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। ये वक्त तो मुंबई मेट्रो का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। पेपर लीक मामलों की सुनवाई ये फास्ट ट्रैक अदालत अब करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज भी नियुक्त कर दिया है। ये कोर्ट पब्लिक परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों से इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा और ये कोर्ट का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ऐलान किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेपर लीक और इस तरह के केसेस की सुनवाई होगी। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। सृष्टि, क्या कहते हुए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसका गठन किया गया है?
2: जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज ही अनाउंस किया था कि जो पेपर लीक के मामले हैं उन्हें जल्द, उनमें जल्द सुनवाई हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो सेटअप की जाएंगी। उसके बाद जो पहला डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से देख रहे हैं, जिसमें पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मामले में मामले की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, एक कोर्ट बनाई है दिल्ली में। हाईकोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालिका को इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है। ये अदालत जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में काम करेगी और ये कोर्ट जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 2024 का, उसके तहत जो दर्ज मामले हैं उनकी सुनवाई करेगी। इसमें पेपर लीक परीक्षा में नकल, फर्जी तरीके से परीक्षा पास कराने और अन्य परीक्षा घोटालों से जुड़े जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी जो है उनका जो ट्रायल है वो किया जाएगा। ये जो फैसला है दिल्ली हाईकोर्ट का ये एकदम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और जैसा कि हम कह सकते हैं उम्मीद है कि इससे परीक्षाओं में जो गड़बड़ी से जुड़े मामले हैं उनकी सुनवाई तेजी से होगी, क्योंकि एक तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो सेटअप किया गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो दिल्ली में ही गठित किया गया है।
1: बहुत धन्यवाद सृष्टि। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का ट्रांसफर कर दिया गया। अब नरेश पाल गंगवार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नया शिक्षा सचिव बना दिया गया। विनीत जोशी को पंचायती राज सचिव बनाया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और सीजेपी के प्रदर्शन के बाद ये एक बड़ा निर्णय यहाँ पर किया गया है। शिक्षा विभाग में पंचायती राज सचिव बनाए गए हैं विनीत जोशी, उन्हें हटा दिया गया है। शिक्षा सचिव से नए शिक्षा सचिव हैं अब नरेश पाल गंगवार। आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसद पेपर लीक केस के विरोध में दिल्ली में गांधी स्मृति पहुंचे। राहुल और प्रियंका ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल और उद्धव पर जोरदार पलटवार किया।
3: जहां उद्धव और राज ठाकरे ने एक बार फिर पेपर लीक केस में साझा विरोध प्रदर्शन की हुंकार भरी है।
4: पंतप्रधानांनी आज एक ट्वीट केले, कारण त्यांनी जाऊन बोलायला काही हरकत नव्हती, म्हणजे याच्यामध्ये कमीपणा बाळगण्याचं काही कारण नाहीये। आपली मुलं आहेत, आपली जनता आहे, यांच्याबरोबर चर्चा करायला कमीपणा वाटण्याची गरज नाहीये। पहिल्या दिवशी जर का सरकारने यांच्याबरोबर चर्चेचे दरवाजे उघडले असते किंवा पहिल्या दिवशी जर का यांना बोलवलं असतं तर ही इथपर्यंत वेळ वाढली नसती।
3: वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कल मुंबई में कांग्रेस युवा मंच ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस, एमएनएस और शिवसेना यूडीटी का यूथ विंग सड़कों पर सरकार के खिलाफ संघर्ष करता दिखेगा।
5: हे आंदोलन अपन पाहता है 20 तारखेला जे चिघळलं त्यानंतर देशभरात एक वेगळी रागाची लाट ही निर्माण झालेली आहे की भाजप जनता पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी की ब्रिटिश जनता पार्टी आहे, कदाचित ब्रिटिश पेक्षा जास्ती अत्याचार ही भाजप करता है।
3: उधर दिल्ली में राहुल अगुवाई में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद गांधी स्मृति भवन पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को इंसाफ दिलाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संसद नहीं चलने देंगे।
6: जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया।
3: इधर राहुल गांधी गरजे तो उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल पर जोरदार प्रहार किया।
7: श्रीमान राहुल गांधी, इनको अपील करना चाहता हूँ और चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में, संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी।
3: लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि मोदी सरकार को आंदोलन की आवाज उछलने नहीं देंगे।
8: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है? इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते।
3: वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति ना चमकाए।
9: इसको सुधारने का काम जो है किया है जरूर, लेकिन आने वाले समय में ये सिस्टम जो है फुल प्रूफ कैसे हो, इसके लिए दोनों साइड से योगदान का बहुत ही जरूरी है। तो मैं विपक्ष से भी यहाँ पर कहना चाहूंगा, सिर्फ मुद्दे को भटकाए नहीं, मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करें, यहाँ पर आप सभी लोग आए, यहाँ पर चर्चा करें और इसके अंदर फ्रूटफुल चर्चा में से कुछ अच्छी बातें निकल के आएंगी।
3: सीएम फडणवीस ने कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर जाकर आंदोलन का समर्थन करने के चलते उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा।
7: देखिए, वो केवल अपनी पार्टी का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, उनकी पार्टी की जमीन छूट गई है, उनको लगता है इस आंदोलन के माध्यम से उस जमीन को वो वापस तलाशेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टीईटी का घोटाला उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ, उसमें कई लोग लिप्त पाए गए, उनके मंत्री भी लिप्त पाए गए। इतना ही नहीं तो उनके काल में हमने ये भी देखा कि पीछे से रिजल्ट में मार्ज बढ़ाकर रिजल्ट चेंज करके और लोगों को पास किया गया। अब किस मुंह से वे यहाँ पर इस बात के लिए बात कर रहे हैं, ये केवल राजनीतिक जुमला है।
3: इधर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी छात्र आंदोलन को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अनुपम खेर के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही मामलों में छात्र हमारी प्राथमिकता है, इसलिए उन्हें और उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और मुझे यकीन है कि वो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए छात्रों कृपया अपने माता पिता के पास और घर लौट जाइए। और सोनम वांगचुक, बस हो गया, इसे और आगे ना बढ़ाओ, अगर जरूरत पड़ी तो इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचा कर रखना और कुछ खा लो, अगर चाहो तो मैं घर से खाना भिजवा सकता हूँ। आज जंतर मंतर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी पहुंची, उन्होंने कहा कि ये छात्रों का आंदोलन है और न्याय और जवाबदेही के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आंदोलन को समर्थन करने पर मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, कुछ लोग रीलबाजी के लिए समर्थन करने पहुंचे हैं।
7: हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे मन से उतर रहे हो, पर कई सेलिब्रिटीज ऐसा भी ध्यान में आ रहा है कि रील बनाने के लिए या फिर एक प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है तो इसके कंधे पर चलकर हम कैसी पॉपुलैरिटी ले पाए, इसका भी प्रयास करें। सब प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कोई खराब होता है तो इस ठीक होता है।
3: फिलहाल पेपर लीक केस में दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है और लगातार हो रही जुबानी जंग से इस पर सियासी विराम भी लगता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
1: दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिसका विशेष असर नहीं दिखाई दिया। इसके साथ ही एमएनएस ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की, तो कल कांग्रेस एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का यूथ विंग पेपर लीक केस में मुंबई में सड़कों पर उतरेगा, तो कल कॉकरोच जनता पार्टी भी मुंबई में प्रदर्शन करेगी।

0: नीट पेपर लीक केस में छात्रों का आक्रोश कम होता नहीं दिख रहा और छात्रों की इसी नाराजगी में विपक्ष को आपदा में अवसर नजर आ रहा है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वॉर तेज हो गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एमएनएस ने पेपर लीक केस में प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन जैसे ही वहां छात्रों का हुजूम पहुंचने लगा, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। छात्रों के समर्थन में उतरे एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और मुंबई पुलिस के बीच जोरदार बहस भी हुई। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या यह तानाशाही है जो छात्र अपने खिलाफ हुए अन्याय की आवाज भी नहीं उठा सकते।
1: एक पब्लिक क्लास है, इथे 144 लागू होत नाही आणि सहयांची मोहीम शांतपणे घेतोय, उगीच वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहे, हे नाही अलाउड आहे, ते नाही अलाउड आहे, इकडे हुकुमशाही आहे का, हिटलर आहे का इथे कोण, तुम्ही वाटत्या त्या गोष्टींमध्ये आम्हाला अडवाल, आम्ही सटपला कसा मोर्चा काढायला दिला काल, आम्ही सटपने कसा काढला काल मोर्चा, भाजपला गुल्ली सूट दिली आहे का इथे।
0: वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन मामले का शोर बीएमसी में भी सुनाई दिया। पेपर लीक केस में हो रही सियासत को लेकर बीजेपी और विपक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। एक तरफ एमबीए पार्षद मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, तो दूसरी तरफ महायुति पार्षदों ने जोरदार पलटवार किया।
2: पूरे देश में जो छात्रों का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, उसका असर ब्रांड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे देखने के लिए मिल रहा है। बीएमसी के जनरल बॉडी के हाउस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, एक तरफ बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अशरफ आजमी हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर ऑफ द हाउस, उनसे बात करते हैं। पिछले दो घंटे से नारे लगाए जा रहे हैं, जनरल बॉडी भी डिसकंटिन्यू कर दी गई, क्या कहना है इस मामले?
3: ऐसा है कि आज सुबह से ही हम इस तैयारी में थे कि जैसे ही हाउस शुरू होगा हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। पूरे देश में जिस तरह से छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, और मुंबई में कल चेंबूर में अंबेडकर गार्डन के पास और दादर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से पुलिस ने और बाकी के लोगों ने और हमारी जानकारी के हिसाब से खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने भी शामिल होकर वहां बदसलूकी की है बच्चों के साथ, तो इस विषय को लेकर आज हमने चर्चा की मांग की। और चर्चा का मतलब ये था कि जब आप बांग्लादेशियों के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते हैं जो आपके प्रवीण में नहीं आता है, तो ये तो देश के बच्चों का मामला, यहाँ चर्चा होनी चाहिए।
2: ये एक तरफ आप कह सकते हैं कांग्रेस और यूबीटी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी महायुति के जो कॉर्पोरेटर नगर सेवक है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दरवाजा जो है बीच का बंद किया गया है, यहाँ पर दोनों नगर सेवक पार्टियों के आमने सामने,
4: उन्होंने पीछे जाने का हम लोग को बोला है कि हम लोग अभी जा रहे हैं, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले कबूल किया है कि अभी हम लोग हमारे कार्यालय में जाएंगे और ये आंदोलन बंद करेंगे, अभी उन्होंने कबूल किया है।
2: तो आमने सामने स्टैंड ऑफ है,
4: स्टैंड ऑफ है, नहीं जा रहे अभी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला दरेकर साहब ने कि हम लोग जाएंगे करके, तो वो लोग रिटर्न जा रहे हैं उनकी।
2: आप कह सकते हैं यहाँ पर एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है।
0: दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, हालांकि बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया।
5: मैं महाराष्ट्र की जनता के शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि इन्होंने जो बंद का ऐलान हम लोग ने किया था, वामपंथी दल है, कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने इसको समर्थन दिया था, उसमें सहयोग हुए, सहभाग हुए, और इस बंद को जो है यशस्वी करके केंद्र सरकार को अपनी बात उन्होंने बता दी कि जो आप विद्यार्थियों के साथ कर रहे हो वो हम सहमत नहीं है।
0: बारिश के दौरान भी मुंबई पुलिस के जवान अलर्ट मोड में नजर आए। पुलिस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के कई नेताओं को नोटिस जारी किए हैं।
6: वंचित बहुजन अघाड़ी का आज महाराष्ट्र में पुकारा गया बंद पूर्ण हुआ। वंचित बहुजन अघाड़ी के मुताबिक हिंसक घटनाएं कहीं भी नहीं घटी और साथ ही सफलतापूर्वक उनका जो बंद है वो पूरा हुआ। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी है, आने वाले दिनों में अगर छात्रों की मांगे और छात्रों पर लाठी बरसाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा और भी तीव्र आंदोलन करने का इशारा उनके नेताओं द्वारा दिया गया है।
0: नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस वैन को रोकने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर रिया अहिर नाम की इस महिला की हिम्मत की तारीफ हो रही है।
7: मुंबई पुलिस की वैन के ठीक सामने एक महिला हाथ आगे करके इस तरह से एक खड़ी है और उसका एक वीडियो और फोटोग्राफ काफी वायरल हो गया है। और आखिर वो कौन है, वो महिला क्या कर रही थी शिवाजी पार्क पर, क्यों प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आई थी, ये सब उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिया खुद मौजूद हैं। रिया, सबसे पहले आप मतलब कैसा लग रहा है? पहले तो सब लोग सुपर वुमन से लेके मतलब बहुत कुछ आपको बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं?
8: मैं सुबह 5:30 बजे सोई हूँ क्योंकि वो सब प्रोसेस करने में मुझे काफी वक्त लगा। मैं मुझे खुद अंदाजा नहीं था ये मैंने क्या किया है उस वक्त, क्योंकि मेरी तो आदत है, मेरी आवाज बहुत बुलंद है मेरी थिएटर की वजह से, तो जहां भी गलत होता है मैं अपनी बुलंद आवाज लेकर पहुंच जाती हूँ। तो उसके वजह से मुझे नहीं लगा था मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, बट जब 10 बजे 9 बजे से मुझे सारी मैसेजेस आने लगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिट होने लगा कि क्या ओके ये मैंने कुछ किया है। तो 5:30 बजे तो मैं सोई हूँ और उसके बाद उठ के जो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, इट्स आई एम वेरी हम्बल्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि बस मेरा छोटा सा हाथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया का है। तो वो जो हाथ है वो जो सरकार पर इतना भारी पड़ा है कि वो हम सब रियलाइज कर रहे हैं, तो अंदर से गदगद फील हो रहा है।
7: कैमरा किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
9: मुंबई में बीएमसी के अंदर आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक केस में विपक्ष ने नारेबाजी की जिसके विरोध में बीजेपी पार्षदों ने भी जवाबी नारे लगाए, लेकिन मेयर रितु तावड़े ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्षदों ने टुकड़े टुकड़े वाले विवादित नारे लगाए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मेयर रितु झूठ बोल रही हैं, उन्होंने ऐसे नारे नहीं लगाए।
10: अभी इसके इंक्वायरी में जरूर करूंगी क्योंकि क्या होता है हाउस कंप्लीट होने के बाद हमारे जो सीसीटीवी कैमरेज क्लोज हो जाते हैं, लेकिन क्लोज होने के बाद फिर मेरा हाउस जब भी वंदे जनगण होने के बाद हाउस के कैमरे क्लोज हो जाते हैं, तो इसके लिए जो नारे उनके कंटिन्यू चल रहे थे, मतलब मैं मेरा कामकाज खत्म करने के बावजूद मैं बाहर निकल रही थी तभी उनके नारे कंटिन्यू चल रहे थे, वहां पे भारत माता के खिलाफ चल रहे थे, ये बहुत गलत चीज है। अभी वो पूरी तैयारी के साथ अंदर आते हैं, शायद उनका वो होगा भी क्योंकि ऐसे शब्द उनको जो बोलने हैं भारत माता के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ, हमारे जो पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ जो बात करनी है, तो ऐसे में उनको भी मालूम है कि सीसीटीवी कैमरे चालू है और उसके अंडर उसमें हम दिखाई देंगे, तो शायद वो उतने है एक्सपर्ट कि उन्होंने जैसे ही हमारा हाउस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो नारेबाजी स्टार्ट की। वहां पे सुन के बहुत बुरा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो ऐसे भारत के बारे में इस तरह से वक्तव्य करना मैं उसका निषेध करती हूँ।
11: इसका मोडस ऑपरेंडी मुझे लगता है आपको उन्हीं को पूछना पड़ेगा कि सरासर झूठ है, और अगर झूठ बोलने की प्रथा भाजपा में चलने वाली है या वो चलाने वाली है तो ये प्रश्न उनको पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आप पूरा रिकॉर्डिंग निकालिए और अगर ये सच निकला ना तो हम इस्तीफा देंगे, और अगर ये झूठ निकला तो महापौर को इस्तीफा देना चाहिए।
9: एक बड़ी खबर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार की बातचीत कल होगी, यह खबर आ चुकी है। पहले ही जेपी नड्डा न्योता दे चुके थे और सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन एनडीए के प्रतिनिधि मंडल के बीच कल बातचीत होगी, केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत होगी। क्या जेपी नड्डा ये बातचीत करेंगे या कुछ और केंद्रीय मंत्री होंगे, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर आ गई है कि कल बातचीत होगी और ये बातचीत सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच होगी। इस बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि छात्रों के आड़ में जो हिंसक आंदोलन हो रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश।
12: सीजेपी का चल रहा आंदोलन और उसको अपोजिशन पार्टीज का मिल रहा समर्थन पे बात करने के लिए मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आप इस प्रोटेस्ट को बता रहे हैं जो इस वक्त पूरे देश भर में हो रहा है, क्या इसका कारण?
13: भारत जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कुछ भारत विरोधी ताकतें जो है वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा गया है उनकी तरफ से कि इस देश के जो विरोधी पक्ष है वो निष्प्रभ हो गए हैं, इनइफेक्टिव हो गए, और इसीलिए थर्ड पार्टी एलिमेंट्स को ये काम उन्होंने दिया है। उन्होंने ये काम आउटसोर्स किया है कुछ लोगों को। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसमें अभिजीत दिपके जैसे लोग है, इसमें ध्रुव राठी जैसे लोग है, या अमेरिका में बैठे हुए गजाबाऊ जैसे लोग है जो बाहर बैठकर, देश के बाहर बैठकर देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उस आग में तेल डालने का काम ये लोग करते हैं, फेक नरेटिव फैलाने का काम ये लोग करते हैं। और विद्यार्थियों की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस पूरे आंदोलन का ताबा लिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि सीजेपी को सपोर्ट किसने किया है। सीजेपी को सपोर्ट पनून, खलिस्तानवादी पनून ने किया है। सीजेपी को सपोर्ट उन संगठनों ने और उन व्यक्तियों ने किया है जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस प्रकार के नारे दिए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार की घोषणाएं जिन लोगों ने दी थी वही लोग आज सीजेपी को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं।
9: क्यों और किसे बेहद चिंताजनक, अन्ना हजारे ने बताया। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में. खबर अन्ना हजारे की. लोकपाल को लेकर कांग्रेस के विरोध में आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई को बेहद चिंताजनक कहा है. अन्ना हजारे ने कहा, किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि अन्य मंत्रियों को जवाबदेही का कड़ा संदेश मिलेगा, शासन व्यवस्था में सुधार होगा. आज तक ने अन्ना हजारे से बात की.
3: मोदी जी को आपने खत लिखा है और उसमें आपका कहना है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए.
4: मोदी जी को इसलिए लिखा है, सर्वोच्च नेता है, तो उनको ये समझना चाहिए हिंसा ठीक नहीं है, अहिंसा के मार्ग से हम चलना चाहिए. इसलिए मैं लेटर लिखा था कि अहिंसा के मार्ग से ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अहिंसा है.
3: लेकिन रास्ते पर हिंसा हो गई, पुलिस ने लाठीमारी की, सब कुछ सामने आ रहा है,
4: ये गलत है. मेरे भाई सैंक्शन हो गए, कई लाठीचार्ज नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा सबसे हमारे देश की नीति अहिंसक होना चाहिए. अहिंसक हिंसा नहीं, हिंसा नहीं.
3: क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया वो गलत है?
4: अभी सरकार क्या कर रहे हो इसके बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन जो हुआ वो गलत हो गया.
2: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही. आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
0: and
6: down.
0: Talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
8: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
9: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया. हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
8: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.

0: बड़ी खबर इस समय आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है पेपर लीक को लेकर, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर अपनी सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों को बताया गया है, कहा गया है। उन्होंने इस वीडियो संदेश में आज प्रधानमंत्री जिस तरह से कहा था कि फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाएगा, फास्ट ट्रैक अदालत का गठन भी कर दिया गया है, तो सुनिए क्या कहा वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने।
1: बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया, और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया, और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: मांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मांशु, प्रधानमंत्री का ये वीडियो संदेश क्या संदेश दे रहा है?
3: देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से जुड़ा कोई नया कानून जो है वो लाया जा सकता है, जिसको संसद के अगले सप्ताह जब शुरू होगी उस बिल को जो है संसद के दोनों ही सदनों से जो है मंजूरी मतलब पास होने के बाद जो है उसको कानूनी जो है वो रूप बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। यानी कि और स्ट्रिक्ट एक्शन पेपर लीक मामले पर जो है वो हो, उसको लेकर एक नया कानून जो है वो लाने की कोशिश जो है वो सरकार की है। और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने अभी तक कड़े से कड़े कदम उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। उसके बाद अब एक नई एलिमेंट जो है वो नया बिल जो है कल कैबिनेट पे ला सकते हैं और उसको संसद के अगले सप्ताह जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें अगले सप्ताह जो है संसद के दोनों सदनों से उस बिल को पास कर उसको कानून का रूप देंगे। अभी तक जो पेपर लीक मामले को लेकर कानून है उसमें 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है, इसको और बढ़ाया जा सकता है, इसमें और जो है कड़ी सजा हो, इसके नए जो है प्रोविजन जो है उस बिल में शामिल किए जा सकते हैं। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है, अब कल क्या बिल आएगा उसमें क्या क्या क्लॉजेस होंगे, क्या क्या प्रोविजन होंगे, सही वो कल कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस होगा। लेकिन इतना जरूर है सरकार पेपर लीक मामले पर बड़े कदम जो है वो उठाना चाहती है और इसीलिए आप देखिए देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश कैबिनेट बैठक से पहले एक बड़ा मैसेज जो है वो देश की जनता के सामने।
2: हिमांशु, एक बात और कही पीएम मोदी ने अपने संदेश में। उन्होंने कहा कि मैंने सुबह ही कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और इसका गठन भी हो गया। क्या यहाँ पर बताना चाहते हैं पीएम मोदी?
3: देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सुबह उन्होंने कहा कि गठन किया जाएगा, इसको लेकर जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दे दिए गए हैं और देर शाम जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, कोलकाता में भी, मध्य प्रदेश में भी और मुंबई में भी। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री बिल्कुल चाहते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, डे टू डे हेयरिंग हो, जिससे जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द जो है सजा मिले। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होता है तो आप और हम जानते हैं कि लीगल प्रोविजन किस तरीके के होते हैं, एक हेयरिंग के बाद दूसरी हेयरिंग में जो है एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच में बहुत लंबा गैप होता है जिससे जो है जस्टिस मिलने में वो समय लगता है और दोषियों को सजा मिलने में समय लगता है। तो इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए डे टू डे हेयरिंग जो है उसका प्रोविजन रखा गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर।
2: हिमांशु, छात्रों को, उनके माता पिता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कोई संदेश दिया है? उन्होंने एक जगह कहा है अपने इस वीडियो संदेश में कि बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत पीड़ादायक है पेपर लीक।
3: देखिए, क्योंकि 22 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर दिया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और जिन पेपर लीक से एक ना सिर्फ बच्चे के मानसिक जो है उस पे इम्पैक्ट आता है बल्कि पूरे परिवार पे आता है, क्योंकि सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं करता, पूरा परिवार उसमें लगता है। इस बात को प्रधानमंत्री मेंशन करना चाहते हैं कि वो इस दर्द को समझते हैं और इसीलिए जो है लगातार पेपर लीक मामले को लेकर वो सजग हैं, जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठा रहे हैं। जैसा एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में भी जो है प्रधानमंत्री ने कहा था, ये एक घोर पाप है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ही पता चला कार्रवाई की गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब चूंकि फास्ट कोर्ट बना है और उसके बाद दूसरा एक्शन जो है वो कल कैबिनेट के अंदर जो नया बिल आएगा, अमेंडमेंट बिल, उसमें देखने को मिलेगा।
2: बहुत धन्यवाद हिमांशु, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। और हिमांशु एक मिनट रुकिएगा, एक कुछ और पूछना चाहते हैं हम। क्या हिमांशु, हिमांशु क्या जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने गए थे और जितेंद्र सिंह भी साथ में, इस तरह की कोई खबर है आपके पास अभी शाम के वक्त?
3: देखिए, अब से अभी जो है जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों सोनम वांगचुक से मुलाकात कर रहे हैं मेदांता में और उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक को समाप्त कीजिए, सरकार जो भी एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाने हैं वो उठा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र सुबह प्रधानमंत्री ने किया, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुका है, कल कैबिनेट के अंदर अमेंडमेंट बिल जो है पेपर लीक पर आएगा, उसमें नए प्रोविजंस होंगे जिससे जो भी पेपर लीक मामले में कॉन्स्पिरेसी के अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस सिस्टम को और फुल प्रूफ बनाया जाएगा जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसे मामले ना हो। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये भी खबर आ रही है कि कल दोपहर 12 बजे के बाद 12:30 बजे के करीब जो है सीजेपी के जो प्रोटेस्टर है
2: उनसे मुलाकात हो रही है। हिमांशु रुकिए आप कुछ देर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि काफी गहमा गहमी हलचल इस समय चल रही है। अभी इस समय जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा दोनों सोनम वांगचुक से हरियाणा के मेदांता हॉस्पिटल में मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर सोनम वांगचुक भर्ती है, उनका अनशन चल रहा है। उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने सरकार से अपनी मांगे रख दी थी, 3 मांगे उन्होंने रखी थी। अब ऐसा लगता है कि सरकार जबरदस्त एक्शन में यहां पर है। कल जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी होनी है, जेपी नड्डा ने ये न्योता पहले ही उन्हें दे दिया था, तो जबरदस्त हलचल चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की बात की थी, शाम तक वो कोर्ट का गठन हो गया, अभी वो खबर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके कहा कि ये पीड़ादायक है छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सख्त कानून हम बनाएंगे, सोमवार को इसकी शुरुआत संसद में हो जाएगी। और इस समय अब जबकि रात के 12:00 मध्य रात्रि पश्चात के 12:10 हुए हैं, दो मंत्रियों की सोनम वांगचुक से मुलाकात हो रही है अभी मेदांता हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस सबसे कुछ देर पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, एक बार आइए फिर से हम आपको वो पूरा संदेश सुनवाते हैं।
1: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 2,200,000 जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: और अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हमारी साथी अंजना के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में पेपर लीक पर मचे घमासान के बारे में बताएंगे, जहां एक नई रात के साथ हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है और ये ऐलान है कि कल देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और ये अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता तक फैल चुका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सीजेपी का साफ कहना है कि यह आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हालात की गंभीरता देखते हुए गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसी बीच राहुल गांधी अचानक अपने घर से निकले। प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ जब वो गांधी स्मृति जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनकी बस को जगह जगह पर रोका। तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद गांधी स्मारक पहुंच गए। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी कर कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6:30 बजे ही बंद करने की अपील की है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी एक्शन से इनकार किया है। आज आपको दिल्ली में मचे बवाल से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर लीक पर देश में कितने जंतर मंतर बन गए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ आज शाम को गांधी स्मृति भवन तक मार्च निकाला और ये कहा कि जब इस देश के छात्र सड़कों पर हैं तब वो अपने घरों में बैठकर इसे सिर्फ देख नहीं सकते।
1: राहुल जी दोनों तरफ बैरिकेड है, आपके घर के दोनों तरफ बैरिकेड है। राहुल जी
2: आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे हो जाइए, बाकी सब लोग पीछे हो जाइए।
3: थोड़ा पीछे कर लेंगे, कैमरा
4: जूते उतार लो भैया, जूते उतार लो।
0: ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने अचानक कोई फैसला लेकर सबको चौंकाया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना मचे कि कांग्रेस ने उस गांधी स्मृति भवन जाने की योजना कैसे बनाई जो जंतर मंतर के आंदोलन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जंतर मंतर जा सकते हैं, और इसके पीछे एक कारण यह था कि आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उस वक्त यह खबर आई कि इस बैठक में विपक्ष के आगे की रणनीति, संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा हुई है। इसके बाद सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों नेता वहां से निकल गए। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात संसद से जुड़े मुद्दों और विपक्ष की मांगों को लेकर हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने फैसला किया कि शाम 6:00 बजे राहुल गांधी के आवास पर उसके लोकसभा सांसदों की एक बैठक होगी। फिर सांसद पहुंचते हैं बैठक के लिए और खबर यही आती है कि बड़ी बैठक हो रही है, और जब यह खबर आई कि बैठक बुलाई गई है ताकि सभी सांसदों को इकट्ठा किया जा सके एक जगह पर और फिर गांधी स्मृति भवन जाने की योजना बनाई जाए, शाम 5:43 पर कई बसें राहुल गांधी के घर पहुंची और इस दौरान बसों को देखकर यही अनुमान लगाया गया कि इस बार राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ जंतर मंतर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के घर पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो यहां चाय पीने आए हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए राहुल गांधी के सरकारी आवास के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। आज शाम 6:37 पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लेकर वहां एक बस पहुंची। आरएएफ आमतौर पर भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए तैनात की जाती है, और यहां भी शायद यही सोचकर आरएएफ जवानों को भेजा गया कि कांग्रेस को नया धरना, विरोध प्रदर्शन कुछ करने वाली है। या फिर राहुल गांधी जंतर मंतर जा सकते हैं, ये खबर भी चल रही थी। लेकिन इसी के बाद शाम 6:53 पर यह खबर आई

0: कि इंडिया ब्लॉक के सांसद गांधी स्मृति के लिए निकले हैं। वो वहां उन छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। हालांकि यहां कई लोग इसे लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता जंतर मंतर ना जाकर अपना एक अलग आंदोलन क्यों खड़ा कर रहे हैं। कई लोग तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि अब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल पड़ा है। देखिए, ये बात सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी कल हमारे साथ इंटरव्यू में कही थी कि कांग्रेस के नेता जंतर मंतर से दूरी क्यों बना रहे हैं। सुनिए।
1: With the purity of heart and whoever has comes with their own agendas will fall by the wayside because this movement out of sincerity and purity. We are aligned with the future of the nation and we are aligned with every political party, every well-meaning individual that wants to take India to the next level. Mm-hmm. And as was evident from the protest outside PM's house yesterday, that everybody knows that it lacks sincerity. You know, it would have been more sincere if it had been done by joining hands at Jantar Mantar. So the public cannot be fooled.
0: अब हम ये समझेंगे कि क्या आज जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है और आखिर ये चर्चा क्यों चल पड़ी है। देखिए, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें ये कहा गया कि आज यानी 23 जुलाई को कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और जितने भी होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वहां पर हैं, वो शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाए। ये अपील न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर की गई, लेकिन इस पर कुछ विपक्षी नेताओं ने कहते हुए सवाल उठा दिए हैं कि अपील सिर्फ आज के लिए ही क्यों की गई और क्या जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। ये सारे दावे सोशल मीडिया पर तेजी से चलने लगे कि कुछ साजिश हो रही है, कुछ विपक्षी नेताओं ने ऐसा होने की आशंका जताई और बात बढ़ती चली गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज रात, अब देख रहे हैं, लगभग 9:05 हो रहे हैं, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है। कनॉट प्लेस में हिंसा और उपद्रव की कोई घटना नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अगर आगे इस तरह की कोई घटना होती है या जंतर मंतर पर कोई नया एक्शन होता है या नई हलचल दिखती है तो हम उसके बारे में आपको सीधा लाइव जरूर आज तक पर दिखाएंगे। लेकिन मौजूदा अपडेट यह है कि जिस तरह की आशंकाएं जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर जा रही थी कि आज शाम कुछ बड़ा होने वाला है, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह एडवाइजरी कनॉट प्लेस में मौजूद दफ्तरों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को लेकर जारी की और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार कनॉट प्लेस में हिंसा, उपद्रव, कई घटनाएं हुई हैं और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि इन सभी घटनाओं में कई दुकानों पर पथराव हुआ है। यानी ऐसा संभव है कि हिंसा को देखते हुए कनॉट प्लेस में इन दुकानों, दफ्तरों को आज शाम 6:30 बजे तक बंद कर देने के लिए कहा गया और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कल रात करीब 8:15 पर उसे ये खबर मिली कि कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर इकट्ठा हुई भीड़ हंगामा कर रही है। इनमें भी हमने आपको दिखाया था कल क्या हुआ था। सबसे ज्यादा तनाव कनॉट प्लेस के पार्क होटल के बाहर हो रहा था। प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों पर पानी की बॉटल्स शुरू में फेंक रहे थे। पुलिस का ऐसा दावा है कि जब उसने इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। इस पथराव के बाद भी पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट कराई गई कि लोग वहां से चले जाएं, पथराव को बंद कर दें। लेकिन आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उन्हें मारपीट के बाद नीचे गिरा दिया। इस घटना के जिन वीडियो की पुष्टि हो चुकी है उनमें पुलिसकर्मियों पर हमला करने ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरों को कपड़े से छिपाया हुआ था। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोग प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके चेहरों पर कपड़ा था। लेकिन जब यह हमला हो गया तब इसी दौरान कई युवा इन्हीं घायल पुलिसकर्मियों की मदद करते हुए नजर आए और इन युवाओं के जो मदद कर रहे थे उनके चेहरों पर कोई मास्क या कपड़ा नहीं था। इससे यह आशंका हो जाती है, बढ़ जाती है कि प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर कुछ लोग हिंसा और उपद्रव का माहौल बनाना चाहते हैं। और जब आप भी कनॉट प्लेस से आई 22 जुलाई की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली में इस वक्त दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद है, जहां हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी जंतर मंतर से कुछ दूर कनॉट प्लेस में

0: जहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, जहां हालात बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन इसी जंतर मंतर से कुछ दूर कनॉट प्लेस में कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचते हैं। इसमें भी इन लोगों द्वारा पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि ये लोग आखिर है कौन। देखिए, कल रात जब कनॉट प्लेस में पुलिस पर यह हमला हुआ, तब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी जंतर मंतर के मंच से यह कहा कि इस हिंसा का छात्रों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है और यह आंदोलन शांति और अहिंसा से चलेगा। देखिए,
1: हम लोगों को यहाँ पर शांति से बने रहना है। बीजेपी वाले को झूठे भेजेंगे आपको उकसाने के लिए। आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको शांति से बैठे रहना है। पीस एंड नॉन वायलेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो एक महीना सस्टेन करा है, एक महीना जो चला है, वो इसीलिए चला है कि फ्यूचर पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है।
0: कॉकरोच जनता पार्टी दावा कर रही है कि बाकी दिनों के मुकाबले आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने भी बाकी दिनों के मुकाबले आज नई दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में अपनी सुरक्षा को बढ़ाया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज लगातार दूसरे दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा। ये वही मेट्रो स्टेशन है जो कल शाम को दिल्ली मेट्रो ने खोल दिए थे, लेकिन आज सुबह 7 बजे ये जानकारी दी गई कि इन मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं और ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन भी शामिल है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जताया था। और इस विरोध पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट स्टेशन नहीं खोला गया तो इस मामले में दखल देंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसका कोई अपडेट अभी आया नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे भी मुद्दा बनाकर ये पूछ रहे हैं कि अगर मेट्रो स्टेशन, दुकानों और दफ्तर बंद कराए गए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या आज रात कुछ होने वाला है। हालांकि हम आपको यहां फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सभी अभी तक जितनी भी बातें हैं ये सब सिर्फ आशंकाएं हैं, और अब भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक जंतर मंतर पर हालात सामान्य हैं। कहीं कोई पुलिस का एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। कोई खबर आती है आज तक लाइव आपको बताएगा, आगे ऐसा कुछ होता है तो हम सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे और वहीं की तस्वीरें दिखाएंगे।
2: मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के करीब है, उनके लिए यह आदेश आया था कि वहां के एंट्री एग्जिट सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे।
3: बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और जो भी मेट्रो स्टेशन के भीतर है वो इस एग्जिट से बाहर नहीं आ सकते।
4: ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं।
0: इसी बीच आज ये दावा भी हुआ कि दिल्ली पुलिस को एनएसए कानून के तहत कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं, जिसके आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि क्या सरकार अब एनएसए कानून लगाकर इस विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहती है। ये आरोप इसलिए लगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक सख्त कानून माना जाता है, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को ये कहते हुए हिरासत में ले सकती है कि अगर उसे बाहर छोड़ा गया तो वो कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए एक

0: बड़ा खतरा बन सकता है। अब तक एनएसए उन्हीं लोगों पर लगा है जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, लेकिन यहां आरोप लगा कि जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को एनएसए कानून के तहत कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को फेक न्यूज बताया है। पुलिस का कहना है कि एनएसए की शक्तियां इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नहीं बढ़ाई गई हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर 3 महीने में होती है, यानी हर 3 महीने में एनएसए कानून की शक्तियां दिल्ली पुलिस के लिए रिन्यू की जाती हैं, और इस बार भी वही हुआ है जिसका इस आंदोलन या इसमें जो प्रदर्शनकारी शामिल हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिस पर प्रदर्शनकारी विश्वास नहीं कर रहे, और अब भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाना चाहती है। यहां इन तस्वीरों को भी देखना जरूरी है जो आज दोपहर 12:30 बजे जंतर मंतर से आई थी। आरोप है कि उस वक्त जंतर मंतर पर आए निहंग सिखों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। झड़प का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड से आगे बढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब निहंग सिखों ने इसका विरोध किया तो वहां ये झड़प शुरू हो गई। और आप भी इन तस्वीरों को देखिए। खैर, अब ये देखिए कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के और कितने राज्यों में जंतर मंतर जैसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब तक देश के 9 बड़े शहरों में ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें मुंबई, नासिक, देहरादून, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलुरु, राजस्थान, बांसवाड़ा, पटना, मिजोरम का आइजवाल शहर शामिल है। इन सभी शहरों में लोगों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। इनमें भी मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अब तक पुलिस कुल 13 FIR दर्ज कर चुकी है, और ये दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की कुल FIR से भी ज्यादा है। इन मामलों में करीब 400 लोगों को आरोपी बनाया गया है, और पुलिस ने कहा है कि उसकी जांच अब भी जारी है। जिन विरोध प्रदर्शनों को लेकर यह FIR दर्ज हुई वो मुंबई के शिवाजी पार्क, चैत्य भूमि, चेंबूर, शिवसेना भवन के बाहर हुए थे, जिनमें कई अभिनेता और कलाकार भी शामिल हुए। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि इन जगहों पर विरोध प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। यहां इस तस्वीर की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी ने पुलिस की वैन को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा मुंबई में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ युवाओं ने एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा और ये धमकी भी दी कि अगर वो इस प्रदर्शन में फिर से शामिल होने के लिए आए तो उन्हें ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा। देखिए,
1: समझे कसम से घर पे
2: इधर वापिस अगर किधर मिला
1: नहीं नहीं नहीं,
2: तो
1: नहीं
2: फिर मेरे साथ बेकार आदमी
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर में।
1: अरे नहीं नहीं,
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं गया जिंदगी गया।
3: अरे जामीन वो तो सर वो तो और ही खराब,
2: तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी।
3: ठीक है सर, जाएंगे।
2: मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: तुम लोग को।
0: जिस पुलिसकर्मी ने छात्रों को यह धमकी दी थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है, और इस मामले में जांच कराने की बात भी कह दी गई है। दूसरी तरफ बिहार के पटना से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन पर पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले लोग चिंता जता रहे हैं। पटना में आज जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे तो उन्होंने पुलिस से ये पूछा कि क्या उसके पास आंसू गैस यानी टियर गैस नहीं है। ऐसा इसलिए पूछा गया ताकि ये लोग भी दिल्ली जैसी पुलिस या कार्रवाई पटना में दिखा सके और उसके वीडियोस बने। इस घटना पर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले कई लोग चिंता जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं। लोगों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए, ये हमारे बच्चों की, उनकी मेहनत, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए,
4: ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, पूछो व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे।
5: वाटर कैनन का
4: पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है।

0: पटना में भी पुलिस ने अब तक 3 अलग अलग थानों में कुल 268 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है और कुल 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहां भी पुलिस की इस कार्रवाई को लोग असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। आप खुद देखिए जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में कैसे देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं और आज सुबह 11 से 1 बजे तक अहिल्यानगर के गांधी स्टैचू के सामने मौन आंदोलन के लिए बैठे। इसके बाद वो अपने गांव रालेगांज सिद्धि के लिए रवाना हो गए। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे का हल निकाले। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। आज का एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बातचीत कैसे होगी। आज कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है 34th और सरकार ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हम आपको पहले ये बताते हैं कि सरकार इस पर कह क्या रही है। सरकार ने ये कहा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। प्रदर्शनकारी जब चाहे तब सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार रहेगी। बातचीत का वक्त भी प्रदर्शनकारी युवा खुद चुन सकते हैं। बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को जितना वक्त चाहिए वो भी सरकार देने के लिए तैयार है। ये भी कहा गया है कि सरकार की कोई शर्त नहीं है। वो आंदोलन के अलावा बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, जो भी मुद्दे छात्र उठाएं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। पिछले एक दिन में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए 4 बार प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि कहां बातचीत होगी या नहीं होगी ये उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन मामला कैसे फंसा है वो समझिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर भी आ सकते हैं या ये मुलाकात उनके दफ्तर में भी हो सकती है। अब ये सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन इन पर कांग्रेस जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने यह बात मानी है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। वजह, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत तभी हो सकती है जब सरकार ये मान ले कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। ये भी कहा गया है कि अगर सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी है तो वो जंतर मंतर के आसपास कोई न्यूट्रल जगह ढूंढे। यानी कांग्रेस जनता पार्टी के नेता अब जेपी नड्डा के घर या दफ्तर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये बातचीत भी उसी स्थिति में होनी चाहिए जब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ठोस फैसले लेने के लिए तैयार हो। यानी अभिजीत दीपके ये चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से कोई नेता उनसे बातचीत करने आए तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लिखित गारंटी दें। और इन्हीं मांगों के बीच अभी ये बातचीत पूरी तरह से फंस गई। और वहीं अब कांग्रेस जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि कल से वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सुनिए,
1: आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी।
2: कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का, झांसे ये सब कुछ। जनता झांसों में ना पड़े, हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे।
1: जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।
2: हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहां पे मिल लेंगे।
1: धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है।
2: सरकार को ये सब नाटक रचने से अच्छा उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे प्रदर्शनकारी धूप में बारिश में खड़े हैं, लाखों की संख्या में खड़े हैं एंड खड़े ही रहेंगे एंड ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये सब में एनर्जी ना डाल के वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करें एंड सीधा सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है।
0: तो आपने सुना किस तरह से पूरी बातचीत करने की कोशिश हो रही है और इधर से सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है। और कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि एक तो आप लिखित में दीजिए कि आप इस्तीफा लेंगे, दूसरा आप कोई जंतर मंतर के पास की जगह पर आइए। एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आज ऐलान किया है। आज दिन भर चर्चा इसके इर्द गिर्द होती रही क्योंकि ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तरीका एक है और वो है फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को विशेष अदालत भी कहा जाता है। ये ऐसी अदालतें होती हैं जो खास तरह के मामलों में जल्द सुनवाई और जल्द फैसला देने का काम करती है। पेपर लीक के मामलों में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। हमारे देश में साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिनमें कम से कम 1,00,000 बच्चे शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 पेपर लीक के मामलों में सिर्फ दो ही मामले ऐसे रहे जिनमें अदालत का फैसला आया। ये बात हमने कल भी आपके सामने उठाया था। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल गई या कोर्ट आज तक भी इन मामलों में इंसाफ नहीं कर पाई है। सोचिए, अगर पेपर लीक होते रहेंगे, अदालतों में दोषियों को सजा नहीं होगी, तो ये चोरी रुकेगी कैसे? इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। ये कोर्ट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बनाई जा सकती है और इनमें भी बड़ी बात यह है कि ये अदालतें सभी पेपर लीक के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगी। जो परीक्षाएं केंद्रीय स्तर की होंगी उन्हें ही इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई होगी। जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, सरकारी बैंकों में भर्ती की परीक्षा है और जो परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती हैं, उन्हीं के पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करके दोषियों को सजा सुनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई या मान लीजिए कर्नाटक सरकार ने कराई या तमिलनाडु सरकार ने कराई, वहां अगर उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इन्हीं राज्य सरकारों को अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होंगी और यही तरीका है, राज्य अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती हैं। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी लगभग सभी राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं लेकिन कहीं भी इन मामलों में जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या ऐसे राज्य हो जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। यहां यह भी समझना होगा कि हमारे देश में अब तक फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रदर्शन कैसा रहा है। उदाहरण के लिए रेप और पॉक्सो, आपको याद होगा जैसा हमने कल भी आपको बताया था, निर्भया कांड के बाद जब पूरा देश आंदोलित था, पूरे इंडिया गेट पर जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है लोगों का हुजूम उतरा था इंसाफ के लिए हाथ में मोमबत्ती लेकर, तब अंत में यह फैसला लिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है। तो फिर आज मुद्दा यही है कि रेप, पॉक्सो ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान है, तो यहां पर क्या रेट है? ये अदालतें हर महीने औसतन लगभग 9.5 मामलों का निपटारा करती हैं, जबकि सामान्य अदालतें हर महीने औसतन 3.3 मामलों का निपटारा कर पाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य अदालतों के मुकाबले इन फास्ट ट्रैक अदालतों की फैसला सुनाने की जो गति है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। 30 जून 2025 तक हमारे देश में कुल 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही थी जिनके संचालन पर केंद्र सरकार ने अकेले 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से न्याय की गारंटी नहीं मिलती और यह भी एक सच्चाई है कि निर्भया कांड में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत हुई और निर्भया कांड के ही अंतिम फैसला आने में 7 साल लग गए। अगर पुलिस जांच धीमी है, फोरेंसिक रिपोर्ट देर से आती है, गवाह समय पर नहीं आते तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जल्दी फैसला नहीं दे सकते। यानी ऐसी अदालतों के साथ ये भी जरूरी है कि हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी जो जांच की व्यवस्था है वो ऐसे मामलों की जांच की गंभीरता को समझे और फिर उसका निपटारा करे। ये मसले भी कह रहे हैं क्योंकि अब तक पेपर लीक के कई मामलों में पुलिस की जांच इतनी कमजोर रही है कि आरोपियों को अदालतों से फौरन जमानत मिल गई, बाहर आए और इन लोगों ने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, फिर आरोपी बने, फिर छूट गए। यानी पुलिस की जांच पर काफी कुछ निर्भर करता है और कोर्ट के फैसलों पर निर्भर करता है छात्रों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस मामले को टोटालिटी में देखना होगा, यानी यह समझना होगा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है, सभी राज्यों की सरकारों को इसके लिए गंभीर होना होगा। जैसे आज भी देखिए, आज उत्तराखंड में खबर आई है, उत्तराखंड से खबर आई कि आज वहां पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है। झारखंड में फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा हुई जिसमें 75% छात्र इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी बहुत देर से दी गई। कई छात्रों को परीक्षा से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ईमेल मिला, ये झारखंड की खबर है, और बहुत से छात्रों को उनके गृह जिले की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र में बुलाया गया, संभव ही नहीं था। सोचिए, इस परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले 3,22,000 छात्रों में से 2,36,000 छात्र सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे सके क्योंकि सरकार और सिस्टम ने अव्यवस्था का पूरा जाल बुना हुआ था। यह बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, उत्तराखंड जो हमने आपको बताया, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, खबर आई कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होने वाली 2 परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। इनमें एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने की जिम्मेदारी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता के पास थी। जांच में पता चला कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज के अंदरूनी पोर्टल पर शेयर कर दिया, यानी कई छात्रों को पहले से ही पेपर मिल गया। कमाल है। सवाल यह उठता है कि पेपर लीक की इस बेईमानी को, इस चोरी को आखिर कैसे रोका जाएगा और सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं? आज पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हम भी एक सुझाव देना चाहते हैं। हमारा सुझाव यह है कि पेपर लीक से जुड़े हर मामले को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। हर जिले शहर में शिक्षा विभाग प्रशासन की ओर से सार्वजनिक डिजिटल डिस्प्ले, बड़े सूचना बोर्ड्स पर यह जानकारी अपडेट दी जाए बच्चों के लिए कि अब तक कितने पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितने खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, कितने मामलों की सुनवाई चल रही है, कितनों की अदालत ने सजा सुनाई है। जब तक पुलिस से लेकर शिक्षा मंत्रालय इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेगा, पारदर्शिता नहीं रखेगा, बच्चों का यह गुस्सा नहीं ठंडा होगा। छात्रों, आम जनता को यह स्पष्ट तस्वीर तो मिलेगी कि सरकार इस समस्या पर कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, एग्जाम आता है, पेपर लीक होता है, री एग्जाम अनाउंस हो जाता है, लेकिन कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके साथ ही दोषी साबित होने वाले पेपर लीक के अपराधियों के नाम तस्वीरें सार्वजनिक हो, समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है जो अभी तक माना गया है। लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ धोखा है। हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी ना कि पेपर लीक के आरोपी देश की, आप विधानसभा में सोचिए, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए विधायक बनकर, ऐसा सार्वजनिक जवाबदेही भविष्य में पेपर लीक कराने वाले लोगों के मन में डर तो पैदा कर सकती है और बेईमानी को रोकना बहुत जरूरी है। कुछ भी करिए लेकिन बड़ी बात है और इसमें आपको कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि इसमें पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को गलत बता रही है और ये कह रही है कि उसके पास पैलेट गन है ही नहीं। लेकिन अब हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने एक नई रिपोर्ट भेजी है जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक प्रदर्शनकारी की एमएलसी में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि उसे पैलेट गन से चोटें आई थी। और यहां यह बात अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप सफदरजंग अस्पताल में तैयार की गई इस एमएलसी को देखेंगे तो शरीर पर आई चोटों के लिए पैलेट इंजरी मार्क लिखा गया है। देखिए, ये जो शब्द वहां पर लिखे गए हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, पैलेट इंजरी मार्क्स। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती एक प्रदर्शनकारी के मेडिकल दस्तावेज हैं जिनमें ये लिखा है कि इस प्रदर्शनकारी को जो चोटें आई वो पैलेट गन की हैं और उसके शरीर में लगे पैलेट गन के छर्रे भी बाहर निकाल दिए गए हैं। और सुरक्षा कारणों से हम इस प्रदर्शनकारी का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शनकारी ने खुद हमें ये तस्वीरें दी हैं जिसमें पेलेट गन से आई इन दो चोटों को दिखाया गया है। हमारे सहयोगी आशीष की ये रिपोर्ट है और इसे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या वाकई में 20 जुलाई के संसद मार्च में पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। अभी दिल्ली पुलिस के पास पेलेट गन नहीं है, लेकिन दिल्ली में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है जिसे पेलेट गन दी गई है। इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पेलेट गन दागे जाने का दावा किया था, तब दिल्ली पुलिस ने इसे फेक न्यूज बताकर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और दावा यह हो रहा था कि 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह दावा पूरी तरह गलत है और किसी लड़की की इस प्रदर्शन में मौत नहीं हुई है। पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि ऐसे दावे करके सोशल मीडिया पर युवाओं को मोबिलाइज किया जा रहा है, उन्हें जंतर मंतर आने के लिए कहा जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे क्या होता है, लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर अमेरिका ईरान युद्ध की बात अब करेंगे। सीजफायर के खत्म होने के बाद से लगातार 12वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें कल उसने ईरान के खुजस्तान प्रांत के शलमचे बॉर्डर क्रॉसिंग पर अटैक किया और यह अमेरिकी सेना का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया एक्शन माना जा रहा है। ये जो शलमचे बॉर्डर क्रॉसिंग है वो ईरान और इराक की सीमा पर है। ये दोनों देशों के बीच रसद और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में इस बॉर्डर से ईरान और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच रसद और सैन्य साजो सामान का लेन देन बढ़ा है और इसीलिए अमेरिका ने इस बॉर्डर क्रॉसिंग को अपना निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के साथ अब किसी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं हो पाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह की डील के लिए तैयार नहीं है और अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस रुख से इतने नाराज हैं कि वो ईरान के पुल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिकी सेना ने जो हमले किए इनमें ईरान के ऐसे सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है जहां से ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रही थी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुल और पावर प्लांट को तबाह करने की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को धमकी दी है कि अब से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन

0: तालुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, आधी रात को सोनम वागचुक ने अपना अनशन खत्म किया है। अब से कुछ देर पहले सोनम वागचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा था। उन्होंने दोनों नेताओं के अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है। सोनम वांगचुक ने दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है। और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
1: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको
0: जी। हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो CJP के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने NDA पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है, और यही बातें जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को कही होंगी, जिसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है 25 दिन के बाद जो है वो तोड़ा है।
0: जी हिमांशु आप बने रहिए हमारे साथ, हम 2-3 बातें अपने दर्शकों को बता दें लेकिन आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। सोनम वांगचुक ने सरकार से स्पष्ट ये कहा था, बिना शर्त किसी आश्वासन के ये मांग की थी कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक या बदले की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा था कि छात्रों का जो एकमात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग है वो पूरी की जाएगी। अगर ये सरकार आश्वासन देती है कि हम इस पर विचार करेंगे विश्वास के साथ अनशन, तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। सरकार ने न सिर्फ सोनम वांगचुक से अपील की थी बल्कि लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को भी सुना, ये सोनम वांगचुक ने जो पत्र लिखा है उसमें भी उन्होंने कहा है। और जो 3 मांगे मुख्य मांगे छात्रों की थी उन पर सकारात्मक आश्वासन मिलने की बात भी करते हुए सोनम वासुक ने अपना ये अनशन खत्म किया है। हिमांशु हमारे साथ लगातार है, लेकिन बड़ी खबर एक बार आपको हम बता दें, अनशन खत्म कर दिया है सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने। छात्रों के समर्थन में जो वो अनशन कर रहे थे उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। दो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने दोनों उनसे देर रात 12 बजे के बाद अभी मुलाकात की कुछ देर पहले, और उसके बाद उन्होंने ये अनशन खत्म किया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दोनों केंद्रीय मंत्री गए थे और वहां पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सरकार की ओर से सोनम वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का उन्हें भरोसा दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ये अनशन खत्म कर दिया है। वांगचुक ने एक पत्र भी लिखा जिसमें मांग की कि पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सरकार की तरफ से पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जवाबदेही तय करने के लिए संसद में चर्चा होने की बात भी उन्होंने लिखी थी, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार करना शामिल था। हिमांशु, लगता है कि कुछ एक कदम आप आगे बढ़ो, दो कदम हम आगे बढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले पर ये अनशन खत्म हुआ है?
1: देखिए, बिल्कुल ये जाहिर तौर पर है कि इसी फार्मूले पे कोई भी नेगोशिएशन जो वो होता है, कुछ चीजें आप छोड़ दीजिए, कुछ हम छोड़ दें और फिर आपसी सहमति बना ले, यही हुआ है। और ये इसके परिणाम है कि सोनम वांगचुक ने जो है वो अपना 25 दिन बाद जो है अनशन खत्म किया है। ये एक बड़ा संदेश है उन प्रदर्शनकारियों के लिए कि सरकार उनकी बातों को सुन रही है, उन पर जो है काम करना शुरू किया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी दोषी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे जो है आगे भविष्य में इस तरीके के पेपर लीक जो है वो ना हो, और उस कड़ी में कई कदम जो है वो उठाए गए हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ने ये दिखाया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, आप कभी भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। सोनम वांगचुक क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल में थे, वहां जाकर जेपी नड्डा जो है जितेंद्र सिंह उन्होंने मुलाकात की, ये मुलाकात आज हुई है, इससे पहले भी दो दिन पहले जाके मुलाकात की थी, उनसे अपील की थी कि वो अपनी जो है हंगर स्ट्राइक जो अनशन है उसे तोड़ दे, लेकिन तब बात नहीं बन पाई। आज सरकार की तरफ से जब ठोस कदम उठाए गए उसकी जानकारी सोनम वांगचुक के पास थी, और उसके बाद
0: हिमांशु हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
1: जी सही
0: हिमांशु, बात आपसे करेंगे, लेकिन जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह दोनों केंद्रीय मंत्री सोनम वांगचुक से जब मिले उसका ऑडियो हमें मिला है, हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं।
2: And the fans have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings as well. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you.
3: Thank you.
2: I have my leader from the Apex Body of Ladakh, and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them.
3: Thank you. Thank you.
0: बातचीत आपने सुनी, सोनम वांगचुक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब उनसे मिलने पहुंचे तो ये बातचीत आपने सुनी है। हम यहाँ पर पूरी बात आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय की यही है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में जो अनशन शुरू किया था वो अनशन अंततः उन्होंने खत्म कर दिया है। और अनशन खत्म करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करने के लिए कहा है और हमें भरोसा है कि सरकार हमारी मांगों पर न सिर्फ विचार करेगी बल्कि उसे मानेगी भी, और इसीलिए मैं अपना ये अनशन खत्म कर रहा हूँ। तो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इसमें बहुत सारी मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से थी। आप हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ अब तक कुछ देर में वो जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको आज तक के दर्शकों को बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद अपना गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना अनशन खत्म कर दिया है। वो वहीं पर भर्ती थे। अनशन समाप्त करने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी दिया, पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमारी कुछ मांगों पर सकारात्मक विचार करने का हमें भरोसा दिया गया है, क्योंकि दो केंद्रीय बड़े केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे, सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने की उनसे अपील की थी। और सोनम वांगचुक ने दोनों की बातों पर सहमति व्यक्त करते हुए उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की। क्या अब आपको लगता है जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे हैं वो भी अपना वहां से धरना खत्म करेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने अब सकारात्मक बातचीत के लिए धन्यवाद तक सरकार को दे दिया है जितेंद्र?
3: देखिए सईद, जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि जंतर मंतर पर भी जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग भी अपना धरना खत्म करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों की बातचीत हुई है, दोनों मंत्री वरिष्ठ मंत्री दोनों उनकी बातचीत सोनम वांगचुक से हुई है और आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है कि उनकी तरफ से जो भी मांगे थी उन तमाम मांगों को लेकर के आश्वासन दिया गया, उसके बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना जो है उन्होंने अनशन तोड़ा है। तो उम्मीद ये की जा रही कि जंतर मंतर पर जो सीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अपना जो है प्रदर्शन बंद करेंगे। अब उसके बाद जो है वहां पर प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक वहां पर अनशन कर रहे थे उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। अब सरकार से जिस तरीके से सकारात्मक बातचीत हुई है एक कदम आगे पूरा ये मामला बढ़ा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आगे का भी जो कार्रवाई होगी या फिर जो अनशन उन्होंने खत्म किया उसके बाद जो जंतर मंतर पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी प्रदर्शन खत्म होगा।
0: बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। लेकिन बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये अनशन खत्म किया और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का उन्हें भरोसा दिया गया है। आइए अब हम पेपर लीक से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं।
4: पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
5: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
6: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम। विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
7: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
6: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
8: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
9: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
6: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
10: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
11: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
6: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
12: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
13: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा हो।
6: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
14: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
15: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
4: और अब खबर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक की। जी हां, पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वो अनशन तोड़ने के लिए अपनी शर्तें सरकार को बता चुके हैं। मतलब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के लिए सरकार को रास्ता दिखा दिया है, जबकि अब इस आंदोलन को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है और खुद पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थक अपने आप को बता रहा है। तो आइए दिखाएं आपको यह आंदोलन अब कहां जाएगा।
6: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन की कमान संभाल रखी है और हजारों प्रदर्शनकारी पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अपनी मांगे बनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के अनशन को आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वांगचुक का अनशन कब खत्म होगा। जब जंतर मंतर पर बीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है। इस बीच सोनम वांगचुक एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं और सरकार को अपना अनशन तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की शर्त सरकार को बता दी है।
16: सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
6: इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ये भी कह चुके हैं कि एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद वो छात्रों से आंदोलन रोकने की अपील करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक की मांगों के बीच कांग्रेस और पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक पर सरकार को घेर रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के सांसद 30 जनवरी बाद यानी गांधी स्मृति के लिए निकल पड़ते हैं।
17: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन MPs को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन MPs इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे।
6: आपको बता दें कि गांधी स्मृति को बिरला हाउस के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन यही बिताए थे। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के लिए जाते समय इसी परिसर में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। आज भी यहां गांधी जी के अंतिम पदों के निशान और वो स्थान सुरक्षित है जहां उन्हें गोली लगी थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है।
18: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है? इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते।
6: इससे पहले यानी 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया और पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगबो ने कांग्रेस के PM आवास पर प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को कांग्रेस का प्रदर्शन ईमानदार नहीं था। कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था।
19: I would like this movement to be above politics. We welcome everybody who is on the stage, who comes to us, but with the purity of heart, and whoever has comes with their own agendas will fall by the wayside, because this movement is out of sincerity and purity.
6: लेकिन जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पूरा विपक्ष संसद से सड़क तक सरकार पर प्रहार कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: हमारे देश के कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश और बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समुद्र बन चुकी हैं, इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। स्थिति इतनी डरावनी है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर बाढ़ का कब्जा है। गुजरात की रिपोर्ट।
20: सड़कों पर कारें डूबी हुई हैं, स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है, पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड से आई हैं। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए। पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। यह हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आईं। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा।

0: गई है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
1: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वही कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
2: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूँ तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
1: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिक बाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
3: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये माणिक बाग इलाका, माणिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
1: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए

0: बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं। बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
2: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत 2 दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
3: 1.5 महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
2: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
4: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
3: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है।
2: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
5: आप क्या लेके आए भैया?
6: पानी है,
5: तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा है ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे, तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
6: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
5: लेकर के आ रहा
6: हूँ, 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
5: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
6: दिल्ली, दिल्ली,
7: हम दिल्ली के।
5: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
6: रोज
7: इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है आई थिंक।
5: बाहर से आए? कहाँ से आए ऑर्डर?
6: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
5: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
8: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
5: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
8: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
5: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम पता? कोई
8: नाम नहीं बताया,
5: बस बोला खाना देकर के आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
8: कम से कम 20-25।
5: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
9: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
5: ऑर्डर कहाँ से आया है?
10: करोल बाग,
5: दिल्ली का ही है।
2: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
11: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
2: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
12: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
2: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
11: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें, अमूमन यहाँ चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट बार और तमाम यहाँ पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
2: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
8: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है। सोनम वांगचुक ने दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना यह अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
10: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको।
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए थे उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई, मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह, इसीलिए जो है वो 2 राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो CJP के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने NDA पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
2: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
3: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई,
4: लेकिन आप कंडीशन लगा करके
5: प्रतिकाल के अंदर प्रतिकाल ही चलेगा।
3: सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
6: उनका आइडियोलॉजी पहला लूज हुआ
7: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
3: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
8: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
3: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
9: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
10: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
3: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
11: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
12: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
3: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
13: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
14: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
3: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
15: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
16: युवा संतुष्ट है? अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
2: और अब खबर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक की। जो यहां पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वो अनशन तोड़ने के लिए अपनी शर्तें सरकार को बता चुके हैं। मतलब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के लिए सरकार को रास्ता दिखा दिया है। जबकि अब इस आंदोलन को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है और खुद पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थक अपने आप को बता रहा है। तो आइए दिखाएं आपको यह आंदोलन अब कहां जाएगा।
3: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन की कमान संभाल रखी है और हजारों प्रदर्शनकारी पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अपनी मांगे बनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के अनशन को आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वांगचुक का अनशन कब खत्म होगा। जब जंतर मंतर पर बीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है। इस बीच सोनम वांगचुक एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं और सरकार को अपना अनशन तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की शर्त सरकार को बता दी है।
17: सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
3: इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ये भी कह चुके हैं कि एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद वो छात्रों से आंदोलन रोकने की अपील करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक की मांगों के बीच कांग्रेस और पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक पर सरकार को घेर रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के सांसद 30 जनवरी बाद यानी गांधी स्मृति के लिए निकल पड़ते हैं।
18: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन MPs को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन MPs इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे।
3: आपको बता दें कि गांधी स्मृति को बिरला हाउस के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन यही बिताए थे। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के लिए जाते समय इसी परिसर में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। आज भी यहां गांधी जी के अंतिम कदमों के निशान और वो स्थान सुरक्षित है जहां उन्हें गोली लगी थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है।
19: सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते।
3: इससे पहले यानी 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया और पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगबो ने कांग्रेस के PM आवास पर प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को कांग्रेस का प्रदर्शन ईमानदार नहीं था। कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था।
20: आई वुड लाइक दिस मूवमेंट टू बी अबव पॉलिटिक्स। वी वेलकम एवरीबडी हु इज ऑन द स्टेज, हु कम्स टू अस, बट विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट, एंड हूएवर हैज कम्स विद देयर ओन एजेंडास विल फॉल बाय द वेसाइड बिकॉज दिस मूवमेंट आउट ऑफ सिंसियरिटी एंड प्योरिटी।
3: लेकिन जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पूरा विपक्ष संसद से सड़क तक सरकार पर प्रहार कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत, नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम बागचुंग ने यह कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बागचुंग ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी हैं। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
3: उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल आपको।
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए हैं उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह, इसीलिए जो है वो 2 राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो CJP के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने NDA पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी, प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर CJP ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र। जुलाई को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
4: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
3: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और CJP कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
5: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
4: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है।
3: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
6: आप क्या लेके आए भैया?
7: पानी
6: है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे, तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
7: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
6: लेकर के आ रहा हूँ,
7: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
6: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
7: दिल्ली।
6: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
7: रोज,
8: इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है।
6: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
7: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
6: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
9: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
6: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
9: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
6: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम बता? कोई
9: नाम नहीं बताया,
6: तो बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
9: कम से कम 20-25।
6: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
10: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
6: ऑर्डर कहाँ से आया है?
11: करोलबाग,
6: दिल्ली का ही है।
3: 20 जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
12: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो RAF के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ RAF की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
3: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
11: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
3: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
12: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, रेस्टोरेंट बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
3: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
3: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
13: उनके रिजर्वेशन पहला लीजिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
3: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
14: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
3: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
15: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
16: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
3: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
17: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
18: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
3: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
19: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
20: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
3: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
21: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
22: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
2: छात्रों के लिए इंसाफ का फास्ट ट्रैक क्या भविष्य में पेपर लीक को सही ट्रैक पर ला पाएगा, ये प्रश्न है। लेकिन इसी मुद्दे पर बीते चार दिनों से संसद ठप है। सरकार की तरफ से पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर चर्चा की पेशकश की गई है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की एक ही शर्त है, चर्चा से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
3: सरकार बनाम विपक्ष, सरकार बनाम प्रदर्शनकारी, इस पूरी लड़ाई के केंद्र बिंदु में है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी इसी मांग को लेकर खड़े हैं, तो संसद में विपक्ष भी इस्तीफे पर अड़ा है।
23: कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग।
3: कांग्रेस का कहना है कि छात्र सड़क पर हैं, तो विपक्ष भी इसीलिए सड़क पर उतरने पर मजबूर है। राहुल गांधी का आरोप है कि वो पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन तब सरकार तैयार नहीं हुई। व वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का दावा है कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष छात्रों का बहाना बनाकर सियासत कर रहा है।
0: अपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं,

0: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम बाक्सुन ने यह कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बाक्सुन ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
2: उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको
0: जी। हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो CJP के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने NDA पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
0: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है सरकार ने क्या ये मांगे मान ली?
2: देखिए आज ये स्पष्ट हो चुका है सहित जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है, और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
0: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
2: स्पष्ट हो जाए कि किसी से
0: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज।
2: जी सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा, और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
0: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
0: नहीं, नहीं, नहीं प्रदीप जी, उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
5: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
4: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
6: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक चार मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
5: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे दो दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप डेढ़ महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
4: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
7: आप क्या लेके आए भैया?
8: पानी
7: है। तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा है ढेर सारा, इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
8: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
7: लेकर के आ रहा
8: हूँ। 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
7: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के?
8: दिल्ली।
9: हम दिल्ली के।
7: रोज इतना खाना लेकर के आते
8: हैं? रोज
9: इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है।
7: बाहर से आए? कहाँ से आए ऑर्डर?
8: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
7: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया?
8: दे दिया।
7: आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
8: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
7: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
8: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
7: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम पता? कोई
8: नाम नहीं बताया।
7: तो बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
8: कम से कम 20-25।
7: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
10: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, वी आर वेरी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
7: ऑर्डर कहाँ से आया है?
8: करोलबाग,
7: दिल्ली का ही है।
4: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
11: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है। एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
4: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
12: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की, जिनको बंद कर दिया गया है।
4: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
11: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
4: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
13: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
5: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
13: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
14: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
15: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
16: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले?
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
17: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
18: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा हो।
4: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
19: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
20: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
3: हमारे देश के कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश और बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समुद्र बन चुकी हैं, इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। स्थिति इतनी डरावनी है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर बाढ़ का कब्जा है। गुजरात की रिपोर्ट।
21: सड़कों पर कारें डूबी हुई है, स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है, पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई है। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए, पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है, गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आई। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है।
22: इस बार बारह बरसात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है, इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
21: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है, वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
23: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहां पे जो रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहां पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहां पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
21: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिक बाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
24: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिक बाग इलाका, मानिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
21: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना यह अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
3: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल आपको।
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए थे उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह, इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
0: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है सरकार ने क्या ये मांगे मान ली?
2: देखिए आज ये स्पष्ट हो चुका है सईद जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है, और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
0: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
2: स्पष्ट होता है कि किसी से
0: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज।
2: जी सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा, और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
0: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
0: नहीं, नहीं, नहीं प्रदीप जी, उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
5: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने एक पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
4: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
6: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक चार मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है, इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
5: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे दो दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप डेढ़ महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
4: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
7: आप क्या लेके आए भैया? पानी है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा है ढेर सारा, इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं,
8: सैनिटरी पैड्स। मैं खुद 7 दिन से
7: लेकर के आ रहा हूँ,
8: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
7: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के?
8: दिल्ली, दिल्ली,
9: दिल्ली। हम
7: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं,
9: रोज इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है आई थिंक।
7: बाहर से आए, कहाँ से आए ऑर्डर?
10: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
7: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
11: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर,
7: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
11: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
7: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम पता? कोई
11: नाम नहीं बताया,
7: बस बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
11: कम से कम 20-25।
7: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
12: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
7: ऑर्डर कहाँ से आया है?
10: करोलबाग,
7: दिल्ली का ही है।
4: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
13: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
4: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
14: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट, बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
4: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
13: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
4: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
15: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
15: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
16: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
17: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
18: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
19: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
20: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्प। कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को

0: भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
1: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
2: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
3: युवा संतुष्ट है? अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक, आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस, नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत, नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशी।

0: क्योंकि खबरें भी आ रही है, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
2: मांगे थी उसको सरकार कंसिडर कर रही है, वो चाहती है

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको।
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह, इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है, पेपर लीक के लिए जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
0: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है सरकार ने क्या ये मांगे मान ली?
2: देखिए आज ये स्पष्ट हो चुका है सहित जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है, और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्चर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
0: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
2: स्पष्ट होता है कि किसी से
0: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज।
2: जी सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा, और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
0: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
0: नहीं, नहीं, नहीं प्रदीप जी, उन्होंने उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
5: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर हैं, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
4: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
6: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक चार मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है, इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
5: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे दो दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप डेढ़ महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
4: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
7: आप क्या लेके आए भैया? पानी है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
8: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
7: लेकर के आ रहा हूँ।
8: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
7: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
8: दिल्ली, दिल्ली,
9: हम दिल्ली के।
7: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
8: रोज
9: इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है आई थिंक।
7: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
8: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
7: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
10: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
7: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
10: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
7: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम कोई
10: नाम नहीं बताया,
7: तो बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
10: कम से कम 20-25।
7: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
11: हाँ, मतलब जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
7: का ऑर्डर कहाँ से आया है?
12: करोल बाग,
7: दिल्ली का ही है।
4: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
13: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है। एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
4: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
14: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट, बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
4: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
13: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
4: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
15: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
5: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
12: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
15: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
16: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
17: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
18: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
19: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
4: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
20: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
21: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
3: हमारे देश के कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश और बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समुद्र बन चुकी हैं, इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। स्थिति इतनी डरावनी है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर बाढ़ का कब्जा है। गुजरात की रिपोर्ट।
22: सड़कों पर कारें डूबी हुई हैं, स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है, पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई है। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए, पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है, गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आईं। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है।
23: इस बार बारह वर्षात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
22: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
24: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहां पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहां पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहां पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
22: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिकबाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
25: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिकबाग इलाका, मानिकबाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
22: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है, सरकार ने क्या ये मांगे मान ली है?
3: देखिए, आज ये स्पष्ट हो चुका है सहित जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
4: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
3: स्पष्ट होता है कि किसी से
4: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज
3: जी। सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
4: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
3: देखिए, सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
4: नहीं, नहीं, नहीं, प्रदीप जी, उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
3: देखिए, सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
5: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है, और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
6: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो चाहती है

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको
0: जी। हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
4: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेंजी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने एक पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
3: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और CJP कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
5: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
4: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है।
3: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
6: आप क्या लेके आए भैया? पानी है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा है ढेर सारा, इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं,
7: सैनिटरी पैड्स। मैं खुद 7 दिन से
6: लेकर के आ रहा हूँ,
7: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
6: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
7: दिल्ली, दिल्ली।
8: हम दिल्ली के।
6: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
8: रोज इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है आई थिंक।
6: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
9: ये मतलब दिल्ली से बाहर से।
6: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
10: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
6: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
10: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
6: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम बता? कोई
10: नाम नहीं बताया,
6: तो बोला खाना देकर के आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
10: कम से कम 20-25।
6: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
11: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
6: का ऑर्डर कहाँ से आया है?
12: करोल बाग,
6: दिल्ली का ही है।
3: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
13: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो RAF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ RAF की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
3: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
12: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
3: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
13: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
3: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
3: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम। विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद धम। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
14: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
3: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
15: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
16: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
3: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
17: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
18: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
3: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
19: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
20: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
3: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
21: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
22: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और

0: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है, सरकार ने क्या ये मांगे मान ली?
2: देखिए, आज ये स्पष्ट हो चुका है सहित जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
1: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
2: स्पष्ट होता है कि किसी से
1: जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज।
2: जी, सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
1: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए, सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
1: नहीं, नहीं, नहीं, प्रदीप जी, उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए, सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
1: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है।

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको
0: जी। हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए थे उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह, इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही यह सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
4: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
3: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और CJP कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
5: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
4: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है।
3: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
6: आप क्या लेके आए भैया? पानी है, तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे, तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
7: सैनिटरी पैड्स मैं खुद 7 दिन से
6: लेकर के आ रहा हूँ,
7: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
6: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
7: दिल्ली, दिल्ली,
8: हम दिल्ली के।
6: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
8: रोज इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है।
6: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
9: ये मतलब दिल्ली से बाहर से है।
6: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया?
9: दे दिया।
6: आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
9: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
6: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
9: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
6: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम बता?
9: कोई नाम नहीं बताया,
6: तो बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
9: कम से कम 20-25।
6: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
10: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड टू एवरी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
6: ऑर्डर कहाँ से आया है?
11: करोलबाग,
6: दिल्ली का ही है।
3: 20 जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
12: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो RAF के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ RAF की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
3: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
11: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है, मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
3: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
12: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें, अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, रेस्टोरेंट बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन आप न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
3: सरकार CJP और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
3: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
13: उनके इलेक्शन फाइनल लीजिए,
14: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
3: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
15: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
3: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
16: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
17: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
3: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
18: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
19: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
3: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
20: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
21: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
3: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
22: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
23: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
2: हमारे देश के कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश और बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समुद्र बन चुकी हैं, इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। स्थिति इतनी डरावनी है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर बाढ़ का कब्जा है। गुजरात की रिपोर्ट।
24: सड़कों पर कारें डूबी हुई हैं, स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है, पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई हैं। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए, पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। यह हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है, गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं, गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आईं। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है।
0: इस बार बारह बरसात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
24: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
1: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
24: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिक बाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
4: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये माणिक बाग इलाका, माणिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
24: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक। आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस। नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत। नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम बाक्सुन ने यह कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बाक्सुन ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
3: उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो चाहती है

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको।
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
1: जिन बच्चों ने न्यूज पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की भी मांग थी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है। ये सारे प्रयास अगर आप देखें, और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया।
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी। और आप देखिए इसी तरह इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के 2 प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो, और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है, पेपर लीक के लिए जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया जैसे ही ये सामने मामला आया, न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर। तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है।
0: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है सरकार ने क्या ये मांगे मान ली है?
2: देखिए आज ये स्पष्ट हो चुका है सईद जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है, और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
0: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
2: स्पष्ट होता है कि किसी से
0: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज।
2: जी सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा, और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की।
0: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मांग ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
0: नहीं, नहीं, नहीं प्रदीप जी, उन्होंने उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान, उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
5: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर हैं, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
4: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
6: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक चार मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है, इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
5: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे दो दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी है तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप डेढ़ महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
4: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
7: आप क्या लेके आए भैया? पानी है। तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं,
8: सैनिटरी पैड्स। मैं खुद 7 दिन से
7: लेकर के आ रहा हूँ,
8: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
7: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
8: दिल्ली, दिल्ली।
9: हम दिल्ली के।
7: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
9: हाँ, इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है आई थिंक।
7: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
10: ये मतलब दिल्ली से बाहर से है।
7: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया?
10: दे दिया।
7: आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
10: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
7: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
10: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
7: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम पता? कोई
10: नाम नहीं बताया,
7: बस बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
10: कम से कम 20-25।
7: आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
11: हाँ, मतलब दे आर जस्ट गिविंग द फूड, हू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
7: ऑर्डर कहाँ से आया है?
12: करोलबाग,
7: दिल्ली का ही है।
4: बीस जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
13: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूं और यहां से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आरएएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर मौजूद। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
4: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
14: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट, बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
4: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
13: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
4: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
15: उनका इलेक्शन पहला लूज हुआ, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
5: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
12: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
16: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
17: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
18: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
19: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप
3: हमारे देश के कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश और बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समुद्र बन चुकी हैं, इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। स्थिति इतनी डरावनी है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर बाढ़ का कब्जा है। गुजरात की रिपोर्ट।
20: सड़कों पर कारें डूबी हुई है, स्कूल बसों की हालत देख लीजिए, दुकानों में पानी भर चुका है,
1: घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से आई है। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी हालत देख लीजिए। पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। यह हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जलभराव देखने को मिला। वलसाड़ में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आई। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को ही तेज बारिश के बाद उधना नवसा

0: निपटने की तैयारी में जुटा है।
1: इस बार बारह वर्षात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है।
0: नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वही कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है।
2: प्रशासन की तो प्रशासन ने यहां पे जो रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहां पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहां पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है।
0: अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिक बाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है।
3: अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिक बाग इलाका, मानिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है, जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है।
0: आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश, कहा छात्रों परिवार के लिए पीड़ादायक, आज कैबिनेट की बैठक में करेंगे चर्चा, पेपर लीक के विरुद्ध संसद में पास कराएंगे बिल। आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात की जगह पर सस्पेंस, नड्डा ने अपने सरकारी घर या दफ्तर का दिया था न्योता। सरकार के खिलाफ राहुल ने तेज किया युद्ध, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ पहुंचे गांधी स्मृति, बोले धर्मेंद्र प्रधान को देना ही होगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन, पेपर लीक की सुनवाई करेगी अदालत, नरेश पाल को उधर बनाया गया नया उच्च शिक्षा सचिव। और मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से फिर मिले नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी लंबी चर्चा। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, पीएम ने कहा कि इस मामले में कई गुनाहगार पकड़े गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी सत्र में कड़ा बिल लेकर आएंगे।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी